0: चुकी थी। लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था। जहांगीर खान पलता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे पलता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
1: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
0: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে পালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
2: কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ও ডাকাতটা কোথায়, ও ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
0: পলতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, लेकिन खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की इस नई तस्वीर ने उसके रहे सहे खौफ को खत्म कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को जनता ने पहले चुनाव में हराया और अब उसके नेता निशाने पर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में टीएमसी के प्रधान को उठक बैठक करा के भ्रष्टाचार के लिए माफी मंगवाई गई। दुर्गापुर में गिरफ्तार टीएमसी नेता सुकुमार दत्ता पर अंडे फेंके जाते। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद होता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
3: टीएमसी इतनी जल्दी बिखर जाएगी इस बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था, और इसी तरह विपक्ष ने साल 2024 में ये नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को बहुत भारी पड़ सकती है।
2: 24 के चुनाव में इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
0: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
4: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
2: आप सबको 16 फिल्म की मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
0: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? दो साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
2: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
0: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में देख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया था। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 और सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था, अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 साल पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
2: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है, तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
0: मोदी के ये कहने के 2 साल बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराईक राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, ट्रेंड ये राज्यसभा में दो तिहाई बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
2: मुझे किस्सा याद आता है 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
3: उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव से पहले हलचल तेज हो चुकी है। बीएसपी बैठकें कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने का जतन तलाश रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और इन सब के बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चल दिया है।
5: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
6: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
7: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
5: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां 24 नॉर्थ परगना में एक स्कूल में पौने 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। इसके अलावा शराब की कुछ बॉटल्स थी, आपत्तिजनक चीजें भी कुछ मिली हैं।

0: 500 की नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों का बंडल और 100-100 रुपए के नोटों का गट्ठर, ये करोड़ों के कैश पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के कांचरापाड़ा में बने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में मिले हैं। एक करोड़ 77 लाख रुपए के साथ इस स्कूल में शराब की बोतलें और कॉन्डोम के पैकेट भी मिले हैं। स्कूल में एक बेडरूम जैसा सेमी फर्निश्ड कमरा भी है। सवाल ये है कि इतना पैसा स्कूल में आया कहां से?
1: एडमिशन टाकाटा अकाउंटेंट माने भर्ती टाका गुलो अप्रैल मास থেকে স্টুডেন্ট যে ভর্তি হয় সেই টাকা গুলো জমা করেছিল, একটা ওনার উচিত ছিল মানে একদিন বা দুদিন অন্তর ব্যাংকে পাঠানো, উনি ব্যাংকে পাঠায়নি, আড়াটা পুরো অ্যাকাউন্ট সেকশনের পাটে, আর আমি প্রিন্সিপাল হিসেবে শুধুমাত্র আমার একাডেমিক পাটের আমার দায়িত্ব ছিল, এই পাটায়নি সে ব্যাপারে আমার কোনো নলেজ ছিল না।
0: मतलब स्कूल के मुखिया को ही नहीं मालूम कि स्कूल के भीतर अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए प्रिंसिपल साहब ने ये बताया कि बेडरूम इसलिए है ताकि बच्चे बीमार हो तो आराम कर सके। प्रिंसिपल की सफाई किसी के गले नहीं उतर रही है, लेकिन बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है।
2: তৃণমূল একটা অভিশাপ, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের 15 বছরের একটা অভিশাপ। স্কুল থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে, একটা বেডরুম পাওয়া যাচ্ছে এবং সেখানে আরো কিছু পাওয়া যাচ্ছে, আমার বলতে এখানে রুচিতে বাজছে, এই তো অবস্থা।
0: इस पूरे मामले में पुलिस ने स्कूल के कैशियर अभिजीत नाथ और अविक नाथ के साथ ही असिस्टेंट अकाउंटेंट सायन घोष को हिरासत में ले लिया है। अब जानने की कोशिश हो रही है इतना कैश आया कहां से और स्कूल में चल क्या रहा था। दीपक देवनाथ, नॉर्थ 24 परगना, आज तक।
3: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी के पीओके से इस वक्त जो बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
4: सुनिए इन नारों को, ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं हैं, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती हैं, जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिम मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
3: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव का असर अब तेल और गैस की किल्लत से आगे बढ़कर भारतीयों की जान की फिक्र में बदल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर पिछले 3 दिन में हमला किया है उसने भारत को चिंता से भर दिया है।
5: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है?
6: But we hit them hard yesterday and we're going to hit them again hard today in case you miss it, in case you don't turn on your television set. And we'll see what happens with the deal. We were really close to a deal, but they keep tapping us along. They keep playing us for suckers.
7: attacking them very hard.
8: Resuming bombing?
7: Based on the helicopter, I guess we have the right to do that, you know.
5: अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है।
9: मैम, कल शाम को मुझे कंपनी से फोन आया था, शिपिंग कंपनी से, कि ऐसे शिप हिट हुआ है यूएस नेवी के मिसाइल से, तो जो 3 क्रू मिसिंग है उनमें मेरा बेटा भी है। हमारा एक ही बेटा था, वो मेरे परिवार में मेरे मदर है, ब्रदर है, ब्रदर की फैमिली है
10: जी।
9: मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है वो एक प्रॉपर गाइडलाइन जारी करे, ताकि किसी भी प्रेशर में, चाहे वो कमर्शियल प्रेशर हो या पॉलिटिकल प्रेशर हो, किसी भी शिप को उस तरफ जाने से रोका जाए, ताकि जो क्रू मेंबर होते हैं उनकी लाइफ पे कोई रिस्क ना आए।
5: अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है।
11: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
5: 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है।
12: We have seen that there have been several incidents involving Indian seafarers in West Asia in the last few days. We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarer community. We need not re-emphasize this point. Yesterday we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which unfortunately we lost 3 Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest.
5: अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
13: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
5: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80,00,000 भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।
3: इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान पर विनाशकारी हमले की चेतावनी के बाद ट्रंप ने बदला प्लान, कहा रात में हमले का प्लान कैंसिल। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची समझौते के बाद जल्द होंगे हस्ताक्षर, तब तक नाकेबंदी जारी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक का अलर्ट, वैश्विक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान। आर्थिक संकट के बीच भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा 6.6 फीसदी का अनुमान। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर जोर दिया, 28 राज्यों के सीएम शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए तेवर, ममता से कहा अभिषेक या मुझमें से एक को चुने दीदी। कांग्रेस के साथ मर्जर की खबरें तेज, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा हर हाल में ममता के साथ। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा।

नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह के 6 बज चुके हैं और सुबह के सबसे पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत करेंगे उस खबर से जो है पश्चिम बंगाल से। कैसे फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की है। बीती शाम पूछताछ के बाद अभिषेक देर रात सीआईडी मुख्यालय से सीधे ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। कलकत्ता हाईकोर्ट में अभिषेक ने सीआईडी के समन को चुनौती दी थी, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। उन्हें सीआईडी दफ्तर पूछताछ में शामिल होने के लिए जाना पड़ा। पूछताछ शाम करीब 5 बजे से 11:30 बजे तक चली। सूत्रों के मुताबिक 14 तारीख को अगली पूछताछ के लिए सीआईडी ने अभिषेक को एक और समन थमा दिया है। इसके पहले 3 बार सीआईडी अभिषेक बनर्जी के घर गई, उन्हें नोटिस देने की कोशिश की, लेकिन वो घर पर नहीं मिले। नोटिस सीधे उन्हें नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने समन को चुनौती दी थी। दरअसल विधायकों के समर्थन माला एक पत्र स्पीकर को सौंपे जाने के मामले में उन पर आरोप है कि दरअसल विधायकों ने उस पर समर्थन नहीं किया, बल्कि अभिषेक बनर्जी ने खुद हस्ताक्षर किए थे। और ये तब मामला सामने आया जब ऋतुव्रत बनर्जी अपने साथ 60 विधायकों को लेकर के गलत खेमा बना चुके हैं। और तब ये शिकायत हुई कि अभिषेक बनर्जी ने जो चिट्ठी भेजी गई थी स्पीकर को टीएमसी की ओर से, उसमें दस्तखत विधायकों के नहीं थे। और इसी के बाद सीआईडी में शिकायत हुई पुलिस में। सीआईडी उसकी जांच कर रही है और बीती शाम अभिषेक बनर्जी इस जांच में पूछताछ के लिए शामिल हुए। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सामने सियासी मुश्किल है। ममता बनर्जी की टीएमसी में बगावत की आवाज बुलंद हो रही है। जो कभी ममता बनर्जी के बेहद खास सिपह सालार हुआ करते थे, बहुत साथ खड़े रहते थे, दाएं बाएं खड़ा होते थे, आज वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं या फिर पार्टी में रहकर अलग गुट बनाने लगे हैं। अब टीएमसी के तीसरे राज्यसभा सांसद भी अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।

0: जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है। क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक एक करके टीएमसी के पार्षद, विधायक, सांसद पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। कल सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया था और आज टीएमसी राज्यसभा के सांसद प्रकाश चिक बाराइक ने भी इस्तीफा दे दिया।
1: देखिए, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, ये हम लोग के पक्ष में नहीं आया। साथ ही इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया क्योंकि मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी में उस तरह रिजल्ट नहीं हुआ। अभी गणतांत्रिक देश का गणतंत्रता जिसको चाहती है वो उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है।
0: तीन दिन में टीएमसी के तीन राज्यसभा सांसदों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन इन बागियों में सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग का नाम भी जोड़ लीजिए। कल टीएमसी के चार सांसद बीजेपी नेताओं से मिले। जादवपुर की सांसद सयोनी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण के मॉल रॉय और आरामबाग के सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हुई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर बैठक हुई जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब एक घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा

0: कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: चुनौती दरअसल बागियों के पास ये भी है कि अभी 28 सांसद हैं, आपको दो तिहाई चाहिए, उसके लिए 19 चाहिए, 19 का संख्या अभी तक पूरा हो नहीं पा रही है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा था, ठीक है, इसलिए बंगाल पुलिस 4 मई के बाद अब अपराधियों और आरोपियों की हवाई चप्पल और हाफ पैंट में परेड निकालते हुए देखी गई है। फालता में टीएमसी के नेता वही जहांगीर खान, उनकी भी ऐसी परेड पुलिस ने निकाली है।
2: फालता की जिन गलियों में कभी जहांगीर खान का खौफ पसरा रहता था, उन्हीं गलियों में शुभेंदु राज के भीतर उसे हाफ पैंट पहनाकर घुमाया गया है। खुद को पुष्पा कहने वाले जहांगीर खान की ये केवल परेड नहीं निकाली जा रही, बल्कि फालता के लोगों के दिलों से वो बचा खुचा खौफ भी बाहर किया जा रहा है, जिसका पूरा हिसाब करने का वायदा शुभेंदु अधिकारी ने किया था।
3: आपने निश्चिंत राखुन আমি সব পেয়ে গেছি, সব পেয়ে গেছি, সবকা সাথ সবকা বিকাশ ভি হোগা সবকা হিসাব ভি হোগা।
2: ফালতা কি জো সড়কে জাহাঙ্গীর কি মৌজুদগি সে কহতে হ্যায় সুনসান হো জায়া করতি থি। ফালতা কি উনহীঁ সড়কো পর অভিষেক বনার্জি কে পুষ্পা কি চুপ্পি উস খৌফ কা অন্ত হ্যায় জিসনে লোগো কো বর্ষো তক ভোট ডালনে সে ভি রোকা।
4: क्या लगता है कि इतने दिनों से उनका डर यहाँ पे था?
5: हाँ, उना उसके लिए डर के लिए सब बाहर निकल नहीं सकता है कि ऐसा किया था। और अभी हम रनिंग सीएम जो है वो तो आके हम लोग का रोड शो किया है, जो सब अपना से वोट दो, कोई डर नहीं करेगा। भय आउट भर सही।
2: किसी भय को निकालने के लिए फालता की सड़क पर जहांगीर खान की परेड निकाली जाती। कुछ चुपचाप पुलिस वाले का हाथ पकड़कर गलियों में घूमता देखता। बड़ी बात यह कि अदालत में पेशी के दौरान जहांगीर खान पैंट पहने दिखा था, लेकिन जब फालता में उसकी परेड निकलती है तो हाफ पैंट में आ जाता है। जहांगीर खान से पहले टीएमसी के कई नेताओं और अपराधियों को बंगाल पुलिस इसी तरह घुमा चुकी, लेकिन जहांगीर खान का ये रूप अपने आप में अहम, क्योंकि चुनाव के दौरान वो खुलेआम पुलिस को धमका रहा था।
6: उन्हें निजे के सिंह मने करे सिनेमा हाटी से हमारा पुष्पा छुपे गए।
2: जहांगीर खान फालता ही नहीं, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट पर टीएमसी का बड़ा नेता रहा, जिसे फालता से जीत और ममता सरकार बनने का इतना भरोसा था कि वो खुलेआम इलेक्ट्रिक शमशान विरोधियों के अंतिम संस्कार के लिए मांगने लगा।
7: এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত।
2: লেকিন 4 মই কো বাজি পলটতি হ্যায় তো জাহাঙ্গীর খান কে সুর নরম হোতে গয়ে আর উসনে ফালতা বিধানসভা সিট সে খুদ কো অলগ করনে মে পহলে আপনি ভালাই সমঝি।
3: আর কোথায় গেলেন তথাকথিত পুষ্পা নাকি নাম, ডাকাতটা কোথায়, ডাকাতটা কোথায়, কোথায় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে।
2: ফালতা মে বিজেপি কি জিত কে বাদ জাহাঙ্গীর খান আন্ডারগ্রাউন্ড হো গিয়া আর ফির অচানক উসকি নেপাল বর্ডার সে গিরফতারি হুই। পতা চলা ও ভাগনে কি ফিরাক মে থা, লেকিন খুদ কো পুষ্পা কহনে ওয়ালে জাহাঙ্গীর খান কি ইস নই তসবীর নে উসকে রহে সহে খৌফ কো খতম কর দিয়া হ্যায়। পশ্চিম বঙ্গাল মে তৃণমূল কংগ্রেস কো জনতা নে পহলে চুনাও মে হারায়া আর আব উসকে নেতা নিশানে পর। পশ্চিম বঙ্গাল কে পূর্বী মিদনাপুর মে টিএমসি কে প্রধান কো উঠক বৈঠক করা কে ভ্রষ্টাচার কে লিয়ে মাফি মঙ্গওয়াই গয়ি। দুর্গাপুর মে গিরফতার টিএমসি নেতা সুকুমার দত্তা পর অন্ডে ফেঁকে যাতে। टीएमसी के इस नेता पर करोड़ों की उगाही और आतंक फैलाने का आरोप। उत्तर 24 परगना की यह तस्वीर देखी, जिसमें टीएमसी नेता नौशाद आलम पर भी अंडे फेंके गए। जनता का यह गुस्सा उस व्यवस्था के खिलाफ है, जिसमें दावा है डर और भ्रष्टाचार चरम पर रहा, जिसके सबूत चारों तरफ बिखरे हैं। उत्तर 24 परगना में जहां टीएमसी नेता पर अंडे फेंके जाते हैं, उससे कुछ ही दूरी पर एक स्कूल से 1,77,00,000 रुपए कैश बरामद हो।

0: सकता है। बीजेपी का कहना है कि स्कूल से इतना बड़ा कैश मिलना टीएमसी राज में हो रहे भ्रष्टाचार की मिसाल है। बंगाल में 4 मई के बाद से लगातार टीएमसी के नेता निशाने पर हैं। एक तरफ जनता अपना हिसाब बराबर कर रही है, वहीं पुलिस जहांगीर खान जैसे नेताओं को इस तरह घुमाकर उनके खौफ को खत्म करने में जुटी है।
1: एक कहावत कही जाती है कि वर्तमान में राजनीति को अपने इतिहास से सीखना चाहिए और आने वाले भविष्य के लिए इसी वर्तमान से सबक लेना चाहिए। जब एक मजबूत पार्टी टूटती है, चुनाव आप हारते हैं, हाथ से सत्ता निकलती है, तो क्या अंजाम होता है? आज टीएमसी के साथ हुआ, कल को न जाने किसके साथ होगा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस इतनी जल्दी बिखर जाएगी इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। विपक्ष ने साल 2024 में यह नहीं सोचा था कि मोदी सरकार लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब पहुंच जाएगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और तमिलनाडु में डीएमके से कांग्रेस की कथित धोखेबाजी मानसून सत्र में विपक्ष को भारी पड़ सकती है।
2: 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए। विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो।
0: 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को खबरदार करते हुए ये तब कहा जब कांग्रेस और उसके समर्थक नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सूर्यास्त के दावे तक करने लगे थे।
3: आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक ऑब्जर्वर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनेमिक चल रही है और आप देखना, मेरे अंदाजे से मेरा असेसमेंट है 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे।
0: तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों को याद दिलाया था कि विपक्ष को जनता ने जिताया नहीं बल्कि हराया है।
2: आप सबको शोले फिल्म की मौसी जी याद होगी, तीसरी बार तो हारे हैं पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बारी तो हारे हैं पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना।
0: 2024 के चुनाव परिणामों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, क्या वो 2026 में सच हो रहा? 2 साल बाद न सिर्फ मोदी एक विजेता के रूप में नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वहीं देश को कांग्रेस के कुचक्र से निकालने का दावा भी करते हैं।
2: एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता यह भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है। कांग्रेस ने देश को लाचारगी, बेचारगी और हीन भावना के गर्त में गिरा दिया था। देश को यही एहसास कराया जाता था कि भारत में विकास धीरे धीरे ही होता है, भारत में तेज विकास संभव ही नहीं है।
0: 2024 के नतीजों के बाद इतनी जल्दी विपक्ष की ताकत बिखर जाएगी, इसकी कल्पना ममता बनर्जी जैसी कद्दावर नेता ने भी नहीं की होगी, जिनकी पार्टी पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी, जिसका असर मानसून सत्र में ताकतवर मोदी सरकार के रूप में दिख सकता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 353 सीटें जीती थी, जो मोदी राज में एनडीए का 3 चुनावों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2024 में एनडीए 292 सीटों पर आ जाती है, लेकिन टीएमसी में बगावत करने वाले 19 सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए का आंकड़ा लोकसभा में 311 पहुंच जाता है। अप्रैल में जब संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय 528 सांसद लोकसभा में मौजूद थे और 2/3 बहुमत का आंकड़ा 352 था, सरकार को 298 वोट मिले, विधेयक के खिलाफ 230 वोट डाले गए, यानी 54 वोटों से वो विधेयक गिर गया। अब सरकार ने संतर को काफी हद तक पाट लिया है। अगर मुद्दों के आधार पर डीएमके के 22 सांसदों का भी समर्थन मिलता है तो एनडीए की ताकत 333 तक हो सकती है। सरकार की नजरें शिवसेना यूबीटी के 9 सांसदों पर भी है, अगर इनमें टूट होती है तो 6 सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। इस तरह एनडीए की ताकत बढ़कर 339 तक पहुंच सकती है। बड़ी बात यह कि अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान के समय एनडीए को 298 सांसदों का समर्थन मिला था। अगर वो 5 वोट भी जोड़े तो एनडीए की संख्या 344 पहुंच जाती है। तो सरकार को उम्मीद है कि अन्य छोटे दल और निर्दलियों के दम पर 2/3 का बहुमत छुआ जा सकता है। यानी 2 पहले 240 पर बीजेपी के अटकने को मोदी की हार समझने वाले विपक्ष को नरेंद्र मोदी खबरदार करते हुए जो कुछ कहते हैं वो बात सही निकलती है।
2: कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है।
0: मोदी के ये कहने के 2 बाद लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी विपक्ष मोदी सरकार को 2/3 बहुमत के करीब पहुंचने से रोकता नहीं नजर आ रहा। इसकी वजह टीएमसी के 13 सांसद हैं, जिनमें से सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराईक राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अगर ये बीजेपी में उपचुनाव के बाद राज्यसभा में आते हैं तो एनडीए का आंकड़ा 149 से 152 पहुंच सकता है। वहीं अगर टीएमसी के कुछ और सांसद टूटते हैं, डीएमके के 8 सांसद भी सशर्त समर्थन देते हैं, तो एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत के आंकड़े 164 के लक्ष्य को आसानी से पा सकता है। मतलब संसद में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष के लिए एनडीए को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। मतलब मोदी के करिश्मे के खात्मे की भविष्यवाणी करने वालों को मुंह की खानी पड़ सकती है।
2: सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था, तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है।
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल ने काकुली घोष दस्तीदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, एक साल के लिए, दो साल के लिए, उसके लिए एक दो साल होगा। हम लोग के लिए इतना दिन में तो कोई ना कोई, अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे। वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है। तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते। आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था। एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है। जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा। अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
1: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल हैं।
3: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
1: रिबल,
3: आप ये तो रिबल कहां से हो गए, भगौड़े हैं। रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
5: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
1: लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल हैं।
3: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
1: रिबल,
3: आप ये तो रिबल कहां से हो गए, भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंपल पर लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंपल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, उधार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: Are you wondering how he can fit a teaching degree into a busy lifestyle? WGU's Bachelor of Arts in Elementary Education degree program is designed for working adults. With our competency-based curriculum model, you can progress through courses as soon as you prove mastery of the material. No rigid seat or class times. No endless waiting for your teaching dream to begin. Just a degree that fits your schedule. Get classroom ready on your time. Learn more at wgu.edu.
5: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
9: महंगाई और खर्चों को लेकर आम लोगों की चिंता लगातार बढ़ती दिख रही है। RBI के ताजा सर्वे के मुताबिक मई में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कमजोर हुआ है। बढ़ती कीमतों और रोजगार को लेकर अनिश्चितता के चलते लोग खर्च करने से बच रहे हैं। इस बीच पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने महंगाई की चिंता को और बढ़ा दिया, जिसके बाद कच्चे तेल और माल ढुलाई की लागत बढ़ने से FMCG कंपनियां फिर से दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं, जबकि एयरलाइंस इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि IATA का अनुमान है कि महंगे जेट फ्यूल के चलते एयरलाइंस का मुनाफा 50% तक घट सकता है। हालांकि तेल बाजार से एक राहत की खबर भी आई है। ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने जुलाई से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। इस अतिरिक्त सप्लाई से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। महंगाई और आर्थिक दबाव के बीच बैंकिंग सेक्टर से भी चिंता बढ़ाने वाली खबर आई है। ATM इंडस्ट्री की संस्था CAT MI ने RBI को चेतावनी दी है कि बड़े शहरों में जरूरत से ज्यादा कैश भेजे जाने के कारण छोटे शहरों में नकदी की कमी बढ़ रही है, जिससे कई ATM बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। वहीं RBI के प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अप्रैल 2027 से कमजोर सिविल स्कोर वाले लोगों को होम, ऑटो और एजुकेशन लोन मिलने में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच ऑटो सेक्टर से अच्छी खबर आई है। मई में वाहन की रिटेल बिक्री में करीब 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिक्री बढ़ाने के लिए मारुति सुजुकी ने अपनी कई गाड़ियों पर 2 लाख रुपए से ज्यादा तक के डिस्काउंट ऑफर भी शुरू किए हैं। कॉरपोरेट जगत में भी हलचल रही, जहां सेबी ने राजेश एक्सपोर्ट्स पर फर्जी रेवेन्यू दिखाने का आरोप लगाया है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है। और अब देखते हैं कि आज शेयर बाजार किस तरह से बंद हुए। डॉलर के मुकाबले रुपए का क्या हाल रहा, अब ये देखते हैं। सोना और चांदी किस लेवल पर चल रहे हैं, ये देखते हैं। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ईरान पर विनाशकारी हमले की चेतावनी के बाद ट्रंप ने बदला प्लान, कहा रात में हमले का प्लान कैंसिल। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची समझौते के बाद जल्द होंगे हस्ताक्षर, तब तक नाकेबंदी जारी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक का अलर्ट, वैश्विक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान। आर्थिक संकट के बीच भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा 6.6% का अनुमान। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए तेवर, ममता से कहा अभिषेक या मुझमें से एक को चुने दीदी। कांग्रेस के साथ मर्जर की खबरें तेज, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा हर हाल में ममता के साथ। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में गुरुवार देर रात को चौथी मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के दौरान फ्लैट के अंदर 3 लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद फायर विभाग और स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। फायर विभाग ने सभी को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। चौथी मंजिल पर आग लगी, फायर ब्रिगेड ने 3 लोगों की इसमें जान बचाई है और स्थानीय पुलिस ने तुरंत सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची थी। आग के कारणों का भी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन समय रहते ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाजियाबाद में स्याही और रबर स्टैम्प बनाने वाली फैक्ट्री और उसके गोदाम में आग लग गई। स्याही में प्रयोग होने वाले केमिकल और रबर में लगी आग से उठे धुएं का गुबार देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। कंपनी के ग्राउंड और प्रथम फ्लोर पर आग नहीं पहुंची थी, लेकिन दूसरी मंजिल में आग धधक रही थी और दूसरी मंजिल पर ही स्याही बनाने वाली यूनिट, उसके केमिकल, स्टैम्प की प्लेट और इन सब में रबर में जोरों से आग धधक रही थी। रबर से निकला धुआं काफी नुकसानदेह था। आसपास के लोग भी काफी परेशान थे। दम घोटू हवा हो चुकी थी। वैशाली से 2 और साहिबाबाद से 1 वाटर ब्राउजर मंगाए गए। टैंकों से पानी की बौछार की गई और आधे घंटे की मशक्कत के बाद इस आग और धुएं पर काबू पाया गया। अगली खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने चमोली में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण रास्ता भटके 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को सकुशल बचा लिया है। एक 15 एडवेंचर ट्रैकिंग कंपनी के संचालक नरेंद्र सिंह रावत 15 सदस्यीय दल के साथ 4 जून को घनसाली से बद्रीनाथ के लिए ट्रैकिंग पर निकले थे। ट्रैकिंग के दौरान मुक्षंद गुफा के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र स्थित मूसा पानी के समीप सरस्वती नदी पार घने कोहरे और खराब मौसम के कारण वो रास्ता भटक गए थे। दल के सदस्य टॉर्च की रोशनी और आवाज लगाकर सहायता की गुहार कर रहे थे, तभी आईटीबीपी जवानों ने उनकी गतिविधियां देखी और तत्काल इसकी सूचना थाने को दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम को भेजा गया और मशक्कत के बाद उन सबको वहां से रेस्क्यू किया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से, मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी तालुका में एक पेपर रोल गोदाम में आग लग गई। आग तेजी से फैली, 9 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया। लाखों रुपए के पेपर रोल जलकर खाक हो गए। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं है और न ही किसी के हताहत होने की खबर सामने आई है। और अब आगे खबर अलवर की, जहां पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंचे युवक ने थाने के अंदर पहले रील बनाई, देखते देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और युवक अलवर शहर के रावली विहार थाने के अंदर बाइक छुड़वाने के लिए पहुंचा था, लेकिन उसने बाइक को निकालते हुए स्टाइल में रील बनाई, सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया। पुलिस ने बाइक को चेकिंग के दौरान पकड़ा और युवक को थाने में छुड़वाने के लिए गया था, लेकिन ये देखिए थाने के अंदर ही रियल लाइफ में था ना, लेकिन वहां भी मौका पाया तो रील बना दी। अगली खबर पटना के कंकड़बाग इलाके से, जहां अपराधियों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आए। जिम जा रही एक युवती से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सोने की चेन छीन ली। पीड़िता ने एक बदमाश को पकड़ने की कोशिश की तो उसने पिस्टल दिखाया जिसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। चेन छीनने के बाद जब आरोपी ने साहस दिखाई, हिम्मत दिखाई तो एक बदमाश को पकड़ लिया। तब उसने फिर पिस्टल निकाली और उन पर तान दी, गोली मारने की धमकी दी, जिसके बाद युवती ने खुद को बचाने के लिए उसे छोड़ तो दिया। मौका मिला तो दोनों बदमाश बाइक से भाग गए। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज देख रही है, आरोपियों की पहचान कर रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके। बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव से पहले अब हलचल यूपी में तेज हो गई है। बीएसपी बैठक कर रही है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ समीकरण बिठाने की तलाश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 403 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है और इन सबके बीच बीजेपी ने चुनाव से पहले नौकरी वाला दांव चला है।
1: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल बीएसपी में है। समाजवादी पार्टी के पीडीए के जवाब में बीएसपी की भाईचारा कमेटी ओबीसी और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के ओबीसी और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक न टूटे और पीडीए से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। एसपी को लगता है कि बड़ा उद्देश्य बीजेपी को यूपी में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
2: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
3: 400 सीटों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
1: तीसरी हलचल बीजेपी में है। माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके से वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वो इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। रावलकोट की सड़कों पर इस समय जो हो रहा है वो महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक खुला विद्रोह है।
1: सुनिए इन नारों को। ये नारे किसी आम प्रदर्शन के नहीं है, ये सीधे सीधे उस अवैध कब्जे को चुनौती है जिसे पाकिस्तान दशकों से दुनिया के सामने अपना बताता आया है। पीओके का रावलकोट रविवार को पूरी रात गोलियों, आंसू गैस के गोलों और सेना के बूटों की आवाज से नहीं बल्कि आवाम की दहाड़ से गूंजता रहा। कई जिलों से आए हजारों लोग रात भर सड़कों पर डटे रहे। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबका एक ही संकल्प है, अब हुक्मरानों की तानाशाही नहीं चलेगी। ये गुस्सा अचानक नहीं भड़का है, ये लावा है जो अब फट चुका है। 7 और 8 जून को रावलकोट ने वो खूनी मंजर देखा जिसने आवाम के सब्र का बांध तोड़ दिया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो पीओके के इतिहास में ये अब तक का सबसे हिंसक और सबसे संगठित आंदोलन बन चुका है। पहले लोग सिर्फ आटे और बिजली के बिलों पर रोते थे, लेकिन इस बार बात आर पार की लड़ाई पर आ गई है। रावलकोट के इस महा आंदोलन ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के उस खोखले प्रोपेगेंडा की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जिसमें वो कश्मीरियों का हमदर्द बनने का ढोंग करता है। ये नारा अपने आप में पूरी कहानी बयान कर देता है, क्योंकि इस बार आसिफ मुनीर की फौज के सामने सिर पर कफन बांधे आवाम खड़ी है। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक ब्रेक का है, खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
4: गाय को क्या खिलाने से ग्रहों की बाधा दूर हो जाती है? गाय की किस प्रकार सेवा करने से संकट कट जाता है और गाय को क्या खिलाने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, किस प्रकार करें गाय की सेवा ताकि बदल जाए किस्मत, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया के ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती,
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: समटाइम्स वन हैज टू बियर सो मेनी ह्यूमिलेशन। आई हैव लिसन, इन ए पार्टी, इन ए पॉलिटिक्स नो पार्टी कैन रिमेन इन परमानेंट पावर, एंड आई एम ए very truthful follower of Mamata Banerjee, and what I have done, what I have, that all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days, I am with Mamata Banerjee. Still I am. But point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains, who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay. Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
3: Everybody is saying this.
2: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying. I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
3: That's an ultimatum.
2: Yes. This is, I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
3: So this is a dharam sankat for Didi. Yes,
2: it is, I leave it to her wisdom.
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

ईरान पर विनाशकारी हमले की चेतावनी के बाद ट्रंप ने बदला प्लान, कहा रात में हमले का प्लान कैंसिल। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची समझौते के बाद जल्द होंगे हस्ताक्षर, तब तक नाकेबंदी जारी। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक का अलर्ट, वैश्विक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान। आर्थिक संकट के बीच भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा 6.6% का अनुमान। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर जोर दिया। 28 राज्यों के सीएम शामिल हुए। तृणमूल कांग्रेस में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए तेवर, ममता से कहा अभिषेक या मुझमें से एक को चुने दीदी। कांग्रेस के साथ मर्जर की खबरें तेज, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा हर हाल में ममता के साथ। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष के उपायों में अक्सर बताया जाता है कि गाय को कुछ खिलाइए, गाय की सेवा करिए, इससे आपके ग्रह बेहतर होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने भाग्य को बेहतर करने के लिए, अपनी मुश्किलों को कम करने के लिए आप गाय की सेवा कैसे करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:36 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः काल 6:28 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बता रहे हैं कि अगर आप गाय की सेवा करें, गाय के संपर्क में रहें, तो किस तरह आपका भाग्य बेहतर हो सकता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों माना जाता है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारत की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर करती है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ भारत में गाय पर ही निर्भर करता रहा है। और गाय चूंकि भारतीय परंपरा की रीढ़ रही है, इसीलिए गाय के इतना मूल्यवान होने के कारण इसको धर्म से जोड़ा गया है। गाय के संपर्क में आने पर गाय के शरीर की तरंगें हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। और ऐसा देखा गया है कि गाय की सेवा करने से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। गाय के संपर्क में रहने से व्यक्ति का भाग्य सुधरने लगता है। गाय की तरंगे और गाय के साथ आपका जुड़ाव, ये आपके भाग्य पर, आपके जीवन पर गहरा असर डाल देता है। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

आप हरा चारा खिलाएं या हरी पालक खिलाएं नियमित रूप से तो बुध मजबूत होगा, धन का अभाव नहीं होगा और पैसे के नुकसान से बचेंगे। अगर स्नान करते समय नहाने के पानी में आप जरा सा गोमूत्र डालकर स्नान करें तो राहु, केतु और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप नियमित रूप से गाय की सेवा करें तो आपको जीवन में नाम, यश और धन मिलेगा। गाय की नियमित सेवा करने से संतान संबंधी पीड़ा आपकी समाप्त होगी। जो कोई भी गाय को कष्ट देता है या गाय को पीड़ा पहुंचाता है उसके वंश का विस्तार नहीं होता या उसके संतान को लेकर जीवन में कष्ट बने रहते हैं। गाय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अगर आज फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

धन की हानि से बचें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं भाग्यचक्र@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अल्पना जी ने हमें लिखा है और अल्पना जी वाराणसी से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 अप्रैल 1994। जन्म का समय सुबह के 6:35। जन्म स्थान है गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। अल्पना कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरा विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अल्पना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि साल 2027 के आरंभ तक आपका विवाह अवश्य हो जाना चाहिए।

ये आने वाला समय आपका अच्छा दिखाई दे रहा है तो उसमें मुझे कोई चिंता की स्थिति नहीं दिखती है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहने, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको फायदा होगा। अब आपको बताते हैं कि अपनी राशि के अनुसार आप गाय की सेवा नियमित रूप से कैसे करें जिससे आपका भाग्य बेहतर हो, जीवन की मुश्किलें हल हो जाएं। अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोग नियमित रूप से गाय को हरा चारा या पालक अगर खिलाएं तो अच्छा होगा। वृषभ राशि के लोग नियमित रूप से गाय को चने की दाल या केला अगर खिलाएं तो बेहतर होगा। मिथुन राशि के लोग अगर गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तो बहुत ही बढ़िया होगा। कर्क राशि के लोगों को नियमित रूप से गौशाला में धन का, चारे का दान करते रहना चाहिए। सिंह राशि, गाय को नियमित रूप से स्नान करवाएं और गाय की देखभाल करें तो बहुत बेहतर होगा। कन्या राशि, आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए गाय को गुड़ खिलाएं या लाल फल जैसे सेब अगर नियमित रूप से खिलाएं तो बेहतर होगा। बाकी राशियों के लोग गाय की सेवा कैसे करेंगे इस पर चर्चा होगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम।

योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में उन्नति होगी। परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो हमने आपको मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों के बारे में बताया कि वो गाय की सेवा कैसे करेंगे। अब जानते हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि के लोगों को गाय की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लोग नियमित रूप से गाय को केला खिलाएं या चने की दाल अगर खिलाते रहें तो इनको विशेष लाभ जीवन में प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोग गौशाला में नियमित रूप से अगर दान करते रहें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि के लोग गाय को नियमित रूप से आटे का पेड़ा यानी आटे की लोई अगर खिलाएंगे तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। मकर राशि, मकर राशि के लोग गाय को केला खिलाएं या पीले फल खिलाएं, या उपलब्ध नहीं है तो चने की दाल भी खिला सकते हैं। ऐसा करना इनके लिए शुभ होगा। कुंभ राशि, गाय को हरा चारा या हरी पालक अगर आप खिलाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मीन राशि, गाय को आटे का पेड़ा खिलाएं या आटे की लोई खिलाएं, आपके जीवन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। देखिए, गाय जितनी मूल्यवान है, गाय का चित्र भी उतना ही मूल्यवान है। जिन पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें अपने बेडरूम में गाय और बछड़े का चित्र लगाना चाहिए, या सफेद रंग की गाय और सफेद रंग के बछड़े की मूर्ति लगानी चाहिए। ऐसा करने से संतान प्राप्ति में थोड़ी सरलता होती है। सामान्य लोग भी अपने लिविंग एरिया में, अपने लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में सफेद गाय और बछड़े का चित्र या इसकी मूर्ति लगा सकते हैं। इसको लगाने से घर में संपन्नता होती है, वृद्धि आती है और घर की अशांति दूर हो जाती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।

मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आस।

मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

योग हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में काम ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। गाय के पैरों के पास की जो मिट्टी होती है उसे बहुत विशेष माना जाता है। क्या खास बात है इसकी? देखिए, गाय के पैरों के पास की जो मिट्टी होती है ये किसी भी महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता दे सकती है। किसी भी दिन प्रातःकाल गौशाला में जाएं, गाय को चारा खिलाएं, गाय को नमस्कार करें और गाय के पैर के पास की जो मिट्टी है उसे थोड़ा सा ला करके अपने घर में सुरक्षित रख लें। जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से जाना हो, कोई परीक्षा देने जाना हो, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो, तो इसी मिट्टी का जरा सा तिलक अपने माथे पर या अपने कंठ पर लगा करके जाइएगा, आपको काम में सफलता अवश्य मिलेगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 2, धन खर्च बढ़ा रहेगा। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 6, संपत्ति का लाभ हो सकता है। नंबर 7, मानसिक चिंता समाप्त होगी। नंबर 8, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 9, यात्रा के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न विक्रम आहूजा ने हमें लिखा है और विक्रम हमें मेल लिखते हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 1979। जन्म का समय दोपहर में 3:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। विक्रम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति मुझे कब तक मिलेगी? विक्रम, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई ना कोई प्रॉपर्टी आपको सेल करनी पड़ेगी
उसकी संभावना आपकी कुंडली में दिख रही है और प्रॉपर्टी सेल करके आप कर्जे से मुक्ति पा जाएंगे साल 2026 के अंत तक। आने वाले समय में बेहतर होगा कि अपने व्यवसाय पर विचार करें और व्यवसाय बदलने का प्रयास करें। अगर आप प्रॉपर्टी का, फर्नीचर का, लोहे का, मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई व्यापार करते हैं तो इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। एक मूंगा बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः मूंगा धारण करिए। रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ गुलाब का फूल रख करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो चंदन का जरा सा तिलक लगा के जाइएगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। अगर खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, वस्त्र, तो गुलाबी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। कार्यों में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा कर्क राशि के लिए। करियर में लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। आज सावधान रहना होगा मकर राशि के लोगों को। चिंताएं बढ़ सकती हैं, तनाव हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। इस समय अधिक मास चल रहा है, इस समय किसी नए काम की शुरुआत ना करें। आज के दिन जल और मिठाई का अगर दान कर दें तो परिणाम बहुत शुभ होंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

ट्रंप ने अचानक बदला ईरान पर हमले का प्लान, कहा दोनों देश डील के बेहद करीब हैं, पहले तेहरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द करेंगे ऐलान, सभी पक्षों से चर्चाओं को अंतिम बिंदुओं को मंजूरी दी गई है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर के कही बड़ी बात, कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा हॉर्मुज जल डमरूमज। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया, अमेरिका ने कहा नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से ही होगी। ईरान ने अमेरिका के तीन सबसे आधुनिक F-35 स्टेल फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, ईरानी सेना ने कहा कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल से इन जहाजों को निशाना बनाया गया। ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से खबर, यूएई और ईरान ने तनाव कम करने की कोशिशों की आमने सामने एक बातचीत की है ताकि जल्दी ही मामले का समाधान पहुंचा जाए। अमेरिकी सेना ने ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास भारत के कमर्शियल ऑयल टैंकर एमटी जलवीर पर भीषण हमला किया, तीन दिनों के भीतर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर यह तीसरा बड़ा हमला है। मध्यपूर्व में छिड़े युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, बहरीन के नेता का बड़ा बयान, कहा गुरुवार को बहरीन पर ईरान ने दागे 36 ड्रोन।

के दक्षिणी शहर क्रासनोदार पर यूक्रेनी सेना का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों पर हुए हमले में दो लोग घायल। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि अमेरिका नेटो संबंधों पर प्रतिबद्ध है। अमेरिका द्वारा नेटो छेड़ने की आशंका के बाद सवाल उठ रहे हैं। टीएमसी में खत्म नहीं हो रही है बगावत। टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश बाराइक ने पद से इस्तीफा दिया, सभापति को त्यागपत्र सौंपा। अपने इस्तीफे पर बोले चिक बराइक, बंगाल में कराई हार की जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन कर दिया। काकोली घोष का दावा, लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत, हम एनडीए के साथ हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागियों पर बरसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद, बोले उन्हें बागी नहीं भगोड़ा कहिए। फर्जी दस्तखत के मामले में अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है बंगाल की सीआईडी। सूत्रों के मुताबिक अब उन्हें 14 जून को फिर से पूछताछ के लिए समन किया गया है। ममता बनर्जी को अल्टीमेटम देकर कल्याण बनर्जी ने कहा कि भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को। तमाम कयासों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का आज तक पर बड़ा बयान, बोले मैं ममता बनर्जी के साथ हूं, आगे भी साथ रहूंगा। तृणमूल कांग्रेस के कांग्रेस में विलय पर कीर्ति आजाद का बयान, विलय की खबरों को उन्होंने खारिज कर दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ फिर धक्का मुक्की हुई, कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचाकर निकाला। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पैदल परेड करवाई गई, हाफ पैंट में पुलिस उन्हें पैदल अपने साथ ले गई। कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट का वास्तविक कानूनी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करना होगा। मीनाक्षी नटराजन विवाद मामले में आज कांग्रेस का हल्ला बोल, एमपी कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से राहुल गांधी भड़के, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी हुई, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी रद्द की गई। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर सवाल उठाया, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हालत खराब कर दी है। जामनगर में राज्य मंत्री रिबाबा जाडेजा ने बच्चों के साथ समय गुजारा, सरकारी विद्यालय का दौरा किया, कक्षाओं का निरीक्षण किया, छात्राओं के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई की। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, डीके शिवकुमार, उमर अब्दुल्ला, जोसेफ विजय, रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी अब एमएलसी बन चुके हैं। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 4-4 उम्मीदवार जीते एमएलसी चुनाव, और एक आरजेडी और एक एलजेपी के उम्मीदवार भी विजयी। निर्विरोध जीतने के बाद निशांत कुमार ने कहा बिहार के विकास के लिए लगातार काम करते रहे। दिल्ली में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की जिम की फ्रेंचाइजी पर हमला हुआ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली। दिल्ली में एक जिम पर करीब 7 राउंड फायरिंग हुई, अपराधी फरार हुए, पुलिस में जांच हुई। लॉरेंस गिरोह ने इसका ऑडियो जारी किया, सलमान से नजदीकी को बताया इस फायरिंग के पीछे असली वजह। हरियाणा के हांसी में एक जिम संचालक को गोली मार दी गई, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें पुलिस जांच में जुटी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है, एक्शन लेने पर पुलिस को भी धमकी दी है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, सीएम योगी ने कहा आपका आत्मीय सानिध्य और यशस्वी मार्गदर्शन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु नई ऊर्जा का संचार करता है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम और नागालैंड के बीच एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। असम नागालैंड सीमावर्ती इलाकों में मिनरल ऑयल से जुड़े कामकाज अब आसान। ओमान के पास अमेरिकी हमले की चपेट में 3 भारतीयों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा, प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय है लेकिन अमेरिकी सेना की निंदा करने का वक्त नहीं है। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, राज्यसभा चुनाव को लेकर विरोध, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पटना में भोजपुरी संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, लालू राबड़ी परिवार के दूसरे लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 14 जून तक जारी होगा नीट करी एग्जाम का एडमिट कार्ड, वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा का शहर देख सकते हैं तमाम वो छात्र। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग पर अब रोक लगा दी है, शिक्षा विभाग ने कड़े निर्देश जारी किए हैं, आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर अब एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, यूपी एसटीएफ के शिकंजे में मुख्य सरगना, जांच और पूछताछ जारी। 15 जुलाई तक के रेल मंत्रालय लॉन्च करेगा आईआरसीटी की नई और उन्नत वेबसाइट, छात्रों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में अगले 2-3 दिनों में मॉनसून की दस्तक देने की संभावना है, फिलहाल करीब 44 डिग्री के बीच नागपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है। पठानकोट में तेज तूफान, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर कई पेड़ टूटकर गिरे, कुछ लेके लिए यातायात बाधित हुआ, कोई हताहत नहीं। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश हुई, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हमीरपुर की बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक पानी आया, एसडीआरएफ एनडीआरएफ स्थानीय पुलिस ने डूब रहे 2 लोगों को रेस्क्यू किया।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोनमर्ग के मशहूर थाजीवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट हुई है। 95% बर्फ इस ग्लेशियर के खत्म हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ओलावृष्टि के साथ साथ आंधी तूफान, बिजली चमकने और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदली, झमाझम बारिश के साथ जोरदार इलाके में ठंड बढ़ गई है। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर जिलों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश का दौर जारी रहने को अनुमान जताया है। जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को मर रहे श्रद्धालु, जून का आधा महीना बीतने के बावजूद पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है। कुछ इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी पड़ रही है। लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं, जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए लगातार केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। सोनीपत में आपसी रंजिश के कारण शराब व्यापारी पर गोलियां चली, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, फायरिंग में कोई हताहत नहीं। अलवर में पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंचे युवक ने थाने के अंदर बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूरत में पुलिस वाले ने 7वीं मंजिल की ग्रिल पर चढ़कर बचाई एक आदमी की जान, बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पटना में जिम जा रही महिला से हथियार के बल पर चेन की लूट की गई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। थाने में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के नंदग्राम में एक गोदाम में लगी भीषण आग, मक्कल के 7 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महसाणा एपीएमसी सब्जी मंडी में लगी आग पर काबू पाया गया, एक साथ 6 दुकानों के शेड में भयंकर आग लगी थी, शेड में खड़े 2 ट्रक भी जलकर खाक हो गए। चमोली में मूसा पानी के पास 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल रास्ता भटक गया, बारिश और घने कोहरे के बीच एसडीआरएफ ने उन्हें रेस्क्यू किया। पठानकोट में तेज तूफान का कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के पास पेड़ टूटे, नेशनल हाईवे जाम हुआ। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 152 में निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर 2 कामगारों की मौत, सेफ्टी बेल्ट टूटने से हादसा हुआ। बिहार के किशनगंज में मां ने मात्र 2 लाख रुपए में नाबालिग बेटी का सौदा युवक के बंदी बनाकर दुष्कर्म किया, पिता ने पुलिस की मदद से बेटी को रिहा करवाया। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में कारोबारी से 10 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार हुआ, ठग के पास करीब 6 लाख रुपए बरामद हुए। गाजियाबाद के लोनी में 21 साल के युवक की चाकू से कूदकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली के स्वरूप नगर थाने में पुलिस के रेड से भयभीत साउथ अफ्रीकन मूल की महिला ने छत से छलांग लगा दी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, 2 बच्चों और पिता की मौत हुई। वडोदरा में पुलिस की कार्यवाही हुई, 20 करोड़ के चमत्कारिक सुलेमानी पत्थर के नाम पर ठगने वाले गिरोह को पकड़ा गया। गाजीपुर में नाबालिग भांजे की हत्या में मामा को फांसी की सजा हुई, 2021 में मामूली घरेलू विवाद में मामा ने धारदार हथियार से भतीजे की हत्या कर दी थी। सुल्तानपुर में जाति विशेष के युवक से अभद्रता की गई, जबरदस्ती नारे लगवाए गए जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जालौर में आवारा सांड का आतंक देखने को मिला, पैदल जा रहे 2 बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाया। पाली में नाकाबंदी में पुलिस पर तस्करों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 1 तस्कर घायल, 2 गिरफ्तार किए गए। खबरें फीफा से, फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में सह मेजबान मेक्सिको ने जीत से की शुरुआत, मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से दी मात, जीत पर खुशी से झूमे फैंस। मेक्सिको के जूलियन क्विनुंस ने पहले हाफ में स्ट्राइक कर गोल किया, फिर राहुल जिमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2-0 से हरा दिया। मेक्सिको सिटी के एजेट का स्टेडियम में रेफरी ने 3 रेड कार्ड दिए, साउथ अफ्रीका के स्पेलर सिथेलो और थेम्बा जवानी को रेड कार्ड मिला। धर्मशाला पहुंची भारत की वनडे क्रिकेट टीम, 13 जून को सीरीज का पहला मुकाबला होना है। अफगानिस्तान की वनडे टीम भी धर्मशाला पहुंची, 3 मैचों की यह पूरी सीरीज होने वाली है। आज से विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज होना है, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है टूर्नामेंट, पहली बार दुनिया के 12 देश ले रहे हैं हिस्सा, खेले जाएंगे कुल 33 मैच। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में है दोनों टीमें, पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर भारत वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत करेगा। पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नीदरलैंड, टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में जगह बनाई है। आज कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता से लेकर इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा समेत कुल 8 देसी विदेशी फिल्में रिलीज होंगी।
आज ही मैं वापस आऊंगा फिल्म भी रिलीज होगी। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसरुद्दीन शाह, वेदांग रैना और शर्वरी का अहम रोल है। ओटीटी पर वेब सीरीज राख में दिखेगा अली फजल। सोनाली बेंद्रे की अदाकारी 1978 में हुए गीता और संजय चोपड़ा के किडनैपिंग केस से इंस्पायर है इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर सीरीज। सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक देगी मनोज वाजपेयी की गवर्नर द साइलेंट सेवियर। अदा शर्मा और मधु भी महत्वपूर्ण किरदार में नजर आएंगे। विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड 3D कोस्ट ऑफ द पास्ट भी आज रिलीज होगी। इसमें नई हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में है विमोह चक्रवर्ती और चेतना पांडे।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn, and you're instantly connected.
4: This is 80s hits, exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love. Anytime you want. Try it now, and thank us later.
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: आगे आगे,
8: अरे उधर
7: उधर,
8: करेक्ट करेक्ट।
9: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
15: In association with
16: Samakul Cooler, hawa aisi chode puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
15: Hint, bade aaram se.
16: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
15: Vimal, bolo zuban kesri.
17: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
18: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया के ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता। लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया है।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: समटाइम्स वन हैज टू बियर सो मेनी ह्यूमिलेशन। आई हैव लिसन, इन ए पार्टी, इन ए पॉलिटिक्स नो पार्टी कैन रिमेन इन परमानेंट पावर, एंड आई एम ए very truthful follower of Mamata Banerjee, and what I have done, what I have, that all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days I am with Mamata Banerjee, still I am, but point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay. Such an arrogant person. One must understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
3: Everybody is saying this.
2: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said again. I am saying. I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
3: That's an ultimatum.
2: Yes, this is. I leave it to her wisdom. I leave it to her wisdom.
3: So this is a dharam sankat for Didi.
2: It is. I leave it to her wisdom.

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

हमले की चेतावनी के बाद ट्रंप ने बदला प्लान, कहा रात में हमले का प्लान कैंसल, ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, समझौते की बात जल्द होंगे हस्ताक्षर, तब तक नाकेबंदी जारी। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच वर्ल्ड बैंक का अलर्ट, वैश्विक विकास दर 2.5 रहने का अनुमान, आर्थिक संकट के बीच भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा 6.6% का अनुमान। नीति आयोग की बैठक में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर चर्चा, पीएम मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और शिकायतों के तेजी से समाधान पर दिया जोर, 28 राज्यों के सीएम हुए शामिल।

टीएमसी में टूट के बीच कल्याण बनर्जी ने दिखाए तेवर, ममता से कहा अभिषेक या मुझमें से एक को चुने दीदी। कांग्रेस के साथ मर्जर की खबरें तेज, शत्रुघ्न ने कहा हर हाल में ममता के साथ। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉर्निंग प्राइम टाइम में सुपर एट में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज सुपर एट में क्या कुछ खास हम आपको बताने वाले हैं। ईरान पर ट्रंप ने आखिर क्यों हमले का प्लान बदला है, इस खबर पर होगी बात। ट्रंप के दावों को ईरान ने अटकले बताया है, ये भी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। वहीं भारत समेत दुनिया पर अल नीनो का खतरा छाया हुआ है, इस खबर पर भी विस्तार से करेंगे बात। साथ ही अर्थव्यवस्था को लेकर वर्ल्ड बैंक को भारत पर भरोसा, ऐसे में इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी ने कसा है शिकंजा, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही टीएमसी टूट के बीच ममता को शत्रुघ्न सिन्हा का साथ मिला है। और साथ ही बात होगी हरियाणा से लेकर कनाडा तक लॉरेंस गैंग की दहशत की, और खेल जगत की खबर भी आपको बताएंगे, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के पहले मैच में मेक्सिको ने साउथ अफ्रीका को रौंद दिया है। तो सुपर एट में सबसे पहले बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दरअसल दिल्ली से एक खबर आ रही है, दिल्ली के तुगलकाबाद में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से 3 लोगों की मौत हो गई है, मरने वालों में 2 महिलाएं 1 पुरुष शामिल है। आग लगने के बाद 5 महिलाओं को बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक बेसमेंट से आग लगने के बाद पहली और दूसरी मंजिल तक ये आग फैल गई, जिसके कारण 2 महिलाएं और 1 पुरुष की मौत हो चुकी है, ऐसा माना जा रहा है। अंशुल हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। अंशुल, किन कारणों की वजह से यह आग लगी, क्या कुछ जानकारी है बताइएगा।
2: जी, अभी ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बेसमेंट में जो है ये आग लगी थी। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो यही वो बेसमेंट है जहां से आग की शुरुआत हुई। बताया ये जा रहा है कि यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स भी खड़े थे, जिसके वजह से जब शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी, तो उन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स में आग फैली और उसके बाद धुआं जो है धुआं और लपटे ऊपर की तरफ उठने लगी। और अगर आप यहां तस्वीरों में भी देखें तो पहली और दूसरी मंजिल है, फायर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से आग में झुलस गई और ऊपर की जो मंजिलें हैं वहां पर लोग फंस गए, वहां पर धुआं पहुंचने लगा और लोगों का दम घुटने लगा। यहीं जब फायर डिपार्टमेंट इस पूरे इलाके में पहुंचता है तो मैं आपको एक बार ये इलाका भी दिखाना चाहूंगा कि कितनी संकरी गलियां हैं यहां पर। और अगर आप देखें तो यहां पर फायर की गाड़ी को पहुंचने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी गलियां हैं यहां पर जहां से फायर की गाड़ियां यहां पहुंची। और उसके बाद जब आग पर काबू पाया गया, इस पूरे अपार्टमेंट से 8 लोगों को रेस्क्यू कराया गया, जिसमें
1: फायर ब्रिगेड की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अंशुल, आप बताएं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट में बढ़े हुए तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर विनाशकारी हमले की चेतावनी दी है, लेकिन कुछ ही घंटों में उनका प्लान बदल गया। ट्रंप ने कहा कि आज ईरान पर होने वाला हमला कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि डील पर चल रही बातचीत ईरान के सर्वोच्च नेताओं के स्तर पर पहुंच गई है, कभी भी डील साइन हो सकती है। उधर ईरान की तरफ से अभी तक इस खबर की कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसके पहले ट्रंप ने ईरान के खारग द्वीप पर कब्जे की बात कही थी। समझौते पर बात चल रही है, इसलिए हमला नहीं किया जा रहा आज, ये ट्रंप ने कहा है। ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप ने बदल लिया है, क्योंकि डील चल रही है, ईरान पर होने वाले हमले कैंसिल कर दिए, लेकिन ईरान अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है। तो एक खार्ग द्वीप पर ट्रंप के कब्जे की धमकी वाले बयान पर

0: अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के दावों पर ईरान का बयान आया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया और ऐसी खबरें सिर्फ एक क्यास है। इससे ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ एक बड़ा समझौता फाइनल हो चुका है, जिसके बाद उन्होंने ईरान पर होने वाले हवाई हमलों और बमबारी को टाल दिया। लेकिन अब ईरान ने ट्रंप के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान का कहना है कि बातचीत में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थ जरूर है, लेकिन अमेरिका बार बार अपना रुख बदल रहा है और ईरान अपने रेड लाइंस यानी कि संप्रभुता से कोई भी समझौता नहीं करेगा। ईरान के इस इनकार के बाद खाड़ी देशों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में युद्ध का खतरा एक बार फिर से गहरा गया है। ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का भी बयान सामने आया। हमारे सहयोगी प्रणय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, दोनों लोग अलग अलग बात कह रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि समझौते की बात हो रही है, आज ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, लेकिन ईरान तो इससे नकार रहा है।
1: देखिए पूजा, जब तक कि कोई चीज अंतिम रूप से फाइनल नहीं हो जाती तब तक उसे अधूरा ही कहा जा सकता है, और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके की बातें की हैं, इस तरीके के बयान दिए हैं। अगर आप देखें तो बीते 2 महीनों के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा बार वो ये दावा कर चुके हैं कि डील के बेहद करीब है, ईरान डेस्परेट है, ईरान डील करना चाहता है और उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है और जल्दी ही डील साइन हो जाएगी। लेकिन अभी तक डील नहीं साइन हुई है क्योंकि दोनों तरफ कहीं ना कहीं अविश्वास भी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अधूरी हैं। लेकिन फिर भी इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि बातचीत का एक दौर है जो चल रहा है, दोनों तरफ से प्रस्ताव भेजे गए हैं और इससे ईरान भी इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन ईरान चाहता है इस बात की श्योरिटी, इस बात का पक्का होना कि जो कुछ कहा जा रहा है वो बातचीत की मेज के ऊपर अंतिम स्वरूप के अंदर सामने भी आएगा और उसके ऊपर मुहर भी लगेगी। और जब तक कि ऐसा नहीं होता तब तक इसे अधूरा कहा जा रहा है, तब तक इसे नॉन फाइनल आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते के सप्ताहांत तक जो है वो यूरोप के अंदर डील साइनिंग हो सकती है, तो कहीं ना कहीं कोई इंडिकेशन जरूर है, क्योंकि
0: कहीं ना कहीं सबसे पहले ये भी लग रहा है कि बातचीत का ये दौर काफी लंबा चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय जानकारी के लिए। वहीं इसराइल के पीएमओ से जारी एक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के साथ होने वाले समझौते को लेकर बातचीत की है। हालांकि इसराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी इसराइल समझौते को लेकर ट्रंप के कमिटमेंट और नेगोशिएशन की तारीफ की है। तो वहीं मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच वैश्विक स्तर पर महंगाई और तेल संकट का खतरा पैदा हो गया है। वर्ल्ड बैंक ने 2026 के लिए वैश्विक आर्थिक विकास दर का अनुमान घटाकर 2.5% तक कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच बढ़े हुए तनाव से ऊर्जा कीमतों में उछाल और अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसका असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। तो हालांकि वैश्विक आर्थिक संकट के बीच भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दरअसल वर्ल्ड बैंक की ओर से एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता रहे कि 2026 में भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान है। ऐसे में वैश्विक विकास दर 2.5% रहने का अनुमान है। ईरान अमेरिका के बीच तनाव का असर काफी बढ़ रहा है, ऊर्जा कीमतों में उछाल हो गया है, अनिश्चितता लगातार बढ़ी हुई है, जिसका दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। वही भारत पर इसका असर अब आपको बताते हैं। जीडीपी ग्रोथ 6.6% रहने का अनुमान, विकास दर में 1.1% की कमी का अनुमान है। तो वहीं अमेरिका में रेटिंग में कोई भी कटौती नहीं की गई है, विकास दर 2.2% रहने का असर है। तो ये मिडिल ईस्ट तनाव से कितना असर किस पर पड़ रहा है वो आप समझिए। चीन की बात की जाए तो 4.2% की आर्थिक वृद्धि की उम्मीद चीन में की जा रही है। यूरोप में विकास दर घटकर 0.8% रहने की संभावना जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट की वजह से ये तनाव और देशों पर भी फैल रहा है। तो वही युद्ध से आर्थिक संकट पर दुनिया पर मंडरा रहा है खतरा, लेकिन युद्ध के अलावा इस बार प्राकृतिक कारणों से भी विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली अल नीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की एक बैठक में पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। अल नीनो एक मौसम फिनोमेना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित होता है, कहीं पर सूखा कहीं बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।
2: दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है।

0: जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एलनीनो कितना भयानक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एलनीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आम तौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दे, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मानसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
1: और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और एक अलग गुट बनाने की मांग की गई है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी से लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ऐसे में बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी गई है, टीएमसी के बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है। जिन सांसदों ने साइन किए हैं टीएमसी के बागी सांसदों के अलग गुट बनाने के लिए, स्पीकर को पत्र पर साइन कर उसकी कॉपी है जो कि आज तक के पास है। बागी सांसदों का पत्र 18 मई की तारीख से स्पीकर को भेजा गया है। एक अलग गुट बनाने की मांग की जा रही है और ये पत्र की कॉपी आप देख रहे हैं जिन सांसदों ने साइन किए हैं।

0: तो ये वो सांसदों के नाम आप देख रहे हैं पत्र में जिन सांसदों ने साइन किए। हिमांशु हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, एक तरफ देखिए लगातार इस्तीफे टीएमसी में दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये अलग गुट बनाने की बात हो रही है, ऐसे में ममता बनर्जी पर तो तलवार लटक ही रही है। हिमांशु,
1: देखिए ममता बनर्जी पे तलवार भी लटक रही है, और सबसे बड़ी बात यह है जिन सांसदों ने ये साइन किए हैं वो 18 मई के तारीख से जो है वो स्पीकर को भेजे हैं। इसका मतलब ये है कि कल्याण बनर्जी को जो चीफ विप बनाया गया साकुली घोष दफ्तरवार को हटाकर, वो सीधा सीधा बताता है कि 18 मई की तारीख से स्पीकर को ये पत्र जो है वो सौंप दिया गया है। अब स्पीकर इस पर जो भी कानूनी फैसला लेंगे, डिफेंसर जो है 20 सांसदों का ये पत्र जो है वो अब स्पीकर के पास पहुंच चुका है।
0: हिमांशु, कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने साइन किए स्पीकर को पत्र लिखकर, ये भी बताइएगा एक बार।
1: काकोली घोष है, जगदीश चंद्र बासुमिया है, खाली उर रहमान है, यूसुफ पठान है, अबू ताहिर खान है, पार्था भौमिक है, बापी हल्दर है, सियानी घोष है, माला रॉय है, उनके साथ साथ मिताली बैग है, दीपक अधिकारी है, कलीपड़ा सोरेन है, जुएन मालिया है, अरूप चक्रवर्ती है, शर्मिला सरकार है, असित कुमार मल है, शताब्दी रॉय और रचना बैनर्जी, ये वो और उनके साथ साथ जो है प्रसून बैनर्जी ने भी जो है वो साइन किया। तो ये 20 सांसद हैं जिन्होंने ये साइन करके हस्ताक्षर का पत्र अलग गुट बनाने का टीएमसी कर दिया है। आप देखना ये है स्पीकर इस पर क्या फैसला लेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि 18 मई
0: चलिए ठीक है हिमांशु के पास लौटेंगे। तो आज तक पर बागी सांसदों के पत्र की ये कॉपी आप देख रहे हैं, अलग गुट बनाने की मांग की गई है और इसीलिए ये साइन किए गए हैं, और इससे पहले कई इस्तीफे भी टीएमसी में दे दिए गए हैं और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते भी सांसदों का इस्तीफा होगा। तो दीदी पर, जैसा कि हमारे सहयोगी ने भी बताया कि दीदी पर तो तलवार लटक ही रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिशों में लगी हुई है। टीएमसी के बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग इस पत्र के जरिए लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर की है। तो वही फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद अभिषेक देर तक सीआईडी मुख्यालय से सीधे ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर पहुंचे। कोलकाता हाईकोर्ट में अभिषेक ने सीआईडी के समन को चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट से राहत नहीं मिली और उन्हें सीआईडी दफ्तर जाना पड़ा। पूछताछ शाम करीब 5 बजे से 11:30 बजे तक चली। सूत्रों के मुताबिक 14 तारीख को अगली पूछताछ के लिए सीआईडी ने अभिषेक को एक और समन थमा दिया है। रात 11:30 बजे ममता बनर्जी के घर पर पहुंचे हैं अभिषेक बनर्जी और करीब 6 घंटे तक सीआईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ की गई है। देर रात तक सवाल जवाब उनसे किए गए। तो वही सियासी चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी के सामने नई मुसीबत भी खड़ी हो गई है। ममता के बेहद ही करीबी माने जाने वाले कल्याण बनर्जी ने बंगाल में बिगड़े हालात के लिए अभिषेक बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को अभिषेक और पार्टी दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने बगावत के तमाम दावों को झुठलाते हुए दावा यह किया है कि वो हर हाल में ममता दीदी के साथ खड़े रहेंगे। तो वही टीएमसी में मचे हुए कोहराम और कांग्रेस में बढ़ रही ममता की नजदीकियों ने कांग्रेस और टीएमसी के मर्जर की खबरों को अब हवा दे दी है।
2: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी हैं। घर यानी पार्टी में आग लगी हुई है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे हैं। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता जा रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया कि ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा।
3: ममता दी हैज टू चूज वेदर अभिषेक बनर्जी ही सी विल कीप और सी विल कीप मी। One must understand that if for Abhishek Banerjee the party has been destroyed today. We have lost it.
2: हालत ये है कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके हैं। ममता के 13 में से 3 राज्यसभा सांसदों ने तो इस्तीफा तक दे दिया। पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को चिट्ठी दे चुके हैं। 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद चले गए, कई नगर पालिकाएं ही भंग हो गए। दिल्ली दौरे में ममता की सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी। इसके बाद ममता अभिषेक की सोनिया राहुल से मुलाकातें हुई। उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर की लहर और तेज हो गई।
4: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा।
5: टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है, क्या इस तरीके का कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है या क्या टीएमसी ने इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट की है?
6: हाउ कैन वी आंसर फॉर दिस? कल इसका पूरा खंडन किया गया है, बार बार ये सवाल मत पूछ।
2: कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे नहीं चल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की एक बैठक में कहा है कि मोदी की नीतियों ने मरवा दिया है, और राहुल गांधी ने इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में भी माहौल काफी ज्यादा उनके बयान के बाद गर्म हो गया है।
7: दिल्ली की तपती गर्मी के बीच कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस महाबैठक ने देश का सियासी पारा गर्मा दिया है। नीट धांधली, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस की इस बैठक में राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने मरवा दिया। राहुल का इशारा देश के युवाओं, छात्रों और किसानों की उस बदहाली की तरफ था जो सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बेरोजगारी युवाओं को खाए जा रही है, पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधकार में है और अमेरिकी ट्रेड डील ने किसानों को संकट में डाल दिया है। राहुल ने दावा किया कि गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक साल में हालात और खराब होंगे। 2027 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उससे ठीक पहले मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करने में जुटे हैं राहुल गांधी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, पंजाब का प्लान, यूपी नेताओं से मंथन। राहुल गांधी इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, नीट, पेपर लीक, महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी को आजमाना चाहते हैं। इसके साथ कांग्रेस ने 2 महीने के देशव्यापी आंदोलन का बिगुल भी फूंक दिया है। साफ है, कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला मध्य प्रदेश से दिल्ली तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक सड़क पर मोर्चा खोलने जा रहे हैं, प्लान राष्ट्रपति भवन तक मार्च का भी है।
2: राज्यसभा की तीनों सीटों पर कब्जा कर चुकी बीजेपी मध्य प्रदेश में जश्न मना रही है, तो वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से नाराज कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो सड़क पर प्रदर्शन का प्लान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च की तैयारी में है। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर सभी विधायक इकट्ठा होंगे। कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर मिलने का वक्त नहीं दिया गया तो राष्ट्रपति भवन तक विधायक मार्च कर सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से नाराज राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी और ईसी की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। आगे भी ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले पर एक्शन और रिटर्निंग अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया सुपर 8 में फटाफट खबरों का। नोएडा सेक्टर 50 स्थित ओवरसीज अपार्टमेंट में भीषण आग लगने की घटना आई सामने। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। गाजियाबाद में स्याही और रबर स्टैंप बनाने वाली फैक्ट्री और उसके गोदाम में लगी भीषण आग। स्याही के गोदाम में लगी आग। चमोली से खबर, जहां पर एसडीआरएफ और आईटीबीपी ने चमोली में घने कोहरे और खराब मौसम के कारण रास्ता भटके 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल को सकुशल बचाया। महाराष्ट्र में मुंबई नासिक हाईवे पर भिवंडी तालुका में एक पेपर रोल गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सोनीपत में एक शराब कारोबारी के घर के बाहर बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर दी। पीड़ित युवक ने गांव के ही कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नीयत से हमला करने का आरोप लगाया। खबर आगे अलवर की, जहां पर पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंचे युवक ने थाने के अंदर बनाई रील और फिर देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़े हादसे की खबर, यहां पर साहिबपुर कमाल में हुए एक हादसे में मधेपुरा पुलिस के 3 अधिकारी सहित 4 लोगों की हुई मौत। कंगड़बाग इलाके से खबर, जहां पर अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद होते नजर आ रहे, जिम जा रही एक युवती से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े सोने की चेन छीन। चलिए यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
3: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
2: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
3: They score!
2: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
4: मैं करता हूँ ना,
5: मैं करूँगा।
6: ओए, कार्ड्स की दुकान, इतने कार्ड्स कौन रखता है?
4: ये ग्लोबल लग्जरी होटल्स के लिए, ये स्टे स्पा फाइन डाइनिंग के लिए, वर्ल्ड क्लास गोल्फ प्रिविलेजेस के लिए।
6: पंजाब नेशनल बैंक का लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड लो एंड गेट अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, अनलिमिटेड स्टे, डाइनिंग एंड मच मोर।
4: क्रिकेट में आप और बैंकिंग में PNB दोनों ही चैंपियन है।
6: PNB लग्जरा मेटल क्रेडिट कार्ड, PNB मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
3: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
4: सोच बदलो और बैंक भी।
5: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
8: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
9: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
10: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
12: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
11: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहां खबर वहां खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद
18: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
19: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
20: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
21: वैभव इंडिया खेलेंगे ये सबको पता था, इतनी जल्दी खेलेंगे ये नहीं पता था।
22: हाँ सर, बहुत खुशी, बहुत खुश है सर, और आपको भी प्रणाम करते हैं सर। वैभव के लिए आप जो बोलते हैं का स्पोर्ट्स तक की क्या पर्स, हम पूरा सर आपका देखते रहते हैं, तो आपका भी सर आशीर्वाद वैभव को लगा और हम लोग बहुत खुश है सर। इसी के लिए इतना मेहनत बच्चा किया था सर।

ट्रंप ने अचानक बदला ईरान पर हमले का प्लान, कहा दोनों देश डील के बेहद ही करीब, पहले तेहरान पर सबसे बड़े हमले की दी थी धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द करेंगे ऐलान, सभी पक्षों से चर्चाओं की, अंतिम बिंदुओं की दे मंजूरी। ईरान ने होर्मुज को लेकर कही बड़ी बात, कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा होर्मुज जलडमरू मध्य। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला, अमेरिका ने कहा नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से होगी। ईरान ने अमेरिका की तीन सबसे आधुनिक F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, ईरानी सेना ने कहा सॉलिड फ्यूल मिसाइल से बनाया गया निशान। ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से खबर, यूएई और ईरान ने तनाव कम करने की कोशिशों के तहत की आमने सामने की बातचीत। अमेरिकी सेना ने ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास भारत के कमर्शियल ऑयल टैंकर एमटी जलवीर पर किया भीषण हमला, तीन दिनों के भीतर भारतीय क्रू वाले जहाजों पर यह तीसरा बड़ा हमला। मध्यपूर में छिड़े युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने की बहरीन के विदेश मंत्री से मुलाकात, बहरीन के नेता का बड़ा बयान, कहा गुरुवार को बहरीन पर ईरान ने दागे 36 ड्रोन। रूस के दक्षिणी शहर क्रासनोदर पर यूक्रेनी सेना का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों पर हुए हमले में दो लोग घायल। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यह कहा है कि अमेरिका नेटो संबंधों पर बड़ी बात कहते हुए बोले कि अमेरिका नेटो के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध, अमेरिका द्वारा नेटो छोड़ने की आशंका के बाद उठ रहे हैं सवाल। टीएमसी में खत्म नहीं हो रही है बगावत, अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश बेराइक ने पद से दिया इस्तीफा, सभापति को सौंपा त्यागपत्र। अपने इस्तीफे पर बोले बेराइक, बंगाल में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन किया। काकोली घोष का दावा, लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत, हम एनडीए के साथ। टीएमसी के बागियों पर बरसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद, बोले उन्हें बागी नहीं भगोड़ा कहिए। फर्जी साइन मामले में अभिषेक के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीआईडी, सूत्रों के मुताबिक 14 को फिर होगी पूछताछ। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बनर्जी ने कहा भतीजे को चुने या वफादार नेताओं को, तमाम कयासों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का आज तक पर बड़ा बयान, बोले मैं ममता दीदी के साथ हूं। टीएमसी के कांग्रेस में विलय पर कीर्ति आजाद का बयान, विलय की खबरों को किया खारिज। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के साथ फिर से हुई धक्का मुक्की, कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने बचाकर निकाला टीएमसी नेता जहांगीर खान की पैदल परेड, हाफ पैंट में पुलिस पैदल ले गई अपने साथ। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा वास्तविक कानूनी उपाय, चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करना। मीनाक्षी नटराजन विवाद मामले में आज कांग्रेस का हल्ला बोल, एमपी कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एमपी के तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से ही सीट चोरी, नियमों के खिलाफ नटराजन की उम्मीदवारी की रद्द। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हालत की खराब। जामनगर में राज्य मंत्री रिवाबा जडेजा ने बच्चों के साथ गुजारा समय, सरकारी विद्यालय का किया दौरा, कक्षाओं का किया निरीक्षण, छात्राओं के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के सीएम की चर्चा। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल, डीके शिव कुमार, उमर अब्दुल्ला, जोसेफ विजय और रेवंत रेड्डी ने की पीएम मोदी से मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी बने एमएलसी। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 4-4 उम्मीदवार जीते एमएलसी चुनाव, एक आरजेडी और एक एलजेपी का उम्मीदवार भी विजय। निर्विरोध जीतने के बाद बोले निशांत कुमार, बिहार के विकास के लिए करते रहेंगे काम। टीएमसी में बगावत तेज, अलग संसदीय गुट के समर्थन में सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने का दावा। स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र से बढ़ी सियासी हलचल, टीएमसी के भीतर अलग गुट बनाने की कवायद तेज। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी एआईएमआईएम, बहराइच से ओवैसी करेंगे शंखनाथ, 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिमी यूपी और अवध पर एआईएमआईएम का फोकस, बसपा से गठबंधन की संभावनाओं के बीच संगठन विस्तार तेज। एनसीपी के 27वें स्थापना दिवस पर सुनेत्रा अजित पवार ने अजित दादा पवार की विरासत को याद किया, संगठन मजबूत करने का लिया संकल्प। दिल्ली में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की जिम की फ्रेंचाइजी पर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली में जिम पर करीब 7 राउंड की फायरिंग हुई, अपराधी हुए फरार। लॉरेंस गिरोह ने जारी किया एक ऑडियो, सलमान से नजदीकी को बताया हमले की वजह। हरियाणा के हासिक में जिम संचालक को मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। लॉरेंस गैंग ने की हमले की जिम्मेदारी, एक्शन लेने पर पुलिस को दी थी धमकी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा आपका
आत्मीय सानिध्य और यशस्वी मार्गदर्शन, विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु नई ऊर्जा का करता है संचार। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम और नागालैंड के बीच एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर। असम नागालैंड सीमावर्ती इलाकों में मिनरल ऑयल से जुड़े कामकाज होंगे आसान। ओमान के पास अमेरिकी हमले की चपेट में तीन भारतीयों की मौत पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र को घेरा, कहा प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय है लेकिन अमेरिकी सेना की निंदा करने का वक्त नहीं है। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, राज्यसभा चुनाव को लेकर विरोध। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर पटना में भोजपुरी संगीत कार्यक्रम का आयोजन, लालू, राबड़ी और परिवार के दूसरे लोग मौजूद रहे। 14 जून तक जारी होगा नीट के री एग्जाम का एडमिट कार्ड, वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा का शहर देख सकते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग करने पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए बड़े निर्देश, आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, यूपी एसटीएफ के शिकंजे में मुख्य सरगना, जांच और पूछताछ जारी। 15 जुलाई तक रेल मंत्रालय लॉन्च करेगा आईआरसीटीसी की नई और उन्नत वेबसाइट, छात्रों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना, फिलहाल करीब 44 डिग्री के बीच नागपुर में पड़ रही है गर्मी। पठानकोट में तेज तूफान, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे पेड़, कुछ देर के लिए यातायात हुआ बाधित, कोई भी हताहत नहीं। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। हमीरपुर की बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक से आया पानी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने डूब रहे 2 लोगों का रेस्क्यू किया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोनमर्ग के मशहूर थाजीवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट, 95% बर्फ खत्म। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान, बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का असर। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ बढ़ी जोरदार ठंड। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान जताया। जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़ रहे हैं श्रद्धालु, जून का आधा महीना बीतने के बावजूद पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर अभी भी बर्फबारी का दौर जारी। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। शौर्य चक्र से सम्मानित राइफलमैन दुर्गा ज्योति दत्ता के असम पहुंचने पर जश्न मना, लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूलमाला पहनाकर और जुलूस निकालकर स्वागत किया। दिल्ली में छठे युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में कई राज्यों से आए युवा हुए शामिल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के यात्रियों के लिए गुड न्यूज, अलवर और दौसा में 2 नई पुलिस चौकियों की हुई शुरुआत। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में शुरू हुआ देश का पहला टाइम बैंक, सामुदायिक सेवा और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई अनोखी टाइम बैंक योजना। अमेरिका पहुंचने पर जैन आचार्य लोकेश का भव्य स्वागत, वी सपोर्ट पीस और वॉर फ्री वर्ल्ड अभियान को मिला व्यापक समर्थन। सोनीपत में आपसी रंजिश के कारण शराब व्यापारी पर चली गोलियां, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, फायरिंग में कोई हताहत नहीं। अलवर में पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंचे युवक ने थाने के अंदर बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सूरत में पुलिस वाले ने 7वीं मंजिल की ग्रिल पर चढ़कर बचाई आदमी की जान, बचाव का वीडियो हुआ वायरल। पटना में जिम जा रही महिला से हथियार के बल पर चेन की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाने में पेपर गोदाम में भीषण आग लगी, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के नंदग्राम में इंक गोदाम में लगी भीषण आग, मकल की 7 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। मेहसाणा एपीएमसी सब्जी मंडी में लगी भयंकर आग, एक साथ 6 दुकानों के शेड में लगी थी भयंकर आग, शेड में खड़े 2 ट्रक भी जलकर खाक हुए। चमोली में मूसा पानी के पास रास्ता भटका 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, बारिश और घने कोहरे के बीच एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पठानकोट में तेज तूफान का कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पास पेड़ टूटे, नेशनल हाईवे हुआ जाम। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 152 में निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर 2 कामगारों की मौत हुई, सेफ्टी बेल्ट टूटने की वजह से हादसा। किशनगंज में मां ने मात्र 2 लाख रुपए में किया नाबालिग बेटी का सौदा, युवक ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, पिता ने पुलिस की मदद से बेटी को कराया रिहा। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में कारोबारी से 10 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, ठग के पास से करीब 6 लाख रुपए बरामद हुए। गाजियाबाद के लोनी में 21 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के स्वरूपनगर थाने इलाके में पुलिस रेड से भयभीत साउथ अफ्रीकन मूल की महिला ने छत से लगाई छलांग, मौके पर मौत हुई।
फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, दो बच्चों और पिता की मौत। वडोदरा में पुलिस की कार्रवाई, 20 करोड़ के चमत्कारी सुलेमानी पत्थर के नाम पर ठगने वाले गिरोह को पकड़ा गया। गाजीपुर में नाबालिग भांजे की हत्या में मामा को फांसी की सजा, 2021 में मामूली घरेलू विवाद में मामा ने धारदार हथियार से की थी हत्या। सुल्तानपुर में जाति विशेष के युवक से अभद्रता, जबरदस्ती लगवाए नारे, वीडियो वायरल। जालौर में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रहे दो बुजुर्गों व्यक्तियों को बनाया शिकार। पाली में नाकेबंदी में पुलिस पर तस्करों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल, दो गिरफ्तार। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले ही मैच में सह मेजबान मेक्सिको ने जीत से की शुरुआत। मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से दी मात, जीत पर खुशी से झूमे फैंस। मेक्सिको के जुलेन ने पहले हाफ में स्ट्राइक कर गोल किया और फिर राउल जिमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2-0 से हरा दिया। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में रेफरी ने 3 रेड कार्ड दिए और साथ ही साउथ अफ्रीका के स्पिफेलो और थेम्बा ज्वाने को रेड कार्ड मिला।

रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम के 7:36 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः काल 6:28 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक।

सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। अगर अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ की चिंता ना करें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

होगी, परिवार की चिंता दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा।

ना मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अगर आज फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन की हानि से बचें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संपत्ति खरीद सकेंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में मंगल कार्य होगा। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में उन्नति होगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

राशि व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। मानसिक तनाव से बचाव करें, महत्वपूर्ण कागज संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। अगर आज अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला।

योग हैं, मानसिक स्थिति में सुधार होगा, जल्दबाजी में काम ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
5: Everybody is saying this.
4: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamutadi. I said again. I am saying. I am with Mamutadi. But Mamutadi has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
5: That's an ultimatum.
4: Yes. This is I leave it to her.
6: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
7: Whenever they made this, दीदी यू आर सो ब्यूटीफुल, दीदी यू आर साड़ी सो नाइस।
6: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गयी। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
8: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा।
9: These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji, when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
6: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
10: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
11: अच्छा कर रहा है।
6: बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता, लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो। शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
12: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कांटेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कांटेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण लिया, आमंत्रित किया अपनी ओर, लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

शर बागियों का दावा, कल्याण बैन जी को चीफ विप बनाने से पहले अलग गुट की मांग। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीआईडी ने की पूछताछ। 5.5 घंटे के सवाल जवाब के दौरान कई बार भड़के अभिषेक, पार्टी में खुलेआम असंतोष से बड़ी मुश्किलें। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा। ऑन स्क्रीन मार्किंग पर सीबीआई का कानूनी इम्तिहान, दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में आज सुनवाई, अरबी छात्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में विचार। और ईरान पर ट्रंप का बड़ा यूटर्न, बोले हमले का प्लान फिलहाल स्थगित, हफ्ते के अंत तक डील की जताई उम्मीद, सुप्रीम लीडर की सहमति का दावा, ईरान ने नहीं खोले पत्ते।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से भी। लेकिन आगे आपको खबरों की झलकियां दिखा देते हैं। ईरान से समझौते को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बड़ा दावा किया है, साथ ही आपको दिखाएंगे फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी से सीआईडी की लंबी पूछताछ के दौरान क्या कुछ हुआ, किन सवालों पर अभिषेक बैनर्जी भड़क गए। इसके साथ ही दिखाएंगे टीएमसी के बागियों की लिस्ट कैसे बढ़ती जा रही है, क्या कल्याण बैनर्जी भी बागियों के गुट में शामिल हो सकते हैं। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं टीएमसी में मची कलह के साथ, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। विधायक हो, लोकसभा सांसद, सभी कोई साथ छोड़ रहा है। राज्यसभा सांसद भी इस्तीफा दे रहे हैं और ममता पर बीजेपी के हमले लगातार तेज हो रहे हैं। इस बीच ममता बैनर्जी के बेहद करीबी कल्याण बैनर्जी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि टीएमसी में मची उठापटक के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया कि वो ममता बैनर्जी के साथ हैं। उधर पार्टी में इस बगावत के बीच फर्जी हस्ताक्षर मामले में ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने अलग गुट के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। इस लेटर की कॉपी आज तक के पास है। इस लेटर पर 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये लेटर 18 मई को लोकसभा स्पीकर को भेजा गया था। तो इस लेटर से तमाम डिटेल सामने आ रहे हैं कि कौन है वो 19 सांसद जिन्होंने अब बागी रुख अख्तियार कर लिया है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इस लेटर के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा?
1: देखिए, इस लेटर के बाद जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कानूनी सलाह लेने के बाद जो है वो फैसला लेना है, क्योंकि इसमें अगर आप एक टेक्निकल एस्पेक्ट देखेंगे तो 18 मई की तारीख से ये लेटर जो है वो स्पीकर के पास पहुंचा है। अगर 18 मई की तारीख से पहुंचता है तो काकोली घोष जो है वो लोकसभा के अंदर टीएमसी की चीफ व्हिप है और 20 तारीख को जो है अभिषेक

जिसमें कई बार अभिषेक बैनर्जी को तलब किया जा चुका है लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। अब जब हाजिर हुए तब 5 घंटे की लंबी पूछताछ सीआईडी ने की है और इस मामले में अब अभिषेक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

0: एक ओर टीएमसी टूट रही है, अपने बागी हो चुके हैं, करीबी भी तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर का है, जिसे लेकर सीआईडी ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी से 5 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने भी उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं और सीआईडी ईडी एक्शन के बीच अभिषेक पर हमला बोल रहे हैं।
1: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो, जो बालू और उसका बिजनेस होता उससे पैसा लेता था, तब वो कहाँ थी? ये बंगाल के लोगों पर जब अत्याचार कर रहे थे हमारे जो पंचायत में और म्यूनिसिपलिटी में, तब उनको देखना चाहिए था।
2: ये लोग सब दिल्ली जाके कैंप बदल रहे हैं, इन लोग से बात भी नहीं हुआ, कैसे बोलेंगे? जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
0: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पक्ष सौंपा गया। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावों को खारिज कर दिया। अब सीआईडी इस केस की जांच कर रही है। पूछताछ के बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोलकाता से अनिल बंसाह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, सीआईडी की ये पूछताछ अभिषेक बैनर्जी से लगभग 5 घंटे चली, लंबी पूछताछ, कई सवाल, कुछ संभावित सवाल जो सामने निकल कर आ रहे हो कि क्या कुछ पूछा गया?
4: जी देखिए, मामला मुख्यतः उन फर्जी हस्ताक्षरों का है जिसकी चिट्ठी अभिषेक बैनर्जी ने दी थी विधानसभा स्पीकर को। तो ये पूरा का पूरा मामला फर्जी हस्ताक्षर, किन लोगों के हस्ताक्षर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। जैसे 13 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं कि इनके हस्ताक्षर फर्जी थे, तो उनके हस्ताक्षर किसने फर्जी किए? मुख्यतः सवाल यही रहा होगा कि ये जो फर्जी हस्ताक्षर हैं ये किसने किए, किसके कहने पर किए, क्योंकि जो चिट्ठी सौंपी गई थी वो अभिषेक बनर्जी द्वारा सौंपी गई थी। तो मुख्यतः मुख्य सवाल अभिषेक बनर्जी से किए जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के फर्जी हस्ताक्षर हैं उनसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा इधर उधर वाले सवाल नहीं रहे होंगे। खासतौर पर फर्जी हस्ताक्षर जिन लोगों के हैं उनसे पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। अब अभिषेक बनर्जी से पूछा जा रहा है कि ये जो फर्जी हस्ताक्षर हैं ये किसने किए हैं, ये मुख्य सवाल रहे।
3: बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और अभिषेक बनर्जी की कानूनी मुश्किलें एक और बढ़ रही हैं, वहीं पार्टी में उनका विरोध तेज होता जा रहा है। अब नया मोर्चा खोला है ममता के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की नाराजगी सामने आई है। कल्याण बनर्जी कहने लगे कि ममता बनर्जी को मुझमें या अपने भतीजे अभिषेक में से किसी एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी का ये अल्टीमेटम क्या उनके भी बागी होने का सबूत है? क्योंकि कल्याण चाहते तो नाराजगी की बात सीधे ममता से करते, लेकिन वो सीधे मीडिया के सामने आए, यानी वो ये चाहते हैं कि गुस्सा उनकी पार्टी और ममता बनर्जी तक पहुंचे और वो इन्हें एक और झटका दे सके।
0: ममता बनर्जी की पार्टी में टूट का सिलसिला कब थमेगा? क्या बागी सांसदों की फेहरिस्त में और इजाफा होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी का हवाला देकर कल्याण बनर्जी ने भी विरोध का मोर्चा खोल दिया है।

0: ममता बनर्जी ने काकोली घोष को चीफ व्हिप से हटाकर कल्याण बनर्जी को बनाया। हालत ये है कि काकोली घोष की अगुवाई में 19 सांसद बगावत करके एनडीए को समर्थन की चिट्ठी दे चुके हैं और कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ममता दीदी ये ना चौलवे, भतीजे या कल्याण में एक को ही चुनना होगा।
1: One must understand that if for his, for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
2: Everybody is saying this.
1: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
2: That's an ultimatum.
1: Yes. This is, I leave it to her. This is a her wisdom. I leave it to her wisdom.
2: So this is a dharam sankat for Didi.
1: She has I leave it to her wisdom. Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
2: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He is still the national.
1: That's all right. That today I am saying.
0: दूसरा फैसला लेने की बात का क्या मतलब है? क्या कल्याण बनर्जी भी ममता बनर्जी का साथ छोड़कर 9-2-11 होना चाहते हैं? क्योंकि कहां तो अभिषेक बनर्जी पर अंडा पत्थर फेंके जाने के मामले में 31 मई को सड़क पर प्रदर्शन करने वाले खुद कल्याण बनर्जी खून का एक एक कतरा पार्टी के लिए बहाने की बातें करते रहे। कहां तो 9 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे, अब 11 जून को कहने लगे।
3: तेरा साथ पैसा है, तेरा साथ गहना है, तेरा साथ बंगलो है, तेरा साथ नरेंद्र मोदी है, तेरा साथ अमित शाह है, तेरा साथ चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है और मेरा साथ माँ माटी मानुष है, माँ मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। आप गईये अच्छे से।
1: आई लीव इट टू हर विजडम। Whatever she will do, that's all right. If she says no, without Abhishek Banerjee, party cannot run, I have to take my other decision.
2: Because she has chosen Abhishek Banerjee right now. He is still the national.
1: That's all right. That today I am saying this.
0: इस वक्त कल्याण बनर्जी ममता के सबसे करीबी रहे हैं, लेकिन फिर कहें या तो अभिषेक या मैं की बात ममता के सामने करने लगे। इसकी वजह अभिषेक बनर्जी का घमंड, दूसरों से बदसलूकी वाला व्यवहार बन रहा है। अभिषेक बनर्जी पर विधानसभा में टीएमसी का नेता विपक्ष चुनने के लिए भेजी गई चिट्ठी में फर्जी दस्तखत का केस चल रहा है, जिसमें सीआईडी के सामने अभिषेक को पेश होने का आदेश हाईकोर्ट को देना पड़ा। इसी मामले में कल्याण बनर्जी गुस्सा है कि बिना उन्हें बताए वकील बदल लिया, अपमान किया।
1: He's such an arrogant person, and all the time this is insulting. This is not possible for me. To appear in this matter, I said I will not appear.
2: So this is also mistrust. You are not just an advocate, you are also a senior member within the party.
1: This is humiliating. Does he not trust you? No, he never trusted.
0: भरोसे के ही संकट को संभालने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली तक दौड़ गई, लेकिन विरोध के इंसुरों के बीच ममता की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। आज तक ब्यूरो।
4: अनुपम मिश्र से योगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, तो बहुत बड़ा धर्म संकट है यहाँ पर ममता बनर्जी के लिए कि वो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी में किसको चुनेंगी। हालांकि खून का रिश्ता सबसे बढ़कर होता है कहा जाता है, लेकिन ऐसे में जब असंतोष और गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कल्याण बनर्जी, क्या उनको मना पाना मुमकिन संभव होगा ममता के लिए?
5: देखिए, अब धीरे धीरे ये दरारें बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं और कल्याण बनर्जी जो कल से पहले तक एक तरह से लग रहा था कि ममता बनर्जी के साथ अब दो चार लोग जो बचे हुए हैं उनमें कल्याण बनर्जी प्रमुख हैं और अब ममता बनर्जी के घर जब रेड हुई तब भी कल्याण बनर्जी पहुंचे थे, तो ऐसे में कल्याण बनर्जी काफी महत्वपूर्ण रहे हैं ममता बनर्जी के लिए। और लास्ट मोमेंट में अब जब सब कुछ बिखर रहा है, जैसे टाइटैनिक जब डूब रहा था तो सब साथ छोड़ रहे थे, उसी तरह अब कल्याण बनर्जी साथ छोड़ेंगे कि नहीं ये तो पता नहीं है, लेकिन उस तरह के संकेत वो उन्होंने लगभग दे दिए हैं। तो ये बड़ी मुश्किल भरी अब राह हो चुकी है ममता बनर्जी के लिए। उनके जो बहुत पुराने साथी रहे हैं, बहुत सालों से साथ रहे हैं, अब पहले बहुत सारे उनमें से अलग हो गए, अब बहुत ज्यादा जो करीबी रहे वो भी धीरे धीरे एक बागी सुर अपना रहे हैं। ये ममता बनर्जी के लिए चैलेंजिंग है।
4: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं सांसदों की लिस्ट में जो बागी सांसद, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का दावा किया जा रहा था, लेकिन आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हर हाल में ममता बनर्जी के साथ ही खड़े रहेंगे।
6: कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
7: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है। मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
4: वहीं टीएमसी बचे घमासान और कांग्रेस से बढ़ रही ममता की नजदीकियों ने कांग्रेस और टीएमसी के मर्जर की खबरों को हवा दे दी है। हालांकि कांग्रेस अभी इन अटकलों से इनकार कर रही है।
8: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी है। घर यानी पार्टी में आग लगी हुई है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे हैं। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता जा रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया कि ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा।
1: ममता दी हैज टू चूज वेदर अभिषेक बनर्जी ही सी विल कीप और सी विल कीप मी। वन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इफ फॉर हिज फॉर अभिषेक बनर्जी द पार्टी हैज बीन डिस्ट्रॉयड टुडे, वी हैव लॉस्ट इट।
8: हालत ये है कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके हैं। ममता के 13 में से 3 राज्यसभा सांसदों ने तो इस्तीफा तक दे दिया। पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को चिट्ठी दे चुके हैं। 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद चले गए, कई नगर पालिकाएं ही भंग हो गए। दिल्ली दौरे में ममता की सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी। इसके बाद ममता अभिषेक की सोनिया राहुल से मुलाकातें हुई। उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस ने देश भर से अपनी पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर की लहर और तेज हो गई।
9: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा ये बाद में देखा जाएगा।
10: टीएमसी और कांग्रेस का मर्जर हो सकता है, क्या इस तरीके का कोई ऑफर कांग्रेस की तरफ से दिया गया है या क्या टीएमसी ने इस तरीके की कोई रिक्वेस्ट की है?
11: हाउ कैन वी आंसर फॉर दिस?
12: कल इसका पूरा खंडन किया गया है, बार बार ये सवाल मत पूछ।
8: कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे नहीं चल सकते। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: इस बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इसी महीने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर सकती है। दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल के ने बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति और गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा हुई है। बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक टीम के गठन का इंतजार कर रहा है। और अब बात मध्यप्रदेश के राज्यसभा चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला मध्यप्रदेश से दिल्ली तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। तो वहीं मध्यप्रदेश कांग्रेस विधायक सड़क पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान राष्ट्रपति भवन तक मार्च का है।
8: राज्यसभा की तीनों सीटों पर कब्जा कर चुकी बीजेपी मध्य प्रदेश में जश्न मना रही है, तो वहीं मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से नाराज कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा खोल दिया है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में कानूनी लड़ाई तो सड़क पर प्रदर्शन का प्लान है। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में राष्ट्रपति भवन तक मार्च की तैयारी में हैं। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर सभी विधायक इकट्ठा होंगे। कांग्रेस ने इस मामले में राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि अगर मिलने का वक्त नहीं दिया गया तो राष्ट्रपति भवन तक विधायक मार्च कर सकते हैं। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से नाराज राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा है, वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद बीजेपी और ईसी की मिलीभगत ने सीट चोरी के जरिए मुकाबले को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। आगे भी ऐसा ही बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के लिए चुनाव जीतने के मुकाबले चुनाव में धांधली करना कहीं ज्यादा आसान है। कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले पर एक्शन और रिटर्निंग अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
4: और बात अमेरिका ईरान युद्ध की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लंबे वक्त से चल रहे विवाद को खत्म करने वाली डील अब अंतिम चरण में है और कुछ ही दिन में अंतिम रूप दिया जा सकता है इसे। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जल्दी दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ये भी कहा कि इस डील के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खोल दिया जाएगा। वाँ, वाँ, वाँ।

0: पहले बड़े हमले का ऐलान, फिर हमले के आदेश पर विराम और अब ईरान से डील को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। और इस दावे के साथ सवाल ये कि क्या अमेरिका ईरान के बीच जारी जंगी तनाव अब पूरी तरह खत्म होने वाला है? क्या बीते दिनों फिर भड़के तनाव के बाद स्थायी शांति का रास्ता निकलने वाला है? क्योंकि अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर बहुत बड़ा दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आधिकारिक घोषणा की है कि अमेरिका ईरान में महीनों से जारी सैन्य संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकता है। ट्रंप के मुताबिक ईरान भी समझौते को उतनी ही शिद्दत से चाहता है जितना कि बाकी सभी लोग इसे देखना चाहते हैं। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच महीनों चल रहे गंभीर तनाव के अंत की एक बड़ी उम्मीद बताया है।
1: How confident are you that there will be a signing this weekend because you have come close to sealing a deal but at the last minute it has fallen apart and
2: it'll be soon. Maybe this weekend.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes.
0: दावा ये है कि समझौता सप्ताह के अंत तक यूरोप में हो सकता है जिसमें जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने ऐलान किया था कि उन्होंने गुरुवार देर रात ईरान के खिलाफ होने वाले सैन्य हमलों को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब दोनों देशों के बीच डील पर ट्रंप का नया दावा सामने आया है। आज तक ब्यूरो।
3: प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रणय, जो व्यक्ति कल तक फुल थ्रॉटल वॉर के पक्ष में था, ईरान के हमलों का जवाब दिया जा रहा था अमेरिका द्वारा, आज वो कह रहा है कि वीकेंड तक समझौता हो जाएगा और हम सारी पाबंदियां हटा भी लेंगे, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा और ईरान से सहमति भी है, जेडी वैंस भी पहुंच रहे हैं। क्या ये संभव भी है? मतलब आंखों पे कानों पे किसी पर भी यकीन नहीं होता।
4: बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने, लेकिन ना ये पहली बार हुआ है और ना आखिरी बार नजर आ रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीते दो महीनों के दौरान के ही अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट को देखें तो उसमें परस्पर विरोधाभासी बयान कई बार सामने आए हैं। यानी हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान में तोड़ने लायक कुछ नहीं बचा हुआ है, ईरान जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, घुटनों पर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद ईरान की तरफ से कार्यवाही हो रही है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों के बावजूद हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, डील बहुत जल्दी ही हो जाएगी। करीब करीब तीन दर्जन बार अगर उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन को देखें तो इसी तरीके के बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी क्या अलग हुआ है, अगर क्या ये उन्हीं बयानों की एक और कड़ी है या वाकई में समझौता हो सकता है, इसके संकेत तेहरान से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का अब से थोड़ी देर पहले आया बयान ये कह रहा है नेहा कि तमाम विरोधाभासी बयानों, तमाम जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और तमाम अमेरिका की आक्रामक कार्रवाई के बावजूद जो समझौते के बिंदु हैं उन पर लार्जली सहमति बन चुकी है और हम जो है बातचीत की में काफी आगे बढ़े हैं। ये ईरान ने भी तस्दीक की है, लगभग ऐसी ही बात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। दरअसल यहां पर जल्दबाजी इस बात की है क्योंकि 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है और ये 4 जुलाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका की के पैदाइश की या अमेरिका की स्थापना की 250वीं वर्षगांठ है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन है।
3: ये संभव वो करना चाहते हैं कि 4 जुलाई से पहले सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। युद्ध से आर्थिक संकट पर दुनिया पर मंडरा रहा खतरा है, लेकिन युद्ध के अलावा इस बार प्राकृतिक कारणों से भी विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। एक बहुत ही शक्तिशाली एल नीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। एल नीनो एक मौसम फिनोमिना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित होता है, कहीं सूखा आता है तो कहीं बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
0: दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एल नीनो कितना भयानक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एल नीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आम तौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दे, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मानसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बजे में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

बागियों का खत 18 मई को स्पीकर को लिखे खत में 19 सांसदों के हस्ताक्षर, बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ विप बनाने के से पहले अलग गुट की मांग। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीआईडी ने की पूछताछ, 5.5 घंटे किए सवाल जवाब के दौरान कई बार भड़के अभिषेक, पार्टी में खुलेआम असंतोष से बड़ी मुश्किलें। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऑन स्क्रीन मार्किंग पर सीबीएसई का कानूनी इम्तिहान, दिल्ली हाईकोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में आज सुनवाई, अरबी छात्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में विचार। और ईरान पर ट्रंप का बड़ा यूटर्न, बोले हमले का प्लान फिलहाल स्थगित, हफ्ते के अंत तक डील की जताई उम्मीद, सुप्रीम लीडर की सहमति का दावा, ईरान ने नहीं खोले पत्ते।

0: दिल्ली के तुगलकाबाद की इमारत में भीषण आग, दो महिलाओं समेत तीन की मौत, पांच महिलाओं को बचाया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में बेसमेंट में भड़की आग से दो मंजिलों को चपेट में लिया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सीकर में स्मार्ट मीटर बदलने के दौरान बिजली निगम कर्मचारियों से मारपीट, टेक्निकल असिस्टेंट का हाथ फ्रैक्चर। बिहार के सासाराम में गाय की बछड़े को लेकर जा रहे दो युवकों की ग्रामीणों ने की पिटाई, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में आपसी रंजिश के कारण शराब व्यापारी का पर चली गोलियां, सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, फायरिंग में कोई हताहत नहीं। अलवर में पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के पहुंचे युवक ने थाने के अंदर बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत में पुलिस वाले ने सातवीं मंजिल की ग्रिल पर चढ़कर बचाई आदमी की जान, वीडियो वायरल। पटना में जिम जा रही महिला से हथियार के बल पर चेन की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाने में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। गाजियाबाद के नंदग्राम में इंग गोदाम में लगी आग, दमकल की सात गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मेहसाणा एपीएमसी सब्जी मंडी में लगी आग पर पाया गया काबू, छह दुकानों के शेड में लगी थी आग, शेड में खड़े दो ट्रक जलकर खाक। चमोली मूसा पानी के पास रास्ता भटका 15 सदस्य ट्रैकिंग दल, बारिश और घने कोहरे के बीच एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पठानकोट में तेज तूफान के कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के पास टूटे पेड़, नेशनल हाईवे हुआ जाम। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 152 में निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर दो कामगारों की मौत, सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ हादसा। टीएमसी में नई खत्म हो रही है बगावत, अब टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह बराइक ने पद से दिया इस्तीफा। अपने इस्तीफे पर बोले बराइक, बंगाल में करारी हार की जिम्मेदारी लेते हुए किया रिजाइन। काकली घोष का दावा, लोकसभा में 20 बागी सांसदों का स्पीकर को खत, हम एनडीए के साथ हैं। टीएमसी के बागियों पर बरसे टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद, बोले उन्हें बागी नहीं भगौड़ा कहना चाहिए। फर्जी साइन मामले में अभिषेक के जवाब से असंतुष्ट है सीआईडी, सूत्रों के मुताबिक 14 तारीख को फिर होगी पूछताछ। ममता को अल्टीमेटम देकर कल्याण बैनर्जी ने कहा, भतीजे को चुने या फिर वफादार नेताओं को। तमाम कयासों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा का आज तक पर बड़ा बयान, बोले मैं हूं ममता बैनर्जी के साथ। टीएमसी कांग्रेस के विलय पर कीर्ति आजाद का बयान, विलय की खबरों को किया खारिज। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी के साथ धक्का मुक्की, कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने बचाकर निकाला। टीएमसी नेता जहांगीर खान की पैदल परेड, हाफ टाइम में पुलिस पैदल परेड कराकर ले गई। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, कहा वास्तविक कानूनी उपाय, चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करना। मीनाक्षी नटराजन विवाद मामले में आज कांग्रेस का हल्ला बोल, एमपी कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से की सीट चोरी। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने देश की हालत खराब कर दी है। जामनगर में राजमंत्री रिवाबा जडेजा ने बच्चों के साथ गुजारा समय, सरकारी विद्यालय का किया दौरा, कक्षाओं का किया निरीक्षण। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के सीएम की चर्चा। बैठक में 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल, डीके शिव कुमार, उमर अब्दुल्ला, जोसेफ विजय और रेवंत रेड्डी पीएम से करेंगे मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी बने एमएलसी। जेडी और बीजेपी के कोटे से 4-4 उम्मीदवार जीते एमएलसी चुनाव, एक आरजेडी और एक एलजेपी के कोटे का। निर्विरोध जीतने के बाद बोले निशांत कुमार, बिहार के विकास के लिए करते रहेंगे काम। टीएमसी बगावत तेज, अलग संजय गुट के समर्थन से सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने का दावा। स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र से बड़ी सियासी हलचल, टीएमसी के भीतर अलग गुट बनाने की कवायद। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी एआईएमएम, बहराइच से ओवैसी करेंगे शंखनाद, 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिमी यूपी और अवध पर एआईएमआईएम का फोकस, बसपा से गठबंधन की संभावनाओं के बीच संगठन विस्तार तेज। एनसीपी के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर सुनेत्रा अजीत पवार ने अजीत पवार की विरासत को याद किया। दिल्ली में पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा की जिम की फ्रेंचाइजी पर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली में जिम पर करीब 7 राउंड फायरिंग, अपराधी फरार। लॉरेंस गिरोह के जारी किया ऑडियो, सलमान से नजदीकी को बताया हमले की वजह। हरियाणा के हांसी में जिम संचालक को मारी गई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। लॉरेंस गैंग ने की हमले की जिम्मेदारी, एक्शन लेने पर पुलिस को दी धमकी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम योगी, कहा आपका आत्मीय सानिध्य और यशस्वी मार्गदर्शन विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण हेतु नई ऊर्जा का करता है संचार। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में केंद्र, असम और नागालैंड के बीच एक त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर। ओमान के पास अमेरिकी हमले की चपेट में 3 भारतीयों की मौत पर ओवैसी ने केंद्र को घेरा, कहा प्रधानमंत्री के पास जश्न मनाने का समय, लेकिन अमेरिकी सेना की निंदा करने का वक्त नहीं है। भोपाल में विधानसभा के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, राज्यसभा चुनाव को लेकर विरोध, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा अब यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जन्मदिन, पटना में भोजपुरी संगीत कार्यक्रम का आयोजन। 14 जून तक जारी होगी नीट की री एग्जाम के एडमिट कार्ड, वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा का शेयर देख सकते हैं। बिहार सरकार ने सरकारी शिक्षकों के प्राइवेट कोचिंग करने पर लगाई रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश, आदेश का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों पर होगा एक्शन। उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा में पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, यूपीएससीएफ के शिकंजे में मुख्य सरगना, जांच और पूछताछ जारी। 15 जुलाई तक रेल मंत्रालय लॉन्च करेगा आरसीटीसी की नई और उन्नत वेबसाइट, छात्रों की मांग पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान। यूपी के ऊंचा हाल में बेरोजगारी, बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई पर सियासत तेज, सपा नेता ओम प्रकाश मिश्रा ने बच्चों के भविष्य को लेकर उठाए सवाल। नागपुर समेत पूरे विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन मॉनसून देगा दस्तक, फिलहाल 44 डिग्री है तापमान। पठानकोट में तेज तूफान, अमृतसर नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे पेड़, काफी देर तक यातायात रहा बाधित। केरल के तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट। हमीरपुर की बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक पानी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने डूब रहे 2 लोगों को किया रेस्क्यू। ग्लोबल वार्मिंग चलते सोनमर्ग के मशहूर थाजीवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट, 95% बर्फ खत्म। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान, बिजली चमकने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के आसार। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ जोरदार ठंड। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए चेतावनी जारी की गई, मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया। जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को मर रहे श्रद्धालु, जून का आधा महीना बीतने के बावजूद पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर अब भी बर्फबारी जारी। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालु की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं, जोखिम भरे रास्तों से होते हुए बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु। किशनगंज में मां ने मात्र 2 लाख रुपए में किया नाबालिग बेटी का सौदा, युवक ने बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, पिता ने पुलिस की मदद से बेटी को कराया रिहा। झांसी पुलिस मुठभेड़ में कारोबारी से 10 लाख की ठगी करने वाला गिरफ्तार, ठग के पास से 6 लाख रुपए बरामद। गाजियाबाद में लोनी में 21 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना में पुलिस रेड से भयभीत साउथ अफ्रीकन मूल की महिला ने छत से लगाई छलांग, मौके पर मौत। फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल मारी टक्कर, 2 बच्चों और पिता की मौत। बड़ोदरा में पुलिस की कार्रवाई, 20 करोड़ के चमत्कार, एक सुलेमानी पत्थर के नाम पर ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़। गाजीपुर में नाबालिग भांजे की हत्या, मामा को फांसी, 2021 में मामूली घरेलू विवाद, मामा ने धारदार हथियार से की थी हत्या। सुल्तानपुर में जाति विशेष के युवक से अभद्रता, जबरदस्ती लगवाए नारे, वीडियो वायरल। जालौर में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रहे 2 बुजुर्ग व्यक्तियों पर किया हमला। पाली में नाकेबंदी पर पुलिस पर तस्करों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में से मेजबान मेक्सिको ने जीत की शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको के जूलियन क्विनोन्स ने पहले हाफ में स्ट्राइक पर गोल किया और फिर राउल जिमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2-0 से हराया। मेक्सिको सिटी के एस्डेका स्टेडियम में रेफरी ने 3 रेड कार्ड दिए, साउथ अफ्रीका के स्पेफेलो सिथोले और जेम्बा जुआने को रेड कार्ड मिला। धर्मशाला पहुंची भारत की वनडे क्रिकेट टीम, 13 जून को सीरीज का पहला मुकाबला। पाकिस्तान की वनडे टीम धर्मशाला में मौजूद, 3 मैचेस की है सीरीज। आज से वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है ये टूर्नामेंट, पहली बार दुनिया के 12 देश ले रहे हैं हिस्सा, कुल 33 मैच खेले जाएंगे। इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा मुकाबला। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में है दोनों टीमें। पहली बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नेदरलैंड्स टीम, ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में बनाई है जगह। ट्रंप ने अचानक बदला ईरान पर हमले का प्लान, कहा दोनों देश डील के बेहद करीब, पहले तेहरान पर सबसे बड़े हमले की दी थी धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द करेंगे ऐलान, सभी पक्षों ने चर्चाओं के अंतिम बिंदु को दी मंजूरी। ईरान ने होमस को लेकर बड़ी बात कही, कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा होमस। ईरान अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बेरवेन, कुवैत, जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। ईरान ने अमेरिका की 3 सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, ईरानी सेना ने कहा सॉलिड फ्यूल मिसाइल से बनाया गया निशाना। ब्लूमबर्ग न्यूज के हवाले से खबर, यूएई और ईरान ने तनाव कम करने की कोशिश के तहत आमने सामने की बातचीत। अमेरिकी सेना ने ओमान के शनाज बंदरगाह के पास भारत के कमर्शियल ऑयल टैंकर MT जलवीर पर किया भीषण हमला। मध्य पूर्व में छिड़े युद्ध के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने बहरीन के विदेश मंत्री से की मुलाकात, बहरीन के नेता का बड़ा बयान, कहा गुरुवार को बहरीन पर ईरान ने दागे 36 ड्रोन। रूस के दक्षिणी शहर क्रास्नोदार पर यूक्रेनी सेना का भीषण हमला, रिहायशी इमारतों में हमले में 2 लोग घायल। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा अमेरिका नाटो संबंधों पर बड़ी बात कही, बोले अमेरिकी नाटो के प्रति है पूरी तरह प्रतिबद्ध। इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक साल हो गए। इस क्रैश में 260 लोगों की जान गई थी। आज भी वो खौफनाक मंजर उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसों में अपनों को हमेशा के लिए गंवा दिया।
1: सिर्फ 32 सेकंड और लोगों की दुनिया बदल गई। जिनकी वापसी के इंतजार में परिवार के लोग पलक पावड़े बिछा कर बैठे थे, हादसे के बाद उन्हीं के अंतिम अवशेष खोजने पड़े। जैसे जैसे वक्त गुजरा, AI-171 की उड़ान के वो जानलेवा 32 सेकंड दिल के किसी कोने में ठहर गए। लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। 12 जून 2025 को वो लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के भीतर ही उनकी बहन सुनीता, उनके भतीजे, भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
2: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
1: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार आपातकालीन निकास द्वार के पास सीट 11A पर बैठे थे। विमान के ढांचे में हुए छेद से वो बच निकलने में कामयाब रहे। ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: रुकेंगे आज छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज तक।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: AI is changing the rules in tech, and staying relevant takes more than just keeping up. At WGU, our online technology master's programs give you the skills to keep pace with what's next. Learn more at WGU.edu.
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आगे आगे
2: अरे उधर
1: उधर किधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
6: सोच बदलो और बैंक भी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
8: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
10: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
11: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
12: इन एसोसिएशन विद
13: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: हिंट, बड़े आराम से
13: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
14: Vimal, bolo zubaan kesri.
15: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
16: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया के ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

0: पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दबाव बनाने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.
2: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
3: continue to face political pressure to reach a peace deal,
2: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के 4 टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।
2: समटाइम्स वन हैज टू बियर सो मेनी ह्यूमिलेशन। आई हैव लिसन, इन ए पार्टी, इन ए पॉलिटिक्स नो पार्टी कैन रिमेन इन परमानेंट पावर, एंड आई एम ए very truthful follower of Mamata Banerjee, and what I have done, what I have, that all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days I am with Mamata Banerjee, still I am, but point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay. Such an arrogant person. One must understand that if for his, for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
3: Everybody is saying this.
2: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
3: That's an ultimatum.
2: Yes. This is, I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
3: So this is a dharam sankat for Didi.
2: I leave it to her wisdom.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

खबर, मशहूर शूटर जसपाल राणा का निधन। जर्मनी से लौटने के बाद बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अस्पताल में ली आखिरी सांस। टीएमसी पर लड़ाई में सामने आया बागियों का खत। 18 मई को स्पीकर को लिखे खत में 19 सांसदों के हस्ताक्षर। बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से पहले अलग गुट की मांग। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीडीआई ने की पूछताछ। 5.5 घंटे के सवाल जवाब के दौरान कई बार भड़के अभिषेक। पार्टी में खुलेआम असंतोष से बड़ी मुश्किलें। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल गांधी। कहा, चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यूटर्न। बोले, हमले का प्लान फिलहाल स्थगित, हफ्ते के अंत तक डील की जताई उम्मीद। सुप्रीम लीडर की सहमति का भी दावा। ईरान ने नहीं खोले अपने पत्ते।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: सुबह से ही खबरों में भारी हलचल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 10 बजे क्या क्या है खास, तो बात होगी ममता बैनर्जी के 19 बागियों की। आज तक के पास सभी के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी मौजूद है जो स्पीकर को अलग गुट के लिए भेजी गई है। हम बताएंगे इस चिट्ठी की इनसाइड स्टोरी। साथ ही बात होगी भारत पर मंडराते एक और बड़े खतरे की, नया खतरा है एल नीनो। हम बताएंगे कि इसे लेकर अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है और प्रधानमंत्री ने राज्यों से क्या अपील की है। और बात होगी उस ट्रंप कार्ड की जो जंग के खात्मे और डील पक्की होने पर मुहर लगा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो इस वक्त आ रही है। नहीं रहे हैं मशहूर शूटर और शूटिंग कोच जसपाल राणा। 49 साल की उम्र में जसपाल राणा का निधन हो गया है। हफ्ते भर पहले उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जर्मनी से लौटते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसपाल राणा ने मुख्य रूप से 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल में अपना नाम कमाया था। और इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव का। नितिन, इस वक्त क्या पता चल रहा है? जसपाल राणा हमारे बीच नहीं रहे हैं, क्या हुआ था और कितना बड़ा आघात है ये खेल जगत और खेल प्रेमियों के लिए?
1: जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आघात है क्योंकि जसपाल राणा जो है वो न सिर्फ एक शानदार बेहतरीन कोच थे बल्कि एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व भी थे और बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे। और हमने देखा कि जब से जसपाल राणा ने शूटिंग में अपना कदम रखा था, हर कदम उन्होंने सफलता ही हासिल की थी। और जब तक वो एज अ प्लेयर रहे तब तक भी उन्होंने देश का नाम बहुत रोशन किया, चाहे वो एशियन गेम्स की गोल्ड मेडल्स रहे हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ के रहे हो या फिर वर्ल्ड कप्स की बात रही हो। लेकिन जब से 2012 से उन्होंने कोचिंग की दुनिया में अपना कदम रखा, वहां पर हमने देखा कि किस तरीके से नए नए एथलीट्स को उन्होंने ट्रेन किया, ग्रूम किया और देश को बेहतर स्थान पर लाने की कोशिश की। सबसे बड़ा जो एडिशन रहा या फिर जो जोड़ी बनी वो मनु भाकर और जसपाल राणा की बनी। टोक्यो में हार्ट ब्रेक जरूर हुआ था लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में जिस तरीके से मनु ने बैक टू बैक दो मेडल्स हासिल किए और देश का नाम विश्व में ऊंचा किया वो जसपाल राणा की बदौलत था। जसपाल राणा पूरी टीम के साथ कुछ दिनों पहले जर्मनी में थे, म्यूनिक में थे और वहां से बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर टीम वापस लौट रही थी और उसी दौरान फ्लाइट में ही जसपाल राणा को डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ था जिसकी उन्होंने कंप्लेन की वहां पर। और राइट जैसे वो लैंड हुए उनको सीधा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वहां पे उनके ऑपरेशंस भी हुए थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली जसपाल राणा आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। 49 साल की उम्र में वो हमें हम सबको छोड़कर चले गए हैं। लेकिन पूरा जो शूटिंग वर्ल्ड है, जो फटर्निटी है, जो शूटर्स है वो इस वक्त दुख में है, गहरे दुख में है और सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता। इतनी कम उम्र में जसपाल राणा का चला जाना किसी बड़े सदमे में से कम नहीं है।
0: बिल्कुल नितिन, ये भी बताइए कि किस तरीके से जो शूटिंग का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र है उसमें भारत को वहां तक पहुंचाने में कुछ नामों का खास योगदान रहा, उनमें से एक जसपाल राणा रहे।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जसपाल राणा ने भारत को, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे शूटिंग के, तो वहां तक पहुंचाने में जसपाल राणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खासतौर पर मैंने जिक्र किया कि जो ओलंपिक्स के मेडल जो जिसके लिए हम लगातार इंतजार कर रहे थे, अभिनव बिंद्रा के बाद अगर कोई गोल्ड मेडल लेकर आ पाया वो थी मनु भाकर और उनके पीछे जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जिस उस मैदान तक अगर किसी ने वहां तक मनु को पहुंचाया वो जसपाल राणा थे। जसपाल राणा, मुझे याद है जब टोक्यो ओलंपिक्स में मनु का वो पिस्टल जो है वो खराब हो गई थी, किस तरीके से दोनों ही मनु भाकर एज एथलीट और जसपाल राणा एज कोच वो इस चीज से ऊपर ही नहीं पा रहे थे लेकिन हार नहीं मानी जसपाल राणा ने, तैयारी की और वापस आते हैं पेरिस ओलंपिक जहां पर मनु दो मेडल लेकर जाती, जिसका मतलब ये कि विश्व मानचित्र में भारत को शूटिंग के लिए कहां तक पहुंचाया, जो योगदान रहा जसपाल राणा का वो काबिल तारीफ रहा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं है, आज सुबह उनका निधन हो गया।
0: जी शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं अब एक और बड़ी खबर की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान करते हुए डील की समय सीमा बांध दी है। बड़ी खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वीकेंड में यूरोप के किसी देश में डील पर मुहर लगेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में नहीं होंगे। उनके उपराष्ट्रपति जेडी वैंस डील पर साइन करेंगे। वहीं ईरान ने अभी

0: भावित डील पर दिखाएंगे आपको एक खास कार्यक्रम 10:30 बजे। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। युद्ध से आर्थिक संकट पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, लेकिन युद्ध के अलावा इस बार प्राकृतिक वजहों से भी विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है। एक बहुत ही शक्तिशाली एलनीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने राज्यों से पानी बचाने की अपील की है, जैविक खेती की बात की है। एलनीनो एक मौसम फिनोमेना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित हो जाता है, कहीं सूखा कहीं बाढ़, ऐसे हालात बन जाते हैं।
1: दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है, जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एल नीनो कितना भयानक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एल नीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आम तौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दे, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मानसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
0: और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर एस के ढाका, जो कि पर्यावरण विशेषज्ञ हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर ढाका, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लोगों को सबसे पहले तो ये समझाएं कि ये सिर्फ बारिश के पैटर्न में चेंज होना ही नहीं है, एल नीनो का मतलब कितना बड़ा खतरा है, ये आम लोगों को समझाइए।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज अपने इसमें शामिल किया है शो में, और इसकी जानकारी आम जनता तक जाए ये बेहद जरूरी है। तो मैं आपको ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगा कि जो एल नीनो इवेंट है वो हमारा जो पैसिफिक ओशन है उसके तापमान को बढ़ा देता है, और उसके तापमान में जो नॉर्मल कंडीशंस हैं उसके मुकाबले 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है, उससे ज्यादा भी बढ़ जाता है कभी कभी, और नॉर्मल से नीचे भी चला जाता है, जिसका रिवर्स इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं ला नीनो। इस बार जो है एल नीनो बहुत ही चरम पर जाने वाला है, जिससे बहुत खतरनाक परिणाम हमारे क्लाइमेट के हिसाब से होने वाले हैं। आमतौर पर जो एल नीनो का इफेक्ट है वो भारतीय जो हमारा मॉनसून सिस्टम है, समर मॉनसून सिस्टम, उस पर बिल्कुल उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारी ईस्टर्ली विंड्स हैं, जो ओशंस ट्रॉपिकल जो बेल्ट जिसकी हम बात करें, ट्रॉपिकल बेल्ट में जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो विंड्स जो है ट्रेड विंड्स जिनको हम बोलते हैं, तो ट्रेड विंड्स वीक होने लगती है। वीक होके जो उसका स्प्रेड है हाई टेम्परेचर का, वो ईस्टवर्ड पैसिफिक से जो पेरू की तरफ चला जाता है, और जो हमारे इसके साथ में इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, जो हमारा सर्कुलेशन सिस्टम है, जो इंडियन मॉनसून सिस्टम है, इसको ये वीक कर देता है, क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो मॉइस्चर लेडन जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और लिहाजा इसके जो मॉनसून सिस्टम है वो डिले हो सकता है, उसका जो है ड्राउट की फॉर्मेट में जा सकता है। कई जगह पे नॉर्मल कंडीशंस भी हो सकती हैं, बट ज्यादातर जगहों पे ड्राउट हो सकती है और ये डिले हो सकता है। डिले होने का मतलब है कि जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसकी बुआई और इस पे फर्क पड़ता है। देन जो

0: वाटर रिसोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे, जो आगे आने
1: जी
0: वाले समय में हमारे
1: जी डॉक्टर
0: बहुत जी,
1: ढाका जी,
0: तो
1: शुक्रिया शुक्रिया इस
0: आपके
1: पूरी जानकारी के लिए। तो ड्राउट यानी सूखा, इसका मतलब तो हम सभी जानते हैं कि इसका क्या असर होता है हमारे देश पर। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्र जुड़ गए हैं। और आशुतोष, जाहिर है चिंता की बात है, तो प्रधानमंत्री की बैठक हुई है नीति आयोग की, और उसमें पानी बचाने की अपील राज्यों से की गई है, इससे क्या मदद मिलेगी?
2: सीधा से समझिए कि जब ड्रॉट का असर होगा, क्योंकि मानसून जो दक्षिण पूर्व साउथ वेस्ट मानसून जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम, ये सक्रिय हुआ, ये आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो एक तरफ जहां बाढ़ की स्थिति है वो खतरा मंडराएगा दक्षिण में और पूर्व में, लेकिन पश्चिम के इलाके में, क्योंकि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है, राहत लेके आती है, बारिश लेके आती है, इसको आप एक तरह का ईस्टर्न डिस्टर्बेंस समझ लीजिए। ये अपने साथ जब प्रशांत महासागर की गर्म हवा लेकर के आएगी तो मानसून को कमजोर करेगी, यानी पश्चिम भारत में, मध्य भारत में और उत्तर भारत के इलाकों में जहां मानसून की रफ्तार धीरे धीरे पहुंचती आगे, अगर उसके पहले ये गर्म हवाएं वहां पहुंचती हैं तो हवा की रफ्तार जो है क्या करेगी, बादलों को कम करेगी, यानी मॉनसून के इंपैक्ट को कम करेगी, तो बारिश कम होगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने यह संकेत दिया है कि पहले ही वैश्विक संकट हम झेल रहे हैं, और ऐसे में आप देखेंगे कि जून जुलाई के बाद जो है धान की बुआई शुरू होती है, एक फसल की हार्वेस्टिंग और दूसरे की सोइंग शुरू होगी, तो उसके पहले कोशिश रहेगी कि आप पर्याप्त पानी बचा ले। उसी के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जिन जो चावल के कटोरे हैं अगर वहीं पर पानी की किल्लत होने लगी, पानी कम हुआ, तो आपको धान की बुआई और उसको सस्टेन करना अगस्त सितंबर तक, वो अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए कि नीति आयोग की बैठक में अगर प्रधानमंत्री इस बात को लेकर के सभी राज्यों से कह रहे हैं कि हमें एल नीनो की चुनौती से निपटना है, ये एक साधारण घटना नहीं है। आमतौर पर मौसम जलवायु परिवर्तन की बात ना बहुत किताबों में रह जाती है, लेकिन अगर सरकार इसको लेकर चिंता जता रही है तो वाकई मामला बेहद गंभीर है।
1: जी बिल्कुल आशुतोष, चेतावनी इसीलिए दी जाती है ताकि सब इससे निपटने के लिए तैयार हो जाएं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ये सीधा रुख करते हैं, ममता बैनर्जी के 19 बागियों की एक चिट्ठी अब सामने आ गई है। आज तक को मिली चिट्ठी की कॉपी में 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, इनमें सयानी घोष भी हैं और शताब्दी रॉय भी हैं। तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों ने अलग गुट के रूप में मान्यता के लिए स्पीकर ओम बिरला को पत्र भेजा है, और ये लेटर 18 मई को लोकसभा को स्पीकर को भेजा गया, यानी कि ये डेटेड है 18 मई। इस चिट्ठी में काकोली घोष दस्तीदार, सभी सांसदों की नेता हैं। तो आपको बता दें कि एक चिट्ठी सांसदों की अब सामने आ रही है, ये सांसद बागी बताए जा रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को अलग गुट बता रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चिट्ठी 18 मई की डेटेड है, यानी कि 18 मई की बताई जा रही है। इससे पूरा गणित बदल जाता है, क्योंकि 18 मई से पहले कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप नहीं थे। कौन था नेता संसद में? काकोली घोष दस्तीदार। तो उनके नेतृत्व में ये चिट्ठी गई है, इसमें 19 बागी सांसदों के हस्ताक्षर और नाम सामने आ रहे हैं। तो टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले ही टीएमसी की स्थिति विधायकों को लेकर अच्छी नहीं थी, सांसदों को लेकर खींचतान भी जारी थी, और अब एक चिट्ठी जिसमें कल्याण बनर्जी के चीफ व्हिप होने की बात को दरकिनार किया गया है। तो चलिए आइए इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिर टीएमसी में हो क्या रहा है। ममता से बगावत चल रही है, बागियों की एक चिट्ठी सामने आ गई है, 19 सांसदों की हस्ताक्षर इस चिट्ठी में बताए जा रहे हैं, कल्याण बनर्जी का अल्टीमेटम भी सामने आ गया, अब वो पलटते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं या तो अभिषेक को चुन लीजिए, या फिर पार्टी को चुन लीजिए, या मुझे चुन लीजिए। और साथ में लेकिन कुछ लोग जो खड़े नजर आ रहे हैं उनमें से हैं एक नेता शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने साफ कर दिया है कि मैं ममता दीदी के साथ हूं। कीर्ति आजाद भी डटे हुए हैं और लगातार बयान भी दे रहे हैं और बागियों पर हमलावर भी रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि कौन है ये लोग जो बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। 19 लोगों का नाम काकोली घोष, ये तो अब नेता बनी हुई नजर आ रही है इस चिट्ठी में। इसके अलावा चेहरे दूसरे भी आपको दिखा रहे हैं, जगदीश चंद्र बसुनिया है, खलील रहमान है, यूसुफ पठान जिनको लेकर काफी कंट्रोवर्सी और विवाद भी चल रहा था, अबू ताहिर खान, पार्था भौमिक और बापी हलदर भी इस चिट्ठी में इनका नाम सामने आया है। साथ ही माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, ये सब वो सांसद हैं जिन्होंने अपने हस्ताक्षर इस चिट्ठी में किए हैं। कलिपदा सोरेन, जून मालिया और अरूप चक्रवर्ती भी इस चिट्ठी में नजर आ रहे हैं। तो कई बड़े नाम भी साथ में, शताब्दी रॉय, असित कुमार मल, शर्मिला सरकार, ऐसे नाम भी जो पहले ममता बैनर्जी के साथ नजर आ रहे थे लेकिन अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो रचना बैनर्जी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। कौन कौन है ये सांसद और इन्होंने जो चिट्ठी लिखी, क्या वो 18 मई को स्पीकर तक पहुंच गई थी? काकोली घोष इसके मुताबिक, इस चिट्ठी के मुताबिक उनकी नेता हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू। इंद्रजीत, मेरे ख्याल में चिट्ठी की तारीख बहुत अहम हो जाती है, इससे कई गणित बदल जाती हैं, लेकिन 19 जो सांसद नाम सामने आ रहे हैं, 19 सांसद क्या इस पर टिके हुए हैं कि वो ही हैं जो अब बागी हो रहे हैं और अलग गुट बना रहे हैं?
3: जी हाँ बिल्कुल, अभी तक जितने नाम सामने आए हैं इनको लेके अटकलें लगाई जा रही थी, और आपने देखा कि पिछले 5 दिन में दिल्ली में ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मीटिंग हुए एक के बाद एक, जिसमें अब जिन 19 सांसदों के नाम आ रही हैं उस उनमें से ऐसे कई सांसद हैं जो दिल्ली में दिखे, और जो मीटिंग्स हुए हैं वो भूपेंद्र यादव के घर में हो, जहाँ पे मुख्यमंत्री खुद थे, शुभेंदु अधिकारी, या शताब्दी रे के घर में हो उसी दिन जहां शुभेंदु अधिकारी भी पहुंच गए थे शाम को, वहां पे कुछ सांसद दिखे, कुछ सांसद बाद में दिखे, जैसे शायनी घोष, उनके बारे में ये अटकलें लगाई जा रही थी पिछले 48 घंटे में, और फिर कल वो वापस आई कोलकाता। रचना बैनर्जी अभी भी नहीं दिखी है, वो कहाँ पे है ये कहा जा रहा है कि वो देश में नहीं है इस वक्त, लेकिन उनका सिग्नेचर यहाँ पे दिख रहा है। यूसुफ पठान, वो भी दिल्ली में नहीं दिखे, एटलीस्ट कैमरे पे तो नहीं दिखे, लेकिन उनका सिग्नेचर दिख रहा है। दीपक अधिकारिया देव, जो सुपरस्टार है बांग्ला सिनेमा का, वो भी दिल्ली में उस मीटिंग में नहीं दिखे, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये पता चली थी कि वो थे उस मीटिंग में शताब्दी रे के घर में। अब उनका सिग्नेचर भी आ गया है, लेकिन जब वो कोलकाता में 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के मीटिंग में, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में शामिल हुए, तब उनसे ये पूछा गया था, मीडिया ने उनको पूछा था, तब उन्होंने ये कहा था कि वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है। तो कुल मिला के अब जो पेपर के ऊपर जितने भी सिग्नेचर लोगों के दिख रहे हैं उससे ये लगता है कि एक सबूत मिल चुका है रेबल कैंप को। वो ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए ये सिग्नेचर है स्पीकर के पास, हम लोगों ने ये दिया है, तो ये पुख्ता सबूत उन्होंने अब पेश किया है। तो इससे पता चलता है कि कितने लोग इस तरफ है और कितने लोग उस खेमे में।
1: बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए इंद्रजीत आपका। तो हैरानी कि एक और बात है, ममता बैनर्जी के करीबी माने जाने वाले कल्याण बैनर्जी ने ममता बैनर्जी को अब अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अभिषेक को चुने या फिर उनको चुने ममता दीदी।
4: आई एम फाइटिंग फॉर ममता बैनर्जी, आई एम नॉट फाइटिंग फॉर एनीबॉडी, आई एम फाइटिंग फॉर ममता बैनर्जी एंड फाइटिंग फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द पार्टी कैडर। एंड हु इज ही, सच एन एरोगेंट पर्सन? Everybody one must understand that if for his for Abhishek Banerjee the party has been destroyed today. We have lost it.
5: Everybody is saying this.
4: Everybody is saying. I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata di. I said again. I am saying. I am with Mamata di. But Mamata di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
5: That's an ultimatum.
4: Yes. This is. I leave it to her. Her wisdom.
1: और इस सारी उथल पुथल के बीच ममता बैनर्जी के लिए राहत की बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने ही अंदाज में बागियों को बोल दिया है खामोश। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बैनर्जी के साथ हैं।
6: जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की। ममता जी जो कहेंगी, ममता जी जब तक पार्टी में हूं मैं ममता जी की बात सुनूंगा, और मैं और किसी को नहीं जानता हूं और ना ही किसी को उस रूप में मैं मानता हूं। मैं समझता हूं मेरी भलाई इसी में है कि मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जैसा ममता जी ने मेरा साथ दिया था जब मैं 19 का चुनाव हारा था या हराया गया था, उसके बाद कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था। अकेली ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और मुझे उन्होंने आसनसोल में जाने का निर्देश दिया, इंसिस्ट किया कि मैं चुनाव लड़ूं आसनसोल जहां मैं पहली बार गया और आप लोगों की नजरों में आपने माना भी बहुत लोगों ने कि वो कहावत को चरितार्थ किया कि ही केम ही सॉ एंड ही कॉन्कर्ड। वहां जाके पहली बार भी रिकॉर्ड मतों से जीता, दूसरी बार भी काफी अच्छे मतों से जीत हुई वहां पे। तो मैं इस मामले में ममता जी का साथ दूंगा, उन्होंने हमारा साथ दिया था इस दुख की घड़ी में, इस ममता की ये ममतामयी माँ को ममतामयी दीदी को इस वक्त मुसीबत की घड़ी में मैं साथ नहीं छोड़ सकता हूँ और इसीलिए मैं उनके साथ हूँ बगैर किसी की शिकायत किए हुए, बगैर किसी के खिलाफ कुछ बोले हुए।
1: एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
11: Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
4: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
5: सोच बदलो और बैंक भी।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
6: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
7: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
8: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
9: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
10: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
11: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स
10: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
12: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
13: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
14: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
15: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
13: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
16: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
14: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
13: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
17: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
18: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का।
1: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
2: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
5: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
4: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
6: আমি খুশি একটা কারণে
7: क्या ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल चुकी है? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गयी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमें बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा।
8: अब समय है यूपी एक्सप्रेसवे का, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर है लखनऊ से, जहां शासन की 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे, लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान करेंगे, सर्किट हाउस में ठहरने का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव का दावा है कि 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी, बोले एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच विवाद गहराया, मंत्री ने चेयरमैन पर भर्ती में जाति और धर्म आधारित आरोप लगाए, विभागीय फैसलों और शुल्क को लेकर भी सवाल उठाए। यूपी चुनाव में AIMIM की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, ओवैसी की बहराइच रैली से अभियान की शुरुआत, पश्चिमी यूपी और अवध पर होगा पार्टी का फोकस। फिरोजाबाद के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, जांच में जुटी पुलिस और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन में उस वक्त थे सवार, घटना में सुरक्षित बताए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस और पथराव करने वाले की तलाश जारी है। देवरिया के शिवानंद चौरसिया की समुद्र में मौत, परिवार में मचा कोहराम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास एमटी सेटेबेलो जहाज पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि। अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति का भव्य पथ संचालन, अनुशासित अंदाज में निकली महिलाएं, शहर भर में मार्च करती दिखी सेविकाएं, संगठन की शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन। नोएडा को मिलेगी नई रफ्तार, आज से सड़कों पर दौड़ेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें। सीएम योगी वर्चुअल माध्यम से करेंगे बस सेवा का शुभारंभ, कनेक्टिविटी होगी और मजबूत। संभल में ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद का सरकार पर हमला, सरकारी योजनाओं को लेकर लगाए गए आरोप, कहा मुसलमानों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर्स के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, सभी ट्रेनर्स को पहचान पत्र पहनना होगा, प्रशासन तैयार करेगा उनका डेटाबेस। इटावा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, फिशर फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा की मजार को हटाया गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा के एटीएस रिप्रीव में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत, निर्माणाधीन टावर की 37वीं मंजिल से गिरने के बाद दोनों मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेजा गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन की चपेट में आए दंपति, ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत, हादसे के बाद परिजनों का सड़क पर हंगामा, कार्रवाई के आश्वासन पर खुला जाम। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर बदमाशों का आतंक, कैब रुकवाकर की फायरिंग, हवाई फायरिंग कर महिला के करीब 5,00,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए आरोपी। नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट की 4th मंजिल पर लगी आग, फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में जोरदार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश के चलते शहर की सड़कों पर बड़ी रौनक, लोगों को गर्मी से मिली राहत। सहारनपुर में आंधी के बाद बारिश की धमाकेदार एंट्री, मौसम हुआ सुहाना, तेज तूफानी हवाओं और झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बस्ती में बिजली गिरने से घर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आकर पूरा मकान जलकर खाक, ग्रामीणों ने की बुझाने की कोशिश। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, बारात बस 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आई, करंट लगने से कई यात्री झुलसे, जान बचाने के लिए बस से कूदे लोग। शाहजहांपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर पर बवाल, ग्रामीणों का हंगामा, आरोपी के एनकाउंटर के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भूमि से हटाया गया कब्जा, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण, करोड़ों की जमीन को कराया गया मुक्त। हाथरस में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, सनातन और राजनीति पर साधा निशाना, कहा पार्टियों को सनातनी बनाने की कोशिश गलत है, सरकार पर दिखावे का आरोप।

0: और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। ईरान पर बड़े हमले करने के प्लान पर एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बदल गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देश समझौते पर सहमत हो गए हैं और वीकेंड तक शांति समझौता हो सकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों पर अभी भी ईरान को भरोसा नहीं है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका से अभी तक कोई डील फाइनल नहीं है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान अमेरिका जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहा विवाद खत्म होने वाला है और डील फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है और इसे कुछ ही दिनों में अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए जल्द ही खोल दिया जाएगा।
1: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart.
2: And it'll be soon. Maybe this weekend.
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: And
2: you'll have oil prices dropping like a rock.
0: तो ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक और दावा सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने न सिर्फ परमाणु हथियार विकसित नहीं करने की सहमति जता दी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है और वे कभी भी परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गए हैं, जिस बात पर हमने जोर दिया था। यही तो हमारा मकसद था। तो ये बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप का। और उधर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावों को लेकर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि जंग खत्म करने के समझौते का मुख्य हिस्सा अमेरिका के विरोधाभासी रवैये और उनके आक्रामक रुख पर तय करेगा। समझौते का मसौदा अभी देश की संबंधित संस्थाओं के पास समीक्षा के लिए है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

0: और हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, डोनाल्ड ट्रंप के बयान कभी कुछ आते हैं और कभी कुछ आते हैं, लेकिन बड़ा दावा है ये, वो कह रहे हैं कि वीकेंड तक पीस डील साइन हो जाएगी। क्या कहेंगे इसके बारे में?
1: अंजलि, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, अनलेस इट इज डन इट इज नॉट डन। तो जब तक ये समझौता हो नहीं जाता, तब तक तो सारी चीजें फासले में ही मानी जाएंगी, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीते 2 महीने के ट्रूथ सोशल पोस्ट जरा आप एक बार गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि लगभग 3 दर्जन बार वो इसी तरीके की बातें कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ईरान घुटनों पर आ गया है, ईरान समझौता करना चाहता है, हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, जल्दी समझौता हो जाएगा, अगले हफ्ते समझौता हो जाएगा, हम बेहद करीब हैं। और उसके बाद फिर चीजें हाथ से फिसल जाती हैं, फिर एस्केलेशन पे जाती हैं, एक दूसरे पे बमबारी होती है और एक दूसरे को तबाह करने की बातें कही जाती हैं। तो इसलिए फिलहाल तो ये माना जाएगा कि ये केवल बयान है, लेकिन एक चीज और भी है कि इस बयान को तेहरान के से आए बयानों के साथ जोड़कर पढ़ने की जरूरत है। यानी ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जो अब से थोड़ी देर पहले बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि सहमति के कुछ बिंदु जो हैं वो तय हुए हैं, लेकिन अमेरिका का आक्रामक रुख और अमेरिका के विरोधाभासी बयानों के बावजूद हम इन चीजों को तय करने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जब तक समझौता हो नहीं जाता तब तक इस बात पर आश्वासन नहीं है कि अमेरिका क्या उसका पालन करेगा, और यही एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारी चीजें एक इस हफ्ते के अंत तक बात क्यों की जा रही हैं, उसकी जरा टाइमलाइन समझने की जरूरत है अंजलि, और वो ये कि एक तो 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। ये हर कोई जानता है कि 4 जुलाई न केवल अमेरिका की स्थापना का 250वां वर्षगांठ है, उसकी अमेरिका का जन्मदिन है एक तरीके से 250वां, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है, और ट्रंप की कोशिश है कि उससे पहले ये ईरान का संकट जो है वो खत्म हो जाए, वो उन सवालों के साथ में नहीं जाना चाहते हैं, ये बात हर कोई जानता है। और इसीलिए कोशिश हो रही है कि इस सप्ताहांत यानी जब वो G7 की बैठक के लिए जाएंगे पेरिस के फ्रांस के एवियन में, और जिनेवा में वो लैंड करेंगे, वहां से उन्हें एवियन जाना है एक लेक जिनेवा क्रॉस करके, तो वहां पर ये मुमकिन है कि यूरोप के उनके इस दौरे में ये समझौता हो जाए या इस तरीके के समझौते पर कोई दस्तखत हो जाए या सहमति बन जाए कम से कम, ताकि चरणबद्ध तरीके से उसे लागू किया जा सके। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये संकेत दिया ही है, उन्होंने कहा है कि संभव है कि यूरोप के अंदर ये समझौता हो जाए।
0: जी जी, शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखना है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ये जन्मदिन का तोहफा दे पाते हैं या नहीं। जंग खत्म करने के बयान से पहले ट्रंप ने ईरान पर बड़ा हमला करने की धमकी भी दी थी, जिसको लेकर दुनिया में कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि ट्रंप की धमकी का पलटवार करते हुए ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने सरेंडर करने की बड़ी शर्त रख दी थी।
2: डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की सबसे बड़ी धमकी, हमला हुआ तो विनाशकारी होंगे परिणाम। खाड़ी में अमेरिकी अड्डे का सर्वनाश होगा। खाड़ी में इलॉन मस्क के दफ्तर होंगे निशाना। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगी टारगेट। ईरान का दावा, ट्रंप को करना पड़ेगा सरेंडर। अमेरिकी हमलों का जवाब देते हुए बीते 48 घंटों में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की। दावा यही है कि ईरानी हमलों ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही मचाई है। ये सिर्फ ट्रेलर है, अगर अमेरिका ने कोई नई हिमाकत की तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की तबाही का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बाद ईरान के सांसद इब्राहिम रिजाई ने दावा करते हुए बड़ी भविष्यवाणी की है। इस लड़ाई में निसंदेह अमेरिका को ही आत्मसमर्पण करना होगा। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या उन्हें हार माननी होगी। यही नहीं, ईरान ने मिडल ईस्ट में अमेरिकी उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी से जुड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि इजराइल, कतर, जॉर्डन, यूएई और ओमान में मौजूद स्टारलिंक ग्राउंड स्टेशन, साथ ही स्पेसएक्स से जुड़े प्रतिष्ठान जिसमें अल्फा धाबी और मुबाडाला शामिल हैं, ये ईरान की टॉप हिट लिस्ट पर हैं। ईरान के एक वरिष्ठ सांसद ने भी ट्रंप को सीधी धमकी दी है। अगला युद्ध इस इलाके से बाहर भी फैलेगा। ट्रंप को यह समझना होगा कि कोई भी नया हमला इस इलाके तक अब सीमित नहीं रहेगा। हम लड़ने से नहीं डरते, देखते हैं क्या होता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी नए हमले को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी लोग पहाड़ों की तरह अडिग और दृढ़ खड़े हैं और उन्होंने ईरान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमारे लोगों को ट्रंप या इस तरह के भ्रष्ट लोगों से मिलने वाली धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी राष्ट्र अपने धर्म और मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान में ही गरिमा और मुक्ति का सच्चा अर्थ देखते हैं। अमेरिका और उसके दुष्ट राष्ट्रपति को ये समझना चाहिए कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं कभी भी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएंगी। ईश्वर की कृपा से ईरान पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। किसी भी दुश्मन के आक्रमण का करारा और विनाशकारी जवाब देने के लिए हमारे लोगों और सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ईरानी सेना के टॉप कमांडरों के साथ पीस डील को लेकर बातचीत की बात कही थी। IRGC ने दावा किया है कि अमेरिका के साथ पीस डील को लेकर कोई बातचीत नहीं चल रही है, न तो पीस डील फाइनल होने के एकदम करीब है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका के साथ किसी पीस डील का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ट्रंप भरोसे के काबिल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के वित्त मंत्री बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान अगर मिडल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करता है तो नुकसान की भरपाई ईरानी खातों से की जाएगी। मतलब साफ है कि ईरान किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार नहीं है। ईरान की नीति और नियत यही है कि अमेरिका के खिलाफ आखिरी दम तक युद्ध लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो।
0: और बड़ी खबर, ईरान और अमेरिका के बीच डील और नो डील के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का यह बड़ा दावा अमेरिकी सेना द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने रात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहे कमर्शियल शिप्स को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिकी बलों ने ईरान के दो वन वे अटैक ड्रोन्स मार गिराए हैं और उनका दावा है कि अभी ट्रैफिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सामान्य है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
5: Tune In is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
6: I have no idea how this election is going to play out,
5: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
7: Sokudo.
8: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
9: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
10: सोच बदलो और बैंक भी।
11: शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं TMC में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
12: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मैं मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथाकथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है। मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भला ही सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण लिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: From the biggest names in sports talk to the biggest moments in sports, this is NBC Sports Radio. Get your daily football fix with Mike Florio. Spend your mornings with Dan Patrick and the Danettes. And dive deep with Dan Le Batard. Live, unfiltered, and always on Monday through Friday. Then when the games are on, we've got you covered with live events from NBC Sports. Search NBC Sports Radio or tell your device to play NBC Sports Radio on TuneIn to listen.
3: Such an arrogant person. Everybody one must understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
4: Everybody is saying this.
3: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamutadi. I said, again I am saying, I am with Mamutadi. But Mamutadi has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
4: That's an ultimatum.
3: Yes. This is, I leave it to her.
5: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
6: Whenever they made this, Didi was so beautiful. Didi, your saree is so nice.
5: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
7: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में देखा जाएगा।
8: These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji went and met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji. Routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
5: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
9: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
10: अच्छा कर रहा
5: है। बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Stay locked in to the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: फोन की घंटी बजती है, एक मैसेज आता है, किसी लिंक पर क्लिक होता है और कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। साइबर ठगी का जाल इतना बड़ा हो चुका है कि अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लोगों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि इस खेल में विदेशी गैंग, फर्जी सिम कार्ड और किराए के बैंक खाते बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। डेटा के मुताबिक सालाना साइबर अपराध 1 लाख के करीब पहुंच गए हैं, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, फर्जी निवेश स्कीम और डिजिटल ठगी सबसे बड़ी चुनौती हैं। कई मामलों में विदेशी नेटवर्क भारतीय सिम और बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि 36,000 भारतीय सिम कार्ड कंबोडिया से ऑपरेट किए जा रहे थे। इनमें 5,300 सिम कार्ड तो सीधे साइबर फ्रॉड मामलों से जुड़े मिले हैं। ये सिम ग्राहकों के दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके एक्टिवेट किए गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक इन सिम कार्ड्स का इस्तेमाल व्हाट्सएप कॉल्स और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को फंसाने में किया जा रहा था। साइबर अपराधी ठगी की रकम इधर उधर भेजने के लिए म्यूल अकाउंट का यूज करते हैं। हाल ही में गुजरात में करीब 398 करोड़ रुपए के साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिनमें 228 साइबर शिकायतों से जुड़े बैंक खातों की पहचान की गई है। इसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो कई खातों के जरिए ठगी की रकम देश भर में ट्रांसफर कर रहे थे। जांच में सामने आया कि कुछ लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर फर्म और बैंक खाते खुलवाए गए। बाद में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग की जानकारी साइबर गिरोहों तक पहुंचा दी गई। इसके बाद ये खाते ठगी के पैसों को छिपाने का जरिया बने। लगातार बढ़ते साइबर फ्रॉड के बीच पीड़ितों को राहत देने की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके तहत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत करने वालों को राहत मिलेगी। वहीं कई मामलों में ऑनलाइन रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है। फ्रॉड की रकम फ्रीज होने पर पैसा वापस मिलने का रास्ता आसान हो जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक हुई है, उतनी ही सतर्कता भी मांगती है। साइबर सुरक्षा अब एजेंसियों की जिम्मेदारी भर नहीं, बल्कि हर मोबाइल यूजर की पहली जरूरत बन चुकी है। आदित्य के राणा आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: खत 18 मई को स्पीकर को लिखे खत में 19 सांसदों के हस्ताक्षर, बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ विप बनाने से पहले अलग गुट की मांग।
1: फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीआईडी ने की पूछताछ। 5.5 घंटे के सवाल जवाब के दौरान कई बार भड़के अभिषेक, पार्टी में खुलेआम असंतोष से बड़ी मुश्किलें।
0: एमपी के तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, आज सुनवाई कोर्ट में, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा।
1: ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न, बोले हमले का प्लान फिलहाल स्थगित, हफ्ते के अंत तक डील की जताई उम्मीद, सुप्रीम लीडर की सहमति का भी दावा, ईरान ने नहीं खोले अपने पत्ते।
0: खेल प्रेमियों के लिए बेहद दुखद खबर, मशहूर शूटर जसपाल राणा का निधन, जर्मनी से लौटने के बाद बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस।

0: मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का हुआ निधन। 49 साल की उम्र में जसपाल राणा ने ली आखिरी सांस। करीब एक हफ्ते से दिल्ली के अस्पताल में थे भर्ती। जर्मनी से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ने की खबर। ओलंपियन जसपाल राणा ने 1996 से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का किया प्रतिनिधित्व। कई बड़ी उपलब्धियां दर्ज। अर्जुन पुरस्कार, पद्मश्री और द्रोणाचार्य से सम्मानित जसपाल राणा। खेल और कोचिंग दोनों में बेमिसाल योगदान। खिलाड़ी के बाद कोच के रूप में जसपाल राणा की अहम भूमिका। मनु भाकर और सौरभ चौधरी के कोच थे जसपाल राणा। लखनऊ में 12 साल के शासन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर होगा फोकस। मुख्यमंत्री योगी आज वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान सर्किट हाउस में ठहरने का कार्यक्रम। अखिलेश यादव का दावा, 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। बोले एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच विवाद गहराया। भर्ती में जाति धर्म आधारित आरोपों से मचा सियासी घमासान। विभागीय फैसलों और शुल्क को लेकर ऊर्जा मंत्री के गंभीर सवाल। पावर कॉरपोरेशन चेयरमैन पर भी लगे आरोप।
1: टीएमसी में बगावत तेज। अलग संसदीय गुट के समर्थन में सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने का दावा। स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र से बड़ी सियासी हलचल। टीएमसी के भीतर अलग गुट बनाने की कवायद। बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ विप बनाने से पहले अलग गुट की मांग। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी एआईएमएम। बहराइच से वैसी करेंगे शंखनाथ। 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिमी यूपी और अवध पर एआईएमआईएम का फोकस। बसपा से गठबंधन की संभावनाओं के बीच संगठन विस्तार तेज। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी से सीआईडी की लंबी पूछताछ। जांच के दौरान तीखी बहस की खबर। टीएमसी में अंदरूनी तनाव बढ़ा। पूछताछ के दौरान अभिषेक बैनर्जी के भड़कने की बात। एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत। सियासी घमासान। राहुल गांधी ने लगाया सीट चोरी का आरोप। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बवाल। बीजेपी जीत के बाद विपक्ष का आरोप। चुनाव आयोग की मिली भगत से हार।
0: मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। कहा वास्तविक कानूनी उपाय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका दायर करना। मीनाक्षी नटराजन विवाद मामले में आज कांग्रेस का हल्ला बोल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता आज दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर उठाए सवाल। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हालत ही खराब कर दी। जामनगर में राज्य मंत्री रिवाबा जडेजा ने बच्चों के साथ गुजारा समय। सरकारी विद्यालय का किया दौरा। कक्षाओं का किया निरीक्षण। छात्राओं के बीच बैठकर उनसे पढ़ाई करवाई। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के सीएम की चर्चा। बैठक में 28 राजों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। डीके शिवकुमार, उमर अब्दुल्ला, जोसेफ विजय और रेवंत रेड्डी ने की पीएम से मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीते। स्वास्थ्य मंत्री निषाद कुमार भी बने एमएलसी।

0: के बीच नागपुर में पड़ रही है गर्मी, पठानकोट में तेज तूफान, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर टूटकर गिरे पड़े हैं कुछ पेड़, कुछ देर के लिए यातायात हुआ बाधित, कोई हताहत नहीं। केरलम में तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज। हमीरपुर की बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक आया पानी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने डूब रहे दो लोगों को किया रेस्क्यू। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोनमर्ग के मशहूर थाजीवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट, 95% बर्फ खत्म।
1: हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, ओलावृष्टि के साथ आंधी तूफान की संभावना, 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में मौसम ने बदली करवट, झमाझम बारिश के साथ जोरदार ठंड। कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए जारी की गई चेतावनी, मौसम विभाग ने राज्य में 17 जून तक बारिश के दौर जारी रहने का जताया अनुमान। जबरदस्त ठंड के बीच दर्शन को उमड़ रहे श्रद्धालु, जून का आधा महीना बीतने के बावजूद पहाड़ों में ऊंचाई वाली चोटियों पर अब भी बर्फबारी का दौर जारी। उत्तराखंड में मुश्किल मौसम पर श्रद्धालुओं की आस्था भारी, लगातार बारिश, बर्फीली हवाओं और जोखिम भरे रास्तों से होते हुए दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली के तुगलकाबाद की इमारत में भीषण आग, 2 महिलाओं की मौत, 5 महिलाओं को बचाया गया। दिल्ली के तुगलकाबाद में बेसन से भड़की आग ने 2 मंजिलों को चपेट में लिया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सीकर में स्मार्ट मीटर बदलने के दौरान बिजली निगम कर्मचारियों से मारपीट, टेक्निकल असिस्टेंट का हाथ फ्रैक्चर। बिहार के सासाराम में गाय के बच्चे को लेकर जा रहे 2 युवकों की ग्रामीणों ने की पिटाई, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार।
0: सोनीपत में आपसी रंजिश की वजह से शराब व्यापारी पर चली गोलियां, पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज, फायरिंग में कोई हताहत नहीं। अलवर में पुलिस थाने में गाड़ी छुड़वाने के लिए पहुंचे युवक ने थाने के अंदर बनाई रील, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। सूरत में पुलिस वाले ने 7वीं मंजिल की ग्रिल पर चढ़कर बचाई आदमी की जान, बचाव का वीडियो हुआ वायरल। पटना में जिम जा रही महिला से हथियार के बल पर चेन की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। थाने में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद के नंदीग्राम में इंक गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की सात गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। महसाणा एपीएमसी सब्जी मंडी में लगी आग पर पाया गया काबू, एक साथ 6 दुकानों के शेड में लगी थी भयंकर आग, शेड में खड़े 2 ट्रक भी जलकर हुए खाक। चमोली में मूसा पानी के पास रास्ता भटका 15 सदस्यीय ट्रेकिंग दल, बारिश और घने कोहरे के बीच एसटीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पठानकोट में तेज तूफान का कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के पास टूटे पेड़, नेशनल हाईवे हुआ जाम। ग्रेटर नोएडा स्थित सेक्टर 152 में निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर 2 कामगारों की मौत, सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ हादसा।
1: किशनगंज में मां ने मात्र 2 लाख रुपए में किया नाबालिग बेटी का सौदा, युवक ने बंधक बनाकर किया रेप, पिता ने पुलिस की मदद से बेटी को रिहा कराया। झांसी में पुलिस मुठभेड़ में कारोबारी से 10 लाख की ठगी का मामला, ठग गिरफ्तार, 6 लाख रुपए कैश बरामद। गाजियाबाद के लोनी में 21 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। दिल्ली के स्वरूप नगर थाना इलाके में पुलिस रेड में भयभीत साउथ अफ्रीकन मूल की महिला ने छत से लगाई छलांग, मौके पर मौत। फरीदकोट में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, 2 बच्चों और पिता की मौत। वडोदरा में पुलिस की कार्रवाई, 20 करोड़ के चमत्कारी सुलेमानी पत्थर के नाम पर ठगने वाले गिरोह को पकड़ा गया। गाजीपुर में नाबालिग भांजे की हत्या में मामा को फांसी की सजा, 2021 में मामली घरेलू विवाद में मामा ने धारदार हथियार से की थी हत्या। सुल्तानपुर में जाति विशेष के युवक से अभद्रता, जबरदस्ती लगवाए गए नारे, वीडियो वायरल। जलौर में आवारा सांड का आतंक, पैदल जा रहे 2 बुजुर्ग व्यक्तियों को बनाया शिकार। पाली में नाकेबंदी में पुलिस पर तस्करों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 1 तस्कर घायल, 2 गिरफ्तार। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप से पहले मैच में सेम मेजबान मेक्सिको ने जीत से की शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको में जूलियन क्विनोन्स ने पहले हाफ में स्ट्राइक कर गोल किया और फिर राउल जेमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका की टीम को 2-0 से हराया। मेक्सिको सिटी के एसडेका स्टेडियम में रेफरी ने 3 रेड कार्ड दिए, साउथ अफ्रीका के स्पेफेलो सिथोले और थेम्बा ज्वाने को रेड कार्ड मिला। धर्मशाला पहुंची भारत की वनडे क्रिकेट टीम, 13 जून को सीरीज का पहला मुकाबला। अफगानिस्तान की वनडे टीम धर्मशाला में मौजूद, 3 मैच

वैकेंसी। आज से विमेंस टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप का होगा आगाज, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है ये टूर्नामेंट। पहली बार दुनिया में 12 देश खेल रहे हैं, खेले जाएंगे कुल 33 मैच। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में है दोनों टीमें। पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर भारत करेगा वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत। पहली बार विमेंस टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा नीदरलैंड्स। टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में बनाई अपनी जगह। डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक बदला ईरान पर हमले का प्लान, कहा दोनों देश डील के बेहद करीब, पहले तेहरान पर सबसे बड़ी हमले की दी थी धमकी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द करेंगे ऐलान, सभी पक्षों से चर्चाएं की अंतिम बिंदुओं की सभी पक्षों से चर्चाएं की और अंतिम बिंदुओं को दी मंजूरी। ईरान ने हॉर्मूज को लेकर कही बड़ी बात, कहा अगले देश आदेश तक बंद रहेगा हॉर्मूज स्ट्रेट। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। अमेरिका ने कहा नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से होगी। ईरान ने अमेरिका के 3 सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने का किया दावा। ईरानी सेना ने कहा सॉलिड फ्यूल मिसाइल से किया गया ये अटैक।

0: और बात करेंगे महाराष्ट्र के जालना की, जहां अंबा शहर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर दो गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मारपीट के बाद से ही अंबा पुलिस स्टेशन में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो गया है, जांच चल रही है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों गुट के लोग एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे पर पत्थर भी फेंक रहे हैं। इस झगड़े की असल वजह अभी सामने नहीं आई, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों गुटों के बीच पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है।
1: तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं उसी झड़प की, दो गुट आपस में लड़ पड़े, भिड़ पड़े और लात घूंसे पत्थरबाजी सब होता हुआ नजर आया, और जिसकी तस्वीरें ये कैद की गई और इस वक्त आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। पुरानी रंजिश बताई जा रही है कि ये हो सकती है वजह। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी मुस्तफा शेख। मुस्तफा, तस्वीरें देख रहे हैं काफी सारे लोग एक साथ जुटे हुए, ये दो गुट कौन से थे, क्या वजह रही इस लड़ाई की?
2: जी, अभी तक ये बात पता नहीं चल पाई है कि किस वजह से ये आप कह सकते हैं कि विवाद हुआ है, लेकिन ये विवाद क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर हुआ है, मरीजों पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ा। उनके जो करीबी है वो एक तरह से परेशान हो गए कि हॉस्पिटल जैसी जगह पे इस तरह का विवाद हो रहा है। माना यह जा रहा है कि किसी पुराने विवाद को लेकर के इन दो गुटों में मारामारी हुई है, पत्थर फेंक गया है, लेकिन जिस लोकेशन के बाहर हुआ है वो एक तरह से आप कह सकते हैं काफी फिक्र करने वाला है। पुलिस ने अभी तक 15 लोगों को इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं इनके ऊपर केस दर्ज किया है। अंबड़ पुलिस स्टेशन जालना का जो है उसमें ये केस रजिस्टर किया गया है, और कल दोपहर की ये घटना है हॉस्पिटल जालना जो है उसमें ये मारामारी।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए आपका। बात गुजरात के जामनगर की, जहां के बेदी इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है, और इस दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही, स्थानीय स्तर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई यहां पर बुलडोजर एक्शन की मानी जा रही है। इससे पहले भी वहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चल चुका है, एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर चला है। जामनगर का बेदी एरिया बताया जा रहा है, जहां पर अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर, कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की गई।
1: और अब बात करते हैं दिल्ली के जगतपुर इलाके की, जहां जगतपुर के ओजोन क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है। खबर आ रही है कि प्रशासन की कार्रवाई से पहले जगतपुर इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के बाद, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के निर्देशों के बाद, डीडीए ने, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, यमुना के संरक्षित ओ जोन इलाके से अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, इस वक्त वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि जब कार्रवाई हो किसी तरह की वहां बाधा ना आए या किसी तरह का गुस्सा ना फूटे, उसके लिए वहां पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं।
0: और अब बात एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश करेंगे। इसको एक साल हो गए, उस क्रैश में 260 लोगों की जान गई थी। आज भी वो खौफनाक मंजर उन लोगों के दिलो दिमाग में कैद है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया।
3: सिर्फ 32 सेकंड और लोगों की दुनिया बदल गई। जिनकी वापसी के इंतजार में परिवार के लोग पलक पावड़े बिछा कर बैठे थे, हादसे के बाद उन्हीं के अंतिम अवशेष खोजने पड़े। जैसे जैसे वक्त गुजरा, AI-171 की उड़ान के वो जानलेवा 32 सेकंड दिल के किसी कोने में ठहर गए। लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। 12 जून 2025 को वो लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के भीतर ही उनकी बहन सुनीता, उनके भतीजे, भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
4: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
3: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन एक चमत्कार भी हुआ। ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार आपातकालीन निकास द्वार के पास सीट 11A पर बैठे थे। विमान के ढांचे में हुए छेद से वो बच निकलने में कामयाब रहे। ब्रजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Such an ordinary thing to walk home from high school. Her name was Mickey Costanzo, just 16. She didn't have far to go, seemed perfectly safe, until it wasn't. What happened to Mickey? I'm Keith Morrison, and this is 5 Miles from Home, an all-new podcast from Dateline.
8: To listen to the latest episodes each week completely free, search 5 Miles from Home on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
2: आगे आगे, उधर उधर, करेक्ट करेक्ट।
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
5: सोच बदलो और बैंक भी।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: In association with
8: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, life बनाए wonderful।
7: Hint, बड़े आराम से
8: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
7: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
9: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
10: पत्रकारिता के गुर यहाँ नहीं सीखे तो क्या सीखे, नाम ही काफी है। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
3: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: EU करेंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: EU सोच बदलो और बैंक भी।
7: आगे आगे
8: उधर
7: उधर
8: करेक्ट करेक्ट
9: मिल गया।
10: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके लिए 1-2 साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई, अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था। एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है, जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा। अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बागियों का खत 18 मई को स्पीकर को लिखे खत में निंदित सांसदों के हस्ताक्षर, बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से पहले अलग गुट की मांग।
1: फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीआईडी ने की पूछताछ। 5.5 घंटे के सवाल जवाब के दौरान कई बार भड़के अभिषेक, पार्टी में खुलेआम असंतोष से बड़ी मुश्किलें।
0: एमपी की तीनों राज्यसभा सीट पर बीजेपी की जीत से भड़के राहुल, कहा चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट चोरी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा।

0: का कानूनी इम्तिहान दिल्ली हाई कोर्ट में दो अलग अलग मामलों में आज सुनवाई। अरबी छात्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी विचार।
1: बिहार के बेगूसराय में खौफनाक सड़क हादसा, चलती ट्रक से टकराई पुलिस की कार, पटना से लौट रहे तीन एसएचओ की मौके पर मौत।

0: और एक और 11 केसेस में बात कुछ बड़े राजनीतिक खबरों की करेंगे, जिसमें खास तौर पर चर्चा करेंगे टीएमसी मचे कोहराम की।
1: ममता बैनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में बगावत की पटकथा का लेखक मिल गया है। ये कोई एक या दो दिन में नहीं हुआ है, हफ्तों से ये प्लान बन चुका था। पूरी बात को समझिए, 4 मई को बंगाल में नतीजे आते हैं, तस्वीर बदल जाती है। 18 मई को बगावत का प्लान बनता है, 19 सांसद लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखते हैं।
0: 20 मई को ममता को बनक लगी तो उन्होंने चीफ व्हिप दल दिया, लेकिन कल्याण बैनर्जी ने भी कल बगावत का बिगुल फूंक दिया है।
1: और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बड़ा बयान दिया है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि डरा धमका कर सांसदों को तोड़ रही है बीजेपी।
0: उन्होंने दावा किया कि जरूरत नहीं, उन्हें पैसे देकर खरीद लिया गया है। 10 लाख से 5 करोड़ तक कीमत लगाई गई है। इस ऑफर की बात कीर्ति आजाद खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये दरअसल बहुत पहले से प्लानिंग की गई थी, जो डर गए वो पाला बदल कर चले गए, डरा धमका कर उन्हें अपने पाले में शामिल कर लिया गया है।
2: यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं, जबकि ये एयर गन है। किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
3: देखिए, मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ। बीजेपी का कोई गुंडा उंडा आ गया, कुछ अटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। मैं केवल ये नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है। हटा लिया। जिस तरीके से 5 एमपीओ का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए, उनके परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया, कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए, उसके बाद में वो डर गए, डर करके चले गए। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील भी, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे, उनकी भी डील वहीं हुई। भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले, वो 8 ही लोगों ने साइन किया था। आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है, जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है, बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है। उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था। कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए, जिस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया था, तो उस पर CBI लगा दी थी, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी, दस्तीदार, तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा, भाई CBI ED क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, 3-4 लोगों ने 2 मांगे 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपये महीना हमें सेट कर दीजिए, तो उसके घर से ही खबर मिलती है।
1: और हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। जितेंद्र, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कीर्ति आजाद।
4: बिल्कुल, कीर्ति आजाद आरोप लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो आरोप उनका लगाया गया है, एक तो आरोप वो सुरक्षा को लेकर के लगा रहे हैं कि सुरक्षा उनकी भी हटा ली गई है, इस तरीके की बात उन्होंने कहा है। और तस्वीरों में हमने देखा कि एयर गन लेकर के वो बैठे हुए हैं, जिसमें वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सुरक्षा हटाई गई है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं।
0: और यही महत्वपूर्ण ये सवाल नहीं है कि ये जो ऑफर प्राइस उन्होंने कोट किया है 10 लाख से 5 करोड़, ये आंकड़ा आया कहां से, किस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये कीमत लगाकर उनके सांसदों को पाला बदलवाया गया है।
4: और देखिए, ये आंकड़ा तो कीर्ति आजाद ही बता सकते हैं कि उनके पास आधिकारिक तौर पर कहां से आया है, किस तरीके से वो इस आंकड़े को अपने पास उनके पास पहुंचा और उसके बाद उसको वो पेश कर रहे हैं ऑन एयर। ये जानकारी वो दे रहे हैं कि लोगों की, सांसदों की सुरक्षा हटा करके उनको धमकाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पैसे का ऑफर दिया गया, तो एक तरीके की कीर्ति आजाद के द्वारा इस तरीके के आरोप बीजेपी के ऊपर बड़े स्तर पर लगाए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस चलाएगा, लेकिन अब बीजेपी इसको लेकर के किस तरीके का बयान देती है ये देखना होगा। पर कीर्ति आजाद,
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका जितेंद्र। तो 18 मई को ही टीएमसी विरोधी खेमा बन चुका था, और ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में सब इकट्ठा हो गया और दस्तखत उन्होंने कर दिए, 19 सांसदों के हस्ताक्षर में कुछ समय लगा है।
1: इन सांसदों की अगुआ बनी काकोली घोष दस्तीदार, क्योंकि वो उस वक्त चीफ व्हिप थी। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सांसदों ने एनडीए खेमे के साथ रहने की बात कही है।

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे, कौन से आरोप?
2: रिबेल,
1: आप ये तो रिबेल कहाँ से हो गए, भगोड़े हैं। रिबेल कहाँ से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं।
3: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया, बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसमें सयानी घोष का नाम नहीं था, सयानी घोष ने बाद में पाला बदलने का प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयानी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर उस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: और बात कांग्रेस की, मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द करने के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है।
5: नटराजन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी करेंगे। कांग्रेस का आरोप है कि जानबूझकर साजिश के तहत नटराजन का नामांकन रद्द किया गया और अब कांग्रेस सड़क पर है, कोर्ट में कानूनी लड़ाई और सड़क पर सियासी लड़ाई।

0: महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल। मध्य प्रदेश से ये तीनों बीजेपी उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुन लिए गए। तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल का चुना जाना तय था, लेकिन लड़ाई तीसरी सीट की थी, जहां बीजेपी के महेश केवट और कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन आमने सामने थी। लेकिन चुनाव हुआ ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया था। 11 मई को मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट तक गई। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया, जिसके बाद तय समय पर नतीजे घोषित कर दिए गए और बीजेपी के सभी तीनों उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच गए। इस विवादित जीत के बाद तीनों विजेताओं ने जीत का सर्टिफिकेट लिया और सीधे मध्य प्रदेश बीजेपी ऑफिस निकल गए। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हुआ तो कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन तत्काल राहत नहीं मिली। कल जब नतीजे घोषित हुए तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने चुनाव शुरू होने से पहले ही सीट चोरी का खेल पूरा कर दिया है। हाल के राज्यसभा चुनावों में जो हुआ उसे देखिए। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी ने सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए थे, उनके खिलाफ कोई लंबित मामला भी नहीं था, फिर भी चुनाव आयोग ने भाजपा की एक तुच्छ आपत्ति के आधार पर उनका नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस आग बबूला है, बीजेपी और चुनाव आयोग पर गुस्सा उतार रही है। कांग्रेस का तर्क है कि जो केस रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसके आधार पर नामांकन कैसे रद्द कर सकते हैं।
1: शुद्ध रूप से ये हमारी सीट चुराई हुई है इन्होंने।
2: इसका मतलब लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का प्रयास की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को नहीं मानती, उसने ये स्पष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश का चुनाव हिटलर और काले अध्याय में दर्ज होगा। तानाशाही का जो रवैया मध्य प्रदेश की सरकार के और उन अधिकारियों ने किया है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के नक्षत्र मान पर काला धब्बा है।
0: नामांकन रद्द से नाराज कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली से भोपाल तक विरोध प्रदर्शन किया। आज भी भोपाल से दिल्ली तक आंदोलन की धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता आज राष्ट्रपति भवन जाकर महामहिम से मिलने की कोशिश करेंगे। अगर राष्ट्रपति मुर्मू से मिलने का समय नहीं मिला तो कांग्रेस का प्लान है कि वो राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई भी है। अभिषेक मनु सिंघवी कल कोर्ट गए थे, लेकिन उनकी दलील पर कोई निर्देश नहीं आया। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर से ये मामला खुलेगा। कांग्रेस पार्टी अब सड़क पर है, निशाने पर बीजेपी और चुनाव आयोग है। आरोप सीधा है कि एक देश में एक ही तरह के मामले के लिए दो कानून कैसे हो सकते हैं। झारखंड में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को समय देकर पर्चा ठीक करवाया जा सकता है, तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार को समय क्यों नहीं दिया गया। आज तक ब्यूरो।
3: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। रवीश, जो मीनाक्षी नटराजन का केस है, ये वन ऑफ अ काइंड है या इस तरह के मामले में पहले भी फैसले आ चुके हैं और उसी को संज्ञान में लेते हुए कोर्ट का आज का फैसला भी आएगा?
4: देखिए, कांग्रेस का तो दावा यह है कि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और उसका दावा है कि अब तक जितने भी उसके सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने और इतने नामांकन अब तक भरे जा चुके हैं, पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जहां एक ऐसे प्रकरण को जो कि नोटिस तक ही सीमित है उसे मुद्दा बना करके नामांकन को रद्द किया गया। कांग्रेस ने बकायदा इसके लिए चुनाव आयोग में पहले मुलाकात की, चुनाव आयोग से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी, उसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखता है, क्योंकि चुनाव आयोग के सामने परेशानी यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो फैसला कर लेता है 99% मामलों में चुनाव आयोग उसमें दखल नहीं देता है, यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर ने कर दिया वो अंतिम माना जाता है, मान्य माना जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला लेता है, देखने वाली बात होगी। इन सबके बीच में बड़ी खबर क्या है, बड़ी खबर यह है कि जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है तो एक दिन पहले ही बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जो हैं उन्हें जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस दिल्ली में रहकर के आज प्रदर्शन, राष्ट्रपति से मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस की रणनीति पे काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के तीनों उम्मीदवार जीत का सर्टिफिकेट लेकर अपने अपने घर जा चुके हैं। तो ये बताता है कि जो कांग्रेस मांग कर रही थी सुप्रीम कोर्ट से कम रिटर्निंग ऑफिसर को यही आदेश दे दिया जाए कि सुनवाई से पहले वो जीत का सर्टिफिकेट ना दे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो उससे तकरीबन आप ये मान के चलिए 24 घंटे पहले ही बीजेपी की तीनों उम्मीदवार सर्टिफिकेट लेकर
5: इस वक्त मीनाक्षी नटराजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, ये सीधा वहीं का रुख करते हैं।
6: ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ECI को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा। वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में, आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी।
3: और अब बात राहुल गांधी के इस बयान की जिससे राजनीतिक गलियारों में पारा बढ़ गया है। कांग्रेस की एक बैठक में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी ने मरवा दिया है।
5: बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और कांग्रेस के कई बड़े नेता थे। राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर है।
7: की तपती गर्मी के बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी के 12 साल का जश्न है, सबसे लंबे कार्यकाल का महोत्सव है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्लान। और इसी प्लान को बनाने के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष फिर टकराने के लिए तैयार है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की बड़ी बैठक थी जिसका एजेंडा था नीट में धांधली, परीक्षाओं के पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग विवाद, किसान और महंगाई। इन्हीं मुद्दों पर रणनीति बनाने में कांग्रेस का मंथन चल रहा था। इसी दौरान बैठक में राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने मरवा दिया। राहुल का इशारा देश के युवाओं, छात्रों और किसानों की उस बदहाली की तरफ था जो सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बेरोजगारी युवाओं को खाए जा रही है, पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधकार में है और अमेरिकी ट्रेड डील ने किसानों को संकट में डाल दिया है। राहुल ने दावा किया कि गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक साल में हालात और खराब होंगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी से बीजेपी आग बबूला है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला तो वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी का बयान को सही ठहराया।
8: अरे कैसी बात कर रहे हो और कैसे होना चाहिए, मरवा दिया, फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? मरवा तो दिया ही, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बाहर जो लोग रोजगार के अंदर गए वो परेशान है। आप स्थिति समझिए ना, क्या है, मिडिल ईस्ट की जंग से किसको नुकसान हो रहा है, कितने लोग मिडिल ईस्ट में हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चूल हिला दिया आपने, देश की अर्थव्यवस्था की चूल हिल गई है। कितने लोग हैं बाहर, 1 करोड़ लोग हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, कैलकुलेट कर लीजिए। मिनिमम सैलरी 2000 है और 2000 से 50,000 दिरहम तक सैलरी है जो पर मंथ आती है। कितना पैसा आ रहा है, 1,00,000 करोड़ रुपया महीने का जो इफेक्ट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी की चूल हिला करके रख दी और आप कह रहे हैं मरवाया नहीं, मर गया आदमी, सांस लेना दूभर हो रहा है भाई।
7: 2027 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उससे ठीक पहले मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करने में जुटे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, पंजाब का प्लान, यूपी नेताओं से मंथन। राहुल गांधी इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी को आजमाना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 महीने के देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस का एजेंडा है कि अगले 2 महीने तक देश के हर कोने में युवाओं के मुद्दे को उठाया जाए। राहुल गांधी का मकसद साफ है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंटफुट पर आकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
5: वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
9: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
10: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
11: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
12: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
13: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena.
14: La Que Buena.
13: ESPN Radio.
15: We know LeBron has to be the best player on the planet to
13: get The Daily.
16: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
13: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.

0: ममता दीदी बड़ी मझधार में फंसी, घर यानी पार्टी में आग लगी है, बाहर टीएमसी पर सिर्फ अंडे बरस रहे। इस मुसीबत की घड़ी में एक मदद का हाथ उनकी ओर बढ़ा तो मुसीबत में मोहब्बत की दुकान में मर्जर तक बात पहुंच गई। ममता बनर्जी के पास पार्टी बचाने का रास्ता हर गुजरते घंटे के साथ बंद होता दिख रहा है। अब तो कल्याण बनर्जी तक ने अल्टीमेटम दे दिया, कहा अभिषेक नहीं चुनाव हराया, अभिषेक नहीं पार्टी का नाश किया, अब ममता या तो पार्टी चुन ले या भतीजा। हालत ये कि ममता के 28 में से 19 लोकसभा सांसद बगावत की चिट्ठी साइन कर चुके, 13 में से 3 राज्यसभा सांसद इस्तीफा दे चुके, पार्टी के 80 में से 64 विधायक स्पीकर को अलग चिट्ठी दे चुके, 7 में से 4 मेयर चले गए, 130 से अधिक पार्षद विदा हो गए, कई नगर पालिकाएं भंग हो गयी। ममता अपनी पार्टी की सभी समितियां पहले ही भंग कर चुकी है। ममता के पास पार्टी के नाम पर फिलहाल पुख्ता तौर पर वो खुद बची हैं और बचे हैं अभिषेक। ऐसे में ममता के दिल्ली दौरे पर जो सोनिया गांधी के साथ केमिस्ट्री दिखी और जिस तरह ममता अभिषेक ने सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकातें की और उसके ठीक एक दिन बाद जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने देश भर से अपने पार्टी महासचिवों, पार्टी प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की आपातकालीन बैठक बुलाई है, उससे कांग्रेस टीएमसी में मर्जर वाली खबर और उड़ चली। दरअसल टीएमसी और कांग्रेस के मर्जर की जो हवा चली उसका पश्चिमी विक्षोभ महाराष्ट्र से शुरू हुआ, जिसमें कभी पवार ने कांग्रेस के साथ दलों के एकजुट होने की बात कही थी, वही सपना बार बार आकार लेता दिखता है। और जब संजय राउत ने एनसीपी को कांग्रेस में मर्ज कर जाने की बात कही तो सुप्रिया सुले ने इनकार नहीं किया। सुप्रिया कांग्रेस की ओर से विलय प्रस्ताव वाले सवाल पर भी मना नहीं करती।
1: अगर बारिश आई तो मैं छाता लूंगी कि रेनकोट, अभी मैंने तय नहीं किया।
0: सुप्रिया सुले को बारिश का इंतजार है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ दो टुकड़े हो चुकी पार्टियों में एकजुटता की चर्चा महाराष्ट्र में सबसे जोर पर, क्योंकि वहां दो दलों के चार टुकड़े। पिछले दिनों उद्धव के नेता अंबादास दानवे और शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार दिल खोल कर मिले तो ऐसी हवा फिर चली कि कहीं शिवसेना में नई खिचड़ी तो नहीं पक रही। महाराष्ट्र की सियासत में मर्जर की कहानी कैसा मोड़ लेगी ये कहना भी जल्दबाजी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस टीएमसी के एक साथ मिलकर गठबंधन में काम करने का फैसला तकरीबन तय है, मर्जर की पुष्टि कोई नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस ने अब आधिकारिक रूप से मना कर दिया है कि टीएमसी कांग्रेस में कोई मर्ज नहीं होने वाला। कांग्रेस भले मना करे, लेकिन दिल्ली से बंगाल तक के हालात बताते हैं कि अब बंगाल में कांग्रेस और ममता बिना एक दूसरे का हाथ थामे चल नहीं सकते। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: टीएमसी पर लड़ाई में सामने आया बागियों का खत। 18 मई को स्पीकर को लिखे खत में 19 सांसदों के हस्ताक्षर। बागियों का दावा, कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से पहले अलग गुट की मांग की थी। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की रात भर सीआईडी ने की पूछताछ। 5.5 घंटे के सवाल जवाब के दौरान कई बार बढ़ के अभिषेक बैनर्जी पार्टी में खुलेआम। असंतोष में बड़ी है मुश्किलें। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत से बढ़कर राहुल गांधी का चुनाव आयोग की जुगलबंदी से सीट की चोरी की गई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सड़क पर कांग्रेस का मोर्चा। ऑन स्क्रीन मार्किंग पर सीबीएसई का कानूनी इम्तिहान। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अलग अलग मामलों में आज सुनवाई। अरबी छात्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी विचार। ट्रंप का बड़ा यूटर्न, बोले हमले का प्लान फिलहाल स्थगित। हफ्ते के अंत तक डील की जताई उम्मीद। सुप्रीम लीडर की सहमति का भी दावा। ईरान ने नहीं खोले हैं अपने पत्ते।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोको।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको तमाम बड़ी खबरें अब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल में चुनावी हार के बाद टीएमसी के करीब 12 सांसदों के बागी होने की चर्चाएं चल रही हैं। इस बीच कल नई लिस्ट सामने आई है जिसमें 19 सांसदों के हस्ताक्षर है। सूची में सायोनी घोष और यूसुफ पठान का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक इन्होंने 18 मई को लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय को अपने नाम भेजे थे। पहले चर्चा थी कि शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी ममता बैनर्जी से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन नए लिस्ट में उनका नाम इस लिस्ट से गायब है। आपको बता दें कि 19 सांसदों ने यह पत्र लोकसभा स्पीकर को 18 मई को भेजा था।
3: आखिरकार जो टीएमसी के 19 सांसद हैं बागी, उनका जो पत्र है वो सामने आ गया है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं अलग गुट बनाने के लिए। काकोली घोष दस्तवार, उन्होंने 18 मई को जो है ये पत्र जो है वो स्पीकर को दे दिया है, ऐसा इस पत्र के अंदर जो है वो बताया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये 19 सांसद अलग गुट बनाना चाहते हैं तो स्पीकर को अब अंतिम फैसला लेना है। स्पीकर इस पे अंतिम फैसला लेंगे, इस गुट को मान्यता दी जाए ना दी जाए। इससे पहले पूर्वोत्तर में जो है लोक जनशक्ति पार्टी में इस तरीके का मामला आया था, शिवसेना में इस तरीके का मामला आया, एनसीपी में मामला आया था। स्पीकर इस पे जो भी फैसला लेंगे उसके बाद ये लड़ाई जो है चुनाव आयोग जाएगी, चुनाव आयोग से जो है सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ अलग गुट तक की नहीं है। ये लड़ाई जो है वो पार्टी के सिंबल और पार्टी पे एकाधिकार की भी होने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन इतना जरूर है जो ममता बनर्जी हैं उनकी पकड़ जो है वो टीएमसी पे धीरे धीरे जो है वो ढीली होती जा रही है, और उनके ज्यादातर वो सांसद इन 19 में है जो उनके सबसे करीबी सांसद थे, जिनमें काकोली घोष दस्तीवार है, माला रॉय है, शियोनी घोष है, ये वो लोग हैं जो ममता बनर्जी के सबसे करीब थे। अब वो ममता बनर्जी के खिलाफ बागी तेवर दिखा रहे हैं।
0: बिल्कुल हिमांशु, देखिए कह रहे हैं कि देखिए अब ये सारी की सारी जो गेंद है वो स्पीकर के पाले में। वहीं बागी सांसदों के लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम होने का भी दावा किया जा रहा था, लेकिन आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो हर हाल में ममता बैनर्जी के साथ खड़े रहेंगे।
4: कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
5: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथाकथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है। मैं इस मुसीबत की घड़ी में जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।
0: छूटे अपने सारे बारी बारी, लेकिन हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के स्टैंड के बाद अब ममता बनर्जी को एक राहत की सांस जरूर मिली होगी। वहीं इसी बीच टीएमसी के टूट के बीच अब ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आई है। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को मुझे या अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी में से एक को चुनना होगा। कल्याण बनर्जी का यह अल्टीमेटम क्या है, उनके भी बागी होने के सबूत हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी चाहते तो नाराजगी की बात सीधे ममता बनर्जी से कर सकते थे, लेकिन वो सीधे मीडिया के सामने आए, यानी कल्याण बनर्जी के ये गुस्सा ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को एक और बड़ा झटका दे सकता है।
6: तृणमूल कांग्रेस में कल्याण बनर्जी एक ऐसे नेता है जो बिल्कुल शुरुआत के दिनों से ममता बनर्जी के साथ रहे हैं, ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं, बिल्कुल खास माने जाते हैं और ऐसे बहुत सारे लीगल केसेस है पार्टी के लिए, वो शिंगूर आंदोलन के समय से जो कल्याण बनर्जी लड़ते रहे। लेकिन इस वक्त कल्याण बनर्जी ने आज तक से खास बातचीत में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोल लिया, उनके इससे अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या अब कल्याण बनर्जी भी बागी कैंप में जुड़ जाएंगे। हालांकि कल्याण बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वो अभी भी ममता बनर्जी के साथ है, तृणमूल कांग्रेस के बुरे वक्त पे वो उनको उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन ये चेतावनी भी दे दिया है उन्होंने ममता बनर्जी को कि जिस तरह का रवैया अभिषेक बनर्जी का है, हारने के बाद भी जिस तरह का रुख उन्होंने अपनाया है और जितना एरोगेंस उनका है, उससे वो काफ़ी अपमानित फील करते हैं, ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं, और जब तक अभिषेक बनर्जी रहेंगे और पार्टी में अपने पद पे बने रहेंगे तब तक उनके लिए काम करना मुमकिन नहीं है।
0: ममता बनर्जी इस समय कई परेशानियों पर कई फ्रंट से झेल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी अभिषेक बनर्जी के तौर पर भी है। दरअसल अब बात करते हैं फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सीआईडी ने कल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी से 5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। सीआईडी ने अभिषेक से कई सवाल भी पूछे और कई सवाल ऐसे रहे जिस पर अभिषेक बनर्जी भड़क भी गए। सीआईडी की पूछताछ के दौरान अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी से मिलने के लिए उनके आवास भी पहुंचे। इस बीच सीआईडी ने एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी को 14 जून को पूछताछ के लिए बुलाया। सीआईडी रविवार को दोपहर 12 बजे फिर से अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी।
7: दरअसल अभिषेक बनर्जी से जो लगभग 5 घंटे के आसपास सीआईडी की पूछताछ हुई है, वो मुख्यतः जो हस्ताक्षर हैं, फर्जी हस्ताक्षर का जो आरोप है उनसे रिलेटेड थी। जो रेजोल्यूशन था मीटिंग का, उस दिन जो मीटिंग हुई थी उसका रेजोल्यूशन कहाँ गया, वो गायब क्यों है, रेजोल्यूशन बुक नहीं मिल रही है, उससे रिलेटेड थी। और जो सीआईडी सूत्रों से पता चल रहा है कि जो जवाब अभिषेक बनर्जी द्वारा दिए गए हैं उससे सीआईडी संतुष्ट नहीं है, इसी वजह से दोबारा अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है और फिर से लगभग वही सवाल जो मुख्यतः इस जांच से जुड़े हुए हैं। खासतौर पर यह मामला फर्जी हस्ताक्षर का है तो ऐसे में जिन लोगों के हस्ताक्षर नहीं थे क्या उनका अनुमोदन था या नहीं था, अगर नहीं था तो किसने वो हस्ताक्षर किए, जो मीटिंग का रेजोल्यूशन था वो कहाँ है, उसमें और भी जो निर्णय लिए गए थे मीटिंग में उसके बारे में जानकारी कहाँ है, इन सब चीजों से रिलेटेड ये जो सवाल थे वो पूछे गए थे अभिषेक बनर्जी से।
0: और चलिए पश्चिम बंगाल के घमासान की बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। सूत्रों के अनुसार बीजेपी इसी महीने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू कर सकती है। दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल ने बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में आगामी चुनावी रणनीति और गठबंधन की रूपरेखा पर चर्चा की गई है। बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक टीम के गठन का भी इंतजार किया जा रहा है।

0: निषाद ने शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात कर दोनों ही दलों के नेताओं ने कैसे उनके वोट बैंक से बीजेपी 2027 की किलेबंदी को मजबूत कर सकती है इसकी पूरी ब्यौरा सौंपा। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी धमक मजबूत करने में जुटी रालोद ने भी प्रदेश कार्यकारिणी भंग कर नए संगठन को खड़ा करने की कोशिश में जुट गई है। यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में बीजेपी का मंथन शुरू हो चुका है।
1: वहीं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के बीच चल रही अंदरूनी विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। मंत्री ने अधिकारी पर बिना बताए बिजली दरें बढ़ाने, काम करने वाले कुशल कर्मचारियों को छटनी करने और बिना सूचना गायब रहने के बेहद गंभीर आरोप लगाए। मंत्री ने 11 जून 2026 को सार्वजनिक हुए पत्र में विभाग के भीतर जाति, धर्म और भ्रष्टाचार के आधार पर भर्तियां करने और बिना विभागीय सहमति के उपभोक्ताओं पर 10% अतिरिक्त फ्यूल चार्ज लगाने का बोझ डालने का तीखा ऐतराज भी जताया है।
2: यूपी में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन के बीच विवाद गहरा गया है। AK शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश सरकार और चेयरमैन आशीष गोयल के बीच जिस तरीके से जाति और धर्म पर आधारित भर्ती की बात कही गई है, AK शर्मा ने साफ तौर से पत्र लिखकर कहा है कि जाति और धर्म के आधार पर भर्तियां की गई है जिसका नुकसान विभाग उठा रहा है। वैसे में एक कैबिनेट मिनिस्टर जिस तरीके से चेयरमैन पर इस तरीके से आरोप लगा रहा है, ये काफी गंभीर और संगीन मामला है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।
1: और चलिए बात करते हैं राज्यसभा सीटों को लेकर। दरअसल मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला मध्य प्रदेश से दिल्ली आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई करेगा। वहीं मध्य प्रदेश का कांग्रेस के विधायक सड़क पर मोर्चा बांधनी के लिए तैयार है। कांग्रेस का प्लान राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने का। इसी बीच कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग ने महज कोर्ट के एक नोटिस के आधार पर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया।
3: मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने का मामला भोपाल से निकलकर अब दिल्ली पहुंच गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम विधायक दिल्ली में मौजूद हैं और वो राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस के सभी विधायक जीतू पटवारी यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मुलाकात कर ये बताना चाहते हैं कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन गलत तरीके से और गलत बेसिस पे रद्द किया गया है। इस बीच में बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई भी होनी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ने बीजेपी उम्मीदवारों को जीत का सर्टिफिकेट क्यों दे दिया। कांग्रेस की मांग थी कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कम से कम सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को आदेश दे कि वो जीत का सर्टिफिकेट किसी को ना दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवारों को, महेश केवट, तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल, इन तीनों उम्मीदवारों को रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया और ये तीनों उम्मीदवार निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
1: और अगली खबर सुरक्षा को लेकर से जुड़ी है। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की समीक्षा भी की जा रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और NSA अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। इसके अलावा कई आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजामों और उसकी सिक्योरिटी रिव्यू को लेकर एक बड़ी बैठक इस समय गृह मंत्रालय में की जा रही है। और आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री के साथ साथ इसमें बैठक में IB चीफ, रॉ चीफ और उपराज्यपाल और कई महत्वपूर्ण अधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। और लगातार अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के इंतजामों और व्यवस्था को लेकर ये पूरी बड़ी बैठक की जा रही है। वहीं CBSE बोर्ड परीक्षा के नतीजों के बाद नंबरों के पूर्ण मूल्यांकन को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट आज फिर से सुनवाई होगी। छात्र की रिवैल्यूएशन की टाइम लिमिट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पिछली सुनवाई के दौरान छात्रों ने और NSUI की याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया था।
4: दिल्ली हाईकोर्ट के सामने NSUI ने दो बातें रखी हैं। एक तो ये कि OSM सिस्टम क्यों खराब हुआ, उसमें किस तरह की खामियां हैं और उसको किस तरह ठीक किया जा रहा है, उस पर ढंग से जांच होनी चाहिए और जो भी खामियां हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एप्लीकेशन पोर्टल बनाया गया था आपत्तियों के लिए, स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस के लिए, उसको एक महीने तक खुला रखा जाना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशनें भर नहीं पाए हैं या और कुछ एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उनको समय मिल सके।

0: हालांकि सीबीएसई की तरफ से आए वकील एम ए नियाजी ने ये आपत्ति जताई थी कि एनएसयूआई जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है क्यों इस तरह से अपील दाखिल करिए, क्यों इस तरह से पीआईएल दाखिल कर रही है, इसको एजुकेशन की पॉलिटिसाइजेशन का करार दिया था सीबीएसई के वकील ने। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीएसई से जवाब मांगा था, हालांकि अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है, अब देखना जरूरी रहेगा कि सीबीएसई और केंद्र सरकार जवाब में आखिर क्या कहते हैं। नई दिल्ली से अनिशा माथुर आज तक।
1: और अगली खबर जंग के मैदान से। दरअसल अमेरिका ईरान से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच लंबे वक्त से चल रहे विवाद को खत्म करने वाली डील अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और इसे कुछ ही दिनों में अंतिम रूप भी दे दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जल्द ही दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इस डील के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए फौरन खोल दिया जाएगा।
2: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया है कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तैयार हो चुका है और जल्द ही इस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान इन सभी बिंदुओं पर तैयार हो गया है और सबसे बड़ा दावा ये कि इस समझौते के बाद ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। साथ ही इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाएगा, लेकिन तब तक यहां ब्लॉकेड जारी रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि इस शांति समझौते के बारे में उन्होंने कई देशों से बातचीत की है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर और तमाम दूसरे देश शामिल हैं और ईरान भी इस शांति समझौते के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उसने कहा है कि फिलहाल वो किसी शांति समझौते के लिए तैयार नहीं है। तो ट्रंप के इस दावे के बाद दोबारा से स्ट्राइक्स शुरू नहीं होंगे ये कहना बेहद मुश्किल है, लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने का दावा किया है।
1: और देखिए, युद्ध से आर्थिक संकट पर पूरी दुनिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन युद्ध के अलावा इस बार प्राकृतिक कारण भी विश्व अर्थव्यवस्था को झटका लगा सकते हैं। दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली अल नीनो दस्तक दे रहा है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया है। अल नीनो एक मौसम फिनोमेना है जिसकी वजह से दुनिया भर में बारिश का चक्र प्रभावित होता है, कहीं सूखा कहीं बाढ़ की स्थिति बन सकती है।
3: भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही कमजोर मॉनसून का अंदेशा जताया था और ऐसे में अब प्रशांत महासागर से जो चेतावनी आई है वो भारत के लिए चिंता का बड़ा विषय है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकी वेदर एजेंसी नोवा ने ये प्रेडिक्शन दे दिया है कि एल नीनो की स्थिति बन रही है। संभावना इस बात की है कि कहीं ये एल नीनो 1950 में आए एल नीनो की तरह यानी 75 साल बाद इतिहास तो नहीं दोहराया जाएगा, क्योंकि वो तबाही जिसने पूरी दुनिया को संकट में डाला था, एक तरफ पहले ही वैश्विक संकट पश्चिम एशिया के चलते खड़ा है और ऐसे में अगर गर्म प्रशांत महासागर के ऊपर से पूरब की हवाएं पश्चिम की ओर जाती हैं तो वो एशिया पैसिफिक इन तमाम इलाकों को अपनी चपेट में ले लेंगी, यानी मॉनसून की स्थिति बदल सकती है, कहीं पर बाढ़ तो कहीं पर सूखे की स्थिति हो सकती है और ऐसे में खाद्यान्न का संकट हो सकता है और इसीलिए सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों से भी कहा कि एल नीनो का खतरा वास्तविक है, इस खतरे से निपटने के लिए जल संरक्षण, खाद्यान्न की सप्लाई, इन सबको सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। ये मौसम की चेतावनी है, ग्लोबल वार्मिंग का असर है और पूरी दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है।
1: और देखिए, वहीं तेज हवाओं के साथ बारिश होने से दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट आई है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद समेत दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी कई इलाकों में आंधी तूफान और गरज के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।
4: शुक्रवार की सुबह दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए राहत लेकर के आई है। दरअसल गुरुवार देर शाम से ही दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बादल, तेज हवाओं के साथ साथ हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके कारण मौसम में अचानक से करवट जो है वो ली है। मौसम विभाग की माने तो पहले से ही अंदेशा जो है जताया गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों के अंदर जो है वो एक्टिव होगा, जिसके चलते कई इलाकों में तेज बारिश और उसके साथ साथ जो है बादल जो है वो छाए रहेंगे और यही आलम अगले कई दिनों तक बने रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो 16 जून तक लोगों के लिए ये राहत भरा मौसम जो है वो बरकरार रहेगा। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश होगी और आज की अगर बात की जाए शुक्रवार के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया, कई हिस्सों में तेज बारिश होगी। इस वक्त हम वजीराबाद में अगर आप चारों ओर देखेंगे बादल ही बादल इस वक्त जो है वो आपको दिखाई देंगे। कई इलाकों में तेज हवाएं जो है वो सुबह से चल रही है और तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है।
1: और अगली खबर खेल जगत से जुड़ी एक दुखद खबर है। दरअसल मशहूर शूटर और कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। हफ्ते भर पहले ही उन्हें दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जर्मनी से लौटने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और जसपाल राणा ने मुख्य रूप से 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल, 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल और 10 मीटर एयर पिस्टल के नाम में अपना नाम कमाया था। एशियन गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ओलंपिक्स में भी भारत की ओर से वो शामिल हुए थे। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के कोच भी रहे हैं। और देखिए आपको बता दें कि आज सुबह उनका निधन हो गया। जाने माने शूटर का 49 साल की उम्र में निधन हो गया। वो जर्मनी से आए थे, बताया जा रहा था कि उसके बाद उनकी एकदम तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उनको दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया और तबियत बिगड़ने के बाद ही कहा जा रहा है कि आज उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। और वहीं गुजरात के जामनगर में बीदी इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और स्थानीय स्तर पर भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी ध्वस्तीकरण की लगातार प्रशासन की तरफ से कैसा बुलडोजर एक्शन दिया जा रहा है और कई अतिक्रमणों को अवैध निर्माणों के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। गुजरात के जामनगर के बेदी इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटा दिया गया, उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और चलिए 12:12 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
7: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. 2 taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
9: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
10: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
13: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
8: एज अ कोच, जो आपका पूरा एक्सपीरियंस है, उसमें हार्डेस्ट पार्ट क्या है?
9: जो वो गलत चीजें सीख करके आए हैं इंटरनेट पे से, वो चीजें पहले उनको अनलर्न करवाना। मैं उनको यही बोलती हूँ, देखो भाई AI का जमाना है, ठीक है, अब ऐसी कोई चीज नहीं है जो AI नहीं कर सकता। वन प्लान वर्क्स फॉर ऑल नहीं कर सकते हो, सो दिस इज वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इनटू प्ले। आप किसी भी टाइप का फैट लूज करना चाहें, बी इट बेली फैट, आर्म फैट, आपका थाई फैट, दी ओनली सिंपल रूल इज कैलोरी डेफिसिट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carriers, message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Diehard music fan? Qello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Qello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now. Pay never.
7: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
8: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
9: सोच बदलो और बैंक भी।
10: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
11: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
12: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
10: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
13: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
11: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
10: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
1: इन एसोसिएशन विद
14: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
16: प्रतिमा जी, इसमें किस बात की कितनी सच्चाई है कि आप भी बागी गुट में शामिल हो गई हैं? एक खबर आई कि कल एक मीटिंग हुई भूपेंद्र यादव के घर में, जहां शुभेंदु अधिकारी भी थे, वहां आप भी मौजूद थी, इस तरह की खबरें आई थी।
17: देखिए, आप मेरा कलकत्ता का जो घर है, आप वहीं पे बैठे हैं और मैं आप मीडिया से तरफ से मैं ये मेरा जयनगर लोकसभा का जितना सारा जनता है, मैं उसको ये बोलना चाहती हूँ। 4 तारीख 4 जून मेरा एस्टिमेट कमेटी का मीटिंग था दिल्ली में। मैं 3 तारीख रात को दिल्ली पहुंची, 4 तारीख 11 बजे मेरा कमेटी का मीटिंग था और 4:10 बजे एयर इंडिया का फ्लाइट से मैं कलकत्ता आ गई। उसके बाद मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ, मैं अभी तक मेरा घर जो है बालीगंज स्टेशन रोड में वहीं पे हूँ। और जो दल बनाया है हमारा कोलिग ने, साथी ने, मैं उसमें साइन भी नहीं किया और दिल्ली में गई भी नहीं।
16: तो आपको क्या बुलावा आया था, आपको फोन आया था उसमें शामिल होने के लिए?
17: हाँ, फोन तो आया था मेरे कोलिग से नहीं, दूसरे साइड से आया था,
16: बीजेपी।
17: मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने फोन किया है वो भी सम्मान मुझे दिया है, तो इसका नाम मैं नहीं बताना चाहती हूँ। मैं फोन मुझे मिलता ही रहता है उनसे, वो बार बार बोलते हैं दिल्ली आने के लिए, लेकिन मैंने दिल्ली नहीं गई हूँ।
16: तो आप अभी ममता दीदी के साथ ही हैं?
17: देखिए, जो हमारा प्रतीक है घासेर उपरे जोड़ा फूल, वही प्रतीक से मैं 3 बार जीते हूँ। जनता ने मुझे आशीष दिया है, इस बार भी बहुत मैंडेट मुझे मिला, 4,70,000 से वोट से भी मुझे मिला और मैं जीत के आई हूँ। तो जनता ने मुझे आशीष दिया 5 साल के लिए, तो मैं 29 तक उनका एमपी हूँ, उनके काम करूंगी। तो मैं जनता को अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। जनता ने तो मुझे नहीं बोला आप जाओ छोड़ के दूसरे साइड में, तो मैंने जनता को सम्मान देके उनका अपमानित नहीं करना चाहती हूँ। मैं 29 तक ही उनके साथ हूँ, तो घासेर उपरे जोड़ा फूल जो प्रतीक से मैं जीती हूँ वही सही हूँ।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: और अब समय यूपीए एक्सप्रेस वे का, जहां पर हम आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। पहली खबर लखनऊ से है, जहां प्रशासन के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी। यूपीए आज वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे। लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान सर्किट हाउस में ठहरने का भी है कार्यक्रम। अखिलेश यादव का दावा है कि 2027 से पहले 2025 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। बोले, एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी चुनाव में AIMIM ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की। ओबीसी ने बहराइच रैली में अभियान की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी यूपी और अवध पर होगी पार्टी का फोकस। AIMIM ने यूपी चुनाव तैयारियों पर समाजवादी पार्टी ने बयानबाजी तेज कर दी है। SP प्रवक्ता ने कहा है कि चुनाव के समय सक्रिय होकर AIM केवल सियासी समीकरण बिगाड़ती है। फिरोजाबाद के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव किया गया, जांच में जुटी है पुलिस। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने ट्रेन पे मेथे सवार घटना में सुरक्षित बताए गए हैं। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस पथराव करने वालों की तलाश जारी की है। देवरिया के शिवरन चौरसिया के समुद्र में मौत, परिवार में मचा है कोहराम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास MT स्टेन वेलो के जहाज पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि की गई। अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति का भव्य पथ संचालन किया गया। अनुशासित अंदाज में निकाली गई है महिलाएं। शहर भर में मोर्चा करती दिखाई सेविकाएं। संगठन की शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने 45 इलेक्ट्रॉनिक बसों का दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा इलेक्ट्रॉनिक बसेस डिपो का भी उद्घाटन किया है। संबल में ट्रिपल तलाक पीड़िता को लेकर सपा सांसद का सरकार पर हमला। सरकारी योजनाओं को लेकर लगाए गंभीर आरोप। मुसलमानों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गाजियाबाद में जिम ट्रेनर के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। सभी ट्रेनरों को पहचान पत्र पहनना होगा। प्रशासन तैयार करेगा डाटाबेस। इटावा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। फिशर फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा की मजार को हटाया गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ग्रेटर नोएडा के ATS रिप्राइव में बड़ा हादसा हुआ है। 2 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन टावर में 37वीं मंजिल से गिरने के बाद दोनों मजदूरों को अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी दोनों बदमाशों की हत्या पुलिस के चढ़ गए थे। घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेजा भी गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ। चलती ट्रेन की चपेट में आए दंपत्ति। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गोरखपुर में पुलिस वाहन की टक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने सड़क पर हंगामा किया। कार्रवाई के पर आश्वासन पर खुला है जाम। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर बदमाशों का आतंक। कैब रुकवा कर की फायरिंग, हवाई फायरिंग कर महिला से करीब 5,00,000 रुपए से भरा बैग लूट कर फरार हो गया आरोपी। नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट में 4th मंजिल पर लगी है भीषण आग। फायर विभाग की कार्रवाई से 3 लोगों की सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। बारिश के चलते शहर के सड़कों पर बड़ी है रौनक। लोगों को गर्मी से मिली हरा। सहारनपुर में आंधी के बाद बारिश की धमाकेदार एंट्री। मौसम हुआ सुहाना। तेज तूफानी हवाओं और झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बस्ती में बिजली गिरने से घर में लगी है भीषण आग। आग की चपेट में आकर पूरा मकान जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने की है आग बुझाने की कोशिश। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा। बारात बस 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आ गई। करंट लगने से कई यात्री झुलसे। जान बचाने के लिए बस से कूदे लोग। शाहजहांपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर पर बवाल हो गया। ग्रामीणों का हंगामा। आरोपी के एनकाउंटर के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। भूमि से हटाया गया कब्जा। JCB से हटाया गया अतिक्रमण। करोड़ों की जमीन को कराया गया मुक्त। हाथरस में शंकराचार्य अभिमुक्त शरणन सरस्वती का बयान। सनातन और राजनीति पर सादा निशाना। कहा कि पार्टियों को सनातनी बनाने की कोशिश गलत है। सरकार पर दिखावे का आरोप भी लगाया।

0: वहीं यूपी के चुनावी यज्ञ में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। सीएम योगी थोड़ी देर पहले लोक भवन पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के 12 साल सरकार के पूरे होने के मौके पर यूपी के लोक भवन में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इसमें पिछले 12 सालों में यूपी में हुए बदलाव, विकास की कहानियों का ब्यौरा दिया जाएगा। साथ में ही लोक भवन में हो रहे इस विशेष आयोजन में मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी संगठन और सभी प्रमुख सहयोगी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे। इसमें दो उप मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के अलावा अपना दल एस के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के संजय निषाद और SBSP के ओम प्रकाश राजभर और RLD के अनिल कुमार जैसे नेता की मौजूदगी भी रहने वाली है। इससे पहले सीएम योगी ने अपने आवास से नोएडा में चलने वाली 45 नई बसों को हरी झंडी दिखाई थी। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक बस डिपो का लोकार्पण भी किया था। आगे क्या क्या आयोजन लोक भवन में होंगे, हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1: लोक भवन में एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसमें दिल्ली और लखनऊ की साझेदारी को योजनाओं और तस्वीरों के जरिए पेश करने की कोशिश है, वो भी तब जब यूपी चुनाव कुछ महीने शेष है। पीएम सीएम की जो बॉनहोमी है वो आपको इस तस्वीर के जरिए देखने को मिलेंगी। आप अगर तस्वीरों में देखें, ये लोक भवन है और यहाँ पर डबल इंजन सरकार, विकास की गति अपार जैसे स्लोगन दिए गए हैं और एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है और एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा जो तमाम स्कीम्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रगति पथ के 12 वर्ष दिखाना हो, जो प्रगति पथ की बात की गई है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया है। इतना ही नहीं, जो स्टेट और सेंटर की कोऑर्डिनेशन है उस पर भी यहाँ पर कोशिश की गई है दिखाने की। प्रत्येक जनपद में जो ODOP कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आप देखें वो बहुत प्रचलित है, GI टैग, इसके अलावा जो भी मूल्य उत्पादों का निर्यात है ये सब दिखाया गया है। एक के बाद एक जो योजनाएं हैं, चाहे ग्रीन एनर्जी की बात हो, स्वदेशी हथियार हो, आस्था के धाम हो, देश की रफ्तार, विश्वबंधु, DVT, गारंटी का लोन, मुफ्त राशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनको यहां पर दर्शाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी कि राज्य सरकार के भी जो कुछ योजनाएं हैं जो सेंटर के साथ चलती हैं उन्हें भी दर्शाने का प्रयास किया गया। बड़ी बात यहां पर यह है, यूपी का चुनाव 2022 जब मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री की उस तस्वीर ने काफी वाहवाही बटोरी थी जिस वक्त एक कड़ा चुनाव हो रहा था। 5 साल बीत गए, तस्वीर आज भी वही है पीछे और सियासी समीकरण भी वही है। कुछ दिनों में रैलियों का दौर भी शुरू होगा लेकिन उससे पहले बीजेपी की तरफ से सियासी सरगर्मी और चुनावी तैयारियों का शंखनाद होता 12 वर्षों के सेलिब्रेशंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिखाई पड़ता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि लखनऊ में लोक भवन पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यानी केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर विशेष आयोजन किया जा रहा है और लोक भवन में लगी 12 साल के विकास की प्रदर्शनी भी। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय समर्थ श्रीवास्तव भी मौजूद हैं जो लोक भवन में मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। समर्थ, इस समय कहा जा रहा है कि देखिए 12 सालों के विकास कार्य के साथ साथ आने वाले 2027 में विजन क्या होगा इसको लेकर भी एक बड़ी पिक्चर क्लियर की जाएगी।
2: यूपी का चुनाव सिर पर है और ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको स्टेज पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, उनके बगल में आपको डेप्यूटी सीएम दोनों नजर आएंगे और आसपास जो एनडीए के पार्टनर्स यानी कि जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं, चाहे अपना दल हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, संजय निषाद की निषाद पार्टी हो या RLD अनिल कुमार हो, उन सबको एक साथ बैठाया गया और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है यूपी चुनाव के मद्देनजर कि बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है। सीट बंटवारा भले ही अभी शुरू ना हो लेकिन जितने गठबंधन साथी हैं उनको एक स्टेज पर साथ में बैठाकर बड़ा सियासी संदेश दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही देर पहले इस वक्त स्टेज पर पहुंचे हैं और कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कई बयान दिए और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पिछड़ने वाली है और कुल मिलाकर 27 में बीजेपी जीत की हैट्रिक बहुत आराम से लगाने वाली है। इस वीर पर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
0: बिल्कुल देखिए समर श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार लोक भवन में मौजूद है, आपको सीधे लिए थोड़ी देर में आपको दोबारा से दिखाएंगे कि कैसे वहां पर जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, क्या बड़े ऐलान करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं खबरों में और देश में मोदी और योगी में के राज में खासतौर पर डबल इंजन वाले विकास के दावों के साथ बीजेपी इस बार चुनाव में जाने वाली है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में एनडीए के अंदर सीट बंटवारे पर भी मंथन शुरू हो चुका है। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर कल दिल्ली में कई दौर की मुलाकातें और बैठकें भी की गई। बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सुनील बंसल तक और ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की मुलाकातें भी चर्चा का विषय बनी रही और माना यह जा रहा है कि देखिए एक तरफ चुनावों की तैयारी और उससे पहले समीकरण कैसे होंगे, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, इसको लेकर भी मंथन तेज हो गया। आपको बता दें कि सुनील बंसल के साथ साथ और इन मुलाकातों में शिष्टाचार भेंट से आगे की क्या सियासत है और इस सीट बंटवारे पर उलझ रहे ताने बाने को कैसे बीजेपी अब सुलझाती है, आपको इस रिपोर्ट के द्वारा समझाते हैं।
3: दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर देश भर से एनडीए के घटक दल पहुंचे तो उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दो दल भी मौजूद थे। मंच पर पीएम मोदी के स्वागत से लेकर झालमुड़ी के चटकारे तक संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तकरीबन साथ नजर आए। यहां तक कि कार्यक्रम के आगे पीछे दोनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में जितनी शिष्टाचार भेंट मुलाकातें की उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। दिल्ली में भारत मंडपम में जब पीएम मोदी के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था पूरे देश के एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम मौजूद थे तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अलग मीटिंग चल रही थी। 11 जून को एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, फिर सुनील बंसल से भी मिले। इसके तुरंत बाद निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने भी सुनील बंसल के साथ चर्चा की और अलग अलग मुलाकातों के बाद राजभर और निषाद दोनों ने एक साथ भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों सहयोगी नेताओं से बीजेपी नेतृत्व से जल्द औपचारिक बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जून के आखिरी सप्ताह में व्यापक चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया।
4: दरअसल बीजेपी चुनाव से पहले संगठन और गठबंधन की तैयारी में जुटी हुई है। इंतजार है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार का और संगठन में नई टीम गठन का। सूत्र बताते हैं कि यूपी में इसी हफ्ते नई टीम का गठन किया जाना है जिसमें 50% नए चेहरे देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठन से भी 6 चेहरे देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी की तैयारी संगठन और गठबंधन को लेकर यूपी में पूरी तरीके से जारी है।
3: यूं तो राजभर ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट की तरह पेश किया लेकिन दोनों नेताओं की बारी बारी से बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात और फिर साथ आई तस्वीरों को लेकर चर्चा है कि ओपी राजभर और संजय निषाद के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान शायद थम जाए, क्योंकि 2022 में निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ लड़ी थी वहीं ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। 2022 में निषाद पार्टी को 16 सीटें मिली थी जिसमें 10 उनके सिंबल की थी, 6 बीजेपी के सिंबल पर निषाद के उम्मीदवार थे, जबकि 2022 में राजभर को अखिलेश ने 17 सीटें दी थी। 2022 में निषाद पार्टी के कुल 11 उम्मीदवार जीते जिसमें 5 बीजेपी के सिंबल पर थे तो राजभर के कुल 6 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बीच में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सरकार के साथ हो गए और अब फिर से करीब 1.5 दर्जन सीटों की उम्मीद पाले हैं। हालांकि पूर्वांचल में ही निषाद पार्टी भी है और दोनों ही दल गैर यादव पिछड़े अति पिछड़े के वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए अतरौलिया जैसी सीट पर दोहरी दावेदारी सामने आ रही है।
4: सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ये कोशिश कर सकती है कि पूर्वांचल की हारी हुई मुस्लिम यादव, बाहुल, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर जिलों की सीटों पर राजभर और निषाद के बीच बांट दे या फिर कुछ सीटों पर निषाद के चुनाव चिन्ह पर बीजेपी अपने चुनाव चिन्ह पर उनको लड़ाया जाए। लेकिन राजभर गाजीपुर, बलिया, मऊ जैसे जिलों में अपने सिंबल पर ही लड़ना चाहते हैं। ऊपर से आजमगढ़ की अतरौलिया पर भी राजभर दावा जता रहे हैं।
3: दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी तो पूर्वांचल में निषाद और राजभर बीजेपी के लिए मजबूरी तो नहीं लेकिन जरूरी है, क्योंकि 2022 में राजभर को 17 सीटों पर 12,52,000 वोट मिले जो लड़ी गई सीटों पर करीब 30-35 फीसदी थे। निषाद को 11 सीटों पर करीब 10,50,000 वोट मिले थे जो लड़ी गई सीटों पर करीब 41-44 फीसदी थे। हालांकि राजभर तब अखिलेश के साथ थे और निषाद के 5 उम्मीदवार कमल छाप से लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। दोनों दल बीजेपी के साथ हैं और विवाद की स्थिति में बीजेपी अपने सिंबल पर सीटें देने का फॉर्मूला अपना सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: दरअसल यूपी की चुनावी राजनीति में गैर यादव पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का वोट गणित कुछ ऐसा है कि जातियों के हिसाब से इलाके में छोटे छोटे प्रभावी दल बहुत सक्रिय रहते हैं। बीजेपी के लिए छोटे छोटे दल बड़े काम साबित कर सकते हैं। कैसे, उनके लिए आपको बताते हैं कि 2022 के आंकड़े आपको दिखाते हैं। आपको बताएंगे कि 2022 में भी बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी थी। जिन सीटों पर यह गठबंधन लड़ा वहां करीब गैर यादव वोट में से 65% वोट एनडीए को मिल गए थे। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्लस को करीब 27% गैर यादव और पिछड़े वोट मिल पाए थे। एनडीए को जो बंपर गैर यादव ओबीसी वोट मिले थे उनमें से इन्हीं छोटे दलों का बड़ा योगदान भी रहा था। निषाद पार्टी जिन सीटों पर लड़ी वहां पर 70% वोट एनडीए के खाते में आए और इसमें निषाद केवल मलहा वोट थे। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी तरह राजभर और अखिलेश जिन सीटों पर लड़े वहां भी 60% से अधिक वोट उनको मिले। उसमें राजभर, कश्यप और प्रजापति वोट शामिल थे। इस बार राजभर भी एनडीए के साथ हैं तो पूर्वांचल में बीजेपी की ताकत और मजबूत मानी जा रही है। और देखिए अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां पर आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में बन रहे नए सियासी समीकरण को लेकर आपको एक अपडेट बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बड़ा दावा किया जा रहा है एआईएम की ओर से कि जहां पर कहा जा रहा है कि पश्चिमी यूपी अवध के कुछ इलाकों में पार्टी उम्मीदवार उतारने की तैयारियां कर चुकी है और बहराइच से असदुद्दीन ओवैसी अपना चुनावी शंखनाद बजाने वाले हैं। आपको बता दें कि यही वजह है कि बहराइच के मठेरा विधानसभा इलाके में ओबीसी की चुनावी सभा की तैयारियां जोरों शोर से की जा रही हैं, जहां पर यूपी में एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का दावा है कि इस बार बहराइच और बलरामपुर बस्ती और पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में पार्टी करीब 200 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकती है अगर गठबंधन होता है और सीटें उसी हिसाब से तय की जाएंगी।
5: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। आज से काम शुरू हो गया है, आप देख रहे हैं टेंट लगना शुरू हो गया है।
0: दरअसल यूपी के हर चुनावों के अंदर ओवैसी अपनी किस्मत आजमाने के लिए जरूर उतरते हैं। पिछले चुनाव में भी ओबीसी ने करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 100 सीटों पर उन्हें बामुश्किल 4.5 लाख भी वोट नहीं मिल पाए थे। इस बार एआईएम यूपी के 4 जोन में बांट दिया गया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। यहां नियुक्ति विवाह विधानसभा के अनुसार हुई है, जहां पर 2022 में पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें 19 टिकट गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए गए थे। इस बार भी ओबीसी 200 सीटों पर प्लान बना चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को डर है कि इसका सीधा नुकसान उन्हें ही होने वाला है।
6: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कहीं न कहीं एआईएम उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है। वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी नहीं हुई है और उल्टा हम पे दोषारोपण करती है कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। आप मटेरा जिस वजह से जहां जा रहे हैं वहां पे समाजवादी पार्टी जब से वो विधानसभा बनी है तब से वो जूती रही है। आप ऐसी जगह जाके समाजवादी पार्टी की लड़ाई कमजोर करना चाह रहे हैं और परोक्ष रूप से आप भारतीय जनता पार्टी को ही फायदा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
0: दरअसल समाजवादी पार्टी इसलिए बौखलाई हुई है क्योंकि इस सीट पर ओबीसी की पार्टी ने जिन चेहरों को अपने साथ जोड़ा है वो या तो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता से लेकर जिला अध्यक्ष तक रह चुके हैं। अनवरुल रहमान को उसी मटेरा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है जो कभी समाजवादी पार्टी के सिपाही हुआ करते थे। और देखिए उधर बीजेपी ने ओबीसी की बहराइच रैली को लेकर अलग ही राग अलापना शुरू कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि भारत की तारीख में मुस्लिम आक्रमताओं ने जिस बहराइच से आक्रमण शुरू किया था आज वहीं से ओबीसी चुनावी आगाज कर रहे हैं। दरअसल तो एक
7: सद्दुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यहीं उसे मौत के घाट उतार दिया था, वहीं उसकी मजार बनी हुई है। तो वैसी जी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़िए, यहाँ का कानून आपको इजाजत देता है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं के आदर्शों पर चलकर अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता आपको सबक सिखाएगी।
0: तो एक तरफ यूपी में मुस्लिम वोटों के लिए ओबीसी के दांव पर समाजवादी पार्टी बौखला गई है, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी को दलित वोटों के सहारे की उम्मीद भी है। आपको बता दें कि ओबीसी की पार्टी उम्मीद लगा रही है कि अगर पीएसपी के साथ उनका गठबंधन हो जाए तो मुस्लिम और दलित वोट मिलकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों का मुकाबला कर पाएंगे। ओबीसी की पार्टी सही वक्त पर भी बीएसपी से गठबंधन की कोशिश भी कर रही है, लेकिन बीएसपी अलग राह पर है। दरअसल बीएसपी दलित वोटों से आगे ओबीसी वोट जोड़ने के लिए भाईचारा कमेटी बना रही है, इसकी बैठक भी होने वाली है। जाहिर तौर पर मुस्लिम वोटों के बजाय मायावती की कोशिश अब सूबे के ओबीसी और आप कह सकते हैं कि ईबीसी वोटों के साथ जोड़ने की है। और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, खास तौर पर सीबीएसई के एग्जाम्स को लेकर नीट एनटीए ने बड़ा फैसला लिया है। नीट परीक्षा को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम। एनटीए की तरफ से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नीट परीक्षा को लेकर परीक्षा के लिए छात्रों को अब 195 मिनट मिलेंगे। आपको बता दें कि 21 जून को दोपहर 2 बजे से 5:15 तक परीक्षा की जाएगी। 2 बजे से लेकर 5:15 तक परीक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम और परीक्षा के लिए छात्रों को 195 मिनट दिए जाएंगे। और देखिए छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम के दौरान वो अपने प्रश्नों के हल जल्दी कर पाएंगे। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
8: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
13: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
11: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
15: शत्रुघ्न जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं, क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में। क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
16: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health.
1: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
3: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
0: Such.
6: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है। 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है। अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है?
7: सर, प्लीज शेयर द कोऑर्डिनेट्स।
6: डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।

राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सड़क पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली से भोपाल तक विरोध प्रदर्शन, याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी। अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। टीएमसी बगावत के बीच ममता के विश्वस्त कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, हमारी सुरक्षा को खतरा, बागियों को प्रलोभन देने का जड़ा आरोप। शत्रुघ्न सिन्हा की दो टूक, मैं दीदी के साथ। एक परीक्षा में छात्रों को बड़ी राहत, एनटीए ने दिया तैयारी के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त, अब 3 घंटे 15 मिनट की होगी परीक्षा। आज औपचारिक ऐलान। डील की तरफ ईरान अमेरिका के तेजी से बढ़ते कदम, ट्रंप का दावा समझौता तकरीबन पक्का, ईरान की तरफ से ग्रीन सिग्नल, का डील का प्रारूप तय, मगर ट्रंप के बदलते रुख से आशंका।

लखनऊ में मोदी सरकार के 12 साल के शासन पर सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर फोकस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए से योगी अपना दल, निषाद पार्टी, एसबीएसपी, आरएलडी को मंच पर स्थान दिया गया। सीएम योगी आज वाराणसी के दौरे पर रवाना होंगे, लोकभवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान, सर्किट हाउस में ठहरने का कार्यक्रम। अखिलेश यादव का दावा, 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी, बोले एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी में ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन के बीच विवाद गहराया, भर्ती में जाति धर्म आधारित आरोपों से मचा सियासी घमासान। टीएमसी बगावत के सुर तेज, संसदीय गुट के समर्थन में सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने का दावा। स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र से बड़ी सियासी हलचल, टीएमसी के भीतर अलग गुट बनाने की कवायद। बागियों का दावा, कल्याण मांझी को चीफ व्हिप बनाने से पहले अलग गुट की मांग। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी एआईएमआईएम, बहराइच से ओवैसी करेंगे शंखनाथ, 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिमी यूपी और अवध पर एआईएमआईएम का फोकस, बसपा से गठबंधन की संभावनाओं के बीच संगठन विस्तार तेज। फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बैनर्जी से सीआईडी की लंबी पूछताछ, जांच के दौरान तीखी बहस। टीएमसी में अंदरूनी तनाव बढ़ा, पूछताछ दौरान अभिषेक बैनर्जी के भड़कते की बात सामने आई। एमपी की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी का जीत के बाद सियासी घमासान, राहुल गांधी ने लगाया सीट चोरी का आरोप। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बवाल, बीजेपी जीत के बाद विपक्ष का आरोप, चुनाव आयोग की मिलीभगत से हार। दिल्ली में अमित शाह की अध्यक्षता में अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक, तैयारियों की समीक्षा जारी। अमरनाथ यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार का बड़ा मंथन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल शामिल। बैठक में आईबी और रॉ प्रमुख की मौजूदगी, सुरक्षा हालात और खुफिया इनपुट पर विस्तृत चर्चा। सीएपीएफ के डीजी की मौजूदगी में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और स्कॉट व्यवस्था की समीक्षा। भारत की परमाणु क्षमता पर पाकिस्तान की चिंता, बढ़ते शस्त्रागार को लेकर जताई आशंका। एमपी में कांग्रेस का बड़ा दावा, 61 विधायकों के समर्थन का हवाला देकर राजनीतिक घमासान। जीतू पटवारी का बयान, बोले मध्यप्रदेश बीजेपी नेतृत्व हमसे घबराया हुआ है। उमंग सिंघा का आरोप, राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला, देश में तानाशाही का दावा। रिटर्निंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप, आरएसएस पृष्ठभूमि को लेकर कांग्रेस नेता पर सवाल। लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम की धमकी, सुरक्षा जांच जारी। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। इस विवाद में आज कांग्रेस का अल्ला बोल, एमपी कांग्रेस के विधायक और दूसरे नेता आज दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने केंद्र की नीति पर उठाए सवाल, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हालत खराब कर दी है। जामनगर में राज्यमंत्री रिवाबा जडेजा ने बच्चों के साथ गुजारा समय, सरकारी विद्यालय का किया दौरा, कक्षाओं का किया निरीक्षण। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पर पीएम मोदी और सभी राज्यों के सीएम की चर्चा। बैठक में 28 राज्य के सीएम शामिल हुए, डीके शिवकुमार, उमर अब्दुल्ला, जोसेफ विजय और रेवंत रेड्डी ने भी पीएम से की मुलाकात। बिहार में एमएलसी चुनाव के 10 उम्मीदवार निर्विरोध जीते, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी बने एमएलसी। जेडीयू और बीजेपी के कोटे से 4-4 उम्मीदवार जीते एमएलसी चुनाव, एक आरजेडी और एक एलजेपी का उम्मीदवार भी विजयी। निर्विरोध जीतने के बाद बोले निशांत कुमार, बिहार के विकास के लिए करते रहेंगे काम। दिल्ली में पंजाबी सिंह गुरु रंधावा की जिम की फ्रेंचाइजी पर हमला, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली के जिम पर हुई 7 राउंड फायरिंग, अपराधी हुए फरार। लॉरेंस गिरोह ने जारी किया ऑडियो, सलमान से नजदीकियों को बताया हमले की वजह।

सोशल मीडिया पर वायरल। सूरत में पुलिस वाले ने सातवीं मंजिल की ग्रिल पर चढ़कर बचाई आदमी की जान, वीडियो वायरल। पटना में जिम जारी महिला से हथियार के बल पर चेन की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। थाने में पेपर गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर खाक, घटना में कोई हताहत नहीं। गाजियाबाद के नंदगांव में इंक गोदाम में लगी आग, दमकल की सात गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। मेहसाणा एपीएमसी सब्जी मंडी में आग पर पाया गया काबू, एक साथ छह दुकानों के शेड में लगी थी भयंकर आग। चमोली मूसा पानी के पास रास्ता भटका 15 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, बारिश और घने कोहरे के बीच एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। पठानकोट में तेज तूफान का कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पास टूटे पेड़, नेशनल हाईवे हुआ जाम। नोएडा स्थित सेक्टर 152 में निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर दो कामगारों की मौत, सेफ्टी बेल्ट टूटने से हुआ हादसा। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के पहले मैच में से मेजबान मेक्सिको की जीत से हुई शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। मेक्सिको के जूलियन क्विनोन्स ने पहले हाफ में स्ट्राइक कर गोल किया, फिर राउल जिमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका की टीम को हरा दिया। मेक्सिको सिटी के एस्टेका स्टेडियम में रेफरी ने तीन रेड कार्ड दिए, साउथ अफ्रीका के पेफेलो सिथोले और जेम्बा जुआने को मिला रेड कार्ड। धर्मशाला पहुंची भारत की वनडे टीम, 13 जून से सीरीज का पहला मुकाबला। अफगानिस्तान की वनडे टीम भी धर्मशाला में मौजूद, तीन मैचेस की है सीरीज। आज से वुमेन T20 वर्ल्ड कप का आगाज, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है ये टूर्नामेंट, पहली बार दुनिया के 12 देश ले रहे हैं हिस्सा। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में है दोनों टीम्स। पहली बार वुमेन T20 वर्ल्ड कप खेलेगा नेदरलैंड्स टीम, ने ग्लोबल क्वालिफायर में चौथा स्थान हासिल कर बनाई है जगह। ट्रंप ने अचानक बदला ईरान पर हमले का प्लान, कहा दोनों डील के बेहद करीब, पहले तेहरान पर सबसे बड़े हमले की दी थी चेतावनी। ट्रंप ने कहा ईरान से डील की जगह और वक्त का जल्द करेंगे ऐलान, सभी पक्षों से चर्चाओं के अंतिम बिंदुओं को दी मंजूरी। ईरान ने होमस को लेकर कही बड़ी बात, कहा अगले आदेश तक बंद रहेगा होमस। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया बड़ा हमला। ईरान अमेरिका की तीन सबसे आधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स को मार गिराने का दावा किया, ईरानी सेना ने कहा सॉलिड फ्यूल मिसाइल से बनाया गया निशाना।

0: बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं मध्य प्रदेश से। कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सख्त सुनवाई जारी है। इस दौरान मीनाक्षी नटराजन के वकील और राज्यसभा सांसद अभिषेक बनु सिंघवी ने कहा है कि ये नोटिस प्राइवेट शिकायत पर हुआ है, कोई FIR दर्ज नहीं थी। सिंघवी ने कहा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर मनमाने ढंग से काम करता है या किसी एक पार्टी को उसके कदम से फायदा होता है तो उसमें कोर्ट दखल दे सकता है। ये मामला इसी के तहत आता है। तो नामांकन मीनाक्षी नटराजन का रद्द कर दिया गया था। इस मामले में अब वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं और इस याचिका पर इस वक्त भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट से ही अंतिम फैसला आएगा क्योंकि नामांकन रद्द होने का मतलब है कि वो पहले ही रेस से बाहर हो चुकी हैं।
1: मुझ पर एक लीगल नोटिस है, वो लीगल नोटिस के पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ECI को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए।
0: इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में दिल्ली कांग्रेस नेता ने विरोध किया है, राष्ट्रपति भवन तक मार्च करने की कोशिश कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने रोका है। कई कांग्रेस नेताओं की तीखी बहस भी पुलिस के साथ हुई है और कई को हिरासत में भी लिया गया।
2: मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा चुनाव में पर्चा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस काफी गुस्से में है और अब आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन

0: करेंगे। आप देख सकते हैं उमंग सिंगार को, उमंग सिंगार इस वक्त उनको डिटेन कर लिया गया है ऑलरेडी। और अगर आप देखें बैरिकेड पे तो आपको जीतू पटवारी नजर आएंगे, तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर एक एक पोस्टर चस्पा है जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि धारा 163 के अंतर्गत यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। आप देखिए वोट चोरों होश में आओ, जनता को ना सताओ। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि दो दो हाथ करने के मूड में है इलेक्शन कमीशन के साथ में, जिस प्रकार से पर्चा खारिज किया गया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी सड़कों पर रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दो मापदंड अपनाए जा गए, एक मध्य प्रदेश में पर्चा खारिज किया गया लेकिन एक पर्चा झारखंड के अंदर अलाउ किया गया। ये दर्शाता है कि देश के अंदर जो स्थिति है वो गंभीर है। और इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले कई दिनों तक आपको सड़कों पर दिखाई देगी। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।
1: इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए।
2: 61 के 61 एमएलए यहां पर उपस्थित हैं। हमें 58 एमएलए की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव सेट किया, 10 विधायक कम होने के बाद भी, और जो निर्दलीय भी इसमें, वो भी हमारे ही संघ थे, जो दूसरी पार्टी एक दो है वो भी हमारे साथ थी। मूल भावना यह है कि हमारे विधायकों की एकजुटता और जिस उत्साह और एग्रेशन से पूरा घटनाक्रम राज्यसभा का चला, उससे भयभीत हो गए नरेंद्र मोदी, भयभीत हो गए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व। और अंतोगत्वा उन्होंने वो क्राइम कर दिया, वो अपराध कर दिया जो सरपंच के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, गांव गांव गली गली इस तरीके के छोटे चुनाव में जो घटनाक्रम होते रहते हैं, उस तरीके का सबसे उच्च सदन में राज्यसभा का नामांकन निरस्त करना।
1: और इस बीच आपको सीधे ले चलेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 साल कार्यकाल
3: स्कूल
1: पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे
3: हैं। तब हम लोगों ने तय किया था कि बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ने वाले हर बच्चे को हम लोग, अब बालक हो या बालिका, बिना भेदभाव के यूनिफॉर्म भी देंगे, जूता मोजा भी देंगे, स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल में ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए पेयजल भी उपलब्ध करवाएंगे और टॉयलेट भी उपलब्ध करवाएंगे बालक और बालिकाओं के लिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमने सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए एक सुविधा उसको उपलब्ध करवाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, दहेज मुक्त विवाह के लिए कोई बेटी की सौदेबाजी न करने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेगी और सरकार इस व्यवस्था के साथ जोड़ करके 5 लाख बेटियों की शादी अब तक यहां पर संपन्न कर चुकी है, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से 1 लाख रुपए उस बेटी की शादी के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। नारी सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति का प्रदेश सरकार का अभियान, और प्रत्येक व्यवस्था में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो। हमने उद्योगों की जकड़न को दूर किया, रिफॉर्म किए, 12% से उत्तर प्रदेश के अंदर अब वीमेन वर्कफोर्स 36% से अधिक हुआ है। यानी इतनी महिलाएं जो पहले 12% ही काम कर पाती थी, आज उनकी संख्या 36% से ऊपर जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई, आज परिणाम हम सबके सामने है। यानी आधी आबादी के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय न हो, यह कार्य प्रधानमंत्री जी ने नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए, जमीन घर की मालकिन के नाम पर हो, आप याद करिए पहली बार ग्राम समाज की आबादी की लैंड जो ग्राम समाज के नाम पे होती थी, किसी के नाम पे नहीं होती थी, लेकिन ग्रामीण अभिलेख को दुरुस्तीकरण करते हुए ग्राम पंचायत की सहमति से उस घर की जो सबसे वरिष्ठ महिला सदस्य होगी उसके नाम पर घरौनी देकर के ग्रामीण अभिलेख को भी महिलाओं को उसका अधिकार उपलब्ध करवाया। प्रधानमंत्री आवास भी ज्यादातर आवास घर की मालकिन के नाम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं।
1: रुके यहीं से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
5: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
6: This is the sound of Claire cooking dinner at home. And that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
8: Step into timeless classical music. Works from the masters. Brought to life by world-class orchestras, conductors, and soloists. From past to present. Every performance played with depth, precision, and care. Music that has lasted for generations and still feels just as powerful today. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Classical Hits and start listening now.
9: अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: आगे आगे
11: उधर उधर गया।
10: करेक्ट करेक्ट
12: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: विमल बोलो जुबा केसरी।
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर। ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट।
6: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चिंता सच साबित हो गई है। अमेरिकी एजेंसी नोवा ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो चुका है, जिसने वैश्विक मौसम चक्र को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। प्रशांत महासागर के गर्म होने से पैदा हुआ ये एल नीनो कितना भयानक है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये साल 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक एल नीनो बन सकता है। इसके कारण दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का तांडव दिखने लगा है। भारत के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। साल 1950 के बाद ये सबसे बड़ा खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, क्योंकि आम तौर पर पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली हवा का रुख अब उल्टी दिशा में होगा। प्रशांत महासागर से उठने वाली गर्म लहरें पूरी दुनिया पर प्रभाव डालेंगी, जिसका असर भारत पर भी होगा। जैसे कि इस दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा में परिवर्तन, उसकी स्थिति में परिवर्तन, और इसके चलते या तो कहीं सूखे का संकट होगा, कहीं भीषण बाढ़ आएगी। और इसी वजह से देश की सरकार भी चिंतित है। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि वो जल संरक्षण पर ध्यान दें, एल नीनो के खतरे से बचाव करें। एल नीनो की सीधी मार हमारे मानसून और कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों को इसके प्रति आगाह करते हुए तुरंत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण के उपाय करने के निर्देश दिए हैं। एल नीनो के मजबूत होने से मानसून कमजोर पड़ सकता है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ फसलों के उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा। सर्दियों तक ये और खतरनाक रूप ले सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती खड़ी होगी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो सर्दियों तक अपने चरम पर पहुंचकर जलवायु संकट को और गहरा कर देगा। अब देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मानसून इस महासंकट से कितना निपट पाता है और हमारी खेती इस मार को कैसे झेलती है। आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

0: बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी में जो तूफान आया है वो सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कोलकाता में बागी विधायकों का भी अपना गुट बन गया है और विधायकों में बगावत का झंडा उठाया है ऋतव्रत बनर्जी ने। सबसे पहले ऋतव्रत ने ही टीएमसी में रहते हुए ममता और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका और फिर देखते ही देखते दिल्ली तक बात पहुंच गई। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टीएमसी के विधायक और सांसद बगावत करने लगे? क्या बंगाल में टीएमसी हारी इसलिए ये भगदड़ मची है या फिर वजह कुछ और है?
1: दो साल में क्या ऐसा बदल गया कि आपको लगा कि पार्टी से अलग होना चाहिए, एक अलग गुट बनाना चाहिए?
2: देखिए, दो साल नहीं, काकुली घोष रिश्तेदार 40 साल से है, मैं 17 साल से हूँ। जो लोग अभी इस बार पहली बार जीत कर आए हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, उसके लिए 1-2 साल होगा, हम लोग के लिए इतना दिन, तो इतना दिन में तो कोई ना कोई, अगर आप बोलेंगे जब जीते थे तब क्यों नहीं बोले थे, अभी हारने के बाद क्यों? जीतने के बाद भी बोले थे, बोलने की कोशिश किए थे, वहाँ पे सिस्टम नहीं है बोलने का, बोलने से सब रोकते हैं, जो नहीं बोलना है नहीं बोलना है, तो और अगर बोले भी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलते, आप 7 दिन 10 दिन इंतजार करो, कुछ नहीं।
0: ये शताब्दी रॉय है, ममता बनर्जी के विश्वास पात्र सांसदों में से एक। शताब्दी कहती है कि बगावत का ये बम एक दिन में नहीं बना, पार्टी के अंदर असंतोष तो बहुत पहले से था, उसकी अभिव्यक्ति अब हुई है। मतलब टीएमसी में बगावत का बारूद एक दिन में इकट्ठा नहीं हुआ। बागी नेताओं का आरोप है कि पार्टी नेतृत्व जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कट गया है, भ्रष्टाचार और संगठनात्मक समस्याओं से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। ममता बनर्जी की सादगीपूर्ण राजनीति दिखावा है, पार्टी के अंदर बोलने नहीं दिया जाता था। एक तरफ बागी सांसद है, दूसरी तरफ विधायक। बागी विधायकों का दावा है कि उनके पास 60 से अधिक विधायकों का समर्थन है, जैसे ही विधानसभा सत्र शुरू होगा हम अपनी शक्ति दिखाएंगे। बंगाल टीएमसी के पास 80 विधायक हैं और अगर इनमें से 60 विधायक बागी गुट में चले गए तो ममता के हाथ से पार्टी का नेतृत्व भी निकल जाएगा। अब ममता बनर्जी के सामने एक नहीं कई चुनौतियां, बागियों से निपटना, पार्टी की खोई हुई जमीन वापस हासिल करना और अपने भतीजे अभिषेक को अपनी जगह पर सेट करना। लेकिन जिस तरह से बीजेपी बागियों को समर्थन दे रही है उससे ममता बनर्जी के लिए इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।
1: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल हैं।
3: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
1: रिबल,
3: आप ये तो रिबल कहां से हो गए, भगौड़े हैं। रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए, ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंबल पे लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंबल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा था तो तुमने रोका और भ्रष्टाचार।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल नामांकन रद्द होने के बाद इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी मीनाक्षी नटराजन द्वारा पर्सनल लेवल पर, अब इसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और जो मीनाक्षी कह रही थी उसको लेकर कोर्ट की क्या टिप्पणी? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
7: मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है, यानी मीनाक्षी नटराजन को जोरदार झटका लगा है और जैसे कि उम्मीद यही लग रही थी, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर की भी बात करें, निर्देशों की भी बात करें, तो प्रेसिडेंट यही है कि एक बार जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है तो इसके बाद कोर्ट इसमें दखल नहीं देता, फिर एक ही उपाय रहता है कि वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल करें और फिर उसके रिजल्ट का इंतजार करें। यही दलील उन्होंने पिछले दिन यानी गुरुवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तब भी यही दलील दी थी। मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि आज कोर्ट को इस पर सुन के दखल देना चाहिए, नहीं तो हमें 6 साल इंतजार करना पड़ेगा। आज भी अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें यही थी कि इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फैसला आमतौर से अगर हम देखें रिकॉर्ड ये बताते हैं कि कम से कम 6-7 साल लग जाते हैं, तो ऐसे में कार्यकाल खत्म हो जाता है। लिहाजा पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं, ऐसे अवसर आए हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश में इंटरवीन किया है, दखल दिया है और समुचित आदेश पास किए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की लंबी सुनवाई की, लंबा आदेश लिखाया, लेकिन आदेश का नतीजा यही निकला कि मीनाक्षी नटराजन को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन चाहें तो वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती हैं 226 में हाई कोर्ट में, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कहा है कि अब चूंकि इलेक्शन प्रोसेस चालू हो गया था लिहाजा कोर्ट इसमें दखल नहीं देना चाहता। यही बात उन्होंने गुरुवार को भी कही थी और आज भी इस लंबी सुनवाई और लंबे आदेश का नतीजा लबोलुआब यही था कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा।
6: पर संजय, क्या आप ये माने कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप हाई कोर्ट जा भी सकती हैं, अब तो समय नहीं रह गया है ना, डेडलाइन भी है, तो ऐसे में कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हाई कोर्ट अब जाएंगी?
7: हाई कोर्ट जाएंगे भी तो उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि असर ये होगा कि अब इलेक्शन पिटीशन चलती रहेगी, नोटिस जारी होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश ये भी है अशोक कुमार के मामले में कि इलेक्शन पिटीशंस का निपटारा बहुत हड़बड़ी में नहीं किया जाए, सभी पक्षकारों को समुचित अवसर दिया जाए। और यही वजह है कि इस अवसर देने के चक्कर में और सबको अपनी बात कहने के और बात की जवाब का प्रतिउत्तर दाखिल करने को लेकर यह प्रक्रिया लंबी चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो ऐसे में 4-5 साल अमूमन लग जाते हैं। तो नतीजा यही होता है कि जब इसके बाद के चुनाव होंगे तो उस समय यह नतीजा आएगा कि ये आरओ का ऑर्डर, रिटर्निंग ऑफिसर का ऑर्डर मान्य था नहीं था, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक था या उससे मनमाना था, जैसा कि मीनाक्षी नटराजन के वकील अभिषेक मनु सिंह भी ये दावा कर रहे हैं और उन्होंने दलीलें भी दी हैं कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला था, निर्णय था, वो एक तरफा था, बिना हमें सुने था, और दो 6 कर दिया है रिटर्निंग ऑफिसर ने। कोर्ट को चाहिए कि हमारे अधिकारों की रक्षा करे और जो अन्याय रिटर्निंग ऑफिसर ने किया है, निर्वाचन आयोग ने किया है, उस अन्याय से हमारी रक्षा करें और हमें न्याय दिलाएं।
6: क्योंकि अब कोर्ट ने साफ तौर पर यह टिप्पणी कर दी है कि हम इलेक्शन प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर नहीं करते हैं, गुरुवार को भी यही अपील की गई थी, तो अब कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के पास क्या विकल्प बचा है? क्योंकि हाईकोर्ट में भी आप कह रहे हैं अगर जाएंगे भी तो एक तरीके से यही निर्णय आने वाला है, तो अब यही माने कि उनका नामांकन रद्द है और अब वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगी?
7: जी हाँ, निर्वाचन आयोग ने भी यही कहा कि हमारे पास ये शिकायत लेकर आए थे, लेकिन चूंकि इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट भी यही हैं, आदेश भी यही हैं, पुराने निर्देश भी यही हैं, गाइडलाइन भी यही है, और इसके साथ ही जो चुनाव नियम है या फिर आरओ के लिए हैंडबुक है, वो तमाम चीजें ये कहती हैं कि एक बार इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने का मतलब कि नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी होने के बाद सिर्फ और सिर्फ किसी को भी कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, किसी को कोई दुख तकलीफ दर्द हो, तो उसका एक ही उपाय है, यानी वो इलेक्शन पिटीशन दाखिल करे, वो भी इलेक्शन प्रक्रिया पूरी होने के बाद। चूंकि यहाँ पर रिजल्ट आ गया है और निर्विरोध तीनों उम्मीदवार मध्य प्रदेश से जीत गए हैं।
6: मैं रुकूंगी आपको, जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीतू जी, अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि हम इलेक्शन प्रोसीडिंग में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अब मीनाक्षी नटराजन तो कंटेस्ट नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अब आगे इस मामले को किस तरीके से ले जाएगी?
8: अब देश को देखना पड़ेगा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप भी आते हैं, आपको भी समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत तरीके से, जिस तरीके से रिटर्निंग ऑफिसर का जो व्यवहार था, पूरा संघ आरएसएस और बीजेपी के व्यवहार के हिसाब से चला।
6: मैं आपको मीनाक्षी नटराजन
9: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हमारे लोग गए तो उन्होंने 48 घंटे तक भी कोई जवाब नहीं दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कम से कम हमारी बात की सुनवाई की और उस पर अपना एक फैसला दिया, लेकिन चुनाव आयोग इस तरह से मिला हुआ है कि उन्होंने उसके लिए कोई अपनी तरफ से कोई जवाब तक नहीं दिया। और आज तो ये भी ताज्जुब की बात है कि हमारा जो मामला चल रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ था, लेकिन आज स्टेट और मध्य प्रदेश ने अपना भी वकील खड़ा किया, तो इससे आराम से समझ में आता है कि क्या साठगांठ चल रही है और क्या कहां पर हो रहा है।
10: मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी आप थी वहां पे, खुद प्रेजेंट थी।
9: हाँ, मैं ऑनलाइन थी।
10: ऑनलाइन प्रेजेंट, पूरी दलील सुनी।
9: हाँ,
10: क्या आप सेटिस्फाइड हैं जो सरकार?
9: देखिए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए हैं।
10: मैम, आप ये मानती हैं, आप ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो चीजें प्रोसीजर है उनको जब आप नहीं कर रहे? आलू भाई, मुझे एक
6: संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, मीनाक्षी नटराजन की इस बात में कितना दम है कि उनकी लड़ाई तो चुनाव आयोग के खिलाफ थी, तो स्टेट ऑफ एमपी को अपना वकील खड़ा करने की क्या जरूरत थी?
7: जी हाँ, स्टेट ऑफ एमपी की तरफ से यानी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित थे और उन्होंने अपनी दलीलें भी रखी, लेकिन बाकी अन्य पक्षकारों ने, जिसमें मीनाक्षी नटराजन की तरफ से कहा गया कि चूंकि ये पार्टी नहीं है इस मामले में, इनका कोई ये पक्षकार नहीं है, लिहाजा कोर्ट इनको अलाउ नहीं करे, लेकिन इसके बावजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये दलीलें जरूर दी कि जो हवाला, जिन आदेशों का हवाला दिया जा रहा है मीनाक्षी नटराजन की तरफ से, सीनियर एडवोकेट उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी जिन आदेशों का हवाला दे रहे हैं, प्रेसिडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो गलत संदर्भ में है और कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है, लिहाजा कोर्ट इनकी बातों का यकीन ना करे, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। हालांकि ऑर्डर में भी कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है जो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी गई, और महेश केवट की तरफ से जो बीजेपी के उम्मीदवार थे जो जीत गए हैं इस पूरे मामले में, यानी कहें तो कम उनके हिस्से तीसरे उम्मीदवार के रूप में उनके पास कम वोट थे, लेकिन कहें तो एक तरह से उनकी लॉटरी लग गई, इनका नामांकन खारिज हो गया, इसलिए महेश केवट जीत गए। महेश केवट की तरफ से मुकुल रोहतगी ने दलीलें देते हुए कहा कि ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन, उनका ये कहना था कि जो फैसला है आरओ का वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉग्निजेंस ले लिया गया, कॉग्निजेंस का मतलब कि वहां पर उनको नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब दिया गया, इससे ये साबित होता है कि उस सारे लंबित मामले की जानकारी मीनाक्षी नटराजन को थी और आरओ ने उनको मौका भी मुहैया कराया, जैसे सबको मुहैया कराया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसमें सुधार करके इस मामले का जिक्र नहीं किया है, तो ये साबित होता है।
6: पर वो तो ये दलील दे रही थी कि सिर्फ एक लीगल नोटिस है और नोटिस मेंशन करना जरूरी नहीं होता है, जाहिर तौर पर उनके पास पूरी लीगल एडवाइस थी, पूरी टीम थी, तो उस पर संज्ञान लेना था ना।
7: कानून के जानकारों का ये कहना है कि हमने कई सीनियर एडवोकेट से बात की, उनका ये कहना है कि एक बार कोर्ट का नोटिस आ गया, चाहे समन आ गया, तो इसका मतलब कि जो क्रिमिनल लॉ प्रोसेस है वो बॉल रोलिंग करना शुरू कर दिया है, बॉल आगे बढ़ गई है, आपने किक भी मारी उसमें क्योंकि आपने उसका प्रतिउत्तर भी कोर्ट में दिया, इसका मतलब मामला लंबित है, तो जब तक उसको उसका नतीजा ना आ जाए तब तक आपको इस मामले का जिक्र करना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि वो होम्योपैथी की ऐसी दवा थी ये रिवील करना, जिसको अगर ना ले
6: वो रिवील भी करती तो फिर शायद कंटेस्ट नहीं कर पाती, आप यही कह रहे हैं?
7: नहीं नहीं नहीं, कानून ये कहता कि अगर वो रिवील भी करती तो उनके चुनाव पर, चुनावी नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, वो होम्योपैथी की ऐसी दवा है, अगर ले लो तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं लो तो आपको नतीजा भुगतना पड़ सकता है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए आपका, और अब बात करेंगे ईरान अमेरिका डील पर ट्रंप कार्ड की।
11: You can't have a nuclear weapon. I gave them a break at the request of Pakistan, the field marshal.

0: और इस खास पेशकश में बात करेंगे ट्रंप कार्ड की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ईरान युद्ध खत्म होने का ऐलान करते हुए डील की समय सीमा बता दी। ट्रंप ने कहा कि वीकेंड में यूरोप के किसी देश में डील पर मोहर लगेगी और ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। उनकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस डील पर साइन करेंगे। वह ईरान ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक सारी बातों पर सहमति हो गई, लेकिन अमेरिकी दावों को विरोधाभासी बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह भी कहकर ट्रंप के दावों को उलझा दिया कि अभी वो किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंचे। तो दुनिया एक और वॉर से पीस की ओर बढ़ रही है। अमेरिका ईरान में डील का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ट्रंप ने अचानक ही युद्ध रोकने का ऐलान किया और ईरान के साथ डील की पूरी कहानी बता दी। इसी हफ्ते डील पर मोहर लगेगी। इसके लिए यूरोप में टॉक टेबल तैयार किया जा रहा है। अगर यह डील हुई तो सिर्फ अमेरिका ईरान रिश्ते नहीं बदलेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी, तेल बाजार और मिडल ईस्ट की सियासत पर इसका असर पड़ेगा।
1: Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
3: अट्ठाईस फरवरी 2006, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है।
1: मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑन ईरान, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट देयर विल बी अ साइनिंग दिस वीकेंड, बिकॉज यू हैव कम क्लोज टू सीलिंग अ डील, बट एट द लास्ट मिनट इट हैज फॉलन अपार्ट एंड
2: इट विल बी सून, मेबी दिस वीकेंड।
1: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
1: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
2: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: And
2: you'll have oil prices dropping like a rock.
3: Media reports के मुताबिक deal के draft में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज समुद्री रूट खुलेगा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा, ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे, 60 दिनों तक सीज फायर होगा।
4: एक तो 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है। ये हर कोई जानता है कि 4 जुलाई न केवल अमेरिका की स्थापना का 250वां वर्ष की वर्षगांठ है, उसकी अमेरिका का जन्मदिन है एक तरीके से 250वां, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है। और ट्रंप की कोशिश है कि उससे पहले ये ईरान का संकट जो है वो खत्म हो जाए, वो उन सवालों के साथ में नहीं जाना चाहते हैं। ये बात हर कोई जानता है और इसीलिए कोशिश हो रही है कि इस सप्ताहांत, यानी जब वो G7 की बैठक के लिए जाएंगे पेरिस के फ्रांस के एवियन में, और जिनेवा में वो लैंड करेंगे, वहां से उन्हें एवियन जाना है एक लेक जिनेवा क्रॉस करके, तो वहां पर ये मुमकिन है कि यूरोप के उनके इस दौरे में ये समझौता हो जाए या इस तरीके के समझौते पर कोई दस्तखत हो जाए।
3: डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज जल डमरूबंदी को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है। ईरान को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि तेहरान कहीं परमाणु हथियार की तरफ न बढ़ जाए। एमओयू में ईरान के लिए कहा गया है कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर रास्ता निकालेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक विकल्प ये हो सकता है कि यूएन निरीक्षकों की निगरानी में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित किया जाए। सबसे बड़ी राहत, प्रतिबंधों में ढील। अमेरिका ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने की अस्थायी छूट दे सकता है, मतलब ईरान को वो पैसा मिलना शुरू हो सकता है जिससे उसे लंबे समय से जरूरत है। लेकिन अमेरिका की शर्त होगी, पहले पालन फिर राहत। अगर ईरान समझौते की शर्त निभाता है तो ये छूट आगे बढ़ सकती है। इस पूरी डील के पीछे कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के मध्यस्थ अली अल थावदी और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच घंटों बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद शुरुआती सहमति बनी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक फोन डिप्लोमेसी चली। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी बातचीत से जुड़े रहे। लेकिन कहानी में अभी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम मंजूरी मिल गई है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में उच्च स्तर पर सहमति बनी है, लेकिन आखिरी मोहर बाकी हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस डील की खबर ने इसराइल को भी चौंकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू को हाल की बातचीत की पूरी जानकारी नहीं थी, यानी जिस वक्त अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर लौट रहे हैं, इसराइल की चिंता बढ़ सकती है। तेल अवीव लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख की मांग करता रहा है। प्रणय उपाध्याय, सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
0: ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक और दावा आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने न सिर्फ परमाणु हथियार विकसित करने पर सहमति जताई है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि आपने सुना या नहीं, लेकिन हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है और कभी भी वो परमाणु हथियार न रखने पर सहमत हो गए, जिस बात पर हमने जोर दिया यही हमारा मकसद। इस बीच बड़ी खबर, ट्रंप के दावे को लेकर ईरान का बयान आया है। उन्होंने साफ कर दिया कि अभी कोई समझौता नहीं हुआ। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा कि जंग खत्म करने के समझौते का मुख्य हिस्सा अमेरिका के विरोधाभासी रवैये और उनके आक्रामक रुख पर तय करेगा। समझौते का मसौदा अभी देश की संबंधित संस्थाओं के पास समीक्षा के लिए है और इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
9: Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे? कौन से आरोप? रिबेल? आप ये तो रिबेल कहाँ से हो गए? भगोड़े हैं। रिबेल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं।
2: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे हैं। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी? उनका धंधा ही यही है भैया, बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति ट्रूथ।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: Tune in's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
6: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
7: Face complete oral health ka sach.

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे, कौन से आरोप? रिबेल, आप ये तो रिबेल कहाँ से हो गए? भगोड़े हैं। रिबेल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं।
2: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे हैं। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसमें सयानी घोष का नाम नहीं था, सयानी घोष ने बाद में पाला बदलने का प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयानी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर उस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस

0: मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज। चुनाव में दखल से इनकार, कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। टीएमसी में बगावत के बीच ममता के विश्वस्त कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, हमारी सुरक्षा को खतरा, बागियों को प्रलोभन देने का भी जड़ा आरोप, शत्रुघ्न सिन्हा की दो टू मैं दीदी के साथ। नीट परीक्षा में छात्रों को बड़ी राहत, एनटीए ने दिया तैयारी के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त, अब 3 घंटे 15 मिनट की होगी परीक्षा, आज औपचारिक ऐलान। चील की तरफ ईरान, अमेरिका के तेजी से बढ़ते कदम, ट्रंप का दावा, समझौता तकरीबन पक्का, ईरान की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल, कहा डील का प्रारूप तय, मगर ट्रंप के बदलते रुख से आशंका।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद भारत।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ मानशु दीक्षित। 2 बज गए हैं, न्यूज रूम लाइव में आपके सामने मैं हाजिर हूं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि न्यूज रूम लाइव में हम कौन सी खबर है जिनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात की जाएगी मीनाक्षी नटराजन की। मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट गई थी, उनकी याचिका थी, लेकिन वहां से सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगा है। दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम जो बात करेंगे वो होगी ममता बनर्जी की। टीएमसी में अब बचेगा कौन? 19 सांसद तो बता रहे हैं कि बागी हो गए हैं, अब आगे और कितनों का नंबर है ये पिछले कुछ दिनों से खबर चली आ रही है, और आज भी इसमें क्या अपडेट है ये हम आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर हम आपको बताएंगे कि पेपर लीक और बेरोजगारी, 2027 की तैयारी, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ ही ठीक 2:30 बजे कंगना रनौत एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले, जैसा कि हमने आपको बताया, मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में उनको जोरदार झटका लगा है। तो मीनाक्षी नटराजन याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द हुआ था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से भी मीनाक्षी नटराजन को झटका लगा है। तो देखिए, मीनाक्षी नटराजन की बात की जा रही है, तो समझ लीजिए कि हुआ क्या है। कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, मीनाक्षी नटराजन ने जो याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया में दखल नहीं दे सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। अब याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आप हाईकोर्ट जाइए, ये आपका अधिकार है। और मीनाक्षी नटराजन को जो उम्मीद थी, कांग्रेस को जो उम्मीद थी, वो उनकी पूरी नहीं हो पाई है, और कांग्रेस की तरफ से ये कहना है कि ये गलत है, कांग्रेस का ये कहना है कि ये अन्याय हुआ है, फैसला सही नहीं है, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से याचिका रद्द हो गई, कांग्रेस को बड़ा झटका है। मीनाक्षी नटराजन को उम्मीद थी, मीनाक्षी नटराजन ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं।
2: आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई, आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूँगी, और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
3: आप हाई कोर्ट का रुख करेंगी, आप मौजूद भी थी आज के हियरिंग में?
2: हाँ, मैं हियरिंग में मौजूद थी, लेकिन ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं था, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पार्टी की कैंडिडेट हूँ, पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जन मिलकर हम लोग तय करेंगे उसके आधार पर हम अपने आगे की रणनीति।
4: मीनाक्षी नटराजन, मीनाक्षी नटराजन साफ तौर पर कहती हुई कि जिस प्रकार से जो उनकी पिटीशन है उसको एंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दर्शाता है कि एक प्रकार से चुनाव जो है वो छीना गया है, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम मेरे लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको मैं यूटिलाइज करूंगी आने वाले दिनों में। राहुल गौतम, आज तक के लिए।
5: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्ग्यूमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई।
0: तो सुप्रीम कोर्ट गई थी मीनाक्षी नटराजन, लेकिन वहां से उनको झटका लगा है जोर का। तो सीधे अब जब कोर्ट की खबरें होती हैं, हम जाते हैं हमारे सहयोगी संजय शर्मा जी के पास, जो कि कानून के बहुत अच्छे जानकार भी हैं और कोर्ट की खबरें कवर भी करते हैं। अब संजय जी, जरा ये बताइए कि अब मीनाक्षी नटराजन के पास अब आगे क्या रास्ता है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया याचिका खारिज करते हुए?
6: भाई, मुझे लगता है कि अब मीनाक्षी नटराजन के पास सिर्फ इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और जहां तक रही बात, ये बड़ा बहस का विषय है कि उनको जो कानूनी राय देने वाले थे वो पार्टी के ही सलाहकार थे, और जो पार्टी में कई सीनियर एडवोकेट्स हैं वो भी जाहिर है कि उनको सलाह दे रहे थे। तो ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि उनको कोर्ट ने भी ये कहा कि डिक्लेयर करने में दिक्कत क्या थी, तो मुझे लग रहा है कि वो मसला ऐसा था कि अगर वो डिक्लेयर कर देती तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी। होम्योपैथी की ऐसी दवा की गोली थी कि जिसको खा लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन नहीं खाने से नुकसान हो गया।
0: अब मीनाक्षी नटराजन आगे क्या कर सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप हाईकोर्ट जाइए।
6: सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो चाहें तो 226 के तहत हाईकोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल कर सकती हैं, लेकिन जो कायदा है उसके मुताबिक उनको पहले हाई कोर्ट ही जाना चाहिए।
0: हाँ, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि जो मीनाक्षी नटराजन, उनको सलाह देने वाले कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, तो कांग्रेस के साथ में तो पहले भी रहा है और कांग्रेस के तो पास बहुत वरिष्ठ नेता है जो उस तरह के अनुभव को देख चुके हैं, तो क्या सलाह गलत दी गई, क्या ऐसा हो सकता है?
6: कोर्ट का फैसला तो यही बता रहा है, कोर्ट का ये कहना था कि इनको डिक्लेयर करना चाहिए था, और आरओ का फैसले में कोर्ट ने किसी भी तरह का दखल देने से इनकार कर दिया। तो बिल्कुल, अगर बिटवीन द लाइंस हम पढ़ें और देखें और समझें, तो उसे यही लगता है कि जो कानूनी सलाहकार थे मीनाक्षी नटराजन के, उन लोगों ने सही सलाह नहीं दी। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उन्होंने, जैसी एक कहावत है पुरानी की, चोर से कह दिया चोरी करो, साहूकार से कह दिया जगता रहियो, यानी इधर भी उसी को जीने का हक है इस जमाने में जो इधर का रहे और दिखता रहे और उधर का हो।
0: बहुत सही, क्या बात की। लेकिन इसी बीच एक बात और आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बयान भी आ गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि हर जगह आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष, वो बयान दे रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को बिठा दिया गया है, लोग मनमानी कर रहे हैं, कानून संविधान कुछ भी नहीं मान रहे हैं, कानून का पालन ही नहीं हो रहा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा जा रहा है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष, और वे कह रहे हैं कि आरएसएस के लोगों को हर जगह बैठा दिया गया है। सुनिए,
7: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहां पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं।
0: तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं विश्वास सारंग की तरफ से क्या कहा जा रहा है सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर, वो आप सुनिए।
8: देखिए, ये तो पहले से ही विदित था कि कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ, वो पूरा टेक्निकल था। एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी।

0: पीयूष हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल पा रही है?
1: जी बिल्कुल हिमांशु, एक बड़ी खबर आ रही है और सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मंडे को बड़ी मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात में सभी जो बागी सांसद हैं वो लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली आ रहे हैं और वो मिलने वाले हैं सभी तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों से। ये मुलाकात संडे को होने वाली है, यानी कि आगे आने वाले 2 से 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो बागी सांसद पश्चिम बंगाल चले गए थे, कई सांसद जो कोलकाता चले गए थे, वो सभी सांसद अब दिल्ली पहुंच रहे हैं। संडे को उनकी मुलाकात शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में होने वाली है और इस मुलाकात के बाद मंडे को ये सभी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे और वहां मांग करेंगे कि उनको एक अलग का गुट के तौर पर मान्यता दी जाए।
0: अच्छा, शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब देश की जनता ये भी जानना चाह रही है, जो सांसदों की बात की जा रही है बागी सांसदों की, वो कौन कौन से हैं? चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब इसमें नाम आता है काकोली घोष का, बारासात से सांसद सयानी घोष, जो कि बहुत खास कही जाती थी, और इसके साथ ही प्रसून बनर्जी, इनका भी नाम सामने आता है। अब सयानी घोष जादवपुर से हैं। अब आगे और देखिए, इसमें और नाम आते हैं, तीन नाम और जुड़ते हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से, खली उर रहमान और जगदीश चंद्र बसुनिया, ये नाम भी और जुड़ते हैं। लिस्ट यहां पर खत्म नहीं होती है, नाम लिस्ट थोड़े लंबे है, ज्यादा है। पार्थ भौमिक का नाम सामने आता है, अबू ताहिर खान का नाम सामने आता है, बापी हलदर का भी नाम सामने आता है। बापी हलदर मथुरापुर से, और ऐसे 19 सांसदों की लिस्ट है। अब आगे और देखिए, इसमें मिताली बाग का नाम सामने आता है, इसमें माला रॉय का नाम सामने आता है, इसमें दीपक अधिकारी का नाम सामने आता है, जो कि घटल से है। ये तीन नाम और जुड़ जाते हैं, फिर तीन नाम और जुड़ते हैं, और वो तीन नाम कौन से होते हैं? इनमें जून बालिया का नाम सामने आता है, जो कि कहां से है? मेदिनीपुर से। अरूप चक्रवर्ती का नाम बांकुर से ये है, और कलीपदा सोरेन झारग्राम से। नाम जुड़ते चले गए, काफिला बनता चला गया और ये बहुत लंबा होता गया, जैसे नेताओं की गाड़ी चलती है ना काफिले में, बिल्कुल वैसे ही। रचना बनर्जी हुगली से, इनका भी नाम शामिल है बागी सांसदों में, और धीरे धीरे और भी नाम सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, वो भी हम आपको बता दें। बड़ी खबर जो इस मामले में अभी तक सामने आ रही है, टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा का दावा सामने आया है। हमारे साथ कई और सांसद जुड़ सकते हैं, मतलब देखिए काफिला भी यहां पर रुकने वाला नहीं है, अभी और भी कई लोग इसमें जुड़ सकते हैं। हर दिन कोई नया नाम शामिल हो रहा है और जगदीश साहब कह रहे हैं कि अभी और भी कई नाम जुड़ेंगे। अभी हम 19 हैं और ये संख्या अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती है। हमारे साथ कई और सांसद जुड़ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। टीएमसी में विद्रोह क्यों हुआ, इसको लेकर जब जगदीश से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ममता और अभिषेक बनर्जी कार्यकर्ताओं की सुनते नहीं है।
2: ज्यादा नंबर हो सकता है, अभी अभी 19 लोग सही किया है, और भी आ सकता है, लेकिन जो मकसद जो है, जो टीएमसी जो कार्यकर्ता है टीएमसी को, जो अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी, हमारा जो टीएमसी का लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, किसी को कोई बात नहीं सुनता है। ये जो विधानसभा इलेक्शन किया है, अभी अभी कोटा बंगल से हम हार गया, तो प्रत्याशी चुनने के लिए कोई सांसद को, कोई इलाका लीडर को, सीनियर लीडर को पूछना चाहिए। तो हमारा जो लीडर है टीएमसी का, वो कभी किसी को पास नहीं पूछना। उनका आईपैक है और कैमाक स्ट्रीट है, दोनों मिलकर ये प्रत्याशी चुन लिया।
0: इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद वो बड़ा बयान दे रहे हैं। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि डरा धमका कर बीजेपी अपने पाले में सांसदों को कर रही है, और जो डरा नहीं पा रहे जिनको, तो उनसे क्या किया जा रहा है, उनको 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का बड़ा बयान, सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है और ऐसे उनको बागी बनाया जा रहा है। जो लिस्ट है, लिस्ट पर भी सवाल उठा दिए गए थे कि ये तो लिस्ट भी फर्जी है।
3: यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं, जबकि ये एयर गन है। किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
4: देखिए, मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ। बीजेपी का कोई गुंडा उंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी

0: हटा ली गई है,
1: जी सर।
0: मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। मैं केवल ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है। हटा लिया तो हटा लिया है। जिस तरीके से 5 MPO का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए, उनके परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया, कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए, उसके बाद में वो डर गए, डर करके चले गए। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारीक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे, उनकी भी डील वहीं हुई। भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले, वो 8 ही लोगों ने साइन किया था। आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है, जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है, बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है, उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था। कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए, जिस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था, तो उस पर CBI लगा दी थी, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी दस्तीदार, तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा, भाई CBI ED क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ तुम, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, 3-4 लोगों ने 2 मांगे माने 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए महीना हमें सेट कर दीजिए, तो उसके घर से ही खबर मिलती है।
1: तो देखिए, कोई 10 लाख में मान गया, कोई 50 लाख में मान गया, कोई 5 करोड़ 10 करोड़, ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं। लेकिन कीर्ति आजाद सवाल उठा रहे हैं तो सौगत रॉय भी सवाल उठा रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं।
2: यूसुफ पठान को तो बड़ौदा के है, पार्टी मनोनयन नॉमिनेशन दिया, उन्होंने जीता है, तो बोल रहे थे पार्टी के साथ रहेंगे, क्यों बदल किया मुझे पता नहीं, मेरे साथ बात नहीं। सायनी के साथ मेरा बात हुआ 4-5 दिन पहले, वो तो बोल रही थी कि वो पार्टी में ममता बनर्जी के साथ रहेगी। अभी तो सुन रहा हूँ कि वो साइन किया, आज अखबार में देखा कि वो दिल्ली से एक तो सनग्लास पहन के मुंह पे मास्क लगा के कलकत्ता पहुंचा, और क्या बोल सकता।
1: तो ये केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर कई जगह कार्यक्रम किए गए, और इसके साथ ही ये भी खबर आ रही है कि बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, 12 साल में क्या क्या अच्छे काम हुए हैं वो सभी काम भी गिनाए, और रफ्तार कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ी है विकास की वो भी बताया। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो सुनवाते हैं आपको।
3: हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है, भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है, और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना, पहली बार इस बात को देखा होगा।
4: ही कारकिर्द केवळ लांब आहे एवढीच, यामुळे ती महत्वाची नाही, तर देशाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम आणि जगाच्या पाठीवर भारताची पत वाढवण्याचं काम या ठिकाणी केलेला आहे।
5: ये बीते 12 वर्षों ने ये साबित किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो और नियत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, और यही विकसित भारत की नींव है, यही अमृतकाल की पहचान है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत विजन आज हर राज्य, हर शहर और हर नागरिक का मिशन बना है।
1: तो 12 साल कितने असरदार रहे ये यहां पर बताया जा रहा है। यहां रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से पर, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
8: Schwarber to right field, and it will leave.
7: from the first pitch of the season to the stretch run.
8: That's the ball game.
7: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: अनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
6: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: AU सोच बदलो और बैंक भी।
8: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
9: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
10: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
11: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
9: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
12: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
10: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
9: जहां खबर वहां खबरदार।
13: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
14: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
15: ২০২৭ के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। 2022 की करारी हार और अंतरकलह से सबक लेते हुए पंजाब कांग्रेस ने 2027 के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार पार्टी किसी CM फेस के सहारे नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं होगा।
16: कांग्रेस पार्टी का जेड़ा चुनाव है और राहुल गांधी साहब के नेतृत्व विच और खड़गे साहब के नेतृत्व विच और चुनाव निशान पंजा के नेतृत्व विच लड़ा जा रहा है। राजा वड़िंग ता एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर।
15: दरअसल कांग्रेस पुराना इतिहास नहीं दोहराना चाहती। 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाने के बाद जो अंदरूनी कलह मची उसने पार्टी को सिर्फ 18 सीटों पर समेट दिया। चन्नी को CM फेस बनाना भी काम नहीं आया और नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी से दूरी बना चुके हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी ना हो इसलिए राहुल गांधी ने ये सेफ गेम खेला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार चेहरों की जंग छोड़ मुद्दों के सहारे पंजाब में वापसी करना चाहती है। आज तक ब्यूरो।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
4: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
6: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
5: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
6: They score!
5: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
7: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
8: AU सोच बदलो और बैंक भी।
0: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
9: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
10: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
0: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
11: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
9: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
0: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
2: In association with
12: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
13: Monte Carlo, it's the way you make me feel.
14: उत्तर प्रदेश में जितना मौसम का पारा चढ़ा है उससे ज्यादा सियासी तापमान बढ़ा हुआ है, क्योंकि 27 के समर के लिए सभी दल अपने कील कांटे दुरुस्त करने में लग गए हैं। एक हलचल BSP में है। समाजवादी पार्टी के PDA के जवाब में BSP की भाईचारा कमेटी OBC और दलित की बड़ी बैठक की गई, जिसमें हर जिले के OBC और दलित नेता मौजूद रहे। ऐसा इसलिए ताकि वोट बैंक ना टूटे और PDA से बचा रहे। एक और हलचल समाजवादी पार्टी में है। समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जब सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से बातचीत शुरू होगी, तब सबसे पहले कांग्रेस से किन जिलों में उन्हें चुनाव लड़ने में दिलचस्पी है ये पूछा जाएगा। SP को लगता है कि बड़ा उद्देश्य BJP को UP में हराना है, फिर सीट पर चाहे कोई उम्मीदवार लड़े, बशर्ते वो उम्मीदवार जाति समीकरण को साध रहा हो और जिताऊ हो। हालांकि सूत्रों से खबर है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 80 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि उसकी 403 सीटों पर पूरी तैयारी है।
15: कांग्रेस की कितनी तैयारी है?
16: 400 तीनों पर पूरी मजबूती के साथ हमने सभी अपनी तैयारी की है। संगठन बूथ स्तर पर जीतने की क्या रणनीति हो सकती है उस पर हम काम कर रहे हैं।
14: तीसरी हलचल BJP में है। माना जा रहा है कि जल्द ही UP में सीटों के बंटवारे को लेकर NDA की बैठक होगी, मगर उसके पहले योगी सरकार ने नौकरी वाला बड़ा दाम चल दिया है। 2026 में 1.5 लाख से ज्यादा नई भर्तियों की तैयारी है। इसके साथ UP शिक्षा सेवा चयन आयोग 60,000 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मतलब कह सकते हैं कि यूपी में चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज, चुनाव में दखल से इनकार, कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। टीएमसी में बगावत के बीच ममता के विश्वस्त कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, हमारी सुरक्षा को खतरा, बागियों को प्रलोभन देने का भी जड़ा आरोप, शत्रुघ्न सिन्हा की दो टूक, मैं दीदी के साथ। नीट परीक्षा में छात्रों को बड़ी राहत, एनटीए ने दिया तैयारी के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त, अब 3 घंटे 15 मिनट की होगी परीक्षा, आज औपचारिक ऐलान। डील की तरफ ईरान अमेरिका के तेजी से बढ़ते कदम, ट्रंप का दावा समझौता तकरीबन पक्का, ईरान की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल, का डील का प्रारूप तय, मगर ट्रंप के बदलते रुख से आशंका।

0: अब बात यूपी एक्सप्रेस की करेंगे, जहां हम आपको उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। पहली खबर लखनऊ से, जहां शासन के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने उपलब्धियां गिनाई, कहा 2014 के बाद भारत ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण का नया मॉडल दिखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी, यूपी को सबसे अधिक लाभ मिला, युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का उत्थान हुआ। अखिलेश यादव का दावा, 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी। बोले इनकंबेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। यूपी चुनाव में एआईएमएम की 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। ओबीसी की बहराइच रैली से अभियान की शुरुआत। पश्चिमी यूपी और अवध पर होगा पार्टी का फोकस। एआईएमएम की यूपी चुनाव तैयारियों पर एसपी में बयानबाजी तेज। एसपी प्रवक्ता ने कहा, चुनाव के समय सक्रिय होकर एआईएमआईएम केवल सियासी समीकरण बिगाड़ती है। फिरोजाबाद के पास शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव, जांच में जुटी पुलिस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन में थे सवार, घटना में सुरक्षित बताए गए, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। देवरिया के शिवानंद चौरसिया की समुद्र में मौत, परिवार में मचा कोहराम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एमटी स्ट्रेबेलो जहाज पर हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि। अलीगढ़ में राष्ट्रीय सेविका समिति का भव्य पथ संचलन, अनुशासित अंदाज में निकली महिलाएं, शहर भर में मार्च करती दिखी सेविकाएं, संगठन की शक्ति और अनुशासन का प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 45 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी उद्घाटन। संबल में ट्रिपल तलाक पीड़िताओं को लेकर एसपी सांसद का सरकार पर हमला, सरकारी योजनाओं को लेकर लगाए गए आरोप, कहा मुसलमानों को टारगेट कर नुकसान पहुंचाया। गाजियाबाद में जिम ट्रेनरों के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य, सभी ट्रेनरों को पहचान पत्र पहनना होगा, प्रशासन तैयार करेगा डेटाबेस। इटावा में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, फिशर फॉरेस्ट क्षेत्र में स्थित सैयद बाबा की मजार को हटाया गया, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। ग्रेटर नोएडा के एटीएस रिप ड्राइव में बड़ा हादसा, 2 मजदूरों की मौत। निर्माणाधीन टावर की 37वीं मंजिल से गिरने के बाद दोनों मजदूरों ने अस्पताल में दम तोड़ा। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 इनामी अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी दोनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े, घायल बदमाशों को इलाज के लिए भेजा गया। बाराबंकी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हुआ, चलते ट्रेन की चपेट में आए दंपति। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस वाहन की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे के वक्त परिजनों का सड़क पर हंगामा, कार्रवाई के आश्वासन के बाद खुला जाम। लखनऊ सीतापुर हाईवे पर बदमाशों का आतंक, कैब रुकवा कर की फायरिंग, हवाई फायरिंग कर महिलाओं से करीब 5 लाख रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हुए आरोपी। नोएडा के ओवरसीज अपार्टमेंट की 4th मंजिल पर लगी आग, फायर विभाग की त्वरित कार्रवाई से 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गाजियाबाद में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, बारिश के चलते शहर की सड़कों पर बड़ी रौनक, लोगों को गर्मी से राहत मिली। सहारनपुर में आंधी के बाद बारिश की धमाकेदार एंट्री हुई, मौसम हुआ सुहाना, तेज तूफानी हवाओं, झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत। बस्ती में बिजली गिरने से घर में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आकर पूरा मकान जलकर राख, ग्रामीणों ने बुझाने की कोशिश की। लखीमपुर खीरी में बड़ा हादसा, बारात बस 11,000 वोल्ट लाइन की चपेट में आई, करंट लगने से कई यात्री झुलसे, जान बचाने के लिए बस से कूदे लोग। शाहजहांपुर में कथित फर्जी एनकाउंटर पर बवाल, ग्रामीणों का हंगामा, आरोपी के एनकाउंटर के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। रामपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, भूमि से हटाया गया कब्जा, जेसीबी से हटाया गया अतिक्रमण, करोड़ों की जमीन को मुक्त कराया गया। हाथरस में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान, सनातन और राजनीति पर साधा निशाना, कहा पार्टियों को सनातनी बनाने की कोशिश गलत, सरकार पर दिखावे का आरोप।
1: छब्बीस ग्यारह का वो भयावह समय, कामा अस्पताल और गर्भवती महिलाओं की जान की हिफाजत, ये सब कुछ वहां की नर्सेस और वहां के स्टाफ पर था। और उसी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म भारत भाग्य विधाता, जिसमें लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: ये मुझे लग रहा है फिल्म से ज्यादा एक जिम्मेदारी है जो आपने ली है।
2: देखिए, हर फिल्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, स्पेशली जब वो कोई रियल इवेंट पे होती है, क्योंकि एक्यूरेसी ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट, स्पेशली जब 26/11 इतना कोई सेंसिटिव इवेंट हो, तो नेचुरली एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है।
1: कितना कितना मुश्किल था, कितने लोगों से आपने इंटरेक्शन की जब ये फिल्म सबसे पहले आपके पास आई, तो पहला थॉट आपके माइंड में क्या था?
2: पहला थॉट मेरे माइंड में यही था कि ऐसे जो नर्सेज हैं, उन्होंने वार्ड बॉयज हैं और खासकर जो सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे उनकी जाने गई, आतंकियों ने उनको मार दिया और ये बात जो है किसी को पता ही नहीं है, उसे छुपी हुई है सबसे। तो मुझे इसको जान के बहुत दुख हुआ कि कैसे हमारे जो जो हमारे आम कर्मचारी होते हैं उनके सहयोगों को किस तरह से निग्लेक्ट इग्नोर किया जाता है। तो उसके बाद जो है मेरे डायरेक्टर सर जो है उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पे रिसर्च किया, हम लोगों ने बैठ के एक दो ड्राफ्ट किए स्क्रिप्ट के, फिर उसके उपरांत हमने शूटिंग की।
1: इसका नाम शायद पहले नर्सेस ऑफ कामा था।
2: जी जी, नर्सेस ऑफ कामा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो है लेबर डे पर 2025 में जो हमारे आम कर्मचारी हैं उनको भारत भाग्य विधाता का दर्जा दिया, तो उस वक्त ये नाम मुझे बहुत छुआ था। मुझे लगा था कि ये एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से उन्होंने, ठीक है, उद्धार करने के लिए स्कीम्स तो कई लाएंगे, लेकिन उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जो है इतना डीपली और माइन्यूटली प्रधानमंत्री जी सोचते हैं। तो फिर ये टाइटल जो है वो जॉन सर के पास था, जॉन इब्राहिम सर के पास, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे प्लीज़ ये टाइटल दे दीजिए, तो उन्होंने फिर ये ओब्लाइज में।
1: एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं लेकिन हम जो करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही खूबसूरत एक लाइन है जो इस फिल्म में मैंने ट्रेलर्स वगैरह में देखी है, वो आई है। लेकिन कितना अहम हो जाता है इन लोगों का योगदान, खासकर अगर हम इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें 26/11 की। ये जिस तरीके से हमारी सेनाएं सरहद पर हमारी हिफाजत करती है, इन्होंने 400 लोगों की जान बचाई, ये भी किसी सैनिक से कम नहीं है।
2: बिल्कुल, और इनकी तरह न जाने, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब एक दिन के लिए अगर आपको रोड कोई साफ ना करे, एक दिन के लिए वो जो ट्रेनों का कोऑर्डिनेशन होता है, जल, आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो आम कर्मचारी हैं अपने घरों से निकल के डे आफ्टर डे, एक दिन के कोई एक सदी में हीरो बन जाना वो एक विशेष बात है, लेकिन हर दिन अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी उसी कंसिस्टेंसी से करनी, चाहे वो कितना ही मोनोटनस क्यों ना हो जाए, उसी को कहते हैं भारत भाग्य विधाता। तो आई थिंक कि हम लोग का और थैंकफुल होना चाहिए हमें, और ये बात हमें हमारे आम कर्मचारियों से सीखने को मिलती है कि हम जो है सोचते हैं कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें कुछ स्पेशल बनना है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करना है, लेकिन स्पेशल तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, हर कोई आता है अपना काम करके जाता है। आम कर्मचारी भाई बहनों से हम क्या सीखते हैं कि आम होकर तुम कैसे कुछ इतना स्पेशल करते हो लेकिन फिर भी अपने आप को आम ही मानते हो। तो ये उदारता जो है ये हम अपने कर्मचारी भाई बहनों से सीखनी चाहिए।
1: आपकी मुलाकात हुई उस समय की नर्सेस से, बातचीत की आपने?
2: जी जी जी, हमने बातचीत की और हमने जो है उनसे काफ़ी डिटेल में सब ये इंसिडेंट्स के बारे में सुना, और बाकी और भी करंट नर्सेस से भी जाना उनके एक्सपीरियंसेस, क्योंकि हमने उनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी काफ़ी डाल। लोग नर्सेस से शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो अपने पेशेंट से इतना अफेक्ट होती हैं, वो हमेशा चाहे वो कीमो कर रही हों, चाहे वो अटैच भी हो जाती हैं, चाहे वो पेशेंट मर जाते हैं, तो वो लोग भी अपना पर्सनल हार मानते हैं वो चीज़ को। तो उस तरह से नर्सेस इतना दूसरों की सेवा में लगी रहती हैं कि अक्सर उनके जो पार्टनर हैं वो निग्लेक्टेड, इग्नोर्ड फील करते हैं, बच्चे इग्नोर्ड फील करते हैं। तो ये सब विषयों में जो है हमने बहुत डिटेल से
1: फिल्म में कहीं कहीं इस तरह के सीन्स हैं भी शायद।
2: जी जी,
1: तो उनके जरिए क्या आप दिखाने की कोशिश कर रही हैं?
2: हम यही दिखाने की कोशिश करना चाह रहे हैं समाज में कि अब हम जो देखते हैं वर्दी में, यूनिफॉर्म में, हमें लगता है ठीक है इनको पगार मिल रहा है, लेकिन कोई भी इंसान पगार के लिए काम नहीं करता है। हमेशा जो है पगार एक छोटा उसका हिस्सा होती है, लेकिन आप जो किसी के लिए योगदान देते हैं, जब आप एक सर्जरी के टेबल पे होते हैं ना, आप सब कुछ भूल जाते हैं। जब आपको एनेस्थीजिया दिया जा रहा होता है आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि आप इतने वनरेबल होते हैं ना, क्या उस वक्त मैटर करता है, कुछ मैटर नहीं करता है। आप सोचते हैं बस मैं आज ये नर्सेज और ये ही मेरे लिए सब कुछ है, इनके सिवाय कोई है ही नहीं, ना कोई कभी था। तो वो वक्त याद करिए और देखिए ये लोग कितने चीजों पे जो है पीछे छोड़कर हर दिन दे शॉप फॉर वर्क, ये इसका मतलब
1: और
2: है।
1: इनके कोई ड्यूटी आर्स भी नहीं होते
2: हैं और जैसा आप कह रही हैं कि हम क्या ये दर्शाने की कोशिश करें कि आप वर्दी में किसी को देखते हैं, आपको नहीं पता उनकी स्टोरी क्या है, पीछे उनकी एक स्टोरी है, और यू हैव टू बी काइंड टू दोज पीपल, बिकॉज हमने ये भी दिखाया कि नर्सिस का काम पेशेंट्स या उनके रिलेटिव्स कितना मुश्किल बनाते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं, यू नो हो हल्ला मचाते हैं, प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेते हैं, और तो और यूनिफॉर्म पे उल्टियां भी कर देते हैं, अगर कोई इस लायक भी हो कि टॉयलेट जाए वो भी नहीं जाना चाहते हैं टॉयलेट, क्योंकि उनको लगता है कि चलो हमें फ्री का सेवा मिल रहा है, तो इस तरह से भी इश्यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कोई वहाँ पे जो है उनको उनके काम में सहयोग देता है, तो ये सब एक्चुअली क्या है कि जिसे कहिए कि बॉटम लाइन यही है कि थोड़ी संवेदनशीलता, अगर हम संवेदनशील नज़रिए से एक दूसरे को देखें इस देश में, तो हम जानेंगे कि हम में से हर एक जो है देश के लिए कुछ करना चाहता है।
1: यहाँ सिर्फ आपने नर्सिस की बात की, लेकिन बताते चलें कि सच्ची घटना पर आधारित है, सिर्फ अपनी उस वर्दी की इज्जत नहीं बल्कि देश की इज्जत रखने के लिए भी कैसे उन्होंने मोर्चा संभाला था, 400 जिंदगियां उन्होंने बचाई थी। आपने हाल फिलहाल में, क्योंकि ये फिल्म आ रही है, आपने नर्सिस की ड्रेस को लेकर भी कुछ आपत्ति जताई है?
2: जी जी हाँ, देखिए जो हमारी फिल्म में जो मैंने ड्रेस पहनी थी उसको लेकर मेरा ये एक बहुत ही निजी एक एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मुझे काफ़ी नर्सिस मुझसे मिली और उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये इशू पे ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है कुछ साल पहले, कि वाकई में नर्सिस को लगा था कि इसमें जो है रिफॉर्म्स होने चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे अब शायद जिस हर एक का एक अपना अपना कोड होता है, तो जो बात मुझे फील हुई थी उस उन पे उन्होंने ऑलरेडी टेकअप करके 7-8 साल पहले ये रिफॉर्म आया है।
1: आजकल की फिल्में, चाहे वो तेजस हो, मणिकर्णिका हो, या ऐसी तमाम फिल्में, या हम भारत भाग्य विधाता ही कह लें, बहुत राष्ट्रवाद से प्रेरित फिल्में जो कि आप आजकल कर रही है, रिसर्च बहुत ज्यादा हो रही है, तो कंगना को आगे हम इसी तरह की फिल्मों में देखेंगे, सच्ची घटनाओं को दर्शाती
2: हुई? नहीं, अभी आप मेरे को इसके बाद कॉमेडी फिल्म में देखेंगे।
1: अच्छा।
2: विकास पहल सर के साथ, तो उसमें आप खूब हंसिएगा, कोई रिसर्च नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ
1: आपको पर्सनली कौन सा जॉनर पसंद है?
2: दोनों ही पसंद है, एक तरह से सिर्फ फ्रिवलस कॉमेडी करने से भी इंसान थक जाता है जिसमें कोई सोल ना हो। अब कल जो है दिल्ली CMG मेरे साथ बैठी हुई थी और एक ऐसा मोमेंट फिल्म में देखे, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा वाह क्या तुमने कंगना ये इतना अच्छा तुमने पोर्ट्रेल किया है, जब वो एक्चुअली वो सीन था जब कसब को देख के वो गवाही दे के बाहर आती है और जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो उनको वो बहुत छुआ कि जो डिपिक्शन थी मेरी कि वो उसमें साहस भी है लेकिन वो डरी हुई भी है, उस दोनों चीज़ों को दिखाने में, तो इस तरह के मोमेंट ऐसी ही फिल्में दे सकती हैं आपको, फ्रिवलस फिल्में कॉमेडी फिल्मों में वो मोमेंट नहीं आ सकते, लेकिन क्वीन जैसी फिल्म हो गई, तनु मनु जैसे, उनमें भी एक अपना चार्म है, अपना मजा है, तो साथ साथ ही चलने वाले हैं दोनों जॉनर।
1: लोग कहते हैं कि कंगना अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखती है, मतलब जो वो करना चाहती हैं वो वही करती है, इंडस्ट्री उनको डिक्टेट नहीं कर सकती।
2: ये तो मुझे, मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं जो मेरे फिल्में देखते हैं लोग या जो देश के लोग हैं उन्होंने मुझे ये प्रिविलेज दिया है कि मैं, चाहे मेरी सफलता एक महिला सशक्तिकरण की फिल्में होगी, उनसे मुझे ज़्यादा सफलता मिली और लोगों को मुझ में इतना विश्वास है, तो मैं नेचुरली अपनी फिल्में।
1: नहीं, लोग आपको फॉलो भी करते हैं।
2: बिल्कुल,
1: हर मामले में फॉलो करते हैं, आधी इंडस्ट्री इसलिए फॉलो करती है क्योंकि कंगना बहुत बेबाक है, और कंगना पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है न्याय के लिए।
2: जी हाँ, आई थिंक मेरी जर्नी डिफरेंट रही है और काफ़ी संघर्षमय रही है, तो उसके करके लोगों को अगर कहीं लगता होगा कि कुछ प्रेरणादायक लगता होगा तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट।
1: इस बेबाकी के पीछे का थोड़ा सा लोगों को भी मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत बेबाक तरीके से आप बातचीत करती हैं। आपने कहा फिल्मों से आपकी छवि, लेकिन हम आपको पर्सनली भी बहुत बार देखते हैं, एज अ पॉलिटिशियन भी हम आपको देखते हैं, बिल्कुल आप बिंदास होकर जवाब देती हैं।
2: जी हमें वही, मुझे हमेशा लगता है कि जो मेरा खुद का नज़रिया है लाइफ को लेकर या खुद की सोच है, अगर मैं उसको वैसे रखूंगी तो कम से कम मैं उसे डिफेंड तो कर पाऊंगी, अब वो लोगों को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन अगर मैं कुछ और बनाऊंगी बात तो आई डोंट नो किस बेस पे बनाऊं, कैसे बनाऊं, फिर कल को मुझ उस पे 4 क्वेश्चन करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, तो मैं हमेशा, लोग कहते हैं कि अरे तुम तो जो सोचती हो वही बोल देती हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम जो सोचते हैं वो ना बोलें तो फिर हम जो किसकी सोच बताएं फिर ये तो
1: सो कंगना जो अंदर है वो बाहर
2: एग्जैक्टली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट या
1: अच्छा हर किसी की लाइफ में एक भाग्य विधाता होता है आपकी लाइफ का भाग्य विधाता कौन है
2: ऐसा तो नहीं है कि जिंदगी में कोई एक भाग्य विधाता होते हैं यू नो अगर आप देखें जब आपका जन्म होता है तो माता से बड़ा भाग्य विधाता कोई नहीं फिर वो भाग्य फिर लेकिन उसके बाद में जो पालन पोषण पिताजी करते हैं तो लगता है ये ना होते तो जीवन ही नहीं होता फिर उसके बाद में कई लोग हमारे गुरु आते हैं अब जैसे मेरी फिल्म में मुझे जो ब्रेक मिला अनुराग बासु जी ने दिया तो एक टाइम पे वही भाग्य विधाता थे फिर सक्सेस नहीं मिला तो फिर विकास बहल की फिल्म क्वीन से मुझे सक्सेस मिला फिर वो भी बड़े भाग्य विधाता हो गए फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में आई तो नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी का हिस्सा बनाया वो पार्टी जिसमें आज लोग नेता बनने के लिए कुछ भी मतलब जिसे कहते हैं ना इतनी मेहनत करते हैं इतना मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड जिसको कह लीजिए उसमें मुझे आने का हिस्सा मिला तो वो भाग्य विधाता हो गए तो हमें ज़िंदगी में कई और जैसे मैंने कहा कभी अगर हम हॉस्पिटल में हो ऑपरेशन टेबल पे तो लगता है कि यही लोग
1: डॉक्टर और नर्स ही भाग्य विधाता है
2: वही भाग्य विधाता एक दिन आपका अगर कुक ना आए काम करने वाले ना आए तो आपको कैसा लगेगा आपको लगेगा कि या तो जो आपके पार्टनर हो या कुछ हो उनसे लड़ाई हो मन मुटाव हो फोन ना आए मैसेज ना आए तो लगता है वही भाग्य विधाता है तो हमारे भाग्य विधाता जो है कई होते हैं एक भाग्य विधाता नहीं होते हैं जिंदगी में
1: चलिए कंगना लेकिन बोला गया था कि पॉलिटिक्स से जुड़ा सवाल नहीं पूछना लेकिन फिर भी एक सवाल है क्योंकि पर्सनली हम आपको बहुत फॉलो करते हैं देखते हैं पॉलिटिक्स में ज्यादा मजा आता है बॉलीवुड में फिल्मों में या सियासत में
2: देखिए फिल्मों में हमारा जो है बहुत बेसिक है हम जाते हैं काम करते हैं हमें उसकी जो है फीस मिलती है फिल्म या तो हिट है फ्लॉप है तो फ्लॉप है पॉलिटिक्स थोड़ी पेचीदा है क्या करते हैं क्या रिजल्ट होता है कई बार कुछ अच्छा बोलते हैं किसी को बुरा लगता है कोई बुरा बोलते हैं तो वो अच्छा हो जाता है तो उसको कुछ बोल नहीं सकते हैं तो अभी तो संघर्षमय है पॉलिटिक्स में
1: पॉलिटिक्स का स्ट्रगलिंग टाइम है मतलब
2: यस
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जुड़ने के लिए और सच्ची घटना पर आधारित भारत भाग्य विधाता जरूर जाइएगा हमारे रियल हीरोज को सैल्यूट करने
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
4: Bharat ki apni electric sawari.
5: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
6: continue to face political pressure to reach a peace deal,
5: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste Complete Oral Health Ka Sach. In association with
4: Bharat Ki Apni Electric Sawari, Sokudo.
0: नीट यूजी 2026 के री एग्जाम को लेकर एनटीए का बड़ा फैसला अब 21 जून को होने वाली परीक्षा में छात्रों को 15 मिनट का ज्यादा वक्त मिलेगा यानी परीक्षा का टाइम 180 मिनट से बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है री एग्जाम का समय अब दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा अतिरिक्त समय में अटेंडेंस शीट पर साइन करना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं का समय भी शामिल है इससे छात्रों को पूरा समय पेपर हल करने के लिए मिल सकेगा और प्रशासनिक कामों की वजह से समय की कमी नहीं रहेगी
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
7: TuneIn's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
8: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature? Today.
9: शत्रुघ्न जी मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप किस तरफ हैं क्योंकि कल ये दावा किया गया कि 19 नाम सामने आए हैं और उन 19 नामों में आपका भी नाम है जो एक बागी और अलग संसदीय गुट बनाना चाहते हैं टीएमसी में, क्या आप उस गुट में हैं या आप ममता दी के साथ? जी
10: देखिए, मैं अपनी स्पष्ट वादिता के लिए और अपने खुले स्वभाव के लिए मशहूर हूं या बदनाम हूं, जहां तक बागियों का सवाल है, मुझे तो खुद ही कुछ लोग बागी समझते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। लेकिन जहां तथा कथित बागियों के बीच हमारा नाम गया है, वो तमाम अपने ही लोग हैं, अपने ही दोस्त लोग हैं, अपनी विचार से वो लोग गए वहां पे, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मेरा नाम उसमें शामिल नहीं है, मैंने कोई दस्तखत नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं है, मैंने ना हामी भरी है और ना ही, टू बी वेरी फेयर उनके लिए मैं सच कहूंगा, उनमें से किसी ने मुझे कॉन्टेक्ट भी नहीं किया है। हो सकता है कुछ लोग टेकन फॉर ग्रांटेड समझ के आगे बढ़ गए हों, लेकिन किसी ने हमें कॉन्टेक्ट नहीं किया है। और जिन लोगों ने कॉन्टेक्ट किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रगण हों, चाहे अन्य पार्टी के, अन्य जगह के, मैं उनका भी आभारी हूं। उन्होंने बहुत अच्छे मन से, बहुत मेरा भलाई सोच के उन्होंने कहा होगा, निमंत्रण लिया, आमंत्रित किया अपनी ओर। लेकिन मैं इस मुसीबत की घड़ी में, जिस मुसीबत की घड़ी में ममता जी ने, जो हमारी नेत्री हैं या नेता हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया था, आज उनकी इस मुसीबत की घड़ी में मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैंने 3 लाइन व्हिप अपनी तरफ से इशू कर दिया है, और वो ये है कि मैं ममता जी के साथ हूं, मैं ममता जी के साथ था, और मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ रहूंगा। फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है रास्ता बदलने की या किसी और दिशा में जाने की।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
1: Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
2: Tune in to How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
4: Such an arrogant person. One must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
5: Everybody is saying this.
4: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamutadi. I said, again I am saying, I am with Mamutadi. But Mamutadi has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
5: That's an ultimatum.
4: Yes. This is, I leave it to her.
6: बस तारीख बदली है और तेवर बदल गया। इन्हीं कल्याण बैनर्जी ने 9 जून को तंज किया था कि टीएमसी से बगावत कर रहे लोग ममता बैनर्जी की साड़ी की तारीफ करते थे।
7: Whenever they made this, Didi was so beautiful. Didi, your sari is so nice.
6: लेकिन आज अभिषेक बैनर्जी को घमंडी बताकर कोर्ट में उनका केस लड़ने से इनकार कर ममता को खुद में और अभिषेक में किसी एक को चुन लेने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। ममता को कल्याण बैनर्जी की ये गुगली ऐसे वक्त पर आई है जब राजनीतिक गलियारों में इन अटकलों को हवा मिली कि सोनिया गांधी ने ममता बैनर्जी को ये ऑफर दिया कि वो तृणमूल कांग्रेस का कांग्रेस में विलय कर दें। 8 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और ममता गले मिली थी। 9 जून को सोनिया से मिलने ममता 10 जनपद गई। 10 जून को 10 जनपद पर ही अभिषेक बैनर्जी से राहुल गांधी की मुलाकात हुई। वैसे तो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने विलय की अटकलों को खारिज किया है, लेकिन ममता के करीबी नेता खुलकर कुछ नहीं कह रहे।
8: कांग्रेस के साथ एक साथ काम करना जरूरी है, इतना मैं बोल सकता हूँ। वो मर्ज होगा कि अलायंस होगा, ये बाद में दिखा जाएगा।
9: These are totally rumors. Yesterday, our communication secretary has already stated that these are baseless things. Of course, Mamata Banerjee ji and Abhishek Banerjee ji when they met Honorable Madam and Rahul Gandhi ji, routine discussion. That is an extension of India Alliance discussion because everybody want to strengthen India Alliance. Everybody want to strengthen the fight against this anti-democratic government.
6: इस बीच तृणमूल के भगदड़ करने वाले नामों में राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबराइक भी शामिल हो गए। उन्होंने राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद इस्तीफा देने वाले वो राज्यसभा के तीसरे तृणमूल सांसद हैं।
10: प्रकाश जी, कैसा काम आपको लग रहा है अभी जब से बीजेपी सरकार आई है, वो कैसा काम कर रही है बंगाल में?
11: अच्छा कर रहा
6: है। बागियों की लिस्ट में लोकसभा के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर सस्पेंस है। एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न ने कहा कि ममता मेरे मुश्किल समय में साथ रही है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। लेकिन उन्होंने खेल भावना के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के 12 साल पूरे होने की बधाई भी दी है। आज तक ब्यूरो।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

ओमान में तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त। दूसरी बार अमेरिकी दूतावास के प्रमुख को विदेश मंत्रालय ने किया तलब। राहुल गांधी का भी हमला, पीएम मोदी अब तक चुप क्यों? मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज की, चुनाव में दखल देने से किया इंकार। कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी। अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। टीएमसी में बगावत के बीच ममता के विश्वस्त कीर्ति आजाद का बड़ा आरोप, हमारी सुरक्षा को है खतरा। बागियों को प्रलोभन देने का भी जड़ा है आरोप। शत्रुघ्न सिन्हा की दो टूक, मैं दीदी के साथ हूं।

मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने के मामले में याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप से किया इंकार, हाईकोर्ट जाने का विकल्प बताया। अनुच्छेद 32 के तहत राहत नहीं, आरओ के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनावी विवादों के लिए चुनाव याचिका ही चुनाव आयोगी उचित उपाय है। फैसले पर मंत्री विश्वास सारंग ने क्रेस पर विवाद खड़ा करने का आरोप लगाया, बोले राज्यसभा मुद्दे पर पहले से था झूठा नैरेटिव। नीट यूजी 2026 के उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत, एनटीए ने बढ़ाया सब परीक्षा का समय। नीट 2026 अब 3 घंटे 15 मिनट के होगी, उम्मीदवार अनुकूल बदलावों का ऐलान किया गया है। एनटीए का बड़ा फैसला, उपस्थित और औपचारिकताओं किससे परीक्षा समय प्रभावित नहीं होगा। नीट यूजी 2026 में रफ वर्क के लिए अधिक जगह और परीक्षा प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। 21 जून को होगी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, एनटीए ने निष्पक्ष और सुरक्षित योजना का भरोसा जताया है। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां, कहा कि 2014 के बाद भारत ने विकास, सुशासन और गरीब कल्याण का नया मॉडल देखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सीएम योगी, यूपी को सबसे अधिक लाभ मिला है, युवाओं, महिलाओं और किसानों और गरीबों का उत्थान हुआ है। सीएम योगी आज वाराणसी दौरे पर रवाना होंगे, लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रस्थान किया है, सर्किट हाउस में ठहरने का कार्यक्रम भी है। अखिलेश यादव का दावा, 2027 से पहले 225 सीटों पर उम्मीदवार बदल सकती है बीजेपी, बोले एंटी इनकम्बेंसी के चलते बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी में बीजेपी। AIMIM के यूपी चुनाव की तैयारियों पर समाजवादी पार्टी में बयानबाजी तेज कर दी गई, समाजवादी प्रवक्ता ने कहा कि चुनावों के समय सक्रिय होकर AIMIM केवल सियासी समीकरण बिगाड़ती है। टीएमसी में बगावत तेज हो गई, अलग संसदीय गुट के समर्थन में सांसदों के हस्ताक्षर वाला पत्र सामने आने का दावा किया जा रहा है। स्पीकर को भेजे गए कथित पत्र में बड़ी सियासी हलचल है, टीएमसी के भीतर अलग गुट बनाने की कवायद तेज हो गई है। बागियों का दावा है कि कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाने से पहले अलग गुट की मांग की गई थी। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है AIMIM बहराइच में ओबीसी करेंगे शंखनाद, 200 सीटों पर लड़ने की तैयारी। पश्चिमी यूपी और अवध पर AIMIM का फोकस है, बसपा से गठबंधन की संभावनाओं के बीच संगठन विस्तार भी तेज कर दिया गया है। फर्जी हस्ताक्षर केस में अभिषेक बैनर्जी की सीआईडी ने लंबी पूछताछ की है, जांच के दौरान तीखी बहस की भी खबरें हैं। टीएमसी ने अंदरूनी तनाव बढ़ा है, पूछताछ के दौरान अभिषेक बैनर्जी के भड़कने की बात भी सामने आई है। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी की जीत के बाद सियासी घमासान, राहुल गांधी ने लगाया सीट चोरी का आरोप। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन। राज्यसभा चुनाव नतीजों पर बवाल है, बीजेपी जीत के बाद विपक्ष का आरोप, चुनाव आयोग की मिलीभगत से हार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अमरनाथ यात्रा 2026 की सुरक्षा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की गई है, तैयारियों पर हुई समीक्षा। अमरनाथ यात्रा के मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्र सरकार का बड़ा मंथन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी शामिल रहे। बैठक में आईबी और रॉ चीफ भी मौजूद रहे, सुरक्षा हालातों पर खुफिया इनपुट को विस्तृत चर्चा की गई। सीआरपीएफ के डीजी, सीआरपीएफ के डीजी की मौजूदगी में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और एस्कॉर्ट व्यवस्था की समीक्षा की गई। भारत की परमाणु क्षमता पर पाकिस्तान की चिंता, बढ़ते शस्त्रागार को लेकर जताई गई आशंका। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बड़ा दाव, 61 विधायकों के समर्थन वाला का हवाला देकर राजनीतिक घमासान। जीतू पटवारी का बयान, बोले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व हमसे घबराया हुआ है। अमन सिंघार का आरोप है कि राष्ट्रपति से मिलने का समय नहीं मिला, देश में तानाशाही का दावा है। रनिंग ऑफिसर पर गंभीर आरोप लगाए गए, आरएसएस पृष्ठभूमि को लेकर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल। लखनऊ से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, सुरक्षा जांच जारी है। और कोच जसपाल राणा का हुआ निधन, 49 साल की उम्र में जसपाल राणा ने लिया आखिरी सांस।
करीब एक हफ्ते से दिल्ली के अस्पताल में थे भर्ती जर्मनी से लौटने के बाद तबीयत बिगड़ने की खबरें थी। ओलंपियन जसपाल राणा ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का किया था प्रतिनिधित्व, कई बड़ी उपलब्धियां भी दर्ज की थी। खिलाड़ी के बाद कोच के रूप में जसपाल राणा की अहम भूमिका थी। मनु भाकर को और सौरभ चौधरी की कोच थे जसपाल राणा। जसपाल राणा के निधन पर पीएम मोदी ने भी जताया शोक, ट्वीट कर लिखा, उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। नागपुर समेत विदर्भ में अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून के दस्तक देने की संभावना है। फिलहाल करीब 44 डिग्री के बीच नागपुर में बढ़ रही है गर्मी। पठानकोट में तूफान, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर टूट कर गिरे पेड़, कुछ देर के लिए यातायात हुआ बाधित, कोई हताहत नहीं हुआ। केरलम के तिरुवनंतपुरम में मूसलाधार बारिश, तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। हमीरपुर के बेतवा नदी में बिना बरसात अचानक आया पानी, एसडीआरएफ एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने डूब रहे 2 लोगों का रेस्क्यू भी किया। ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोनबर्ग में मशहूर थाइसवास ग्लेशियर में लगातार गिरावट की है, 95% बर्फ खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पहाड़ियों पर हुई तेज बर्फबारी, सफेद चादर में ढकी वादियां नजर आई। बर्फीले ने नजारों से प्राकृतिक सौंदर्य में लगा दिए हैं 4 चांद, मनमोहक दृश्यों में पर्यटक और स्थानीय लोगों को किया आकर्षित। ताजा बर्फबारी के बीच डोडा का नजारा हुआ और भी दिलकश, डोडा में मौसम ने बदला है मिजाज। सफेद वादियों का सौंदर्य लोगों को खूब लुभा रहा है, प्रकृति का अद्भुत रूप देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई राज्यों में आंधी बारिश के बाद गिरा है तापमान, भीषण गर्मी से मिली है लोगों को राहत, दिल्ली में सुहाना हुआ मौसम। जालना में आबाद के 2 गुटों के बीच हिंसा झड़प हो गई, मारपीट और पथराव का वीडियो भी वायरल हो रहा है। अस्पताल के बाहर बवाल हुआ, अनबाद में 2 गुट बैठ गए हैं, 15 लोगों पर केस दर्ज किया गया, जांच जारी है। जामनगर में बीती इलाके में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, कई निर्माण ध्वस्त किए गए। कड़ी सुरक्षा के बीच बेदी क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, सरकारी भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे। दिल्ली के जगतपुर में ओजोन क्षेत्र में पर बुलडोजर एक्शन हुआ, हाईकोर्ट और एनजीटी के निर्देश के बाद डीडीए की बड़ी कार्रवाई की गई है। दिल्ली के तुकलाबाद की इमारत में भीषण आग लग गई, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो गई, 5 महिलाओं को बचाया गया। दिल्ली के तुकलाबाद में बेसमेंट में भड़की आग ने 2 मंजिलों को चपेट में ले लिया, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सीकर में स्मार्ट मीटर बदलने के दौरान बिजली निगम कर्मचारियों से मारपीट की गई।

आग के बाद वहां पर आग पर काबू पाया गया। चमोली में मूसा पानी में पास रास्ता भटके 15 सदस्य ट्रैकिंग दल बारिश और घने कोहरे के बीच एसडीआरएफ ने इनका रेस्क्यू किया। पठानकोट में तेज तूफान का कहर, पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे के पास टूटे पेड़ नेशनल हाईवे हुआ जाम। नोएडा स्थित 152 के निर्माणाधीन 37वीं मंजिल से गिरकर दो कामगारों की मौत हो गई, सेफ्टी बेल्ट टूटने के बाद यह हादसा हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले ही मैच में सह मेजबान मैक्सिको ने जीत से की है शुरुआत। मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से दी है मात, जीत पर खुशी में झूमे फैंस। मैक्सिको में जूलियन ने पहले हाफ में स्ट्राइक कर गोल का किया, फिर राउल जिमेनेज ने दूसरे हाफ में हेडर से गोल कर दक्षिण अफ्रीका को टीम को 2-0 से हरा दिया। मैक्सिको सिटी के एजेड एस्टेका स्टेडियम में रेफरी ने 3 रेड कार्ड दिए हैं। साउथ अफ्रीका के सिथोले और जेमका को रेड कार्ड दिखाई गए। धर्मशाला पहुंची भारत की वनडे क्रिकेट टीम, 13 जून को सीरीज का पहला मुकाबला। अफगानिस्तान की वनडे टीम में भी धर्मशाला में मौजूद है, 3 मैचों की सीरीज है। आज से विमेंस T20 वर्ल्ड कप का आगाज होगा, इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा इस टूर्नामेंट का 10वां एडिशन। इस बार इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है ये टूर्नामेंट, पहली बार दुनिया के 12 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं, खेल जाएंगे कुल 33 मैच। मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला, 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा फाइनल। 14 जून को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला, ग्रुप ए में दोनों टीमें पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलकर भारत करेगा वर्ल्ड कप सफर की शुरुआत। पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खेला जाएगा, नीदरलैंड्स टीम ने ग्लोबल क्वालिफायर में 4th स्थान हासिल कर टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई है। ट्रंप ने अचानक से बदला ईरान पर अपने हमले का प्लान, कहा कि दोनों देशों की डील के बेहद करीब है, पहले तेहरान पर सबसे बड़ी हमले की धमकी भी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ईरान से डील की जगह पर और वक्त जल्द ही करेंगे ऐलान, सभी पक्षों को में चर्चाओं की अंतिम बिंदुओं पर मंजूरी दी है। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर बड़ी बात कही, अगला बकाया कि अगले आदेश तक बंद रहेगा हॉर्मुज। ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले किए, अमेरिका ने कहा कि नुकसान की भरपाई ईरान की जब्त संपत्तियों से होगी। ईरान ने अमेरिका के 3 सबसे अत्याधुनिक F-35 स्टील फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया, ईरानी सेना ने कहा कि सॉलिड फ्यूल मिसाइल से बनाया गया था निशाना।

0: चलिए 100 खबर 100 शहरों के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी को लेकर इसे एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी पर FIR दर्ज की गई है। सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर यह केस दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में यह FIR दर्ज की गई। ममता बनर्जी की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। एक तरफ लगातार पार्टी टूट रही है, पार्टी के कई सांसद बगावत कर रहे हैं, और इसी बीच एक बड़ा अपडेट मिल रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में FIR दर्ज की गई है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप पर यह FIR दर्ज की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम भी हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, ये कब का मामला है और क्या क्या इस कंप्लेंट में दर्ज कराया गया? कौन सी ऐसी बयान थे जिसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है?
1: देखिए, ये मामला ममता बनर्जी के खिलाफ जो मामला है, ये कुछ ही दिनों पहले हुआ था। ये इलेक्शन के टाइम में ही ये मामला, ये बयान ममता बनर्जी का आया था। और जो बयान था वो इस तरह से था कि अगर हम लोग हैं बोल के आप बचे हुए हैं, वरना एक कम्युनिटी आपका 12 बजा देती। इसी तरह का एक कोट अनकोट बयान ममता बनर्जी का था। तो उसके खिलाफ उस समय भी काफी बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया था, इस पर इसको इसका खंडन किया था, इसकी इसको लेकर काफी सवाल भी उठाए थे। तो अब धीरे धीरे इस मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR हो रही है। पहले सिलीगुड़ी में हुई थी और अब ये कोलकाता में हुई है।
0: बिल्कुल अनुपम, और खास तौर पे क्या अनुपम, FIR में कौन कौन से पहलू इसमें जुड़े, कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई? क्योंकि देखिए, सिर्फ कम्युनल कमेंट को लेकर, भावना भड़काने को लेकर ये मामला, या इसमें कुछ और भी जोड़ा गया?
1: देखिए, मुख्यतः तो ये मामला जो है कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको भड़काने का ही मामला है। फिलहाल तो प्रोसीडिंग शुरू होगी, तब हो सकता है इसमें और क्लियरिटी आएगी और किस किस एंगल से इसमें जांच होगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी तक जो बात सामने आ

0: धार्मिक भावना को भड़काने की कोशिश
1: बिल्कुल
0: धारा के तहत मामला किया गया।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम। हम आपका अनुपम में बता रहे थे, देखिए धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए ये मामला दर्ज किया गया, यानी ममता बनर्जी की दिक्कत है भारत तरफ बढ़ती जा रही है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को लेकर, जहां पर ट्रंप कार्ड एक बार फिर से शुरुआत हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही ईरान युद्ध खत्म करने का ऐलान करते हुए डील की समय सीमा बता दी है। ट्रंप ने कहा है कि वीकेंड में यूरोप के किसी देश में डील पर मोहर लग सकती है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में नहीं होंगे, उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस डील को साइन करेंगे। आपको बता दें कि जेडी वेंस को लेकर भी कहा जा रहा है कि वो जिनेवा जा सकते हैं। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि ईरान ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सारी बातों पर सहमति हो गई है, लेकिन अमेरिकी दावों को विरोधाभासी बताया है और ईरानी विदेश मंत्री ने यह कहकर ट्रंप के दावों को उलझा दिया है कि अभी तक किसी नतीजे पर ईरान नहीं पहुंचा है।
2: President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
3: it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: Oil
3: prices dropping like a rock.
2: Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
4: February 2006, जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है।
2: मिस्टर प्रेसिडेंट, ऑन ईरान, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू दैट देयर विल बी अ साइनिंग दिस वीकेंड? बिकॉज़ यू हैव कम क्लोज टू सीलिंग अ डील, बट एट द लास्ट मिनट इट हैज फॉलन अपार्ट। एंड
3: इट विल बी सून, मेबी दिस वीकेंड।
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
2: And you'll
3: have oil prices dropping like a rock.
4: Media reports के मुताबिक deal के draft में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इससे बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज समुद्री रूट खुलेगा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा, ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे, 60 दिनों तक सीज फायर होगा।
5: एक तो 4 जुलाई की तारीख नजदीक आ रही है, ये हर कोई जानता है कि 4 जुलाई न केवल अमेरिका की स्थापना का 250वां वर्षगांठ है, उसकी अमेरिका का जन्मदिन है एक तरीके से 250वां, और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जन्मदिन है। और ट्रंप की कोशिश है कि उससे पहले ये ईरान का संकट जो है वो खत्म हो जाए, वो उन सवालों के साथ में नहीं जाना चाहते हैं, ये बात हर कोई जानता है। और इसीलिए कोशिश हो रही है कि इस सप्ताहांत, यानी जब वो G7 की बैठक के लिए जाएंगे पेरिस के फ्रांस के एवियन में, और जिनेवा में वो लैंड करेंगे, वहां से उन्हें एवियन जाना है एक लेक जिनेवा क्रॉस करके, तो वहां पर ये मुमकिन है कि यूरोप के उनके इस दौरे में ये समझौता हो जाए या इस तरीके के समझौते पर कोई दस्तखत हो जाए।
4: डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज जल डमरू बंद को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है।
1: और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक। Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
8: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
7: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
8: They score!
7: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
9: Savari.
10: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आगे आगे
3: अरे उधर
2: उधर किधर
3: करेक्ट करेक्ट
4: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
6: In association with
7: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, life बनाए wonderful।
6: Hint, बड़े आराम से
7: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
6: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
10: मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा चुनाव में पर्चा खारिज किए जाने के बाद कांग्रेस काफी गुस्से में है, और अब आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं उमंग सिंघार को, उमंग सिंघार इस वक्त उनको डिटेन कर लिया गया है ऑलरेडी। और अगर आप देखें बैरिकेड पे तो आपको जीतू पटवारी नजर आएंगे। तमाम जो विधायक हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए यहाँ पर एक पोस्टर चस्पा है जिसपे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि धारा 163 के अंतर्गत यहाँ पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। आप देखिए वोट चोरों होश में आओ, जनता को ना सताओ। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आप कह सकते हैं कि दो दो हाथ करने के मूड में है इलेक्शन कमीशन के साथ में, जिस प्रकार से पर्चा खारिज किया गया है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इस मामले में उनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक पार्टी सड़कों पर रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि दो मापदंड अपनाए जा गए, एक मध्य प्रदेश में पर्चा खारिज किया गया लेकिन एक पर्चा झारखंड के अंदर अलाउ किया गया। ये दर्शाता है कि देश के अंदर जो स्थिति है वो गंभीर है, और इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अगले कई दिनों तक आपको सड़कों पर दिखाई देगी। आलोक दास के साथ मैं राहुल गौतम, आज तक के लिए।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
6: इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
12: नीड बेटर इंटरनेट? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
13: TuneIn is bringing together your music, news, sports, and more all in one place. Whether you love music, want to stay in the know with top news,
14: continue to face political pressure to reach a peace deal,
13: or hear your favorite teams with live sports. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you'll never miss a beat. Just sit back and listen.

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
1: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबां केसरी।
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: देखिए मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए। मैं
4: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहां पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं।
5: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल हैं।
6: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
5: रिबल,
6: आप ये तो रिबल कहां से हो गए, भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए, ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंपल पर लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंपल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा पे लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथा कथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, उधार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Accuray, the number one Korean skincare brand, now in India.

कर पर अमेरिकी हमले में तीन भारतीयों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त। दूसरी बार अमेरिकी दूतावास के प्रमुख को विदेश मंत्रालय ने किया तलब। राहुल गांधी का हमला, पीएम मोदी अब तक चुप क्यों? मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज। चुनाव में दखल से इनकार, कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। बनर्जी की और बड़ी मुश्किलें, कोलकाता में एफआईआर दर्ज। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, मार्च 2026 के सियासी भाषण का मामला। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी। अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। नीट परीक्षा में छात्रों को बड़ी राहत, एनटीए ने दिया तैयारी के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त वक्त। अब 3 घंटे 15 मिनट की होगी परीक्षा, आज औपचारिक ऐलान।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील और आप देख रहे हैं खबरें असरदार। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन को बड़ा झटका दिया है। मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सीधे रिट पिटीशन नहीं सुनी जा सकती है। अगर उन्हें फैसले पर आपत्ति है तो वो चुनाव याचिका दायर करें, यानी कि इलेक्शन पिटीशन दायर करें। मीनाक्षी नटराजन ने नामांकन रद्द करने के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी।
1: आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूँगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
2: आप हाई कोर्ट का रुख करेंगी, आप मौजूद भी थी आज की हियरिंग में?
1: हाँ, मैं हियरिंग में मौजूद थी, लेकिन ये चुनाव मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं था। मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं पार्टी की कैंडिडेट हूँ। पार्टी के जो हमारे वरिष्ठ जन मिलकर हम लोग तय करेंगे, उसके आधार पर हम अपने आगे की
3: मीनाक्षी नटराजन साफ तौर पर कहती हुई कि जिस प्रकार से जो उनकी पिटीशन है उसको एंटरटेन नहीं किया कोर्ट ने, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये दर्शाता है कि एक प्रकार से चुनाव जो है वो छीना गया है। और उन्होंने कहा कि मैं तमाम मेरे लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनको मैं यूटिलाइज करूंगी आने वाले दिनों में। राहुल गौतम, आज तक के लिए।
4: माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी के द्वारा जो रिट पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के उस फैसले को चैलेंज किया था, जिस फैसले में उनका कैंडिडेचर निरस्त किया गया था, आज उस फैसले के विरोध में जो उन्होंने यहां पर रिट पिटीशन दायर की थी, उस पर उनके लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी ने आर्ग्यूमेंट किए, पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई।
0: और इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है। खड़गे ने कहा है कि पीएम ने हर जगह आरएसएस के लोगों को बैठा दिया है और वे लोग मनमानी कर रहे हैं, कानून संविधान कुछ नहीं मान रहे हैं।
5: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहां पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं।
0: उधर मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के डर से गलत पर्चा भरवाया है, इज्जत बचाने के लिए ये सब किया है।
6: देखिए, ये तो पहले से ही विदित था कि कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है। जिस प्रकार से मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द हुआ, वो पूरा टेक्निकल था। एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस ने ये जानबूझ के किया, क्योंकि उनको मालूम था कि तीसरी सीट पर चुनाव होगा तो भी भाजपा जीतेगी।
0: अब रुक करते हैं बंगाल की, जहां ममता बनर्जी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कम्युनल स्टेटमेंट को लेकर केस दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है ममता बनर्जी पर। और ये FIR कोलकाता में दर्ज हुआ है। अब बात टीएमसी में उठे बगावत के तूफान की। टीएमसी में बगावत कोई एक दो दिन में नहीं हुई, हफ्तों पहले से इसकी प्लानिंग चल रही थी। 4 मई को बंगाल का नतीजा आता है, तस्वीर बदल जाती है और भाजपा बड़ी बहुमत से बंगाल में सरकार बनाती है। 18 मई बगावत का प्लान बनाया जाता है, 19 सांसद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखते हैं। 20 मई को ममता को भनक लगती है कि उनकी चीफ व्हिप काकुली घोष दास्तीदार ने ये सब किया था, लेकिन कल्याण बैनर्जी ने भी अब बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे टीएमसी के बागी सांसद। टीएमसी के 19 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखा है, बागी सांसदों ने अलग गुट बनाने की मांग की है और अब सोमवार ये बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलेंगे। तो ये पूरी प्लानिंग क्या थी? 18 मई को टीएमसी में विरोधी खेमा बन गया था, ऐसा तो नहीं है कि एक दो दिन में सब इकट्ठा कर दिया गया। 19 सांसदों के हस्ताक्षर में भी कुछ समय लगा। इन सांसदों को की लीडर हैं काकुली घोष दास्तीदार, जो उस वक्त चीफ व्हिप थी। तो क्या क्या हुआ ये देखते हैं खबर।

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे, कौन से आरोप?
2: रिबेल।
1: आप ये तो रिबेल कहाँ से हो गए, भगोड़े हैं। रिबेल कहाँ से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं।
3: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे हैं। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही यही है भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसमें सयानी घोष का नाम नहीं था, सयानी घोष ने बाद में पाला बदलने का प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयानी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर उस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
4: और इस बीच बागी सांसद जगदीश वर्मा का बयान आ रहा है। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश वर्मा का दावा है कि और भी सांसद जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हमारे साथ 19 सांसद हैं, लेकिन और लोगों की जुड़ने की संभावनाएं हैं। टीएमसी में विद्रोह का कारण क्या है, तो जगदीश वर्मा ने कहा है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं।
5: ज्यादा नंबर हो सकता है, अभी अभी 19 लोग सही किया है, और भी आ सकता है। लेकिन जो मकसद जो है, जो टीएमसी जो कार्यकर्ता है टीएमसी को, जो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, हमारा जो टीएमसी का लोग है, जो जनप्रतिनिधि है, एमपी है, एमएलए है, किसी को कोई बात नहीं सुनता है। ये जो विधानसभा इलेक्शन किया है, अभी अभी कोटा बंगल से हम हार गया, तो प्रत्याशी चुनने के लिए कोई सांसद को, कोई इलाका लीडर को, सीनियर लीडर को पूछना चाहिए। तो हमारा जो लीडर है टीएमसी का, वो कभी किसी को पास नहीं पूछना। उनका आईपैक है और कैमाक स्ट्रीट है, दोनों मिलकर ये प्रत्याशी चुन लिया।
4: और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने एक बड़ा बयान दिया है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि डरा धमका कर सांसदों को तोड़ रही है बीजेपी। उन्होंने दावा किया है कि जो डरे नहीं हैं उन्हें पैसे से खरीदा जा रहा है, 10 लाख से 5 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये कीर्ति आजाद कह रहे हैं।
6: यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं, जबकि ये एयर गन है। किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
1: देखिए, मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं, मैं केवल ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है, हटा लिया तो हटा लिया। जिस तरीके से 5 MPO का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए, उनके परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया, कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए, उसके बाद में वो डर गए, डर करके चले गए। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील भी, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारीक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे, उनकी भी डील वहीं हुई। भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले, वो 8 ही लोगों ने साइन किया था। आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है, जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है, बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है, उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था। कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए, जिस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था, तो उस पर CBI लगा दी थी, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी, दस्तीदार, तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा, भाई CBI ED क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ तुम, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, 3-4 लोगों ने 2 मांगे 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए महीना हमें सेट कर दीजिए, तो उसके घर से ही खबर मिलती है।
4: केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान मुख्यमंत्रियों ने PM के नेतृत्व की तारीफ की और कहा कि बीते 12 वर्षों में सभी राज्यों में विकास की रफ्तार तेजी से बढ़ी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत हुई है।
2: हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का एहसास आज दुनिया को कराया है और आने वाले समय में भारत की इस ताकत का लोहा न केवल दुनिया करेगी बल्कि उसका अनुसरण भी करने को मजबूर होगी। पहली बार भारत इस बात का एहसास कर रहा है कि योजना बनाना ही नहीं, उस कार्य योजना को बनाने के साथ ही यह भी तय करना कि उसके सफल क्रियान्वयन के लिए उन सभी पक्षों को साथ लेकर के चलना और उसे जन आंदोलन बना देना, पहली बार इस बात को देखा होगा।
7: ही कारकिर्द केवल लांब आहे एवढीच, यामुळे ती महत्वाची नाही, तर देशाचा चेहरा मोहरा बदलण्याचं काम आणि जगाच्या पाठीवर भारताची पत वाढवण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे।
8: ये बीते 12 वर्षों ने ये साबित किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो और नीयत साफ हो और राष्ट्रहित सर्वोपरि हो, तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है, और यही विकसित भारत की नींव है, यही अमृतकाल की पहचान है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में मैं यह महसूस करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विकसित भारत विजन आज हर राज्य, हर शहर और हर नागरिक का मिशन बना है।
4: अब बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने केंद्र और यूपी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर वार किया है। अखिलेश ने कहा है कि केंद्र की विदेश नीति असफल हो रही है, अमेरिका जो कहता है भारत स्वीकार कर लेता है। अखिलेश ने यूपी में हुए कई एनकाउंटर को भी फर्जी बताया है, कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फर्जी एनकाउंटर करने वालों पर कार्रवाई करेंगे।
9: विष्णु बनने का मौका तो दिया और जब नहीं बन पा रहे हैं तो सोचिए आपको अमेरिका से क्या क्या सुनना पड़ रहा है। आपको अमेरिका के राष्ट्रपति जो कह रहे थे वो भारत स्वीकार कर लेता है, सोचो। जेल में हैं जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं, वो देख रहा हूं कि खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार ध्यान रखना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनाने का काम होगा।
4: वक्त है अब एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। in association with
11: Bharat ki apni electric sawari.
12: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
13: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
14: Hey, this is Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay on top of the MLB season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
15: Right field, and it will...
14: From the first pitch of the season to the stretch run.
15: And that's the ball game.
14: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch selective live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
16: Sokudo.

दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर देश भर से एनडीए के घटक दल पहुंचे तो उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दो दल भी मौजूद थे। मंच पर पीएम मोदी के स्वागत से लेकर झालमुड़ी के चटकारे तक संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तकरीबन साथ नजर आए। यहां तक कि कार्यक्रम के आगे पीछे दोनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में जितनी शिष्टाचार भेंट मुलाकातें की उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। दिल्ली में भारत मंडपम में जब पीएम मोदी के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था पूरे देश के एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम मौजूद थे तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अलग मीटिंग चल रही थी। 11 जून को एसबीएसपी चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, फिर सुनील बंसल से भी मिले। इसके तुरंत बाद निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने भी सुनील बंसल के साथ चर्चा की और अलग अलग मुलाकातों के बाद राजभर और निषाद दोनों ने एक साथ भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों सहयोगी नेताओं से बीजेपी नेतृत्व से जल्द औपचारिक बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जून के आखिरी सप्ताह में व्यापक चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया। यूं तो राजभर ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट की तरह पेश किया, लेकिन दोनों नेताओं की बारी बारी से बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात और फिर साथ आई तस्वीरों को लेकर चर्चा है कि ओपी राजभर और संजय निषाद के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान शायद थम जाए, क्योंकि 2022 में निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ लड़ी थी वहीं ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। 2022 में निषाद पार्टी को 16 सीटें मिली थीं, जिसमें 10 उनके सिंबल की थीं। 6 बीजेपी के सिंबल पर निषाद के उम्मीदवार थे, जबकि 2022 में राजभर को अखिलेश ने 17 सीटें दी थी। 2022 में निषाद पार्टी के कुल 11 उम्मीदवार जीते, जिसमें 5 बीजेपी के सिंबल पर थे, तो राजभर के कुल 6 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बीच में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सरकार के साथ हो गए और अब फिर से करीब 1.5 दर्जन सीटों की उम्मीद पाले हैं। हालांकि पूर्वांचल में ही निषाद पार्टी भी है और दोनों ही दल गैर यादव पिछड़े अति पिछड़े के वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए अतरौलिया जैसी सीट पर दोहरी दावेदारी सामने आ रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी तो पूर्वांचल में निषाद और राजभर बीजेपी के लिए मजबूरी तो नहीं लेकिन जरूरी है, क्योंकि 2022 में राजभर को 17 सीटों पर 12,52,000 वोट मिले जो लड़ी गई सीटों पर करीब 30-35 फीसदी थे। निषाद को 11 सीटों पर करीब 10,50,000 वोट मिले थे जो लड़ी गई सीटों पर करीब 41-44 फीसदी थे। हालांकि राजभर तब अखिलेश के साथ थे और निषाद के 5 उम्मीदवार कमल छाप से लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। दोनों दल बीजेपी के साथ हैं और विवाद की स्थिति में बीजेपी अपने सिंबल पर सीटें देने का फॉर्मूला अपना सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया
2: नीड बेटर इंटरनेट Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
3: This is the sound of Jack. Buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
4: Oh, ouch.
3: However you make money work, we can work with that.
5: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
6: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Que Buena, ESPN Radio.
7: How they looked after game one.
8: I mean, they were frustrated.
6: The Daily.
9: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
6: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
10: मोदी ट्रंप की बातों पर भरोसा ही नहीं होता. ट्रंप हैं तो कुछ तो भी हो सकता है. वो बार बार धमकी देते रहे हैं और दूसरे ही दिन वो यूटर्न लेकर डील की शांति की बात करने लगते हैं. कहानी मार्च 2026 से शुरू होती है. ट्रंप ने ईरान को 3 अलग अलग डेडलाइन दी. मसलन पहले 21 मार्च, फिर 23 मार्च और फिर 7 अप्रैल. संदेश साफ था, या तो तेहरान झुकेगा या फिर अमेरिका कार्रवाई करेगा. लेकिन हुआ क्या? ईरान ने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया और ट्रंप बिना किसी बड़े कदम के आगे बढ़ गए. 10 हफ्तों में ट्रंप की टाइमलाइन देखें तो मार्च अल्टीमेटम, अप्रैल सीज फायर, मई डील की उम्मीद, जून जीत का ऐलान. 7 और 8 अप्रैल ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन पेच ये था, सीज फायर की शर्त को लेकर अमेरिका, ईरान और इजराइल की समझ अलग अलग थी. कोई साफ लिखित सहमति नहीं बनी. सबसे बड़ा मुद्दा था हॉर्मुज जल डमरू मध्य. कहा गया कि रास्ता खुलेगा, लेकिन हॉर्मुज पहले की तरह नहीं खुला. फिर भी ट्रंप प्रशासन ने इस मुद्दे को ज्यादा तूल नहीं दिया. अप्रैल से मई के बीच ईरान पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप लगे, लेकिन ट्रंप और उनकी टीम ने कई मौकों पर इसे बड़ा संकट नहीं बनने दिया. यानी जिस रेड लाइन की बात पहले की गई थी, उसी रेड लाइन को धीरे धीरे धुल्ला कर दिया गया. 5 मई को ट्रंप ने कहा डील बहुत करीब है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को मंजूर नहीं हुआ. यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ सख्ती. जून आते आते ट्रंप की चिंता खुलकर सामने आने लगी. 3 और 4 जून को उन्होंने 2 बार जिमी कार्टर दौरे के बंधक संकट का जिक्र किया. संदेश साफ था, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका ईरान में ऐसी स्थिति में फंसे जहां निकलना मुश्किल हो जाए. ईरान इसे भी ध्यान से देख रहा था. ईरान ने अमेरिकी हेलीकॉप्टर गिराने का दावा किया. ट्रंप ने इसे बहुत बड़ी बात नहीं बताया, लेकिन साथ ही जवाबी कार्रवाई का अधिकार भी जताया. फिर अगले दिन खार्ग द्वीप को लेकर ट्रंप ने कड़ा बयान दिया. कहा गया अमेरिका कब्जे का विचार कर सकता है, लेकिन कुछ ही देर बाद ट्रंप का दूसरा बयान आया, मुझे नहीं पता देश में इसके लिए इच्छा शक्ति है या नहीं. और फिर आई 11 जून, ट्रंप ने ऐलान कर दिया हमने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया. दावा किया गया कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा. पिछले 10 दिनों की कहानी बताती है कि ट्रंप की भाषा हर कुछ घंटों में बदलती रही. कभी अधिकतम दबाव, कभी बातचीत, कभी सैन्य धमकी, कभी शांति का संदेश. तो अब दुनिया का सवाल यही है, क्या ट्रंप की ईरान नीति कोई सोची समझी रणनीति है या फिर हालात के हिसाब से बदलता हुआ रुख? क्योंकि अगर आज समझौते की बात है तो क्या गारंटी है कल फिर वही ट्रंप ईरान को तबाह करने की चेतावनी नहीं देंगे? अगर हालात ऐसे रहे तो डील दूर की कौड़ी होगी। प्रणव उपाध्याय, सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।
4: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

होती तो नौजवानों को मिलती नौकरी। फर्जी मुठभेड़ वालों के खिलाफ भी लेंगे एक्शन। हमने खो दिया विश्वगुरु बनने का मौका। ममता बैनर्जी की और बड़ी मुश्किलें। कोलकाता में FIR दर्ज। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। मार्च 2026 के सियासी भाषण का है मामला।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुड।
2: नमस्कार, रणभूमि स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्य चौधरी। रणभूमि में बात करेंगे युद्ध क्षेत्र से तमाम बड़ी खबरों को लेकर, अमेरिका और ईरान की डील नो डील को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है अखिलेश यादव के एक बयान को लेकर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंह से स्वदेशी है और मन से विदेशी। ये अखिलेश यादव की तरफ से एक बड़ा बयान बीजेपी को लेकर कहा गया है। उन्होंने कहा कि देखिए, बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा है कि बीजेपी मान लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी मुंह से स्वदेशी है और मन से विदेशी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा वार किया है।
3: इनके मुंह पे है स्वदेशी, मन से है विदेशी। जो लोग स्वदेशी का नारा देते थे अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संगी साथी, वो कहाँ हैं? ये जितने कैमरे मोबाइल दिख रहे हैं आपको, ये सब विदेशी हैं।
2: 2027 की रण से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। चलिए खबरों में इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हो रही डील नो डील को लेकर आ रही बड़ी खबरों को लेकर।

0: ट्रंप का ऐलान ईरान से खत्म संग्राम। ईरान से वीकेंड में डील, यूरोप में तैयारी। ईरान ने बढ़ाया सस्पेंस, कहा कुछ भी फाइनल नहीं। ट्रंप ने खाद पर 3 घंटे पहले क्यों रोका हमला? कैसे ट्रंप के ऐलान से हैरान रह गए नेतन्याहू? अब तक 39 बार ट्रंप का डील का दावा झूठा निकला। क्या ट्रंप का नया ऐलान बड़े हमले से पहले झांसा है? न हॉर्मुज पर ईरान रुकेगा, न परमाणु मुद्दे पर झुकेगा। डील होगी या ट्रंप का ढोल फिर फटेगा?
1: और चले रणभूमि में, रण क्षेत्र की खबरों को के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी खबर, आज की सबसे बड़ी खबर है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल शाम एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान ने यह भी कह दिया है कि सस्पेंस अब बढ़ा दिया है और कहा है कि अब तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया है। ट्रंप ने जॉर्जिया में एक चुनावी रैली को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मैं नहीं जानता कि आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन हमने आज ईरान के साथ युद्ध बंद कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान इस बात पर सहमत है कि वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं अपने स्पेशल मीडिया हैंडल पर ट्रंप ने जो लिखा वो भी आपको बताते हैं। और देखिए ट्रंप ने आखिरकार अपने एक्स हैंडल पर क्या लिखा, ये आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईरान के साथ बातचीत ईरान के नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए ईरान के बातचीत ईरान के नेतृत्व में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई और उनसे मंजूरी मिल गई है, यानी उनके सुप्रीम लीडर के बारे में कहा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने आज शाम ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। बातचीत और अंतिम बिंदुओं को, चाहे वो मोटे तौर पर हो या विस्तार पे, सभी संविधान संबंधित परीक्षणों को मंजूरी दे दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अरब, यूएई, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में और अन्य देशों में शामिल है। जब तक समझौता पूरी तरीके से तय नहीं हो जाता तब तक नौसैनिक नाकेबंदी पूरी तरीके से लागू रहेगी और समझौते पर हस्ताक्षर करने की जगह और समय की घोषणा जल्द की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का यह बड़ा ऐलान उन्होंने एक्स पर किया।
2: There will be a signing this weekend because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
3: it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: और ट्रंप के इस ऐलान को लेकर जो तस्वीरें लगातार उभर रही हैं, वो आपको दिखाते भी हैं और आपको समझाते भी हैं। उसके चार बड़े पहलू हैं। इन चार तस्वीरों को आप देखकर समझिए कि आखिरकार ये तस्वीरें क्या कह रही है। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को इसके बारे में जिक्र नहीं किया, उनको कोई जानकारी नहीं है। इस डील में अगर कोई सबसे ज्यादा नुकसान में रहेगा तो वो होगा इसराइल, क्योंकि उसे लेबनान खाली करना ही पड़ेगा। इसके एक बड़े इलाके में वो सुरक्षा जोन बनाने की कई सैन्य गवा चुका है। तीसरी चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले करने के और कब्जा देने की धमकी कर रहे थे। चौथा बड़ा सवाल है कि ईरान के रुख में खड़ा हो रहा है, यानी अब भी वो ये कह रहा है कि अमेरिका के साथ उसकी डील फाइनल नहीं हुई है। ईरान कह चुका है कि ट्रंप की बयानबाजी और अमेरिकी इसराइल के हमलों हर बार मामले को बिगाड़ देते हैं। चार तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर और चारों पहलुओं को समझिए। ऐलान तो हर बार किया जाता है, लेकिन फिर दोबारा से ऐलान करने के बाद एक नए युद्ध का आगाज भी कर दिया जाता है। अब ईरान ने भले ही अभी ये साफ नहीं किया है, लेकिन अमेरिका ने की डील साइन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। एक ऐसी रिपोर्ट लगा

0: स्तर पर डील को मंजूरी मिल गई है, लेकिन ईरान के प्रवक्ता ने ट्रंप के इस दावों को खारिज कर दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता इस्माइल बगई ने कहा है कि ईरान की ओर से अंतिम फैसला बाकी है। बगई ने कहा है कि ईरान से फैसले लेने की प्रक्रिया पारदर्शी है, डील की हर बात पर संबंधित अधिकारी बैठकर बात करेंगे और फिर जैसा ही मंजूरी मिलती है उसका ऐलान किया जाएगा। यानी उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इन बातों को खारिज कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई की मंजूरी इस डील को लेकर मिल गई है।
1: یعنی های رسانه‌ای اصل موضوع ما به محض اینکه به نتیجه نهایی برسیم به هر حال فرآیند تصمیم گیری در کشور ما خیلی روشن هست. ما باید مراجع زیربط نظام در مورد جز جز متن و جز جز هر گونه تفاهمی به جمع‌بندی برسن. به محض اینکه ما به جمع‌بندی نهایی برسیم حتما رسما اعلام خواهیم کرد. بقیه
0: और देखिए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, ईरान ने उसका खंडन कर दिया। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप का दावा एक बार फिर से झूठा साबित होगा? ट्रंप अब तक करीबन 39 बार ईरान से डील का दावा कर चुके हैं, यानी 28 तारीख से लेकर अब तक 39 बार, हर बार वो झूठ साबित हुआ है। हम आपको डोनाल्ड ट्रंप के वो 39 बयान दिखाते हैं जिसमें वो ईरान से डील करने और डील के बेहद करीब होने का दावा कर चुके हैं।
2: And we are very willing to make a deal.
3: Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. Well, they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal.
4: They want to make a deal so badly.
5: I do see a deal in Iran.
6: We were very close to a deal.
7: I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over.
8: It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal.
9: This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly.
10: We think we're close to a deal, and that's okay.
11: We're in the final throes of what will be a very, very good deal.
0: यानी अब डील होगी या नहीं होगी यह अब तक तय नहीं हो पाया, लेकिन अगर डील होगी या ईरान को दबाव बनाने डालने के लिए डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से बड़े हमले करेंगे ये अगले 2-3 दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन ट्रंप के चौंकाने वाले ऐलान पर एक बड़ी खबर भी आ रही है। एनबीसी न्यूज के रिपोर्ट के मुताबिक कल अमेरिकी सेना ईरान पर हमले शुरू करने से बस 3 घंटे ही दूर थी, तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें रोक दिया। ट्रंप का कहना था कि युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौता हो गया है और उस पर जल्दी ही साइन किया जाएगा। एनबीसी का कहना है कि ट्रंप के ऐलान के समय तक अमेरिकी सेना अपने टारगेट चुन चुकी थी, उन्हें लॉक कर चुकी थी। अमेरिकी सेना अपने ऑपरेशन प्लान में बदलाव करके हमलों के लिए हथियार तैयार कर चुकी थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर हमले होते तो वैसे ही होते जैसे अमेरिका ने पिछले 2 रातों में किए थे। कल शाम तक युद्ध करने के ऐलान से कुछ ही घंटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पोस्ट में कहा कि अमेरिका आज रात को ईरान पर बहुत जोरदार हमले करेगा। ईरान की नौसेना, वायुसेना, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और सुरक्षा के सभी साधन, साथ ही ज्यादातर हमला करने की क्षमता खत्म कर दी हो चुकी है। भविष्य में कभी हम खारदीप और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट्स पर कब्जा भी कर लेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार ग्राउंड फोर्सेस मूव करने की बात भी कही थी, उनके तेल और गैस बाजार पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया था, यानी वेनेजुएला के रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ। ट्रंप के इस पोस्ट के दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए अगर अब डील नहीं होती तो अमेरिका ईरान पर बड़े हमले कर सकता है, क्योंकि एक बार फिर से अमेरिका के पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। देखिए आखिरकार एक बार फिर से इस बातचीत के अंदर, इस चुनौती के अंदर खारदीप का जिक्र हुआ। आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि खारदीप आखिरकार इतना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ईरान के लिए भी क्यों है, आखिरकार क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप खारदीप का जिक्र करते हैं। अगर आप देखें कि खारदीप है क्या, ये वर्चित द्वीप है पर ईरान का कड़ा सैन्य नियंत्रण है। यानी अगर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बहुत छोटा एरिया है। खारदीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% से ज्यादा ऑयल का आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट जो होता है वो ईरान का इधर से ही होता है। ईरान की इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी ये माना जाता है और इसी वजह से लगातार इस पर हमले की बात कही जाती है। ईरान का 90% तेल निर्यात इसी द्वीप से किया जाता है, जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था, और इसी वजह से अमेरिका रह रहकर इसको चुनौती देता है। हर साल लगभग 950

0: मिलियन बैरल तेल यहां से जाता है। इसके बाद बुशहर में 55 किलोमीटर दूर यानी बुशहर जो आपको याद है इंडस यूरेनियम की साइट, एक और बुशहर है जहां पर रूस के कई साइंटिस्ट काम करते हैं, वो इससे 55 किलोमीटर दूर है यानी 15 नॉटिकल माइल्स दूर। और यहां पर अगर अमेरिका ने अपना बेस बना लिया होता तो फिर अमेरिका के लिए आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता। अब ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि द्वीप पर कब्जा प्राथमिकता है, यानी जो धमकी दी गई थी एक दिन पहले उसमें इसको कब्जा करना प्राथमिकता थी। केवल 8 किलोमीटर लंबा और 4 से 5 किलोमीटर चौड़ा है द्वीप, जैसे मैं आपको बता बहुत छोटा आइलैंड है और ईरान के पास आसपास ऐसे कई आइलैंड है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है खारगा आइलैंड क्योंकि यहां से 90% से ज्यादा ईरान का जो एक्सपोर्ट होता है यहीं से होता है। चारों तरफ गहरे पानी के कारण एक डॉकिंग यहां पर आसान होती है, यानी जो शिप है वो यहां पर आ सकते हैं, यहां पर डिप्लॉयमेंट हो सकते हैं, यहां पर लगातार एक बेस बनाया जा सकता है जहां से अमेरिका भी अपने सैनिकों की डिप्लॉयमेंट करता है। अब एशियाई बाजारों को तेल निर्यात और चीन प्रमुख आयातक है, और ये क्यों है खार इंपॉर्टेंट ईरान के लिए ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये समझिए कि आखिरकार खर को लेकर बार बार इतनी हमले, इतनी चुनौतियां या फिर इतनी चेतावनियां क्यों दी जाती है। प्रतिदिन 7 मिलियन बैरल लोडिंग अब अभी करीबन महज 1.6 यानी 1.6 मिलियन बैरल ही लोडिंग की जा सकती है, क्योंकि इस जंग के दौरान ईरान के भी जो ऑयल आप कह सकते आयात है, निर्यात है, वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। अब ये हमने आपको तमाम जानकारियां दिखाई और आपको बताने की कोशिश की कि आखिरकार खारद्वीप इस समय क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शायद इसी वजह से लगातार ईरान के साथ डील हुई तो इसराइल को भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि ईरान के साथ डील हुई तो इसराइल को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल खबर यह है कि अमेरिका ईरान डील के तहत इसराइल को लेबनन से पूरी तरीके से पीछे हटना पड़ेगा क्योंकि ये ईरान की एक बहुत महत्वपूर्ण प्री कंडीशन है। हिजबुल्लाह समर्थक अखबार अखबार की तरफ से एक रिपोर्ट साझा की गई, इस इलाके में लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिकी और ईरान के बीच लगभग तय हो चुकी डील की शर्तों में ये बात भी शामिल है, इसराइल को लेबनन में हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना अभियान या अपने ऑपरेशन रोकने पड़ेंगे। चलिए रणभूमि में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे कैसे दूसरे मोर्चों पर भी बड़े युद्ध की, बड़े संघर्ष की तैयारियां चल रही हैं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, एंड दैट्स द साउंड ऑफ अ फ्रॉड अलर्ट फ्रॉम वेल्स फार्गो flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd. To the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
4: Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं,
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना,
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है, 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: The action never stops and neither do we. From breaking updates to match analysis, from big moments to bigger conversation. This is where sports comes alive. Fast, sharp, unfiltered. For the fans who want every update, every story, every headline first. Welcome to Sports Today, your destination for everything sports. Press that bell icon and subscribe now.
8: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Akaje, the number one Korean skincare brand, now in India.
4: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan, price lock guarantee, plus equipment included. So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
5: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy. However you make money work, we can work with that.
6: Mobile carriers message and data rates may apply. Wells Fargo Bank NA, member FDIC.
7: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars, NSYNC, and Britney Spears. Or rock artists, like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
8: আমি খুশি একটা কারণে,
9: ক্যা মমতা ব্যানার্জিকে হাত সে টিএমসি নিকল চুকি হ্যায়? क्या टीएमसी में सिर्फ ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही बचेंगे? क्या बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी का भी वही होगा जो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हुआ है? पश्चिम बंगाल की सियासत की मुख्य विपक्षी पार्टी टीएमसी में भूचाल मचा है। हर गुजरते दिन के साथ सांसद, विधायक पाला बदल रहे हैं, गुटबाजी कर रहे हैं। जो कभी आज्ञाकारी, भरोसेमंद थे, अब वो बगावत पर उतर आए हैं। सयानी घोष, प्रतिमा मंडल, माला रॉय, मिताली बाग, टीएमसी के बागियों में ये नाम भी जोड़ लीजिए। इन सांसदों ने टीएमसी के बागी गुट से हाथ मिला लिया है। ममता बनर्जी की टीएमसी में इस समय भगदड़ मची है। सांसदों में भगदड़, विधायकों में अफरा तफरी, कोलकाता से दिल्ली तक भागम भाग मची है। बुधवार को जब बीजेपी एनडीए के नेता मोदी के 12 साल का जश्न मना रहे थे, तो उसी दौरान ममता बनर्जी के 4 सांसद बीजेपी नेताओं से मिल रहे थे। जादवपुर की सांसद सयानी घोष, जयनगर की प्रतिमा मंडल, कोलकाता दक्षिण की माला रॉय और आरामबाग की सांसद मिताली बाग बागी खेमे में शामिल हो गयी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक हुई, जिसमे बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। करीब 1 घंटे तक चारों सांसदों और बीजेपी नेताओं की बैठक चलती रही। बागी गुट का दावा है कि 19 से 20 सांसद उनके संपर्क में हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा में अलग गुट बनाना चाहते हैं। अभी लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं। अगर ये बागी कामयाब हुए तो लोकसभा में टीएमसी नेता का पद भी उन्हें मिल जाएगा। बागियों में शत्रुघ्न सिन्हा और देव अधिकारी को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन टीएमसी सूत्र कह रहे हैं कि ये दोनों दीदी के साथ हैं। लोकसभा में टीएमसी सांसद अलग गुट बनाने की कोशिश में है, तो वहीं राज्यसभा से भी टीएमसी को झटके पर झटका लग रहा है। पहले सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया और अब सुष्मिता देव ने भी पार्टी और राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी है। सुष्मिता देव के पाला बदलने के पीछे असम के सीएम हिमंता बिस्वा की भूमिका अहम मानी जा रही है। जो ममता बनर्जी मां माटी मानुष की राजनीति करने का दम भरती थी, उनकी पार्टी एक करारी हार में बिखरती जा रही है। पार्टी से बगावत करने वाले सांसद अपने ही नेता को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी में आए इस तूफान को शांत करने की कोशिश ममता बनर्जी कर जरूर रही हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और दिल्ली से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Acoj, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज, चुनाव में दखल से इंकार, कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। बीजेपी पर अखिलेश यादव का बड़ा हमला, कहा वो मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी, कहा हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी मुठभेड़ वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। ममता बनर्जी की और बड़ी मुश्किलें, कोलकाता में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप, मार्च 2026 के सियासी भाषण का है मामला। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को करेंगे मुलाकात, अलग गुट को के तौर पर मान्यता देने की भी करेंगे मांग। ओमान में तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, दूसरी बार अमेरिकी दूतावास के प्रमुख को तलब किया गया, राहुल गांधी ने पूछा PM अब तक चुप क्यों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद भारत।
2: न खैबर संभलता न बलूचिस्तान, POK में भी चल रहा घमासान, न अमेरिका मानता न ईरान, भारत से फिर कांप रहा पाकिस्तान, क्यों डर रहा है आतंकिस्तान, भारत का रहा हर मोर्चे पर सावधान, भारत की नई सैन्य नीति लेकर आई है दोस्तों के लिए राहत और दुश्मनों के लिए खौफ, एक रिपोर्ट आई और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, रिपोर्ट ने तो जो कहा सो कहा, सवाल ये है कि रिपोर्ट पर अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, खुद पाकिस्तान ही कर रहा है भारत की परमाणु क्षमता पर चौंकाने वाला ऐलान, क्यों डर रहा है पाकिस्तान, देखिए इस खास पेशकश में।
0: ब्रेक के बाद रणभूमि में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। जो हालात दुनिया भर के बने हुए हैं, जो हालात भारत के दुश्मन मुल्क के हैं, जो हालात सरहदों पर बदलते दिख रहे हैं, उनके मद्देनजर भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद है, जमीन पर भी, समंदर में भी और आसमान में भी, फिर चाहे वो कूटनीति हो, सैन्य नीति हो या फिर अर्थनीति। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था, जिसमें कहा गया था कि भारत लगातार अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहा है और उसने साल 2026 में 12 वॉरहेड तैयार कर लिए। इस पर अब खबर यह भी आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जब मीडिया ने विदेश मंत्रालय से पूछा इस रिपोर्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा कि उनके प्रवक्ता ने मान लिया कि उन्हें लगता है कि भारत के पास रिपोर्ट से कहीं ज्यादा हथियार हो सकते हैं, भारत की इस कदर तैयारी से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है और अब वो झेप मिटाने के लिए आम रेस रोकने की गुजारिश कर रहा है। खैर ये तो हुई पाकिस्तान की बेचारगी की बात, जैसे ही हमने आपको बताया कि भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद है, साथ में आगे बढ़ रहा है, इसी कड़ी में अब हवा में निगरानी करने के मोर्चे में भी एक बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे DRDO ने स्वदेशी हथियार निर्माण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जिसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने यूरोप में जाकर क्यों यूरोप को लताड़ लगाई, इसके बारे में भी बात करेंगे, और कैसे कि तेल के खेल में भारत अब रूस का साथ के साथ देने में जो आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं उसका कैसे भारत ने पलटवार किया है। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भारत हर मोर्चे पर किस तरीके से मुस्तैद है। शुरुआत करते हैं भारत की सैन्य ताकत से, शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की उस बेचारगी से, उस बौखलाहट से जो ऑपरेशन सिद्धूर के बाद और उसके दौरान भी देखी गई थी। उसके बाद कैसे आपको बताएं कि कैसे दुनिया भर में शांतिदूत बनकर घूम रहे शहबाज शरीफ और मुनीर ने अपने घर में संभाल नहीं पा रहे, बातें वो बड़ी बड़ी करते हैं, ऊपर से सिप्री की रिपोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि परमाणु हथियारों के निर्माण और उसकी तैनाती के मामले में भारत कितना आगे निकल चुका है, पाकिस्तान में डर और दहशत कैसी बनी हुई है। शरीफ और मुनीर की नींद उड़ने वाली काफी है। और देखिए सबसे पहले आखिरकार इस पूरी खबर को लेकर हमारी इनसाइड स्टोरी।
2: भारत का परमाणु दम, पाकिस्तान में हड़कंप। ताकतवर हुआ हिंदुस्तान, मान रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट से अफरा तफरी, छेप मिटाने वाले दे रहा बयान। ताकत, तकनीक और तेवरों वाले हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों की तैनाती की है। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय का हौसला बढ़ा रही है और हर दुश्मन पर खौफ का साया। जाहिर है इस रिपोर्ट के आने के बाद से पाकिस्तान परेशान है। वैसे तो कोई भी देश ये नहीं बताता कि उसने कितने हथियारों को किन इलाकों में और कब तैनात किया है। ऐसे में सैन्य विश्लेषण करने वाली कई संस्थाएं अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करती हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 वॉरहेड की तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तैनाती ही नहीं, भारत ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद में भी बढ़ोतरी की है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार हैं। उसके कितने हथियार तैनात हैं ये फिलहाल रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद से दुनिया भर में हड़कंप मचना ही था और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में मचना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से इस बारे में एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए और जो जवाब आया उसमें पाकिस्तान ने ये मान लिया कि रिपोर्ट में दिखाई गई भारत की परमाणु ताकत कहीं ज्यादा हो सकती है। जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है।
3: We have seen the SIPRI report and their assessment regarding developments and deployments of nuclear capabilities of India, including the reported deployment of nuclear warheads. While we do not wish to endorse or lend credence to SIPRI's methodology, its findings nevertheless are not surprising. Pakistan is not surprised by these developments. These findings of SIPRI broadly corroborate concerns that Pakistan has consistently been raising regarding India's continued vertical proliferation. We also believe that open source estimates such as SIPRI may not fully reflect the actual scale of India's nuclear arsenal, which may actually be higher than the existing estimates. Let me just add that not just the nuclear warheads, Pakistan is also cognizant of developments in India's strategic capabilities, including canisterization of the missile systems, the expansion of sea-based nuclear-capable submarines, and the pursuit of increasingly longer range of intercontinental ballistic missile systems that go far beyond India's periphery, neighborhood, or its legitimate defense needs. These developments enhance operational readiness, complicate crisis stability, and carry implications that extend beyond South Asia, with grave consequences for international peace and security.
2: जाने अनजाने पाकिस्तान ने ये भी मान लिया कि जितनी परमाणु ताकत भारत की दिखाई जा रही है, वास्तविकता में वो ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान के लिए तो ये वैसे भी नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट है। अब वो भारत की न तो तकनीक में बराबरी कर सकता है न तेवरों में, लिहाजा अब छेद मिटाने के लिए आर्म्स रेस में शामिल न होने के बयान दे रहा है। आप भी सुनिए उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान।
3: पाकिस्तान डज नॉट सीक एन आर्म रेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्म्स रेस एंड मैचिंग वॉरहेड्स और आर्म्स एंड एमुनिशंस बाय नंबर। However, we remain mindful of the evolving security environment. We will continue to take measures essential for preserving strategic stability and deter any possible India's aggression. Pakistan urges the international community to closely monitor developments and deployments of India's nuclear arsenal that may affect strategic stability in South Asia and undermine peace and security at the regional and global levels. In this regard, the international community, particularly the suppliers of high technologies to India, should understand the implication of advanced technologies and emerging capabilities being incorporated into India's strategic posture with its grave international consequences, as I mentioned, by the development of intercontinental ballistic missiles that threaten far beyond South Asia into the wider world.
2: दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला, गैर कानूनी तौर पर हथियारों को बनाने और इकट्ठा करने वाला और आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान जब ये कहता है कि वो आर्म्स रेस में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसका ये बयान उसे शांति दूत बनाने से ज्यादा उसकी कमजोरी और तकनीकी सीमाओं की ओर इशारा करता है। ऊपर से फिर उसका रोना धोना इस बात को लेकर शुरू हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को हथियार या फिर तकनीकी मदद देने वाले देश गलत कर रहे हैं। वो शायद ये भूल गया है कि दुनिया भर के ताकतवर देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंधों का आधार कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भारत की मजबूत सैन्य नीति और कूटनीति है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने पिछले कुछ सालों में अपनी सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाने पर जोर दिया है। वो अपनी ओर से युद्ध की कोई पहल बेशक ना करता हो, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं का संदेश अब बिल्कुल साफ है। तकनीक और ताकत के इस कॉम्बो से भारत ने एक तरफ जहां फ्रांस से राफेल जैसे फाइटर प्लेन लिए हैं, तो वहीं आईएनएस विक्रांत और ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियार भी उसकी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहे हैं। वैसे भी भारत सरहदों पर कई बार पाकिस्तान की साजिशों का शिकार हुआ है। हर बार मुंह की खाने वाला पाकिस्तान न तो सुधरता है, न आतंक को पालने में कोई कसर छोड़ता है। ऐसे दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए अब नया भारत हर मोर्चे पर मजबूत है ताकि सरहद सुरक्षित रहे। आज तक ब्यूरो।
0: आपने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान की बेचैनी, बेचारगी और बेइज्जती के बारे में खबरें देखी, लेकिन अब चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे देश के पास कितने परमाणु हथियार है, कौन कौन से देश ने अपने साइलोस के अंदर या फिर आप कह सकते हैं अपने जखीरे में कितने परमाणु हथियार इकट्ठा किए हैं। ये आपको सिप्री के रिपोर्ट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि तैनात हथियार कितने और कुल हथियार कितने। सबसे ऊपर नंबर आता है अमेरिका का, जिसके बाद तैनात हथियार 1770 और इसकी संख्या करीबन 5042 के करीब है। रूस के पास आप कह सकते हैं ज्यादा, यानी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा हथियार है। आप देखिए कि 5420 और 1796 जो उनके आप कह सकते हैं हथियार है वो तैनात किए गए। चीन के पास 34 हथियार तैनात किए गए और 620 कुल हथियार चीन के पास है। चौथा नंबर आता है भारत का, भारत ने 12 तैनात हथियार किए हुए, यानी जो डिप्लॉयमेंट है 12 हथियारों की और 190 के करीब इनकी जखीरा है। पाकिस्तान का नंबर अगर आप देखें, पाकिस्तान की तैनाती नहीं है, लेकिन हाँ कुल हथियार 170 के करीब पाकिस्तान के पास भी। अन्य देशों की अगर बात करें तो उनके पास कुल मिलाकर 400 से ज्यादा हथियार तैनात किए हुए हैं और 745 से ज्यादा हथियार उन देशों के पास मौजूद है। कुल मिलाकर अगर आप देखें कि पूरी दुनिया में 4012 हथियार तैनात किए गए और 12187 के करीब जो आप कह सकते हैं पूरी दुनिया में जखीरा है परमाणु हथियारों का, वो इतना है। या आपने देखा कि कैसे हमने आपको समझाया कि आखिरकार किस देश के जखीरे में कितने हथियार हैं, चाहे वो अमेरिका की बात कर लीजिए, रूस की बात कर लीजिए, भारत की बात कर लीजिए और पाकिस्तान की बौखलाहट इन्हीं संख्याओं को लेकर है। अब आपको जैसा हमने आपको बताया कि भारत के कई मोर्चों पर मुस्तैद, आइए आपको एक बार फिर से बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जिससे जुड़े जानकारी हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जमीन से आसमान हर मोर्चे पर भारत सावधान है। कैसे भारत के पास एयर डिलीवरी यानी हवा से मार करने वाले हथियार भी मौजूद हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, और इसके अलावा लैंड बेस्ड भी और सबमरीन बेस्ड भी, यानी जल थल नभ तीनों में भारत के पास वो काबिलियत है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी पनडुब्बी में वॉरहेड तैनात करते हैं। आपको बता दें कि ये क्षमताएं कुछ ही चुनिंदा देशों के पास मौजूद है। भारत अपने परमाणु हथियारों के ईंधन को भी तेजी से बना रहा है। इसके अलावा भारत का फोकस अब लंबी दूरी की मिसाइलों पर ज्यादा हो गया, यानी लंबी दूरी की मिसाइलें जिनको जिनकी रेंज करीबन 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर के करीब हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कहा था कि किसी न किसी रूप में ऑपरेशन जारी रहेगा, जरूरी नहीं कि वो लड़ाई के तौर पर ही जारी रहे, वो हमारी काबिलियत को बढ़ाने के लिए भी ऑपरेशन जारी रहेगा, ये भी भारत ने कहा। अब आपको एक और दिलचस्प जानकारी देते हैं, आपको बताते हैं कि आखिरकार जो कैनिस्टराइजेशन यानी रक्षा का रेडी टू फायर वाला फॉर्मूला है वो क्या है। आपको बता दें कि रेडी टू फायर वाला कैनिस्टराइजेशन एक ऐसी रक्षा तकनीक जिसमें बैलिस्टिक मिसाइलों को शुरू से एक ही एक सुरक्षित कंटेनर में रखा जाता है, वहीं से इनका डिप्लॉयमेंट होता है, वहीं से ये फायर भी कर ली जाती है। अब इसी कंटेनर में मिसाइलों को ट्रांसपोर्ट, स्टोर और लॉन्च किया जा सकता है, यानी एक ही जगह आपने स्टोर कर दिया, उसको कंटेनर को मूव किया और वहीं से उसको लॉन्च कर दिया गया। इससे लॉन्चिंग की तैयारी में लगने वाला वक्त घट जाता है और आपका जो डिप्लॉयमेंट है, आपकी जो मारक क्षमता है, उसकी जो स्पीड है, उसमें जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। समंदर की नमी, जमीन की धूल और ज्यादा तापमान के साइड इफेक्ट से भी यह हथियारों को, उन मिसाइलों को बचा सकता है। भारत पहल नहीं करता लेकिन कुछ ही पलों में दुश्मन पर पलटवार करने के लिए इन क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है। आपको बताएं कि ये तमाम क्षमताएं हैं जो भारत लगातार अपने बलबूते हासिल कर रहा है। हवाई निगरानी के लिए स्वदेशी सिस्टम तैयार करने के मामले में डीआरडीओ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि 25 जून को बेंगलुरु में सेंटर फॉर एयरबॉर्न बॉम्ब सिस्टम ने नेत्र एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस की घोषणा की थी। इसे भारत की स्वदेशी हथियार निगरानी क्षमताओं में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। डीआरडीओ के मुताबिक नेत्रा सिस्टम जो है वो 145 विमानों पर लगे एडवांस सर्विलेंस सेंसर शामिल है। इसे हवा और समुद्र की सतह में होने वाले खतरों की शुरुआती चेतावनी देने, दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का पता लगाने और हवाई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ऑपरेशन के तौर पर मदद करने के लिए डिजाइन किया गया। ये प्रोग्राम इंडियन एयरफोर्स के लिए 3 EMBA 145 विमान प्लेटफॉर्म पर स्वदेशी मिशन एवियोनिक्स और सर्विलेंस सिस्टम्स को विकसित और इंटीग्रेट करने के लिए शुरू किया गया था। डीआरडीओ ने पहले बताया था कि तीनों विमानों पर सभी मिशन सिस्टम इंटीग्रेटेड किए गए थे और वायुसेना की सक्रिय भागीदारी के साथ व्यापक डेवलपमेंट और यूजर्स असिस्टेंट मूल्यांकन परीक्षण किए गए थे। तीनों विमान पहले इंडियन एयरफोर्स को इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस इन्फिग्रेशन में सौंप दिए गए थे और सिस्टम में सभी ऑपरेशनल जरूरतों को पूरा कर लिया गया था और पूरी तरीके से ये सर्विस में तैनात भी किए जा चुके हैं। इनको तैयार करने की तैयारियां, नेत्र भारत की पहली स्वदेशी अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटीज की क्षमता है और ये एयर स्पेस सर्विलेंस टारगेट और ट्रैकिंग खतरे को पता लगा सकती है। और चलिए रणभूमि में आज इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Supreme Leader approved the steel, sir?
1: I understand the answer is yes.
2: अट्ठाईस फरवरी 2006 जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इससे बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज समुद्री रूट खुलेगा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा, ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे, 60 दिनों तक सीज फायर होगा। डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज जल डमरूबंद को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है। ईरान को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि तेहरान कहीं परमाणु हथियार की तरफ न बढ़ जाए। एमओयू में ईरान के लिए कहा गया है कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर रास्ता निकालेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक विकल्प ये हो सकता है कि यूएन निरीक्षकों की निगरानी में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित किया जाए। सबसे बड़ी राहत, प्रतिबंधों में ढील। अमेरिका ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने की अस्थायी छूट दे सकता है, मतलब ईरान को वो पैसा मिलना शुरू हो सकता है जिसे उसे लंबे समय से जरूरत है। लेकिन अमेरिका की शर्त होगी, पहले पालन फिर राहत। अगर ईरान समझौते की शर्त निभाता है तो ये छूट आगे बढ़ सकती है। इस पूरी डील के पीछे कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के मध्यस्थ अली अल थावदी और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच घंटों बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद शुरुआती सहमति बनी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक फोन डिप्लोमेसी चली। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी बातचीत से जुड़े रहे। लेकिन कहानी में अभी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम मंजूरी मिल गई है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में उच्च स्तर पर सहमति बनी है, लेकिन आखिरी मोहर बाकी हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस डील की खबर ने इसराइल को भी चौंकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू को हाल की बातचीत की पूरी जानकारी नहीं थी, यानी जिस वक्त अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर लौट रहे हैं, इसराइल की चिंता बढ़ सकती है। तेल अवीव लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख की मांग करता रहा है। प्रणय उपाध्याय, सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
4: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
5: एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
6: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दक्षिण में होते ये धमाके भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? सवाल है कि ईरान की तरफ से गिराया गया अपाचे हेलीकॉप्टर क्यों हजारों भारतीय नाविकों की जान आफत में डाल सकता है? अमेरिका और ईरान के बीच होती जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन रही, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले तीन जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमला हो चुका है। पहला हमला 8 जून को मेरीवैक्स नाम के जहाज पर होता है, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिनमें 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला अब जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को 24 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे ऑयल टैंकर सेटवेलो पर भीषण हमला किया, इसमें 3 भारतीयों की जान गई है। मरने वालों में 23 साल के नाविक आदित्य शर्मा भी हैं। हमले के बाद भारत में अमेरिका की हरकतों को लेकर गुस्सा है। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान को कमजोर करने और अपना नियंत्रण मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के चलते वो जहाजों को निशाना बना रहा है, जिसकी चपेट में भारतीय नाविक भी आ रहे हैं। इसने अमेरिका को लेकर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि अमेरिका बिना चेतावनी दिए हमले कर रहा है। 3 दिन में 3 भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमला करने से भारत और अमेरिका के संबंधों और क्वाड सहयोग पर सवाल खड़े किए गए हैं। तीसरे जहाज पर हमले के बाद भारत ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके अपना विरोध जताया है। अमेरिका का कहना है कि ये तीनों जहाज ईरान से तेल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सवाल है कि AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से जब क्रू मेंबर्स की जानकारी पहले ही मिल जाती है, तब अमेरिका की तरफ से जलवीर जहाज पर हमले का क्या मतलब है? डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंग जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, इसीलिए उनकी तरफ से एक बार फिर ईरान पर जोरदार हमले की चेतावनी दी गई है। खार द्वीप पर कब्जा करने का प्लान बनाया गया है, लेकिन ट्रंप का यह कदम न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद 18,000 भारतीय नाविकों की जान खतरे में डालेगा, बल्कि खाड़ी देशों में रहने वाले 80 लाख भारतीयों की जान पर भी संकट बनकर छा जाएगा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: कहा मुंह से स्वदेशी और मन से है वो विदेशी, कहा हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी मुठभेड़ वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की करेंगे मांग। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द करने वाली याचिका खारिज, चुनाव में दखल से इनकार, कांग्रेस ने फैसले को बताया संविधान के खिलाफ। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की समीक्षा बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा पर जोर, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद। अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान में हो सकता है शांति समझौता, फ्रांस में होने वाली G7 बैठक में स्थायी युद्ध विराम पर लग सकती है मुहर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रही चुनावी सियासत में शिकस्त की कहानी पर होगा। दरअसल कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार गए, क्योंकि वहां उनके इकलौते उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन ही रद्द कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि रिटर्निंग ऑफिसर चूंकि संघ के बैकग्राउंड का था, इसीलिए उसने जानबूझकर नामांकन रद्द कर दिया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। कांग्रेस आधी रात को सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन फौरन सुनवाई नहीं हो सकी। एमपी में चुनाव हो गया, 3 सांसद बीजेपी के बन गए। अब आज दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे फैसला आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चुनावी प्रक्रिया में दखलअंदाजी नहीं दे सकते। चूंकि एमपी में चुनाव हो गया है, तो इलेक्शन पिटीशन लेकर हाईकोर्ट चले जाए। अब इस चुनावी हार जीत की बहस को कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक खींच ले आई है। कांग्रेस का कहना है कि देश के संस्थानों पर बीजेपी और संघ का कब्जा पूरा हो चुका है, और इसीलिए कहीं भी इंसाफ नहीं मिल रहा, डेमोक्रेसी को डैमेज हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के अंदर ही इतनी लड़ाई है कि अंदर के घात से हारी कांग्रेस संघ तक बात बढ़ा रही है। दरअसल कांग्रेस अब चुनावी हार और इंडियन डेमोक्रेसी में अपने पॉलिटिक्स सिस्टमैटिक फेल्यूर का ठिकरा संघ पर फोड़ती नजर आ रही है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें भी राहुल यही कह रहे थे कि ऐसी लड़ाई का कोई फायदा नहीं, सिस्टम पर बीजेपी संघ का कब्जा हो चुका है। उधर कर्नाटक में एक नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि कर्नाटक के नए नवेले गृह मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे कहते हैं कि संघ भले एनजीओ हो, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो कर्नाटक में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब जल्द ही कर्नाटक में एक ऐसा कानून आने वाला है जो आज हम लोग उस पर आरएसएस पर पाबंदी लगा सकते हैं। तो आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि सत्ता की सियासत में संघ को लेकर चल रहे विदेशी विमर्श पर बहस होगी। पहले आज की रिपोर्ट हम पहले देख लेते हैं, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखलअंदाजी नहीं की।
1: खील ठोकी जा रही है,
2: सबके फॉर्म खारिज होंगे, कोई ना सांसद बन पाएगा ना कोई विधायक बन पाएगा।
3: चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बता।
4: मध्य प्रदेश से दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन मार्च विरोध करती रही। चुनाव आयोग के सामने धरने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को दरख्वास्त तक दे डाली, मगर राज्यसभा की वो सीट नहीं पा सकी जो छिन गई थी। उधर नतीजा कल आ गया था, एमपी की 3 राज्यसभा सीट बीजेपी जीत गई। आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, कोर्ट ने कहा चुनाव में दखल ठीक नहीं, हाई कोर्ट जाकर इलेक्शन पिटीशन डालिए।
5: मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है, और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा, और उसी की ज्यादा चिंता भी है।
6: ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में, अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार, और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहां पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई।
3: चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
4: कांग्रेस के 61 विधायक जो चुनाव में वोट डालने वाले थे, वो दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वोट छोड़िए सीट चोरी हो गई। कांग्रेस का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूट रहा था।
5: मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ ये
7: मीनाक्षी नटराजन की सीट, राज्यसभा की सीट जिस तरह से आपने निकल ली है, चोरी की है, क्या आपको शोभा नहीं देता? देश में आपका नाम काले स्याही में लिखा जाए कि जब आप इस देश में राज कर रहे थे तो इस देश की लोकतंत्र प्रतिष्ठा और संस्कार को आपने खत्म कर दिया। यदि आमिन खान
4: मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस 3 जगह हमले कर रही है। पहला निशाना बीजेपी और मोदी सरकार, दूसरा निशाना चुनाव आयोग, और तीसरा निशाना आरएसएस पर है।
8: जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की, और इससे पहले राजन भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी।
9: हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजोरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है।
10: लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट को ही चोर कह रहे हैं, ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचायक है।
4: कहा राज्यसभा के नामांकन पत्र में सच छिपाने का मामला नामांकन रद्द होने तक आया, और कहा बात संघ के विरोध पर जा पहुंची। दरअसल सियासत की लड़ाई और चुनावी मैदान में शिकस्त खा रही कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस की विचारधारा बनाम संघ की विचारधारा की लड़ाई की बात करती रही है।
11: सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाई और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी को हराएगी।
4: और जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आई है इस पर नई बहस छिड़ती आई है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक के नए गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने अब संघ को रजिस्ट्रेशन कराने की मांग शुरू कर दी।
12: I am not asking RSS workers to get recognized or to register themselves individually. I am asking RSS to get registered. There is very clear distinction. I really don't care who their members are. First, let the organization get registered. Are this desh mein every street vendor is registered. Correct? Every street vendor is registered. Every temple has to give accounts. Every donation is accounted for. Why RSS is not accounted for? Why are they not registered? They are the world's largest NGO, right? They are the ones who are saving humanity.
13: मैं गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो कर्नाटक में RSS पर प्रतिबंध लगाएं।
4: प्रियांक खड़गे ने दावा किया है कि संघ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य करने वाला एक कानून भी जल्द कर्नाटक में बनने वाला है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
0: तो बहस दरअसल शुरू होती है मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को रद्द करने को लेकर। पहले मुद्दा उठता है चुनाव आयोग के आयोग पर और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घसीट कर ले आई है। तो चर्चा इस बात पर होगी कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के होने की वजह से वहां पर मीनाक्षी नटराजन हारी है या कोई और इसके पीछे कारण है। चर्चा करेंगे हमारे साथ में सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट और थोड़ी देर में रजत सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, क्या भीतरघात से चुनावी हार हुई है या उसका ठिकरा कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस संवैधानिक संस्थानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बार फिर कांग्रेस पार्टी यह सवाल उठा रही है कि इन संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग घुसे हुए हैं और इसी के वजह से उन पर अन्याय हो रहा है। तीसरा सवाल, क्या मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के रिटर्निंग ऑफिसर ने क्या कानूनी काम किया हुआ है या उस पर भी सवाल उठ सकते हैं। तीन सवालों के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन पहले बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने से आ रही है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दर्ज की गई पिटीशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम हमारे विशेष अधिकार का उपयोग इस में नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कहना है कि ये चुनावी प्रक्रिया चल रही है और इसमें अदालत की दखलअंदाजी ठीक नहीं है। आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब इसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन रद्द हुआ है उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं।
14: पीछे हो जाता है।

0: इंफॉर्मेशन आया और उनके लोगों ने ही इंफॉर्मेशन जो है जग जाहिर किया है। ये भी बता देता हूँ, ये लोग अपने ही पहले कीमा को ठीक कर ले, अपने घर को पहले ठीक कर
1: किसने,
0: ले।
1: किसने इंफॉर्मेशन दिया जफर इस्लाम जी, किसने इंफॉर्मेशन दिया, किसने किसने इंफॉर्मेशन?
0: ये सरकार किसकी है आप बताइए सर साहिल भाई, सरकार किसकी है? कांग्रेस की सरकार है ना तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार नहीं। ये तो अपने पहले गरीबों में झांक के देखे कि ये इंफॉर्मेशन कैसे आई भाई, कहां से आई, किससे, कहां की सरकार है। तो हकीकत ये है कि ये दूसरे पे ठेकरा फोड़ना चाहते हैं, अपने कमियां को नहीं बताना चाहते। और ठीक तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने सही कहा, आप जो है पिटीशन फाइल कीजिए, आपको कहीं लगता है तो पिटीशन फाइल कीजिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। आप पिटीशन फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट, आप जाइए जहां आपको जाना है, जिस जगह जाना है, जिस हाईकोर्ट में जाइए, वहां पर अपनी पिटीशन फाइल कीजिए। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई नहीं, ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस है। आज देखिए टीएमसी टूट रही है, हर तरह से टूट रही है, उसके अपने लीडर के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। वही
1: अभय दुबे, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर आए, आप अरविंद शर्मा पर सवाल वहां पर उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं क्योंकि उनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होते हैं असेंबली के, आप तो मध्य प्रदेश से, आपको पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्पीकर अपॉइंटेड होते हैं। झारखंड में आपके आपके आपकी सरकार है, आपके स्पीकर है, उन्होंने जिनको अपॉइंट किया था उन्होंने परिमल नाथवानी पर कार्रवाई नहीं की। आप कह रहे हैं कि झारखंड में अलग न्याय और मध्य प्रदेश में अलग न्याय, तो वहां तो आपने अपॉइंट किए हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे आपकी सरकार के तरफ से या स्पीकर के तरफ से, तो आरएसएस कैसे आ गया वहां पर?
2: साहिल जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मिलकर सबसे पहले मोदी जी के सत्ता में आते ही सरकारें चोरी करना स्टार्ट किया। उत्तराखंड की सरकार, मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ इसलिए सरकार गिराई जाती है। फिर विधायकों को की खरीद चालू, विधायकों की चोरी प्रारंभ की इन्होंने। उसके बाद इन्हें लगा कि सबसे आसान रास्ता है चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बिठा दो और एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करने लगो। एक नया रास्ता निकाल लिया आप, सीट चोरी करना। मुझे दुख हुआ आपने कहा मीनाक्षी नटराजन की हार हुई, अरे चुनाव होते तो हार हुई है। मैं आपको 10 सेकंड में अगले बता दूंगा कि कैसे सफेद कागज पर इस रिटर्निंग ऑफिसर ने काले कारनामे करके प्रजातंत्र को बंधक बना दिया, प्रजातंत्र को हरा दिया। और ये याद रखिएगा इस शो को, भविष्य में इस रिटर्निंग ऑफिसर को जेल होगी क्योंकि काले कारनामे दस्तावेज में अपने आदेश में लिख दिया है। क्या लिखते हैं जानते हैं आप? उन्होंने लिखा है सुश्री मीनाक्षी नटराजन के विरुद्ध दायर इस परिवाद का माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया। सुश्री नटराजन मतलब जो न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया ये खुद की तरफ से अपने आदेश में लिख दिया। और इन्होंने क्या लिखा कि ये जो प्रकरण क्रमांक है 4472-2025, अरे साहब ये 2017 का प्रकरण है, 25 का नहीं है, ये तो समन का नंबर है। उस समन के नंबर को, क्योंकि दस्तावेज नहीं थे इनके पास, ये भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक एक फोटोकॉपी दी और उसको उसने न्यायालय की अवमानना है सीधे सीधे साहिल जी। न्यायालय ने जो आदेश नहीं दिया न्यायालय के नाम पर वो आदेश कैसे लिख सकते हैं, क्या भरते हैं हम बताइए अपराध के नाम पर। ये जो आरपी एक्ट का सेक्शन 33A कहता है कि अगर चार शीटेट है तो आपको उसमें नामांकन में अपने ये मेंशन करना है। इसमें क्या है फॉर्म 26 में, वो लिखते हैं एफआईआर नंबर लिखो, क्या लिखे एफआईआर नंबर, चार शीटेड हो तो लिखो, क्या लिखे बताइए नाम, हम क्या लिखे, ना तो हमारे खिलाफ एफआईआर है ना कोर्ट ने उसका कॉग्निसेंस लिया है। और इतना ही नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी हैंडबुक तक नहीं पढ़ी, उसने कहा कि अगर कोई त्रुटि दिखाई भी देती है, कोई संदेह है, तो संदेह का लाभ चुनाव लड़ने वाले को दोगे। और जिस आर्टिकल
1: 24 का जिक्र, रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला मनमानी तरीके से दिया है, यही दलील आज आपकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी। अभिषेक मनु सिंह भी यही दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे थे, लेकिन पार्टी अब आरोप लगा रही है कि ये जो अरविंद शर्मा है वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस से जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया
2: है उसका।
1: तो इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी, आप आरएसएस इस पर लेकर आए, सवाल उस बात को लेकर है जी।
2: उसके 10 सेकंड में जवाब दूंगा, सिर्फ 10 सेकंड। हम सुप्रीम कोर्ट के पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए साहिल जोशी जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्शन पिटीशन के रूप में आई है, 5-6 साल का वक्त लगता है इलेक्शन पिटीशन में। हमारे गौतम जी विधायक एक वोट से हराया था विधान

0: सभा के 8 दिन बचे थे और उनके पक्ष में फैसला आया, तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए कि आर्टिकल 324 में असीमित अधिकार है, प्रजातंत्र को बचा लीजिए। जून 1950 में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जब इस आर्टिकल का नाम 289 था, कि अगर भविष्य के भारत में कोई धूर्त और मूर्ख चुनाव आयुक्त आया तो हमारे पास कोई कड़े प्रावधान नहीं है। कोई ऐसा चुनाव आयुक्त आ गया जो सत्ता की के हाथ में खेलेगा तो इसमें कोई कठोर हमारे पास प्रावधान नहीं, और वो होता हुआ
1: अरविंद शर्मा आरएसएस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया।
0: हाँ,
1: जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने ये आरोप लगा रहे हैं। मेरा सवाल वही है, आपकी बात मैं समझता हूं, आपकी ये दलील है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि मनमानी पक्षपाती तरीके से ये फैसला लिया गया रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश की विधानसभा के, लेकिन वो संघ से जुड़े हुए हैं इसीलिए उन्होंने ये फैसला लिया, ये आपका आरोप है। सवाल यहां पर आकर पॉलिटिकल बन जाता है, राजनीतिक बन जाता है।
0: येल्ला प्रगाड़ा सुदर्शन राव, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिकल रिसर्च 2014, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। बलदेव शर्मा, नेशनल बुक ट्रस्ट 2015, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। सीवी पटेल, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता। जगदीश कुमार, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अनिल शास्त्र बुद्धे तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे भैया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। अनिल शास्त्र बुद्धे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन
1: के बारे में पूछ रहा था।
0: अरविंद शर्मा,
1: आरएसएस को घसीटा है मध्य प्रदेश के जरिए,
0: आज पत्रकार
1: सैयद जफर इस्लाम जवाब दीजिए पहले। अभय दुबे जी को आरएसएस नजर आ रहा है, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का अंतर्गत भेद है कहीं ना कहीं, वो निकल कर आ रहा है।
0: आज नेता प्रतिपक्ष
1: उनसे भी जवाब सुन लीजिएगा। आपके पार्टी के नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं, पार्टी के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, जरा सुन लीजिए, जवाब भी सुन लीजिएगा। सैयद जफर इस्लाम आता हूँ आपके पास, अभय दुबे जी जरा जवाब सुन
2: लीजिए। ये समाज में एक संगठन है जो समाज के उत्थान के लिए काम करता है, समाज के हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस के भी लोग जुड़े रहते होंगे, हमें नहीं मालूम, किसी के समाज के हर वर्ग के लोग जुड़े रहते हैं। एक अच्छा काम करने वाली संस्था है जो समाज के लिए, समाज के उत्थान के, समाज में सब हर वर्गों के लिए काम करती है, किसी से पक्षपात नहीं, सबके लिए काम करती है। लेकिन इनको जब हार होती है या इनके खिलाफ कुछ काम होता है तो अपने गरिमा में झांकने के बजाय इनको लगता है दुनिया में तो हम एक्सपोज हो चुके हैं, तो चलो कहीं ठेकरा फोड़ दे संघ पे या भारतीय जनता पार्टी पे या गाली दे दे मोदी जी को। ये तीनों जो इनके हथगंडे हैं ना, ये स्टंट, ये बैकफायर इन्हीं को करते हैं। जितनी इस तरह की कोशिश करेंगे उतना उनको उनका नुकसान होगा। अच्छा होता राहुल गांधी कहते कि आखिर इन्फॉर्मेशन कैसे यहाँ से वहां गई, आखिर किसने ये इन्फॉर्मेशन वहां से भेजा है? तेलंगाना में तो हमारी सरकार है, तेलंगाना के किस नेता ने ये इन्फॉर्मेशन लीक किया है और किस नेता के साथ, मध्य प्रदेश के किस नेता को लीक करके दिया है और उस नेता ने किस नेता ने इधर उधर फैलाया है, ये सबको जानकारी लेनी चाहिए ना। इससे उनकी उनकी संगठन में कहीं मजबूती आती। हकीकत तो ये है संगठन कमजोर, जनता के नाम से ना सामने नजर में कमजोर, अपने आप में कभी कमियां जो है उसका कोई नहीं खुलासा करता है, बल्कि 10 जनपद को सिर्फ नमस्ते करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं बचा है। उसी के वक्त को ताकत वहां से आती है और उसको वही उसी को
1: आप
2: जो है
1: आप
2: वही
1: कुछ पुरानी यादें आ रही है।
0: एक दस सेकंड
1: अभय दुबे जी 10 सेकंड, उसके बाद मुझे जरा आशुतोष जी के पास जाना है, क्योंकि आरएसएस से जुड़े होने का आरोप जो है ना वो पहले भी हम सुन चुके हैं, आशुतोष जी को याद होगा, इसीलिए मुझे उनके पास जाना है। अभय दुबे जी 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड।
0: ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रहित का काम है, क्या बात करते हैं? वो मीनाक्षी नटराजन जो शुचिता की राजनीति की प्रतीक है, जो गांधीवादी नेता है, पहले लोकसभा चुनाव में जितने खर्च की सीमा थी उससे आधे से अधिक पैसा पार्टी को वापस कर दिया। पहला लोकसभा का चुनाव 5-6 लाख रुपए में लड़ा उस महिला ने, उसके पास
1: मीनाक्षी नटराजन
0: प्रतिकूल परिस्थिति में ऐसे नेता मिलना मुश्किल,
1: इस पर कोई सवाल नहीं है।
0: क्या
1: काम को लेकर कोई सवाल नहीं है, सवाल इस बात को लेकर है कि अरविंद शर्मा पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है कि वो संघ से जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये चीजें हो रही है।
0: अगर संघ से जुड़े हुए नहीं होता तो ये फैसला लेता अपराध क्या, मुझे बताइए ना, अपराध क्रमांक बता दीजिए, अपराध बता दीजिए, किस कोर्ट में कहां चार शीटेड है, ये कुछ भी नहीं है।
1: मुद्दे पर अलग से बहस होगी, चुनावी पिटिशन होगा, उसमें भी बहस होगी क्या सचमुच में मनमानी तरीके से ये फैसला लिया गया है या नहीं लिया गया है। लेकिन आशुतोष जी आपको याद होगा जब अण्णा हजारे का आंदोलन चल रहा था रामलीला मैदान पर, आपको याद होगा तब भी आरएसएस का हाथ है कि नहीं, कांग्रेस पार्टी वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जो लोगों के मन में उनके सरकार के खिलाफ गुस्सा उमड़कर निकल रहा था उसके पीछे भी आरएसएस का हाथ है कि नहीं, वो ढूंढने की कोशिश हो रही थी। आज की स्थिति में दो अलग अलग मसले हैं। एक मसला है कि क्या रिटर्निंग ऑफिसर ने मनमानी फैसला किया है, गैरकानूनी फैसला किया या नहीं किया है, और दूसरा राजनीतिक मसला है जहां पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो अधिकारी आरएसएस से जुड़े हुए हैं इसीलिए यह फैसला लिया गया है। आपको याद होगा, इसके लिए मैं आपके पास आ रहा हूं। सबसे पहले उसके
3: देखिए साहिल, इसमें दो बड़े मसले हैं। पहला मसला ये कि क्या वो आरएसएस से जुड़े हुए या नहीं मसले, दूसरा ये कि जो फैसला उन्होंने किया है वो सही किया है फैसला नहीं किया। जो उन्होंने फैसला किया है वो फैसला है। पूरी तरीके से गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर आप देखेंगे तो वहां पे कोई क्रिमिनल केस होना चाहिए, कोई क्रिमिनल केस फिलहाल मीनाक्षी ठाकुर के खिलाफ, मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ रजिस्टर्ड है नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कानूनी पहलू का इस्तेमाल किया है कि जब तक चुनावी प्रक्रिया चल रही है तब तक सुप्रीम कोर्ट या कोई अदालत दखल नहीं दे सकती है, चुनावी प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगर उसमें कुछ मल प्रैक्टिस है तो हाईकोर्ट में आप सीधे पिटीशन कर सकते हैं, हाईकोर्ट उस पर फैसला कर सकता है। अब इसमें देखिए,
1: जफर साहब ने बड़ी कर सकते हैं,
3: बिल्कुल जफर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि आरएसएस कौन सा संगठन है। आरएसएस वो संगठन है जो समाज के हर तबके के बारे में, के उद्धार के बारे में बात करता है। जफर साहब को शायद यही नहीं मालूम है कि वो मुसलमानों को उद्धार के बारे में बात नहीं करता है। वो जफर साहब खुद आरएसएस की शाखा में सुबह नहीं जा सकते हैं। ये दरअसल हिंदुस्तान के आरएसएस की पहचान है। तीन बार उसके ऊपर बैन लग चुका है, गांधी जी की हत्या के बाद, इमरजेंसी के बाद और बाबरी मस्जिद गिरने के बाद। एक संगठन तीन बार बैन हो चुका है और उसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर उठता है कि ऐसे क्या, अगर कोई व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, अगर वो इस तरीके से फैसला करता
1: तो ये
3: है,
1: अलग सवाल है। कर्नाटक पे उस बात को लेकर अलग से बहस शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन को लेकर बहस शुरू हो चुकी है, उस पर कई बार सवाल जवाब हो चुके हैं। मेरा सवाल आज की स्थिति में सिंपल है, क्या कोई अधिकारी आरएसएस से जुड़ा हुआ है इसीलिए यह फैसला ले रहा है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या आरएसएस से जुड़ा होना यानी आप सरकारी किसी भी काम सरकारी अधिकारी के तौर पर आप क्या काम नहीं कर सकते? प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, आई एम श्योर कि वो इतने आज या कल तो सरकारी अधिकारी के तौर पर काम नहीं कर रहे होंगे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तभी से मध्य प्रदेश सरकार में काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज वो ज्वाइन हुए।
3: देखिए, आप किसी भी संगठन के सदस्य, एक मिनट, आप किसी भी संगठन के सदस्य हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आरएसएस के संगठन का सदस्य होने पर लंबे समय तक सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध था। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से उसमें प्रतिबंध हटाया गया है, ये तो सच्चाई है। दूसरी बात यह कि अरविंद शर्मा ने जो काम किया है, जो वहां के हैं, क्या उन्होंने कानून सम्मत फैसला किया या कानून सम्मत फैसला नहीं किया? प्रथम दृष्टया कानून सम्मत फैसला उन्होंने नहीं किया है, प्रथम सम्मत।
1: लेकिन ये बहस हो सकती है कि क्या किसी रिटर्निंग ऑफिसर ने कानून सम्मत फैसला लिया है, मनमानी फैसला लिया है या पक्षपाती फैसला लिया है, ये बहस हो सकती है और इस ये बहस होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल वहां पर उठता है जब इसे आरएसएस के नजर से देखा जाता है। रजत सेठी, इसका जवाब आपको देना है क्योंकि आशुतोष कह रहे हैं कि आरएसएस के से जुड़े हुए कर्मचारियों पर पाबंदी थी जो 2014 के बाद हट गई है, वो बात अलग है। लेकिन आज की स्थिति में आरएसएस से जुड़ा हुआ अधिकारी ही ये कर सकता है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं ये भी कहने की कोशिश कर रही है। अगर माल प्रैक्टिस है तो आरएसएस से जुड़ा होना चाहिए। मुझे पता नहीं चंडीगढ़ के जो अधिकारी थे जिनका सीसीटीवी में फुटेज आया था वो किस संगठन से जुड़े हुए थे, लेकिन ये भी चीजें हमने देखी हुई है। रजत से
4: चंडीगढ़ का क्या लेना देना है इससे? लेकिन जो कहावत है कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा,
1: वो भी निर्वाचन अधिकारी थे और उन्होंने जो फैसला जो किया वो गलत किया था, इसीलिए मैंने सिर्फ कहा मुझे नहीं पता वो किस संगठन के
4: ऊपर एक्शन भी हुआ था, काफी ओपन एंड शट केस था वो। यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है चुनाव की प्रक्रिया में, बहुत सैक्रोसैंक्ट है, क्वाजाई जुडिशियल होता है, उसके जो एक्शंस होते हैं वो रिव्यू के अंडर आ सकते हैं, बट आप एब इनिशियो जाके ये बहुत क्लियरली आज सुप्रीम कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया है कि हम लोग जो पुलिसवामी केस है उसका ही एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करेंगे। मुझे यहाँ पे हाय तौबा मजा समझ में नहीं आ रही है कि चीज पर हो रही है। जब क्लियरली प्रोसेस को फॉलो करना होता है तो प्रोसेस को फॉलो करे ना कांग्रेस पार्टी, इस पे जो इलेक्शन पिटीशन डालनी है डाले, उस पे सुनवाई होगी, जहां ड्यू प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा उसके लिए आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है ना, ये पूरी कांग्रेस पार्टी अपने आप को सोचती है कि हम लोग राजा महाराजा हैं, हम लोग कोई भी नियम कानून को तोड़ के बिखर के छोड़ सकते हैं क्योंकि सब लोगों को हमारे हमारे ही कहने पे चीजें चलनी चाहिए। रेवंत रेड्डी क्यों नहीं है फिर आरएसएस के नुमाइंदे, वो तो उनका भी तो पूरा बैकग्राउंड आरएसएस की ट्रेनिंग का है, तो ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री को पहले हटाओ। एक एक आप ब्यूरोक्रेट को जाके टारगेट करना चाहते हैं और उसके जो उसके विवेक में जो काम हो सकता है उसको जाके आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। यही चीज अभी जज के खिलाफ किया गया था, अरविंद केजरीवाल ने किया था कि एक जज के बोनाफाइड क्रेडेंशियल्स पे आप जाके क्वेश्चन उठाते हैं और जब आपके ऊपर में फिर जुडिशियल कंटेंप्ट का केस होता है फिर आप सड़क पे आते हैं, मीडिया के सामने हाय तौबा मचाते हैं, रोते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन की आपको क्रेडिबिलिटी माननी है कि नहीं माननी है? यही इंस्टीट्यूशन था, ये एक इंस्टीट्यूशन हम लोगों ने सबने माना, सारे पॉलिटिशियंस ने मिलकर माना कि एफिडेविट में सब चीजें आपको लिखनी है। आप कौन होते हैं सिलेक्टिव होने वाले और खुद ही जजमेंट पास करने वाले कि मेरा मन नहीं किया तो मैंने एक लाइन इस एफआईआर के बारे में नहीं ऐड करी? ऐसे नहीं होता ना। आपके पास जो आपने एफिडेविट का आप ही कानून लेकर आए थे, सब नेताओं को एफिडेविट भरना है, सब नेता भरें, कोई नहीं भरेगा उसकी गलती पाई जाएगी, उसका निर्वाचन रद्द हो सकता है। साहिल जी मैं आखिरी बात बोलूंगा, कितने ऐसे केसेस हैं नेताओं के ऊपर जो पोस्ट इलेक्शन विक्ट्री मंत्री बने हुए हैं कांग्रेस के भी भाजपा के भी, जिनके एफिडेविट के ऊपर क्वेश्चंस को लेके कोर्ट में दलीलें चल रही हैं अभी? क्या ऐसा स्थिति होनी चाहिए? क्या रिटर्निंग ऑफिसर को ज्यादा केयरफुल नहीं होना चाहिए? बल्कि यहां तो मैं रिटर्निंग ऑफिसर की वाहवाही करूंगा कि उन्होंने सच में पकड़ा एक चीज को, ये बाद में मैटर बनता उसको,
1: लेकिन पहले मैटर आरएसएस से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, रजत सेठी
4: देखिए, ये कोई सर्टिफिकेट है क्या जिसको ले लेके देखा जाए? मैं तो बोल रहा हूँ रेवंत रेड्डी है आरएसएस के, रेवंत रेड्डी ने इन्फॉर्मेशन लीक करी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को हटाए पहले ये लोग।
1: आशुतोष जी जवाब, आशुतोष जी जवाब देंगे, उसके बाद अभय दुबे के पास
4: हटाया जाए।
0: साहिल जी, साहिल जी, बहुत जरूरी
1: है। अभय दुबे एक मिनट पहले, आशुतोष उसके बाद आप।
3: साहिल देखिए,
1: आशुतोष पहले, आशुतोष उसके बाद आप।
3: मुझे लगता है कि रजत सेठी ने आज होमवर्क ठीक से नहीं किया है। कोई एफआईआर उन महिला के खिलाफ दर्ज नहीं है, किसी भी तरीके का एफआईआर नहीं है, किसी भी तरीके का एफआईआर नहीं है। कोर्ट का सिर्फ एक नोटिस है और कोर्ट के उस नोटिस को किसी भी तरीके से उस एफिडेविट में देना जरूरी नहीं है, यह कानूनी गलत है। दूसरी बात, आप कहते हैं कोर्ट जाइए, अभी न्यूज क्लिक नाम की एक संस्था थी, उसको पता नहीं क्या क्या कहा गया और अदालत ने फैसला करके दिखाया, नॉट अ विस्पर ऑफ एन एविडेंस। पूरी संस्था चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई इस देश के अंदर। उसके उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उस आदमी को आपने 1.5 साल जेल के अंदर रखा, साया उसका परिवार, उसका जो ट्रॉमा था। जब आरएसएस के लोग जेल जाएंगे तब पता चलेगा, जब रजत सेठी को जेल जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। ये कौन सी बात है? आप गलत करते हैं, उसके बाद सीमा चोरी करते हैं,
4: करना बंद करें,
3: गलत करते हैं,
4: भेजना नहीं, भेजना यहां की संस्थाएं तय करेंगी, कांग्रेस पार्टी आशुतोष नहीं तय करेंगे कि कौन जेल जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये आप तय करेंगे क्या?
3: ये आप तय करेंगे और गलत इन्फॉर्मेशन लेके आए रजत, आपके पास जानकारी नहीं है,
4: इस देश की संस्था
3: जानकारी नहीं,
4: ठीक है?
1: इस बात का भी फैसला चुनावी पिटीशन में होगा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो बात कही है, जिस तर्ज पर उसने फैसला लिया है, क्या वो सही लिया है या गलत लिया है, ये भी चुनावी पिटीशन में तय हो जाएगा। लेकिन अभय दुबे कुछ इंटरवीन करना चाह रहे थे, पहले अभय दुबे बात करेंगे, उसके बाद रजत सेठी आपको भी रिबटल का मौका मिलेगा। प्लीज प्लीज, अभय दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद रजत सेठी दोबारा बोलेंगे, उसके बाद शिवसेना प्रवक्ता के पास भी जाना है, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं, शिवसेना भी ये कहने की कोशिश कर रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अभय दुबे पहले, उसके बाद रजत सेठी जी।
0: साहिल जी देखिए, मन में पाप होता है, दुर्भावना होती तो कैसे टेलीविजन पर सामने आ जाती है? क्या कहा इन महोदय रजत सेठी ने कि एफआईआर है तो मेंशन करना पड़ेगी, यही तो आर्ग्यूमेंट है कि एफआईआर नहीं है, और जो नोटिस है उस नोटिस का नंबर लिख के उन्होंने प्रकरण क्रमांक लिख दिया अपने आदेश में, इससे बड़ा घपला कोई हो सकता है? और यह लिख दिया कि तेलंगाना की अदालत ने कॉग्निसेंस ले लिया। अरे किसी अदालत के बिहाफ पर एक आदेश में, एक संवैधानिक आदेश में झूठ कैसे लिख सकते हो? और बड़ा आरोप इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फैसला क्यों नहीं दिया जब हमने कहा उनसे कि यह अन्याय हो गया, इसका संज्ञान लीजिए, चलिए कोर्ट ने तो कह दिया इलेक्शन पिटीशन में जाइए, लेकिन चुनाव आयोग का क्या तर्क था, क्यों फैसला नहीं दिया? ओरली उन्होंने कहा कि 3:30-4 बजे तक फैसला दे देंगे। किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अपने आकाओं से फोन आया भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से कि फैसला मत देना, हम इसको टाल देना। उन्होंने टाल दिया और सर्वोच्च अदालत ने कह दिया इलेक्शन पिटीशन में जाइए, 6 साल वेट करिए। अरे ऐसे ही प्रजातंत्र को लूट लेंगे? प्रधानमंत्री जी दूसरे रास्ते से संविधान पर आक्रमण का रास्ता तलाश रहे हैं, दूसरे राजनीतिक दलों के सांसदों को ले रहे हैं, राज्यसभा की सीटें चोरी कर रहे हैं, ताकि वो जो वन नेशन वन इलेक्शन है और ये जो डिलिमिटेशन का के काले कारनामे करना चाहती सरकार, उसको पास कराने के लिए सारे षड्यंत्र कर रहे हैं। और हमने प्रामाणिक आरोप लगा, राज कहता हूं
1: ये कह रहे जेल जाएगा। ये सारी चीजों पर अवैध दुबे जी, सारी चीजों पर बहस हो सकती है, लेकिन अभी भी आप इस बात का मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं कि अरविंद शर्मा के आरएसएस कनेक्शन को लेकर कुछ तो बात उजागर करिए। और रेवंत रेड्डी वाला जवाब भी अभी तक आपने दिया नहीं है। रजत सेठी, आप इसका जवाब देंगे, लेकिन जरा जल्दी से अगर आप 5 सेकंड में बता सके कि क्या कनेक्शन है या रेवंत रेड्डी वाला जो सवाल रजत सेठी उठा रहे थे।
0: आ जाइएगा तो हम शाखा में, जो अधिकारी आशुतोष जी ने कहा है ना, आपने भी कहा कि वो शाखा में जाना प्रारंभ कर दिया, सारी हिस्ट्री पता लग जाएगी। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक विधायक ने पूछा उनसे आरओ से, तो उन्होंने कहा कि हमको मजबूरी है, हम तो इनके साथ रहना है तो देना पड़ेगा आदेश। 100% काला कारनामा है, 100%
1: किसी अदालत की वजह से दिया है कि संघ के जुड़े के साथ जुड़े होने की वजह से दिया, जरा वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए।
0: निर्णय नहीं दिया,
1: ठीक है रजत जी,
4: मैंने जैसा बोला ना, नाच नावे आंगन टेढ़ा। ये 70 सालों में ना इन्होंने एक चीज प्रैक्टिस कर ली है, इन्होंने इस चीज की प्रैक्टिस करी है कि कैसे नेताओं को, कैसे ब्यूरोक्रेट्स को, कैसे कांग्रेसी बनाना, इन्होंने 70 साल प्रैक्टिस करी है। इलेक्शन कमीशन नवीन चावला पराठे सेका करते थे इनके गांधी परिवार के लिए,
0: आपको
4: पता है क्या होता था नवीन चावला का? इतिहास में जाएंगे तो बहुत काले पन्ने निकलेंगे कांग्रेस पार्टी के। देखिये मैंने नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे, आप शांत रहिए, सुनिए, आप पब्लिक को सुनिए, आप पब्लिक को सुनिए, जब बोल रही है पब्लिक तो आपको सुनना होगा। दुबे जी आपके टाइम पे मैं नहीं बोल रहा था, मैं फिर बोलूंगा, नवीन चावला जैसे इलेक्शन कमिश्नर्स आप लोगों ने अपॉइंट किए थे, क्या कहानी है, क्या किस्से हैं ना आपके व्यूअर्स साहिल जी देख ले, एक बार गूगल करने की जरूरत है। ये लोगों ने 70 साल में पूरे ब्यूरोक्रेसी को कांग्रेसिफिकेशन किया था, एक एक ब्यूरोक्रेट को इन्होंने कांग्रेस की एजेंट बना के रखा था, क्योंकि 70 साल से किया, इनको लगता है कि आगे 10 साल में भी यही कुछ हो रहा होगा।
0: तो
4: ये सपनों में भी यही चीज आती है, प्रूफ कुछ कर नहीं सकते हैं किसी संस्था, किसी मुझे ये बताइए किसी संस्था का हिस्सा होना क्या अपराध है?
1: रजत सेठी
4: जी मैं जानना चाहता हूँ,
1: बड़ी दिलचस्प,
4: अरविंद शर्मा जी कौन है,
1: बड़ी दिलचस्प बात है,
4: बट आप फैक्ट बताइए कि क्या अपराधी
1: इस देश के, इस देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो भी ब्यूरोक्रेसी में रह चुके हैं जब UPA 1 UPA 2 की सरकार थी। लेकिन ये बड़ी दिलचस्प बात है कि आज की स्थिति में कांग्रेस पार्टी को हर जगह पे आरएसएस के लोग वहां पर नजर आ रहे हैं। आनंद दुबे, आपको भी लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का आरोप है उसी तरीके से हो रही है, या सचमुच में इसमें कुछ और रीजन है? क्योंकि आज आपकी पार्टी के तरफ से भी कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्या आपको भी आरएसएस दिखाई दे रही है?
5: सादर प्रणाम। देखिए मीनाक्षी नटराजन के पर्चा पर जो भी विषय हो रहा है वो आपको भी पता है, हमें पता है कि हाँ कुछ न कुछ वहां गड़बड़ हुई है। अब किसकी तरफ से हुई है, सरकार इन्वॉल्व है, बीजेपी इन्वॉल्व है, या वहां के कोई लोकल अधिकारी इन्वॉल्व है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जहां तक हम लोग जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, हमारे नेताओं के संबंध रहे, वो एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। हमारे सर्वोच्च नेता बाला साहब ठाकरे जी के संघ के नेताओं के साथ बड़े अच्छे संबंध रहे, और सिर्फ उनके साथ ही नहीं, बजरंग दल के साथ, भारत विश्व हिंदू परिषद के साथ, बहुत सारे और हिंदू संगठनों के साथ रहे। तो यहां जो लड़ाई हो रही है कि एक व्यक्ति क्या कोई मानसिकता से ग्रसित है और उसने अन्याय किया, वो व्यक्ति हो सकता है 19-20, लेकिन पूरा का पूरा संघ ही देश चला रहा है, पूरा का पूरा संघ ही सरकार चला रहा है, ये भी कोई मानेगा नहीं, क्योंकि बार बार
1: कौन सरकार चला रहा है? आनंद दुबे जी सरकार कौन चला रहा है फिर?
5: सरकार तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतती है, चुनाव लड़ती है, चुन के आती है, वो सरकार चलाती है। कल कोई ये कहे कि
1: हंस रहे हैं,
5: नहीं कल कोई ये कहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरकार चला रही है तो ये ना आपको पसंद आएगा या जमेगा, ना हमें समझ में आ रहा है। तो लड़ाई मुद्दों पे हम लड़ते हैं, हम आज विपक्ष में हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन कल अगर हम ये कह दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रही है, फलाने कर रही है।
1: आशुतोष ने पहले पहले आशुतोष ने पहले उंगली उठाई थी, जरा उनके पास पहले जाना, वो हंस भी रहे हैं, जरा सुनना है उनसे।
3: देखिए
1: आशुतोष जी,
3: आनंद जी हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन अभी पार्टी इनकी टूट गई, अभी संघ का प्रेम इनका गया नहीं है। ये दिलचस्प बात है। अगर अगर अगर ये आरएसएस की सरकार नहीं है तो आनंद जी किसकी सरकार है ये? दूसरी बात मैं तो कहता हूँ,
5: देखिए आशुतोष जी
3: आरएसएस अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, पता नहीं जाएगा कि अरविंद शर्मा आरएसएस के सदस्य नहीं है।
5: अरे सुनिए ना,
3: यही तो प्रॉब्लम है ना।
5: अब हम
3: हिंदू दुनिया के सबसे बड़े संगठन है, रजिस्ट्रेशन करते नहीं है, आपकी मेंबरशिप का कुछ पता नहीं है, तो अरविंद शर्मा भी आरएसएस के सदस्य हो सकते हैं और आशुतोष भी आरएसएस।
1: आनंद भाई जल्दी से जवाब देंगे, उसके बाद सैयद जाफर
5: भाई। हम वीर सावरकर जी को अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी देशभक्ति की गाथा गाते हैं। तो अगर हम एक विपक्ष में बैठे हैं और पूरा विपक्ष अगर वीर सावरकर जी के खिलाफ हो रहा है, तो क्या हम अपनी भावनाओं को त्याग देंगे, अपनी आत्मा को मार डालेंगे? हम एक पार्टी हैं, हम एक राजनीतिक दल हैं, सरकार बनाना प्राथमिकता नहीं है, देशभक्ति प्राथमिकता है, देश हमारी सबसे जरूरत की चीज है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, मुद्दों पर आवाज उठाएंगे।
3: आरएसएस के बारे में
1: आनंद जी इसीलिए बीच में बैठे हैं। आशुतोष जी आप देख लीजिएगा, रजत सेठी आनंद दुबे बीच में बैठे हुए हैं, ना वो इस तरफ है ना उस तरफ है, वो इसीलिए बीच में बैठे हुए हैं, हमारे पैनल में भी बीच में बैठे हुए हैं।
3: एक मिनट
1: जरा अभय दुबे जी कुछ कह रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगियों ने आज कुछ कहा हुआ है, जरा सुन लेते हैं। हाँ अभय दुबे जी जल्दी से, उसके बाद आखिर में सैयद जफर इस्लाम।
0: ये मेरे मित्र आनंद जी, एक बार उद्धव दादा के भाषण निकाल के देख लो, ये आशुतोष जी ने पब्लिश किया है। सत्ता जिहाद का आरोप, ठाकरे ने भाजपा के आरोपों को जवाब देते हुए कहा कि संघ और भाजपा पर सत्ता जिहाद में लिप्त होने का आरोप, ऐसे 50 बयान
5: हमारे नेताओं के 5 साल पुराने भाषण अगर निकाल के दूंगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे।
0: बात सुनिए, अरे आनंद भाई देखिए, मैं जानता हूं आप आज का जो मुद्दा आया उस पर रहे, इनका अपराध सिद्ध होगा। साहिल जी एक जवाब नहीं दिया, क्या
5: मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ गलत हुआ
1: जफर इस्लाम
5: है, यही समर्थन नहीं कर सकता
0: जो उनको,
5: लेकिन उसके सबूत हमें दिखाने होंगे, निर्वाचन अधिकारी को पकड़वाना होगा, वो भी रंगे हाथ, न कि किसी और संस्था या संगठन की बात करनी होगी।
1: आखिर में सैयद जफर इस्लाम को कैसे सामना होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब कह रही है कि सिस्टम पर से उनका भरोसा ही उठ गया है, राहुल गांधी ने खुद कहा है इंडिया अलायंस की बैठक में।
2: अरे भाई देश की जनता का उनपे भरोसा उठ गया है, देश की जनता ने इनसे जो आशीर्वाद दिया करते थे जिसमें कहा उन्होंने कि 15 साल हमने राज किया, 70 साल राज किया, तो इन्होंने राज किया है, हम सेवा कर रहे हैं, इसलिए जनता का भरोसा खो चुके हैं।
1: और एक बात तो साफ हो गई है कि मीनाक्षी नटराजन को लेकर मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव की लड़ाई अब हाईकोर्ट जानी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे दखल देने से इनकार कर दिया, वो लड़ाई पर नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए आज।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
3: आगे आगे,
4: अरे उधर उधर गया।
3: करेक्ट करेक्ट,
5: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
6: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
7: इन एसोसिएशन विद
8: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
7: हिंट, बड़े आराम से
8: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
7: Vimal, bolo zuba kesri.
8: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
9: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
10: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें सात तक, देखते रहिए आज तक।
11: देखिए मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है। और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ, ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए। मैं
12: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, RSS के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहां पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे, कौन से आरोप? रिबेल, आप ये तो रिबेल कहाँ से हो गए? भगोड़े हैं। रिबेल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं।
2: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे हैं। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसमें सयानी घोष का नाम नहीं था, सयानी घोष ने बाद में पाला बदलने का प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयानी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर उस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।

0: एक तरह से आखिरी खील ठोकी जा रही है।
1: सबके फॉर्म खारिज होंगे, कोई ना सांसद बन पाएगा ना कोई विधायक बन पाएगा।
2: चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
3: मध्य प्रदेश से दिल्ली तक कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन मार्च विरोध करती रही। चुनाव आयोग के सामने धरने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को दरख्वास्त तक दे डाली, मगर राज्यसभा की वो सीट नहीं पा सकी जो छिन गई थी। उधर नतीजा आ गया था, एमपी की तीनों राज्यसभा सीट बीजेपी जीत गई। सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, कोर्ट ने कहा चुनाव में दखल ठीक नहीं, हाईकोर्ट जाकर इलेक्शन पिटीशन डालिए।
2: मैं इसको बिल्कुल व्यक्तिगत हार नहीं मानती, मैं मानती हूँ कि ये पूरे व्यवस्था के सामने खड़ा एक प्रश्न है और ये एक तरह से लोकतंत्र को के साथ सवाल है कि लोकतंत्र हारेगा या जीतेगा, और उसी की ज्यादा चिंता भी है।
4: ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी पिटीशन ये कहकर डिसमिस कर दी कि 329 में अंडर आर्टिकल 329 देयर इज अ बार और वो इलेक्शन पिटीशन में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में उनकी पिटीशन डिसमिस कर दी गई।
2: चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
3: कांग्रेस के 61 विधायक जो चुनाव में वोट डालने वाले थे वो दिल्ली में प्रदर्शन करते रहे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, वोट छोड़िए सीट चोरी हो गई। कांग्रेस का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूट रहा था।
2: मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहां पे खड़े होते हैं तो ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे।
5: कांग्रेस के अंदरूनी जो कलह रही है, मैं उम्मीद करूंगा कांग्रेस अपना आत्मूल्यांकन करेगी।
6: मीनाक्षी नटराजन की सीट, राज्यसभा की सीट जिस तरह से आपने निकल ली है, चोरी की है, ये आपको शोभा नहीं देता। देश में आपका नाम काले स्याही में लिखा जाए कि जब आप इस देश में राज कर रहे थे तो इस देश की लोकतंत्र प्रतिष्ठा और संस्कार को आपने खत्म कर दिया। यदि आमिन खान
3: मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसके लिए कांग्रेस तीन जगह हमले कर रही है। पहला निशाना बीजेपी और मोदी सरकार, दूसरा निशाना चुनाव आयोग और तीसरा निशाना आरएसएस पर है।
7: जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है, रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजन भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी।
8: हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर रिटर्निंग ऑफिसर्स, जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं, और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है।
9: लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाती है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करती है। दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता सुप्रीम कोर्ट को ही चोर कह रहे हैं, ये कांग्रेस की अलोकतांत्रिक मानसिकता का परिचायक है।
3: कहा राज्यसभा के नामांकन पत्र में सच छिपाने का मामला नामांकन रद्द होने तक आया, और कहा बात संघ के विरोध पर जा पहुंची। दरअसल सियासत की लड़ाई और चुनावी मैदान में शिकस्त खा रही कांग्रेस पार्टी अब कांग्रेस की विचारधारा बनाम संघ की विचारधारा की लड़ाई की बात करती रही है।
10: सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाई और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी को हराएगी।
3: और जब से कर्नाटक में कांग्रेस की सत्ता आई है इस पर नई बहस छिड़ती आई है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे और कर्नाटक के नए गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने अब संघ को रजिस्ट्रेशन कराने की मांग शुरू कर दी।
11: I am not asking RSS workers to get recognized or to register themselves individually. I am asking RSS to get registered. There is very clear distinction. I really don't care who their members are. First, let the organization get registered. अरे जिस देश में every street vendor is registered, correct? Every street vendor is registered. Every temple has to give accounts. Every donation is accounted for. Why RSS is not accounted for? Why are they not registered? They are the world's largest NGO, right? They are the ones who are saving humanity.
12: मैं गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को चुनौती देता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो कर्नाटक में RSS पर प्रतिबंध लगाएं।
3: प्रियांक खड़गे ने दावा किया है कि संघ को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य करने वाला एक कानून भी जल्द कर्नाटक में बनने वाला है। दिल्ली से राहुल गौतम के साथ आज तक ब्यूरो।
13: Sometimes one has to bear so many humiliation. Listen, in a politics, no party can remain in permanent power. And I am a very truthful follower of Mamata Banerjee. And what I have done, that all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days, I am with Mamata Banerjee. Still I am. But point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains, who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay. Such an arrogant person. One must understand that for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
14: Everybody is saying this.
13: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata Di. I said, again I am saying, I am with Mamata Di. But Mamata Di has to choose whether Abhishek Banerjee, she will keep or she will keep me.
14: That's an ultimatum.
13: Yes. I leave it to her.
14: This is
13: her wisdom. I leave it to her wisdom.
14: So this is a dharam sankat for Didi.
13: I leave it to her wisdom.
3: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। बने रहिए आज तक के साथ।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Accoje, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, कहा वो मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। योगी पर बोले हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी मुठभेड़ करने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात, रविवार को शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज, निर्वाचन भवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। खाड़ी में उथल पुथल का भारत पर भी असर, मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 पहुंची, अप्रैल में 3.48 था आंकड़ा, विदेशी मुद्रा भंडार भी घटा। अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान में हो सकता है शांति समझौता, फ्रांस में होने वाली G7 की बैठक में स्थायी युद्ध विराम पर लग सकती है मुहर।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Acoj, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने में बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है।
1: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, तो जो एमपीओ को डराया डराया, वो डर गए। अब मुझे डराने की कोशिश करना, मैं डरने वाला नहीं हूँ।

हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हर बीतते दिन ममता बैनर्जी की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। कोलकाता पुलिस ने मार्च की ममता बैनर्जी की एक स्पीच को देकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपों के मुताबिक स्पीच में ममता बैनर्जी ने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काया था, तथा कथित रूप से यह आरोप है। इस बीच ममता और अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ टीएमसी सांसदों की बगावत थमने का नाम नहीं ले रही। अब 19 बागी सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी सामने आई है। बागी सांसदों का प्लान स्पीकर ओम बिरला से मिलकर अलग गुट की मान्यता हासिल करना। सवाल है कि क्या ममता बैनर्जी के पास इस संकट से निपटने का कोई प्लान है, या वो अब मजबूर हो चुकी हैं। बागियों का प्लान पक्का, ममता को कैसा झटका, आज यही हल्ला बोल का विषय। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ सांसद और राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह राष्ट्र प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रोहित सिंह हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट।

0: ममता बनर्जी से टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये कहना भले अभी संभव न हो, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। लोकसभा के 19 तृणमूल सांसदों के दस्तखत वाली 18 मई की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें वो अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता की मांग रख रहे हैं। इस बागी गुट की अगुवा है काकोली घोष दस्तीदार, जिनके पास लोकसभा में टीएमसी की चीफ व्हिप का जिम्मा था, लेकिन दावा हुआ है काकोली के बागी तेवरों के बीच उन्हें ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप पद से हटा दिया। उधर ममता बनर्जी के कैंप में मजबूती से जमे हुए सांसद कीर्ति आजाद अपनी सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर खुद एयरगन लेकर बैठे दिखे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि टीएमसी के सांसदों को पैसे से खरीदा जा रहा है।
1: टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
2: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। तो जो एमपीओ को डराया डराया, वो डर गए। अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील भी, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था।
0: तृणमूल में हो रही उठापटक के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में बागी सांसदों के साथ बैठक की संभावना बन रही है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बागी तृणमूल सांसदों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के मौजूद होने का दावा हुआ था। उधर बागी टीएमसी सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। बागी गुट में शामिल सांसद जगदीश बसुनिया ने भी अब खुलकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है।
3: ये जो गुस्सा, ये बहुत दिन पहले का गुस्सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुचबिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है।
0: वैसे जब ममता बनर्जी के बाकी पार्टी में अहमियत न मिलने को लेकर एक एक कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तब वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने अभिषेक का बचाव किया है।
4: पार्टी का हालत खराब है, ये मैं मानता हूँ। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। ये लोग तो इनका इतना नाराजगी कभी नहीं बताया, मैं तो कभी नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ इनका दल बदलना मौका परस्त है।
0: वैसे अभिषेक बनर्जी जब राजनीतिक रूप से निशाने पर हैं, तब विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में भी सीआईडी का शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मौजूदा संकट से पार पाना अभी आसान नहीं लगता है। आज तक ब्यूरो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सांसद जी, पहला सवाल आप ही से है, चूंकि आप भी सांसद हैं और सांसदों में अलग भगदड़ मची हुई है कि कह रही है टीएमसी और पूरा विपक्ष कि ये जितने बागी हैं इनके पीछे बीजेपी है।
5: देखिए, मेरा मानना है कि एक बहुत विचित्र प्रवृत्ति विपक्षी दलों में उत्पन्न हो गई, जो अपने ही नेताओं को बिकाऊ टिकाऊ डरपोक बागी जाने क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि राजनीति में दल को बनाए रखने के लिए एक नैतिक बल, एक विचारधारा, एक प्रेरणा और एक संगठन की आवश्यकता होती है। मगर आज अधिकांश दल और खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं, चूंकि उनका व्याप बहुत छोटा होता है और वो बहुत केंद्रित व्यवस्था में रहते हैं, उनके साथ स्थिति क्या रहती है कि ना कोई प्रेरणा ना कोई विचार, केवल सत्ता और सत्ता का कारोबार, और उसके बाद कारोबार पे एक परिवार का एकाधिकार, और उस कारण से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होनी शुरू होती है वो धीरे धीरे सबको सामने नजर आने लगती
0: है। पर जिनके दस्तखत है सर, काकुली घोष दस्तादार, एक बार सबके नाम दिखा दीजिए भाई, ये काकुली घोष हो, सायोनी घोष हो, जगदीश चंद्र, ये सारे तो कह रहे हैं कि एनडीए का साथ देंगे, तो आपकी तरफ कहां आ रहे हैं? अगर इनके सांसद बगावती तेवर अपना रहे हैं, आपके नेताओं के घर जाके बैठक क्यों कर रहे हैं?
5: देखिए बहुत साफ बात है, ये जो कुछ हो रहा है वो तृणमूल कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके अंदर घटित हो रहा है, एक के बाद एक लोग निकलकर सामने आ रहे हैं और वो जो भी अपना आंतरिक इनकी व्यवस्था थी अभिषेक बनर्जी जी के खिलाफ हो, जो कुछ भी हो, अपना बोल रहे हैं। अब बड़ी सहज और स्वाभाविक सी बात है कि यदि उनको वहां की व्यवस्थाओं से आक्रोश है तो वो दूसरी व्यवस्था की तरफ आने के समर्थन की बात करेंगे। हमने तो नहीं कहा कि हमारे पार्टी में आ रहे हैं। अगर वो किसी बात पर अब मान लीजिए महिला आरक्षण वाले विधेयक को लेकर उनके मन में कोई विचार था, या जिस प्रकार की राजनीति की गई पश्चिम बंगाल में, आप सोचिए कि कोई विधायक इस ढंग का धमकी दे गृहमंत्री महोदय को, कोई ऐसी धमकी दे कि मैं गला काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जाने क्या क्या होता रहा, तो मुझे लगता है कि शायद उस घुटन के माहौल से निकलने के बाद कोई भी स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता जाकर यह देखने का प्रयास करता है कि कहां पर सकारात्मक वातावरण दिख रहा है। तो हम तो इससे अधिक इसमें कुछ देखने का प्रयास नहीं कर रहे।
0: चलिए ठीक है, आप बोले एक बार उनको मौका दे देते हैं भाई। पश्चिम बंगाल की बात है, ये जितने सांसद हैं ये माननीय सांसद हैं, और काकुली घोष तो 40 साल से साथ रही है ममता बनर्जी के, तो जब सत्ता में वो नहीं थी तब भी उनके साथ थी। कल्याण बनर्जी, कोई तो जवाब दीजिएगा ना, सारे कल्याण बनर्जी भी भाई अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं, आप लोगों की आंखों पर क्या पट्टी बंधी हुई है? मतलब भतीजे की वजह से पार्टी के विधायक टूट गए, अलग गुट बन गया, नेता विपक्ष अलग हो गया। मानव जी, पार्टी बचाना जरूरी है भतीजा?
6: पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत नमस्कार है और हमारे सारे पैनलिस्टों को भी, हम सुन रहे थे, बड़े भाई हैं हमारे सुधांशु जी, लेकिन जिस तरीके से बात करते हैं कि विचारधारा, बिना विचारधारा के 30 साल का संघर्ष रहा और हमारी पार्टी ने 3 बार सरकार बनाई बंगाल में। बिना विचारधारा की पार्टी, बिना संगठन की पार्टी आपको 2021 में भी पछाड़ती है, 2016 में भी पछाड़ती है, 2024 में भी मुंह की खानी पड़ती है आपको। बिना विचारधारा, बिना संगठन की पार्टी कोई पार्टी बनी नहीं सकती जो जाके भविष्य में सरकार बना सके। और जहां तक बात है वर्तमान में जो हमारे सांसद हो या जो विधायक हो, जिस तरीके से भ्रमित है या जिस तरीके से दबाव है, जो दबिश करी जा रही है पूरे विपक्ष की, ये पूरा देश देख रहा है। बड़ा साधु जैसा स्टेटमेंट होता है कि भाई हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं है, लेकिन सारे विधायक, सारे सांसद इनके मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली प्राइवेट जेट से आ रहे हैं चाय पीने सांसदों के साथ, और सांसद किनके घर पहुंच रहे हैं, इनके यूनियन मिनिस्टर के साथ। इनके लोग बोलते हैं कि भैया जब तक इन्हीं के लोग, इन्हीं के प्रवक्ता बोलते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों का नाम लिस्ट में आया नहीं, बीजेपी जब तक ओके नहीं करेगी तो नाम लिस्ट में होगा नहीं। ये चल चरित्र रहा है भाजपा का। भाजपा जिस तरीके से विपक्षहीन भारत बनाना चाहती है कि उनके अपने लोग ही विपक्ष में रहे, जो दिखे, जो दिखावा दिखाए, जो भवंडर ये बनाना चाहते हैं, ये उसकी लड़ाई है। और हमारी लड़ाई, हमारी नेत्री सुश्री ममता बनर्जी ने संघर्ष भी किया है और पार्टी,
0: पर ये लोग भी तो जीत के आए हैं ना भाई, ये लोग भी तो जीत के आए ना, चाहे विधायक हो, लोकसभा हो। और ममता दी तो अपनी सीट भवानीपुर हार गई, मतलब इनको जनता का समर्थन नहीं है।
6: देखिए ममता बनर्जी जो नाम है उसके नाम, उस नाम के वजह से, वो सिंबल के वजह से ये जीते हैं। अगर इनकी इतनी क्षमता है तो भाई रिजाइन करके आ जाए। देखिए मोरालिटी बोल के कुछ है नहीं, नैतिकता बोल के कुछ है नहीं। आप जिससे बात अगर आप कर रहे हैं, वो 4 तारीख के रात के बाद क्यों उनको परिवर्तन हुआ, ये हृदय परिवर्तन पहले क्यों नहीं हुआ? और जहां तक बात है, चाहे वो काकुली घोष दस्तीदार हो, चाहे हमारे 17, 18, 15 जितने भी सांसद क्यों ना हो, अगर उनके पास लिस्ट है भाई, जाके ओम बिरला जी से मिले, उनको लिस्ट थमा दे। तो चल क्या रहा है, ये जिस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो दिन पर दिन ये न्यूज चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके पास नंबर्स नहीं है, क्योंकि जनता ममता बनर्जी के साथ।
0: आज वो अपनी चिट्ठी, दस्तखत वाली चिट्ठी आई है, आप लोगों ने तो दिखाई नहीं विधायकों की, इन्होंने दिखा दी है।
6: दस्तखत वाली जो चिट्ठी है उसपे तो काकुली घोष दस्तीदार ने भी एक बार बोला कि मैंने कोई चिट्ठी नहीं दी। ये बात अपने आप है, अगर चर्चा है तो भाई वो तो संसद में जाके बोलेंगे, और वो एनडीए से जुड़ना चाहते हैं। मजे की बात सुनिए, एनडीए को चाहिए नंबर्स, भाजपा को चाहिए नंबर, वो देश के संविधान को बदलना चाहते हैं। देश की जो गति धारा को तो उन्होंने बदल ही दिया है, देश की गति धारा विपरीत जा रही है, देश के युवा सड़क पे उतर रहे हैं, देश के जो भावी भविष्य जो हमारे हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ने रहे, वो विचलित है।
0: चलिए रोहित जी, छोटा सा कमेंट, फिर मैं अखिलेश जी के पास जाऊंगा।
7: 1984
0: एक सेकंड, अब भाई ये सारे के सारे सारे एनडीए का समर्थन क्यों करने लगे अभी तक तो? और क्या ये सारे लोग अब स्वीकार हैं? सायोनी घोष का वीडियो वायरल किया जाता था कि दिल में है काबा आंखों में मदीना, अब ये सारे के सारे गले लगाने के लिए तैयार है एनडीए?
7: 1984 में कांग्रेस पार्टी के नेत्री के रूप में सुश्री ममता जी का राजनीतिक पदार्पण कांग्रेस के टिकट पर हुआ। 1998 आते आते ममता जी ने AITMC के नाम से राजनीतिक दल खड़ा कर दिया, तो उनकी राजनीतिक प्रसन्नता कहाँ चली गई थी और उनकी राजनीतिक समर्पण का भाव कहाँ चला गया था? जब भी लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण किसी राजनीतिक दल के साथ काम करते के क्रम में संरक्षित नहीं हो पा रहा है तो बगावती होगा। पूछना पड़ेगा आपको ना, आपके जो नेपो के, सुनिए सुनिए, मैं आपको तो मैं नहीं बोल रहा था, सुनिए, आप नहीं बोल पाइएगा, सुनिए, लोकतंत्र में बाधा मत बनिए। आपके अभिषेक बनर्जी ने जब ममता पानों के सामने मुकुल राज पर छापर चलाया था, कहां थे ममता जी?
0: बारी बारी
7: जनता ने ममता पानों
0: बारी बारी
7: मतलब विदुषी महिला होता है। उर्दू पढ़िए, बहुत मुसलमान का विरोध उर्दू का, बहुत मुसलमान का है, तुम काम मत करो, सुनो पहले, बहुत मुसलमान का उर्दू का, उर्दू में पानों का मतलब विदुषी महिला होता है। पूरे चुनाव में मैंने बोला, जनता ने स्वीकार किया।
0: लेकिन रोहित जी, आप इस वजह से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आप विदुषी बताना चाहते हैं, सबको समझ में आता है आप क्यों बोल रहे हैं। आप इसका धार्मिक कॉनोटेशन की वजह से बोल रहे हैं, किसी के भी नाम को डिस्टॉर्ट मत कीजिए, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप विषय पर बोलिए, जैसे बोलना है दमदार बोलिए।
7: अभिषेक बनर्जी साहब ने

0: के घोषणा के लिए अभिषेक बनर्जी ने किस कैपेसिटी में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए अपने आप से सिग्नेचर कर दिया? वो क्या
1: अखिलेश संभालिए,
0: पार्टी के
1: जन कह रहे हैं कि मुक्ति की राह मिली है सांसदों को, विधायकों को, इसलिए वो सब इस तरफ जा रहे हैं। और देखिए कल्याण बैनर्जी, वही मैं उनसे भी पूछा, कल्याण बैनर्जी इतने पुराने नेता भाई, वो भी कह रहे हैं कि या तो अभिषेक को चुन लीजिए या मुझे चुन लीजिए। तो ये तो अब सारे सांसद कह रहे हैं ना। अब कल्याण बैनर्जी भी डर गए क्या बीजेपी से? कोई कह सकता है उनके लिए? ये
2: देखिए 2014 के बाद से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, उन्हें सिर्फ पावर और पैसा चाहिए और इसी पावर और पैसे के बल पे सिर्फ सत्ता चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर ही चुके हैं, संविधान को रौंद ही चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है अंजना जी, समझने की जरूरत है। बीजेपी आज दो बैसाखियों के बल पे केंद्र में सत्ता में है। बार बार बात होती है कि कभी भी ये दो दल जो एक बिहार से एक दक्षिण भारत से, उन्होंने अगर समर्थन वापस लिए तो सरकार गिर जाएगी। मोदी जी को अपनी सरकार को स्थिरता चाहिए, वो लूटने में फिर शुरू हो गए हैं, उन्हें सांसद चाहिए, संख्या बल चाहिए। बीजेपी जो आज की बीजेपी है, जो अटल जी के बाद की बीजेपी है, उसकी कोई नीति नैतिकता की बात करें तो पूरा जग पूरा देश हंसता है। उन्हें सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ जिसको मोदी जी कोसते थे भ्रष्टाचार का और अपराध का, वो केंद्रीय मंत्री है, डिप्टी सीएम है, सीएम है, तमाम लोग हैं, आदर्श हैं। मोदी जी जिसके वीडियो चलाते थे वो कलकत्ता के सीएम हैं, ओपनली कैमरे पे जिनके भ्रष्टाचार के चीजें आई थी। तो सिर्फ सत्ता पैसा और पावर चाहिए, इसलिए ये सारी राजनीति तोड़फोड़ हो रही है। और देखिए कोई एक है कि बड़ा श्रद्धा से कोई बीजेपी में आज जा रहा है तो अपने दिल से वो पूछ ले क्या सच्चाई है। अरे भैया सिर्फ डरवा के धमका के प्रलोभन दे करके आप ये सब चीजें कर रहे हैं। और आपको जैसा मैंने पहले कहा कि आपको मेजॉरिटी चाहिए, आपको विपक्ष का नाश चाहिए। अब बीजेपी बार बार कह चुकी है कि रिजनल पार्टियों का देश में होना देश हित में नहीं, हम उन्हें रहने नहीं देंगे, खत्म करेंगे। लोकतंत्र में क्या, यदि कोई कमजोर दल है या अपना प्रयास कर रहा है जनता में अपनी स्थान बनाने का, तो उसे आप रौंद देंगे, कुचल देंगे। उसके ऊपर आपके पास सत्ता पावर है तो उस मशीनरी से उसके ऊपर नकेल लगा करके उसे पनपने नहीं देंगे। यही अयोध्या में भ्रष्टाचार हो रहा है राम मंदिर पे, रहा था कि कोई राम भक्त नहीं, सब नाथू राम भक्त हैं। सारे विपक्ष के नेताओं की कोई भी चीज होगी, अभी आपने बताया कि ममता बनर्जी पे FIR हो गया। राम जन्मभूमि में पिछले जब से शिला पूजन से लेकर अब तक चंदा से लेकर चढ़ावा में चोरी हो रही है, खुद खुलासा इन्हीं के लोग कर रहे हैं, उसकी EDCBI सुप्रीम कोर्ट से जांच क्यों नहीं होती है? सत्ता पक्ष का आदमी कहीं भी लिपता आ जाए, कितना कोई खुलासा कर दे, कोई बात आ जाए, उसकी जांच नहीं होती है, उसकी पड़ताल नहीं होती है, उसके ऊपर सरकार कोई सरकारी एजेंसी से कार्रवाई नहीं करती।
1: जी आपके नेता चुकी संपर्क में है, जरा आप भी बताइए, आप सांसद हैं, आपको तो पता होगा क्या करने वाले हैं, विलय करने वाले हैं दो तिहाई के साथ, क्योंकि इससे पहले भी राघव चड्ढा के केस में वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, जिसमें कपिल सिब्बल की ये दलील है कि इस दल बदल कानून के तहत दो तिहाई जाए भी तो पहले पार्टी का मिलना जरूरी है
2: सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग पहले।
1: सुधांशु जी
3: देखिए वो मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हाँ। पहले भाई मनोज जायसवाल जी ने कहा विचारधारा, बिल्कुल एक दौर में ममता जी हमारे साथ थे, हमें पता है विचारधारा क्या थी। पहले जब कांग्रेस ने बंगाल की भावनाओं के साथ सही न्याय नहीं किया 90 के दशक में तो वो अलग हुई, फिर वो अटल जी की सरकार के साथ आई, एक दौर में वो विदेशी नेतृत्व के विषय को लेकर भी वो उनका कांग्रेस से मतभेद था, कम्युनिस्टों से अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष उनकी विचारधारा थी। और मुझे इतना भी याद है उस समय घुसपैठियों को लेकर उनके मन में इतना आक्रोश था कि सोमनाथ चटर्जी पे फाइल फेंक दी थी। उसके बाद जब सत्ता में आने के बाद सारी विचारधारा को अंजलि देकर केवल सत्ता का कारोबार शुरू हो गया, तब पार्टी के अंदर यह हाहाकार होना शुरू हुआ और यह बहुत सहज स्वाभाविक और सामान्य है। मगर अभी हमारे ऊपर तो अलग बात कह रहे हैं, आज तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति यह है कि यही समझ में नहीं आता कौन सी तृणमूल कांग्रेस है और किसके अंदर क्या है। मगर फिर भी मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की बची खुची तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व को कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। मतलब इसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि अभी भी TMC में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। अजीबो गरीब स्थिति है, परंतु उसके बाद भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं।
1: अच्छा, मगर पे कुछ बोलिए ना,
3: मगर मैं इसमें बताना चाहता
1: हूं पे।
3: परिस्थितियों का लाभ कौन उठा रहा है, हमारे मित्र अखिलेश जी बोल रहे थे,
1: अब आप लोगों को स्वीकार है कि नहीं है उनका बड़ा वीडियो वायरल करते थे बीजेपी वाले दिल में है काबा आंखों में मदीना, अब स्वीकार्य है ना, वो NDA का साथ देंगी, ठीक बात है ना।
3: देखिए पहली बात ये अंदरूनी मामला है,
1: किसका?
3: तृणमूल कांग्रेस का।
4: दूसरा, अरे भाई।

0: भैया हम तो कह रहे हैं काबा और मदीना की कहने वाले लोग जो हैं, अगर उनके मामले में उनका हृदय परिवर्तन होगा तो वो अपनी वास्तविकता पे आएंगे। अब दिल से पूछ लीजिए। मैं एक और बात कहता हूं, मैं विनम्रता, दृढ़ता और चुनौती से कहता हूं कि जो व्यक्ति जिसका नाम, मैं एक्स वाई जेड व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, जिसका नाम गैर मुस्लिम है वो काबा नहीं जा सकता, वो मदीना नहीं जा सकता। राहुल गांधी जी या लाख कह लें, वो जितनी बातें यहां कर लें वो नहीं जा सकते वहां पर, चाहे सयानी घोष हो या कोई भी हो। तो हकीकत तो यह है कि वो राजनीतिक था, अब किसी को वो तो था दिमाग से, अब क्या होगा दिल से या समझ में आएगा। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस ने देखिए आपदा में कैसा अवसर ढूंढा है। अब ये चर्चा आ रही है कि भाई ममता जी वापस ज्वाइन कर ले कांग्रेस, तो आपको याद हो हम पे तो आरोप लगा रहे हैं, इनका तो पंचमढ़ी का अधिवेशन हुआ था ना, अकेले चलेंगे। जैसे डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति अडॉप्ट की थी कि भाई हम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, इनके उत्तराधिकारी को हम नहीं मानते, हमारे में आ जाओ। अब कांग्रेस ने मौका देखा है कि जो जो क्षेत्रीय दल अलग हुए थे, अशोक गहलोत जी का बयान आया है कि भाई वापस आ जाओ, राहुल गांधी जी का नेतृत्व उठा लो, तो वैसे ही पॉलिटिकल पार्टियों को हड़प करने की नीति आज अंग्रेजों की विचारधारा के जो एक प्रतीक रह गए, वो कांग्रेस करने का प्रयास करे। इनको उत्तर देना चाहिए कि भाई ममता जी मिली है सोनिया गांधी से तो क्या पकड़ा।
1: ठीक है, दो सवाल है, सवाल सुनिए, सवाल है, दो सवाल है। एक तो ममता बनर्जी दो बार मिली सोनिया जी से, उसके बाद अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी की मुलाकात हुई, तो क्या किसी मर्जर पर बातचीत चल रही है? दूसरा, ये तो राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव के पहले, कहा था वो वीडियो भी बीजेपी ने खूब वायरल किया क्योंकि उनको फायदा हुआ उनके बोलने से, उन्होंने ही कहा कि इतनी यहां पर नाकामी सरकार की रही है और इतना पोलराइजेशन हुआ, इतना तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिसकी वजह से बीजेपी जीतती हुई दिखाई। तो राहुल जी ने तो पहले ही बता दिया था कि बीजेपी वाले
2: पहले, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है जी, कि अगर कोई कह रहा है कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं कांग्रेस में आने का समय आ जाए, ये तो एक राजनीतिक बात है, लेकिन दूसरा तो लूट रहा है ना। हम तो अपील कर रहे हैं भाई आपकी स्वेच्छा, ये अच्छा समय है, आप लोग विचार करो। हम तो एक पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। हम सत्ता में बैठ करके और आप क्या कर रहे हैं, लूट रहे हैं, जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, पूरा देश बेच करके सांसद विधायक सरकार खरीदने में आप सारा पैसा सारा खर्चा लगा रहे हैं। दोनों में ये अंतर है। दूसरी बात आपने कही, राहुल जी ने कहा था, हमारी दो दल हैं, दोनों के विचारधारा अलग है, दोनों अलग लड़े, हमने बताया कि सत्ता में इनकी कमियां क्या हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम लोकतांत्रिक तरीके से हर किसी को कहने का अधिकार है। तो आप दिल्ली की सरकार में हैं तो आप लूट लेंगे, उनके ऊपर हर तरह का जुल्म करेंगे, उनके सांसदों पे इस तरह से अत्याचार करके उनको अपने में मिलाएंगे, और क्या लोग समझ ही पा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को नीति नैतिकता चाल चरित से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ पावर चाहिए। एनी हाउ किसी की भी सरकार हो कैसी भी हो, हमें संख्या बल चाहिए, हमें सरकार चाहिए। 12 सरकारें लूटी हैं जना जी इन लोगों ने हिंदुस्तान में चुनी हुई 12 सरकारें, कितने सांसद कितने विधायक खरीदे हैं, कितने हजार हजार करोड़ रुपए लगे होंगे, सबको पता है कितने कितने कितने पैसे में ये लोग विधायक सांसद खरीदते हैं, इसकी भी चर्चा सब सबको पता है।
1: तो आप कह रहे हैं टीएमसी वाले सारे विधायक, ये विधायक सांसद बिका
2: कौन है? कौन खरीद रहा, कौन बेच रहा है सबको पता है, कोई पैसे से जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई दबाव में जा रहा है, कोई लगाव में जा रहा है, बीजेपी
1: कोई लगाव में भी जा रहा है,
2: जो भी कारण हो, लेकिन आप अलोकतांत्रिक कृत्य कर रहे हैं सत्ता के शीर्ष पे बैठ करके।
1: लेकिन जितना आप विरोध करते थे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लगाव की वजह से जा रहे होंगे।
2: देखिए सुनिए
1: सुधांशु जी,
0: एक बात, इन्होंने जो भी बातें कही ठीक, आरोप प्रत्यारोप लगाया, मैं सिर्फ तथ्य बोलता हूँ। भारत के इतिहास में यदि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रमाणित कोई मामला है जिसमें पैसा देकर वोट लिया गया, वो कांग्रेस की सरकार बचाई गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा निर्णय हुआ, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। दूसरा, 2008 जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे के ऊपर कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया मनमोहन सिंह सरकार से, तो वोट फॉर कैश हुआ, संसद भवन के अंदर सबको दिखाई पड़ा, तो सबको पता है कि कौन किसके साथ क्या करता है। मगर मैं यह भी बताना चाहता हूं हूं, आप तो ये कहने की बात कर रहे हैं, आपने तो 1980 में आते आते 9 सरकारें सीधे बर्खास्त कर दी थी कि आप लोकसभा चुनाव हार गए तो आपकी पार्टी को राज्य में रहने का सत्ता का अधिकार नहीं है। और डर की बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं क्यों ये लोग अपने विधायकों को, सांसदों को डरपोक, लोभी, भ्रष्टाचारी क्यों ऐसा करते हैं समझ में नहीं। अरे डर की बात है, आपने हिंदू आतंकवाद को लेकर कितने लोगों पे मुकदमे नहीं दर्ज किए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाखून तक खींचे गए, उनके साथ क्या क्या हुआ, कोई टूट गया क्या, अमित शाह जी जेल में रहे, कोई टूट गया क्या, मोदी जी की घंटों घंटों सीबीआई से आपने वो किया, उसका कोई टूट गया क्या। और सुनिए, इमरजेंसी में कितने लोग जेल में रहे, हमारा पूरा पूरा नेतृत्व जेल में रहा, दो दो साल जेल में रहा, तन्हाई में रहे, कोई टूटा नहीं। कारण क्या होता है, जब नैतिक बल होता है तो टूटता है। और मैं एक एक वाक्य पूरा कर दूं, और देखिए जो ये आरोप लगाते हैं, एक्चुअली में भ्रष्टाचार में लिप्त होना इन लोगों की फितरत है, चाहे हमारी सरकार हो या इनकी सरकार हो। ये न्यायालय के द्वारा चार सीटेड होके इनके नेता पिछले 35 साल में एक लोकसभा बताइए जब इन दलों के नेता ने कोई ना कोई जांच एजेंसी का चक्कर ना काटा हो न्यायालय का। 2013 में राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस दर्ज हुआ, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाईकोर्ट के कहने पे हमारी सरकार नहीं थी। कणिमोजी ये राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सुरेश कालमाणी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2008 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस हुआ 2004 में, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2001 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता 1996 में जेल गए, झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, राजीव गांधी पे आरोप 1987 में लगा, 1990 में जाके एफआईआर दर्ज हुई। कहां थे उस समय मोदी शाह भाई? इसीलिए मैं कहता हूं देखो, अगर इसलिए मैं कहूंगा कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया।
2: सुनिए,
1: काहे टूटने को तैयार रहते हैं विपक्ष के नेता, ये वो पूछ रहे हो, कह रहे कि हमें तो कोई हमारे नेताओं को नहीं
2: सुन तो लीजिए। अभी बता रहा हूं, जो इन लोगों का आदर्श है सावरकर जी, उनका पोता स्वयं, ये बताने कोई माफी नहीं मांगता है, उनका पोता स्वयं अदालत में बता चुका है कि 5 बार माफी मांगे थे, जिस पे ये लोग गर्व करते हैं। अभी माफी कौन मांगता है, इमरजेंसी में कितने लोगों ने माफी मांगी थी, चिट्ठियां लिखी थी। दूसरी बात, फर्जी मुकदमे लगाए कांग्रेस के नेताओं के ऊपर, 12 साल हो गया, किसी पे एक चार्जशीट तक नहीं हुई, और हमारे वरिष्ठ नेताओं के ऊपर अदालत ने यहां तक कह दिया कि जांच एजेंसियों ने फर्जी मुकदमे लगाए हैं, चाहे चंडीगढ़ का कोर्ट हो चाहे दिल्ली का कोर्ट हो, सबको पता है कि द्वेषवश आप विपक्ष के ऊपर मुकदमे लगाते हैं, और मैक्सिमम लोगों को आपने प्रताड़ित करके, डरवा के, धमका के अपने में शामिल कराया है। तीसरी बात, कांग्रेस की सरकार थी तो बराबर का रेशियो था, कोई पक्षपातपूर्ण किसी के ऊपर भेदभाव करके एजेंसियों ने कार्रवाई नहीं की थी, 51-49% लोगों के ऊपर मुकदमे हुए थे। लेकिन आपके हुकूमत में, आपने ही पार्लियामेंट में बताया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने जितने मुकदमे लॉन्च किए उसमें 97% सिर्फ विपक्ष के नेता हैं, सिर्फ विपक्ष के। आप मत करो ना, बोलिए यहीं पे कि हाँ ईडी और सीबीआई की जांच होगी, राम जन्मभूमि के पैसे चंदा चढ़ावा घोटाले की जांच
0: सीबीआई। तो 14 से पहले का एक बता दो जिसमें आपके नेता न गए हो, आप तब भी आप ही के 97%
2: यही तो मैं कह रहा हूँ, हमारे नेताओं पे आरोप लगा, हमने कहा कौन से अपना बात,
0: सारे निर्णय कौन से हुए,
2: हमने आपने किसी एक के ऊपर आपने सारा भ्रष्टाचारियों को अपना शामिल कर लिया, और आपने आपने आपने 50 लोगों के भयंकर मुकदमे, हर तरह के मुकदमे आपने विड्रॉ किया। हिंदुस्तान की पहले यूपी की सरकार है बीजेपी की कि जिसने अपने लोगों से मुकदमे वापस नहीं लिख लिए, विधानसभा में बिल लाई और 20,000 लोगों से मुकदमे वापस की।
1: ठीक है, एक वाक्य जल्दी से, उसके बाद मानव जी को देखो।
0: अखिलेश प्रताप सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं, आप तो पहली पार्टी हैं जिसने भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक जनवरी 1978 में लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का हुआ,
2: और उन दोनों हाईजैक करो, 20 घंटा पहुंचा क्या है,
1: मानव जी सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल ये है कि इनके पास एक विचारधारा है,
2: तुम तो पहुंचा क्या कंधार भैया,
1: आराम से आराम,
2: आतंकियों को जेल से निकाल के जिसको कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ी थी आप उसको कंधार पहुंचा क्या है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट देते देखते हुए सरकार के मंत्री के साथ
0: और
2: जो है ISI चीफ को कौन
1: बुलाया। मानव जी, आज बड़ा सवाल यह है कि इनकी एक विचारधारा है, वो विचारधारा इनके नेताओं को जोड़कर रखती है। क्या इस वक्त पर विपक्ष के नेताओं को यह समझ में आ रहा है कि विपक्ष में क्या विचारधारा का वो गोंद नहीं है जिससे वो चिपके रहे, एक पार्टी को पकड़े रहे या उसके साथ चले, टूट जाते हैं?
3: थोड़ा समय देना होगा। सुधांशु जी बड़ी अच्छी तरीके से बोल देते हैं 2011 में हमारी सरकार है, अरे आपकी सरकार तो 2014 में आ गई, कितने घुसपैठे आप लोगों ने पकड़ लिए। और ये जो घुसपैठे वाला जो मामला है वो आप आने वाले समय में आपने दिखा दीजिएगा, 10-20 हजार ने जितने घुसपैठे हैं पकड़िए, अरेस्ट करिए, जेल में डालिए, जो करना करिए, लेकिन बताइए किसने घुसपैठे भारत में घुसा है, क्या आपकी सरकार ने घुसा है या किसी व्यक्ति ने घुसा है। जहां तक दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, सुधांशु जी बहुत सारे चीज गिना देते हैं, आपने जितने भी आपके कार्यकाल में जितने भी भ्रष्ट नेता हुए, जितने आपके प्रमुख ने जिनको भ्रष्ट बोला, जिनके वीडियोस दिखाए, आपने उनको रिवॉर्ड किया, आपने कौन से कोर्ट का पालन करा कि कोर्ट में तो केस ही नहीं पहुंच रहा है, तो कोर्ट का न्याय क्या होगा। तीसरी बात, जब आप बोलते हैं सुधांशु जी तो आप बहुत कुछ जानते हैं, 1980-70 में चला, 1990 में जब आपने आतंकवादियों को छोड़ा वो आपकी सरकार थी, आपकी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह की, जब हमारे कश्मीरी पंडितों भाइयों को मारा जा रहा था, आपने सरकार नहीं गिराई, आपने हमारे हिंदू भाइयों को मरने दिया, हमारे लोगों को कटने दिया, लेकिन जब आपकी रथ यात्रा रोकी गई तो आपने सरकार गिरा दी। बोलिए हाँ है कि ना है? अगर आपकी सरकार नहीं होती सपोर्ट वाली तो वीपी सिंह की हिम्मत नहीं थी।
1: ठीक है,
3: लोग चित्कार कर रहे थे कि
1: सुधांशु जी डायरेक्ट जवाब,
3: फौज भेजिए हमको बचाइए, लेकिन आपके छोड़े हुए आतंकवादियों ने पूरे मस्जिदों से आवाम को तहस नहस कर दिया, ये है आपकी सच्चाई। हिंदू मरेगा नहीं तो आपको वोट मिलेगा नहीं।
1: ठीक
0: है, देखिए लोग सत्य से किस प्रकार से मुंह मोड़ लेते हैं। जस्टिस गंजू की हत्या कब हुई थी? राजीव गांधी की सरकार में हाईकोर्ट के जज को मार दिया गया।
2: लोया के बारे में बताओ, लोया के बारे में
3: आपने क्यों सरकार नहीं गिराई? वीपी सिंह की सरकार को क्यों नहीं गिराया?
0: सुनो,
3: बोलिए, जवाब दीजिए।
0: सुनिए, वो घटना हुई है जनवरी 1990 में, और उस जमाने में,
3: उस समय में वीपी सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? आपकी सपोर्टेड सरकार 1990 में आई है।
2: सूर्य बोलिए, परेशान हो रहे काहे, अभी परेशान बता तो रहे, हमने जो किया बताते हैं।
0: उस जमाने में इंफॉर्मेशन सुनिए,
3: राज्यपाल था राजीव जी ने निकाल दिया, इन्होंने फिर उसको बनाया वापस से राज्यपाल, और उन्होंने सारे लोगों को बोला जाइए अभी चले जाइए, अभी माहौल ठीक नहीं है, आप लोग ढकोसला करते हैं देशभक्ति का, आप हिंदुओं के पक्षधर हैं, मैंने हिंदुओं के पक्षधर हम सब हैं, जितने भारतीय हैं, जितने मुसलमान हैं, जिस तरीके से दिल्ली में अभी आग लगी, किसी मुसलमान भाई ने अपने पूरे दुकान के पूरे बिस्तरों को छोड़ दिया, अरे हिंदुओं ने क्या, मुसलमानों ने, सबने भारत की आस्था भारतीय की प्रतिमा को।
1: ठीक है, जवाब सुनिए
0: कौन हिंदुओं का पक्षधर है, मैं बताता हूं। कहते बंगला भाषा का नाम, अपने चुनावी मैनिफेस्टो का नाम इश्तेहार रखा, क्यों? क्योंकि 1905 में बंग विभाजन के समय नवाब कलीम उल्ला ने हिंदुओं के नरसंहार के लिए जो पैम्फलेट छपवाया था उसका नाम इश्तेहार था।
1: अब आइए, आप ही नहीं बोलेंगे ना मानव जी, आप हाथ उठाइए, मैं जवाब लूंगी।
0: अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए उस जमाने में जो 1990 की बात कह रहे हैं, बिल्कुल उस जमाने में इन्फॉर्मेशन आने में महीनों लगते थे,
3: आज का शर्म आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आने में तकलीफ
2: कर रहे हैं भाई,
3: पूरे देश में नेटवर्क चल गया, पूरे देश में सरकार बदल गई।
1: बारी बारी से हाथ उठाइए ना मानव जी, हाथ उठाइए ना, बारी बारी से।
0: जिस दिन इन्होंने, जब जगमोहन ने वहां पे एक्शन लेना शुरू किया और बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की असेंबली में बोला कि हम जगमोहन को भग मोहन कर देंगे, और उस दिन जिस दिन सरकार ने हटाया, हमने उसी दिन कश्मीर के पैनल से अपने को विड्रॉ किया और सरकार की खुली आलोचना की थी। चैलेंज करता हूं, जाके देख लीजिए जगमोहन का डिस्मिशन और इनका हटना। और सुनो,
3: आपको प्रेशर करना था, आपके 90 के आसपास आपके एमपी थे, आपने प्रेशर नहीं
0: किया। सुनो भाई, ए भैया, उस समय ममता बनर्जी कहां थी?
3: ममता बनर्जी विपक्ष में थी,
0: ममता बनर्जी कांग्रेस में नहीं थी,
3: विपक्ष में नहीं थी, कांग्रेस में नहीं थी, राजीव गांधी चिल्ला नहीं रहे थे
0: उस समय, जिस समय जस्टिस
3: की फौज थी,
1: चिल्लाइए मत।
0: सुनो भैया, जिस समय जस्टिस गंजू की हत्या हो रही थी राजीव गांधी के समय, ममता बनर्जी कहां थी? 1991 में, जब उसके बाद 1991 से 93 तक ममता बनर्जी कहां थी? बोलो, ममता बनर्जी कांग्रेस में थी। अब देखो कैसे हाथ हाथ के चिंगार चिंगार के बोलते हैं, मगर उस समय ममता बनर्जी कहां थी बता नहीं। मगर एक बात मैं कहूंगा, सुनिए,
3: सारे समुदाय हिंदू,
0: सुनिए,
3: हिंदू कश्मीरी पंडितों का आपने मरवाया है,
0: मगर मैं इतना जरूर कहूंगा,
1: आज के विषय पर भी तो आइए, आप लोग जानबूझ के पीछे जा रहे हैं,
0: मगर इतना मैं कहूंगा, एक बात जरूर हुई है, बंगाल की शिकस्त ने देखिए आवाज को कैसे बदला है, कि पहली बार तृणमूल कांग्रेस कह रही है नहीं हम भी हिंदू हैं, हम भी हिंदुओं के साथ हैं।
3: हमने हमेशा
0: ममता जी ने ये शब्द बोला था कि एक कम्युनिटी है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट चिल्ला रहे भाई साहब। ममता जी ने बोला था कि अगर हमारी सरकार नहीं रही तो एक कम्युनिटी चंद सेकंडों में इधर का उधर कर देगी। आज सरकार गए हुए हैं, ऊपर हो गया है, सब कुछ शांति है और ममता बनर्जी की पार्टी के अस्तित्व पर सवाल बना हुआ
3: है। सारे जो गरीब व्यक्ति है वो प्रताड़ित है, ये आपकी सरकार है और सरकार
2: ईवीएम सारे जल गए, आप सारे ईवीएम सारे जल गए,
4: मुकुल रॉय का चिंता सता रही है। मुकुल रॉय की चिंता चौदह ने क्यों नहीं की है? मुकुल रॉय का अपमान तो बदला बंगाल की चिंता ने लिया। अरे चुप रहिए,
1: सुनिए
4: पाले, सुनिए ना, जो दिया पूछने वाला होता है ना, बड़ी है बच्चा बूढ़ा जवान की चिंता मत कीजिए। आप इसे भी भाई को जिसका जूता उठाते थे,
3: अरे
4: अकबर 13 साल का था,
3: उसका गर्दन बैरम खान सेनापति के साल का था।
4: चुप रहिए, चुप रहिए,
3: अरे
4: अभिषेक बनर्जी राजकुमार है तो औकात
3: तो तुम्हारी
4: एकदम औकात है।
3: अरे
4: इस देश में जो निर्वाचित है
3: उससे सवाल
4: पूछने का औकात इस देश के हर पुत्र को है। हर राजकुमार के खिलाफ इस देश का नौजवान है। लॉलीपॉप खिलाइए अभिषेक बनर्जी को, भूंजा खिलाने वाला कोई नहीं है, समझ गए? रात में दिन में नमस्कार करने वाला कोई नहीं है। बंगाल ने बाय बाय कर दिया। आइए मुद्दा पर चुप रहिए, अरे सुनिए ना,
1: बारी बारी से बोलिए ना तो सबको मौका मिलेगा ना, फिर बहस ही नहीं बात बात में पड़ती है।
4: सुनिए, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अभी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री गणनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी क्षेत्रीय पार्टियों के अस्तित्व के लिए संकट हैं। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश से आने वाले कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता से, अनुप्रिया पटेल जी अपना दल सोनेलाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक सांसद की पार्टी है, देश के केंद्र में मंत्री हैं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, हम सेक्युलर दलितों का शोषितों का पीड़ितों का एक दल है, उसके सांसद उसके संरक्षक हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, दलित आंदोलन के नेता हैं, देश में कैबिनेट मंत्री हैं। छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को देश के कैबिनेट में सम्मिलित करने का श्रेय अगर किसी नेता को जाता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। रामदास अठावले जी आरपीआई के नेता हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, भारत सरकार में मोदी जी के कैबिनेट में राज्य मंत्री हैं, क्या बात करेगी कांग्रेस पार्टी? जिस कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए लालू प्रसाद यादव के ऊपर सबसे गंभीर मामलों में आरोप लगवाया, एफआईआर दर्ज करवाया, लालू यादव जेल गए, लालू यादव को कांग्रेस पार्टी के सत्ता में रहते जल्दी से जल्दी सजा दिलवाई गई, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बिल को फाड़ दिया, ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया, अब कांग्रेस पार्टी चली है अलायंस पॉलिटिक्स के ऊपर विवेचना करने, ये सब गलत बात का प्रचार करना बंद कीजिए। देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए और पूज्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के संरक्षण के लिए अगर कोई नेता 24 घंटा हफ्ता के 7 दिन और साल के 365 दिन और मिनट के 7 सेकंड रफ्तार के साथ काम कर रहा है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। कोई डाउट नहीं है देश की जनता को।
1: देखिए इस बात
4: डाउट होता, अगर डाउट होता तो कांग्रेस पार्टी को लगातार 3 बार सत्ता से बाहर नहीं।
1: आज चैलेंज ये है और ये विपक्ष को समझना पड़ेगा कि एक तरफ सत्ता अगर चुंबक है तो दूसरी तरफ हार में टूट सब सबको उसका देखना पड़ता है कि क्या हाल है। लेकिन आपको ये बात समझते हुए उस पर कार्रवाई भी तो करनी चाहिए। कब तक ये रोते रहेगा, ये ले जा रहे हैं, ये ले जा रहे हैं, ये लोग मतलब आज आपका स्ट्रैटेजी क्या है?
2: नहीं, ये शब्दावली गलत है। लोकतंत्र में
1: स्ट्रैटेजी क्या है?
2: लोकतंत्र में
1: स्ट्रैटेजी क्या है? 7 विधायक चले गए।
2: लोकतंत्र में यदि कोई अनैतिक कार्य हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उसकी आवाज उठाना आपका देने को रो रहा है, ये यही तो हमारा धर्म है। हम विपक्ष में इसीलिए भेजे गए हैं कि सरकार पे नकेल लगाने के लिए। और अगर कोई ये कहता है कि उनका प्रधानमंत्री है, वो सबके, लेकिन वो कहते हैं मेरे प्रधानमंत्री 24 घंटे 12 महीने 365 दिन काम करते हैं, ये तो बहुत जाती है उनके ऊपर भाई, ये तो बहुत जाती है। इसका मतलब कोई और काम करने वाला ही नहीं है, ये तो हर कोई कहता है कि दो ही लोगों की पार्टी है, बाकी किसी को कुछ पता ठिकाना नहीं है क्या करने के लिए। इतना काम, काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है? अमेरिका तो उठक बैठक करा रहा है। अभी हमारे जहाज पे जो समुद्र में थे आ रहे थे भारत, अमेरिका अटैक करता है, मोदी जी का लोग कौन सा पता नहीं कौन सा सालगिरह मना रहे थे, वो वीडियो भी जारी करके अमेरिका बताता है। अरे भाई मित्र डोनाल्ड से बोलो तो, ये डोनाल्ड भाई क्या कर रहे हो, उस पर नहीं आवाज आएगी। डोनाल्ड भाई थैंक्स, आपने मुझे थैंक यू कहा। अरे हमारे देश की गरिमा सम्मान मर्यादा तार तार किए पड़े हो, कहीं से भी किसी कोई आपका एक मित्र राष्ट्र नहीं है। इस देश में जांच एजेंसियों के बल पे सबको तुम दबा लो, लूट लो, बस कुचल दो, लेकिन बाहर तुम्हारी क्या हासियत है। यही नहीं, इनके पार्टी के अंदर भी कोई अगर मत भिन्न हो, उपराष्ट्रपति महोदय कहाँ है, कोई ढूंढा उनको आज तक, कोई माइक लगाया, उनके साथ क्या सलूक हुआ, उनके घर के साथ क्या सलूक हुआ, क्या व्यवहार किया गया। ये लोकतंत्र तो खत्म कर चुके, संविधान खत्म कर चुके, बाबा साहब का लोग जिक्र करते हैं, यही कसम खाते थे 400 पार करो संविधान बाबा साहब को बदलना है। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो उनके पुतले जला रहे थे, उनके लिए विरोध कर रहे थे,
4: सर्वोच्च सम्मान कांग्रेस ने नहीं दिया, और लगे बाबा साहब की बात करने, बाबा साहब को देश का सर्वोच्च सम्मान आपने क्यों नहीं दिया, 1989 में भाजपा के समर्थन से जो सरकार थी उसने दिया, क्या बात करेंगे बाबा साहब।
3: बाबा साहब के संविधान को मानते हैं जी,
4: आप मानते हैं, जय भीम
3: बोलिए, जय भीम बोलिए, लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने बोलिए, लेकिन पूछिए कि इन लोगों ने क्या नारा दिया,
4: बनर्जी बोलते हैं
3: संविधान बदलना है,
4: अभिषेक बनर्जी बोलते हैं,
3: जय भीम भारत माता की जय,
4: जय भीम मातारी की जय,
3: राम मातारी की जय,
4: आप बोलिएगा भारत माता की जय,
3: भारत माता की जय,
4: भारत माता की जय,
1: बारी बारी बारी हो गया ये मैच, नहीं जल्दी से उसके अच्छे मैच।
0: इन्होंने कहा कि भारत के साथ तो कोई है नहीं अखिलेश जी ने, मगर उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन भारत से एफटीए करती है, उर्सुला वॉन डर लेयन कहती दिस इज द डील ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल द डील्स। नहीं, भारत के साथ कोई थोड़ी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, भारत के साथ कोई थोड़ी है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज नॉर्डिक कंट्रीज कर रहे हैं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आता है कहता है दिस इज द बिगेस्ट नेवल डेलीगेशन
1: टेकन, लेकिन सुधांशु जी हमारे, एक सेकंड प्लीज सुधांशु जी, तीन नाविक मारे गए हैं ये तो एक सच्चाई है ना, अब उसका उसका क्या हाल है, क्या क्या है फिर सब बोल ही नहीं पाएंगे, फिर ऐसे चिल्ला चिल्ली होती रह जाएगी।
0: देखिए ओमान के जहाज पे ऊपर उन लोगों का ये कहना है कि किसी प्रकार के ऊपर कम्युनिकेशन को लेकर जो भी उनको संदेह उत्पन्न हुआ, उन्होंने एक मिसाइल गिराई जिसमें कि हमारे भी नागरिक मारे गए, तो ये एक घटना थी जिसमें उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने भारत या भारतीय जहाज को लेकर किसी प्रकार का टारगेट किया है। हाँ, जहां पर टारगेट करने की बात है, जहां तक मैं ये बात बताना चाहता हूं, जब सीधे सीधे
2: प्रवक्ता है अमेरिका के प्रवक्ता है
0: भाई साहब, ये बताइए अमेरिका का प्रवक्ता कौन है, सुनिए
2: अमेरिका खुद गिना रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेट डील बताया, यूरोप ने ग्रेट डील
1: अमेरिका
2: ने ग्रेट डील बताया, देशों ने तो ग्रेट डील बताया, भारत कौन सा ग्रेट डील बता रहा है।
0: सुनो,
2: आप सरेंडर करके आ रहे हैं उनके आगे, उनके टर्म्स कंडीशन पे आप दस्तखत कर रहे हैं, वो तो ग्रेट डील बता रहे हैं, आपको कोई ग्रेट डील बताइए।
0: आप सुनिए अमेरिका को कौन बोलता, मैं बताता हूं, मार्च 2023 में लंदन में खड़े होकर राहुल गांधी बोलते हैं व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड इंग्लैंड एंड यूरोप आर साइलेंट, दे आर नॉट स्पीकिंग इन इंडिया। कौन बात बना रहा है सबको पता हुआ है। भाई पहली नौकरी कहां की थी राहुल गांधी ने, इंग्लैंड में की थी कि नहीं, किस कंपनी में की थी, बैकऑफ्स, उसके बाद दूसरी नौकरी की मॉनिटर, दोनों ब्रिटिश फर्मों में जाकर नौकरी की, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो यहां। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा विदेश कौन घूमने जाता है और काहे घूमने जाता है, किससे मिलकर आता है, भारत विरोधी
2: मोदी जी का रिकॉर्ड थोड़ी तो पाया है, मोदी जी
0: गिना
2: दो, कितने दिन गए मोदी गिना दो, अरे भाई उनको तो
0: नेता प्रतिपक्ष बताइए जिसने इमिग्रेशन रखा, जितनी राहुल गांधी
2: पक्ष बताइए,
0: नेता चौधरी के
2: प्रतिपक्ष को
0: दुनिया की बड़ी बड़ी कितनी बार विदेश जाते थे, मानव जी कितनी बार जाते थे, बीजेपी की सरकार में सोनिया जी और मनमोहन सिंह कितना विदेश जाते थे, सिर्फ इतने घूमते रहते हैं।
1: सुनिए टॉपिक पर लाते हुए पांचवें नंबर का ग्राफिक दिखाइए और मानव जी इसका जवाब दीजिए, बहुत चिल्लाने मत कीजिए ना, ये जब ममता जीतती थी तब भी बंदर मचती थी,
0: दर्शकों को समझ में आता है कि उसके पास पॉइंट नहीं है इसलिए बीच में डिस्टर्ब कर रहा
1: है। चलिए 2011 से जुलाई 2014 तक 13 विपक्षी विधायक टीएमसी में आए, तब कौन उनको खींच रहा था, कौन ऑपरेशन चला रहा था, जनवरी 2019 तक 40 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे, मई 2021 तक 50 विपक्षी विधायक टीएमसी में आ गए थे, ठीक है, 2026 चुनाव के पहले आप देखिए कुल मिलाकर,
0: एक बात ऐड कर दूं, 2016 के चुनाव में 20 के करीब विधायक कांग्रेस के थे, इन्होंने शपथ पत्र भरवाया था अपने विधायकों से कि वो कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे।
1: जब टीएमसी में जा रहे थे तो कौन क्या कर रहा था, कौन ऑपरेशन चला रहा था,
3: देखिए प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको दिखता है टीएमसी में लोग आए, टीएमसी के बाद ईडी भी है, सीबीआई भी है, बहुत पैसे भी हैं, हर तरीके से सुविधा टीएमसी दे रही है, तब भी लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये जो नैरेटिव है ना, ये भाजपा का बनाया हुआ।
1: चलिए ठीक है, इसका छोटा सा जवाब, छोटा सा जवाब।
0: देखिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, सब पार्टियां अपने अपने कारणों से टूट रही हैं। जैसा कि महाराष्ट्र में अगर एक पार्टी शिवसेना टूटी पुत्र मोह में, एनसीपी टूटी पुत्री मोह में, आज वो तृणमूल कांग्रेस की हालत हो रही भतीजा मोह में, और कांग्रेस 140 साल के अपने निम्नतम बिंदु पे आई है पुत्र मोह में। जब योग्यता को दरकिनार करके परिवार को सर्वोपरि करके किया जाता है तो यही हर्ष होता है। वक्त इतने की
1: इजाजत देता है, लेकिन अभी इन सांसदों विधायकों का क्या होना, इस पर हमारी नजर रहेगी। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।

0: Lowe's Pro Desk. Got a material list handwritten on a sticky note or saved as a photo? Perfect. Bring it to us and get a quote in minutes. And if you don't see what you need on the shelf, we'll help you get it. You can access thousands of products beyond what's available in-store or on Lowe's.com right from the Lowe's Pro Desk. Build quotes faster and source the materials you need to keep your jobs moving. Just like that, at Lowe's.
1: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
2: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
3: We hope you're loving TuneIn, but are you ready to love it even more? Upgrade to TuneIn Premium for the ultimate listening experience. Remove ads from top news stations.
4: The climate disaster-related death rate. Tornadoes, hurricanes.
3: Enjoy nonstop music with absolutely no commercials. And hit the field for live sports play-by-play from the biggest leagues.
5: Williams keeps it. First down. Touchdown.
3: Ready to upgrade your listening? Sign up for TuneIn Premium now.
6: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं गोल्डी हिंग कण कण में जान
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है पोषक तत्व वाले लायन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
8: लायन डेजर्ट किंग डेट्स
7: सिंह जैसी
9: शक्ति मुझ में
10: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
5: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
6: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
7: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
5: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
8: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
6: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
5: जहां खबर वहां खबरदार।
9: इन एसोसिएशन विद E3HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
10: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
11: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: टीएमसी में बगावत की आग एक दिन में नहीं भड़की, इसके पीछे राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, पद और पावर की चाहत की लंबी कहानी। आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। जो नाम पढ़े जा सकते हैं, चलिए एक एक करके इस सिग्नेचर्स को पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं। अब जरा ये भी समझिए कि 4 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, ठीक 14 दिन बाद 18 मई को टीएमसी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख दिया कि वो एनडीए में जाना चाहते हैं। सांसदों की इस बगावत की आहट शायद ममता को लग गई थी, इसलिए 20 मई को ममता दीदी ने लोकसभा स्पीकर को सूचना दी कि अब कल्याण बनर्जी चीफ व्हिप होंगे। लेकिन अब कल्याण बनर्जी ने ममता और अभिषेक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
1: आरोप कैसे, कौन से आरोप? रिबल, आप ये तो रिबल कहाँ से हो गए? भगोड़े हैं। रिबल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं।
2: सभी सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे। तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ है। नई बात कौन सी, उनका धंधा ही है ये भैया। बीजेपी का ये धंधा है, बस कुछ भी करो सत्ता पे बैठना है। एथिक्स नाम की जो बात होती है ना, कहीं नहीं है एकदम।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए हैं। इसमें सयानी घोष का नाम नहीं था, सयानी घोष ने बाद में पाला बदलने का प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयानी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से भी ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर उस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
7: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
8: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
9: दिस इज द साउंड ऑफ क्लेयर कुकिंग डिनर एट होम, and that's the sound of a fraud alert from Wells Fargo flagging a charge for a pricey restaurant in Paris. Considering Claire isn't in Paris right now, that seemed odd to the bank and to Claire. Two taps later, Claire says nope to the charge and Wells Fargo is on the case. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
10: Wells Fargo Bank N.A. Member FDIC.
11: You hear it once and remember everything.
12: Too sexy for your party. Too sexy for your party.
11: One Hit Wonders brings back the songs that hit fast but stay forever. They own the moment, rule the charts, and live forever in our hearts every time they play. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this.
13: Just search One Hit Wonders to start listening now.

0: ममता बनर्जी से टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये कहना भले अभी संभव न हो, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। लोकसभा के 19 तृणमूल सांसदों के दस्तखत वाली 18 मई की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें वो अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता की मांग रख रहे हैं। इस बागी गुट की अगुवा है काकोली घोष दस्तीदार, जिनके पास लोकसभा में टीएमसी की चीफ व्हिप का जिम्मा था, लेकिन दावा हुआ है काकोली के बागी तेवरों के बीच उन्हें ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप पद से हटा दिया। उधर ममता बनर्जी के कैंप में मजबूती से जमे हुए सांसद कीर्ति आजाद अपनी सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर खुद एयरगन लेकर बैठे दिखे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि टीएमसी के सांसदों को पैसे से खरीदा जा रहा है।
1: टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
2: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। तो जो एमपीओ को डराया डराया, वो डर गए, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था।
0: तृणमूल में हो रही उठापटक के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में बागी सांसदों के साथ बैठक की संभावना बन रही है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बागी तृणमूल सांसदों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के मौजूद होने का दावा हुआ था। उधर बागी टीएमसी सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। बागी गुट में शामिल सांसद जगदीश बसुनिया ने भी अब खुलकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है।
3: ये जो गुस्सा, ये बहुत दिन पहले का गुस्सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुछ बिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ है।
0: वैसे जब ममता बनर्जी के बाकी पार्टी में अहमियत न मिलने को लेकर एक एक कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तब वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने अभिषेक का बचाव किया है।
4: पार्टी का हालत खराब है, ये मैं मानता हूँ। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। ये लोग तो इनका इतना नाराजगी कभी नहीं बताया, मैं तो कभी नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ इनका दल बदलना मौका परस्त है।
0: वैसे अभिषेक बनर्जी जब राजनीतिक रूप से निशाने पर हैं, तब विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में भी सीआईडी का शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मौजूदा संकट से पार पाना अभी आसान नहीं लगता है। आज तक ब्यूरो।
1: यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
2: देखिए, मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। मैं केवल ये नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ, तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है। हटा लिया तो हटा लिया है, जिस तरीके से 5 एमपीओ का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए, उनके परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया, कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए, उसके बाद में वो डर गए, डर करके चले गए। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे, उनकी भी डील वहीं हुई। भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले, वो 8 ही लोगों ने साइन किया था। आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है, जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है, बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है, उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था, कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी 5 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था तो उस पर CBI लगा दी थी, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी दस्तीदार, तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा कि भाई CBI ED क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ तुम, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, 3-4 लोगों ने 2 मांगे माने 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपये महीना हमें सेट कर दीजिए। तो उसके घर से ही खबर मिलती है।

0: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ भी करेंगे बैठक। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज, निर्वाचन भवन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, कहा वो मुंह से स्वदेशी और मन से है विदेशी, योगी पर बोले हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी मुठभेड़ वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। खाड़ी में उथल पुथल का भारत पर भी असर, मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 पहुंची। अगले सप्ताह अमेरिका और ईरान में हो सकता है शांति समझौता, फ्रांस में होने वाली G7 की बैठक में स्थायी युद्ध विराम पर लग सकती है मोहर। शो की शुरुआत टीएमसी में मचे घमासान के साथ, जहां एक ओर ममता बनर्जी के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी हैं।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई FIR दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया है, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काहुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे के पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे आप?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है, तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
8: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
9: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
10: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैचुटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैचुटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
11: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई, आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी, और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
12: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई, और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
13: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने कमर कस ली है। इस बीच असादुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजामों को लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
5: एयर इंडिया की AI-171 प्लेन क्रैश को 1 साल हो गया है, आज भी वो खौफनाक मंजर उन लोगों के दिलों में और दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं 1 साल बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे

0: मोदी सरकार ने इस भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जो डीबीटी की प्रक्रिया अपनाई,
1: आपने देखा होगा सबसे पहले राजस्थान को आवश्यकता किस बात की थी, किस बात की थी आवश्यकता, किस बात की, पानी की। तो आपने देखा मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पूरे राजस्थान की हर जिले की पानी की योजना बनाई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जितनी भी योजना बनाई थी आज उन सभी पर काम चल रहा है।
2: अब बात बाजार की।
3: घरेलू शेयर बाजार आज तेजी के साथ बंद हुआ। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 1695 अंकों की उछाल के साथ 75,527 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 461 अंकों की उछाल के साथ 23,622 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार में तेजी के बीच रुपए पर भी दबाव कुछ कम होता दिखा। डॉलर के मुकाबले रुपया 77 पैसे मजबूत होकर 95.08 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सर्राफा बाजार में भी आज तेजी का रुख रहा। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,025 रुपए बढ़कर 1,47,609 रुपए हो गई, जबकि चांदी प्रति किलो 8,755 रुपए बढ़कर 2,42,295 रुपए पर बंद हुई।
2: आज खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
4: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे, और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
2: ये थी खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
6: इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। Accuje, the number one Korean skincare brand.
8: Need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 Meg Internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included. Oh yeah! So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
9: This is the sound of Jack buzz cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's $50 right in his pocket.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
3: Money, money, money, money every month.
4: सोच बदलो और बैंक भी.
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: आगे आगे
7: उधर
6: करेक्ट करेक्ट
8: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
10: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
12: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
13: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
12: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
14: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
15: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार, हारे अब खरपतवार। देश के हीरो की पहली पसंद।
16: इन एसोसिएशन विद
17: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
16: हिंट, बड़े आराम से
17: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
18: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
19: विमल बोलो जुबा केसरी।
20: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
21: भाव भगवान है, सुनने में बड़ा अच्छा लगा, लाइन पॉपुलर हो गई। भाई भगवान ही भगवान है, भगवान के बाद शेयर बाजार में भाव प्रधान।
22: ऐसा कौन सा क्रैश था जिसने आपको भी एक बार इमोशनली हिट किया था?
21: Y2K की तेजी में लगा था कि मेरे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए। जब बादलों के ऊपर सर पहुंच जाता है तभी लट पड़ता है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड ओनली अंटिल इट एंड्स और इट बेंड्स। देखिए, बांगड़ू जवान बुल मार्केट में कमाएगा और बूढ़े हाड़ जो है ना बेयर मार्केट में कमाएगा।
23: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

0: भारत का परमाणु दम पाकिस्तान में हड़कंप। ताकतवर हुआ हिंदुस्तान, मान रहा पाकिस्तान। रिपोर्ट से अफरा तफरी, छेप मिटाने वाले दे रहा बयान। ताकत, तकनीक और तेवरों वाले हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान की नींव उड़ा दी है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियारों की तैनाती की है। देश का परमाणु हथियारों का भंडार भी 180 से बढ़कर 190 हो गया है। ये एक ऐसी खबर है जो हर भारतीय का हौसला बढ़ा रही है और हर दुश्मन पर खौफ का साया। जाहिर है इस रिपोर्ट के आने के बाद से पाकिस्तान परेशान है। वैसे तो कोई भी देश ये नहीं बताता कि उसने कितने हथियारों को किन इलाकों में और कब तैनात किया है। ऐसे में सैन्य विश्लेषण करने वाली कई संस्थाएं अनुमान के आधार पर रिपोर्ट जारी करती हैं। सिप्री की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में भारत ने एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं किया था, लेकिन 2026 में 12 वॉरहेड की तैनाती की है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ तैनाती ही नहीं, भारत ने अपने परमाणु हथियारों की तादाद में भी बढ़ोतरी की है, जबकि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उसके पास अभी 170 परमाणु हथियार हैं। उसके कितने हथियार तैनात हैं, ये फिलहाल रिपोर्ट में साफ नहीं किया गया है। जाहिर है इस रिपोर्ट के बाद से दुनिया भर में हड़कंप मचना ही था, और सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान में मचना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से इस बारे में एक के बाद एक कई सवाल पूछे गए, और जो जवाब आया उसमें पाकिस्तान ने ये मान लिया कि रिपोर्ट में दिखाई गई भारत की परमाणु ताकत कहीं ज्यादा हो सकती है। जमीन और आसमान ही नहीं, समंदर में भी भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है। जाने अनजाने पाकिस्तान ने यह भी मान लिया कि जितनी परमाणु ताकत भारत की दिखाई जा रही है, वास्तविकता में वो ज्यादा हो सकती है। पाकिस्तान के लिए तो ये वैसे भी नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट है। अब वो भारत की न तो तकनीक में बराबरी कर सकता है, न तेवरों में। लिहाजा अब छेद मिटाने के लिए आर्म्स रेस में शामिल न होने के बयान दे रहा है। आप भी सुनिए उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये बयान।
1: पाकिस्तान डज नॉट सीक एन आर्म रेस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन आर्म्स रेस एंड मैचिंग वॉरहेड्स और आर्म्स एंड एमुनिशंस बाय नंबर। हाउएवर वी रिमेन माइंडफुल ऑफ द इवॉल्विंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। We will continue to take measures essential for preserving strategic stability and deter any possible India's aggression.
0: दुनिया भर में आतंक फैलाने वाला, गैर कानूनी तौर पर हथियारों को बनाने और इकट्ठा करने वाला और आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान जब ये कहता है कि वो आर्म्स रेस में शामिल नहीं होना चाहता, तो उसका ये बयान उसे शांति दूत बनाने से ज्यादा उसकी कमजोरी और तकनीकी सीमाओं की ओर इशारा करता है। ऊपर से फिर उसका रोना धोना इस बात को लेकर शुरू हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को हथियार या फिर तकनीकी मदद देने वाले देश गलत कर रहे हैं। वो शायद ये भूल गया है कि दुनिया भर के ताकतवर देशों के साथ भारत के दोस्ताना संबंधों का आधार कोई मजबूरी नहीं, बल्कि भारत की मजबूत सैन्य नीति और कूटनीति है।

0: एक ओर टीएमसी टूट रही है, अपने बागी हो चुके हैं, करीबी भी तेवर दिखा रहे हैं, दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी पर कानूनी शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में फर्जी हस्ताक्षर का है, जिसे लेकर सीआईडी ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी से 5 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाले मामले में ईडी ने भी उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं और सीआईडी ईडी एक्शन के बीच अभिषेक पर हमला बोल रहे हैं।
1: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो, जो बालू और उसका बिजनेस होता उससे पैसा लेता था, तब वो कहाँ थी? ये बंगाल के लोगों पर जब अत्याचार कर रहे थे हमारे जो पंचायत में और म्यूनिसिपलिटी में, तब उनको देखना चाहिए था।
2: ये लोग सब दिल्ली जाके कैंप बदल रहे हैं, इन लोग से बात भी नहीं हुआ, कैसे बोलेंगे? जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
0: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पक्ष सौंपा गया। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावों को खारिज कर दिया। अब सीआईडी इस केस की जांच कर रही है। पूछताछ के बीच अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कोलकाता से अनिर्बन साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: अब एक लिस्ट आई है, 19 लोगों का नाम है और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नाम भी उसमें शामिल है।
4: आरोप तो नहीं लगाए? आरोप कैसे, कौन से आरोप?
3: रिबल,
4: आप ये तो रिबल कहां से हो गए? भगोड़े हैं। रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। हमारे सिंपल पर लड़े तो ये आरोप ना आरोप लगाए हैं, जो सच्चाई है उसको रखा है। आरोप क्या होते हैं? आरोप तो होते हैं जिनको सिद्ध करना होता है। इसमें क्या सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना? जिस सिंपल पर तुम लड़े, तुम रहे, चुनाव के 30 दिन नहीं हुए और तुम्हें भ्रष्टाचार देखने लग गया। अगर भ्रष्टाचार तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था तो तुमने रोका, और भ्रष्टाचार वाली बात थी तो काकुली दस्तीदार जो बात कर रही है भ्रष्टाचार की, वो तो 5 लाख रुपए खुद कैमरा में लेती पकड़ी गई। और भ्रष्टाचार छोड़कर, तथाकथित भ्रष्टाचार को छोड़कर, तुम साफ बीजेपी में जा रहे हो, क्लीन बीजेपी, जिस बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी तुम्हारा चीफ बना हुआ है, वो धार का सिंदूर जो अमित शाह ने बीजेपी के मांग में भरा है, वो भी तो 5 लाख रुपए लेता पकड़ा गया। आपके आज तक में दिखाया था भाई, सुबह से शाम तक दिखा रहे थे, सीबीआई लगा दी।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। एकजे, द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।
2: भाई साहब रोहिणी जैसी जगह में क्या 10 रुपए में दे रहे हो?
3: 10 रुपए में मिल रहा आपको वो आइटम जिसकी एमआरपी होती है 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच में। विश्वास ना पाजिए तो देख लो, बड़े ब्रांड जैसे कि वीएलसीसी हो गया, प्लम हो गया, फॉक्सटेल हो गया, मार्केट में 1000 रुपए के वो मिलेंगे हमारे 99।
4: इतने सारे ब्यूटी ब्लेंडर
5: हिसाब लगाऊंगा तो 20 रुपए पीस भी नहीं पड़ेगा,
4: और ये इसमें भी ब्रांड है, कोई ये नहीं लोकल है।
5: नाइवे का है?
4: नाइवे
6: निविया का डियो मिल जाएगा आपको मेरे पास 225 रुपए की एमआरपी रहने वाली है, मेरे पास से आपको 90 रुपए पर पीस पड़ने वाला है। नायका के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे 80% ऑफ पे एमआरपी से, इसके आपको छोटे शैम्पू मिल जाएंगे 149 एमआरपी रहने वाली, मेरे पास आपको 30 रुपए पर पीस पड़ने वाला।
7: पार्क एवेन्यू का बियर शैम्पू मेरे पास से मिल जाएगा, इस पे 170 रुपए एमआरपी आती है, मेरे पास से आपको सिल्वर से 50 रुपए पीस में मिलने वाला है। पैरासूट का अपना देखिए शावर जेल मेरे पास से मिल जाएगा, इस पे एमआरपी बात करें 260 रुपए एमआरपी है, मेरे पास से आपको सिल्वर से 60 रुपए पीस में मिल जाएगा।
8: रोलोन सबसे ज्यादा बिकने वाला आइटम 299 रुपए एमआरपी, फ्लैट आपको 30 रुपए का दूंगा। परसेंट बेरी के फोमिंग वाले फेस वॉश,
4: बहुत लोग ढूंढ रहे थे ना ये ब्रांड मिल जाएगा आपको,
5: इसको इसकी एमआरपी की बात करें 650 रुपए की एमआरपी आपको हमारे पास मिलेगा मात्र 140 रुपए का,
7: आपको बिल्कुल एकदम तसल्ली करके भेजेंगे।
0: जो आप देखने जा रहे हैं वो सिर्फ एक सनसनीखेज खबर नहीं है, ये आपके घर के अंदर आपके बाथरूम की शेल्फ तक पहुंच चुके एक साइलेंट डेंजर की गहरी पड़ताल है। ये कोई पटरी या फुटपाथ पर बिकने वाला लोकल या लावारिस सामान नहीं है, ये वो नामी गिरामी ब्रांड्स जिन पर देश का मिडिल क्लास आंख मूंद कर भरोसा करता है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो आपकी जिंदगी का हिस्सा है, साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, माउथ वॉश, लोशन और परफ्यूम, यानी वो चीजें जो सीधे आपकी स्किन, आपके शरीर और आपकी सेहत से खिलवाड़ कर सकती है।
8: आपके लिए 299 रुपए एमआरपी, ये भी 90% लेस, फ्लैट आपको 30 रुपए का दूंगा।
0: लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, जो कंपनियां अपनी एमआरपी पर 10% का डिस्काउंट देने में 100 बार सोचती है, अचानक ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि उनका हजारों का माल मिट्टी के भाव बिकने लगा?
6: वाली मेरे पास आपको 100 रुपए पर पीस पड़ने वाला है,
9: ठीक है,
6: 299 पर पीस की एमआरपी रहने वाली है, तो पूरे कॉम्बो की एमआरपी हुई 600 रुपए, मेरे पास से आपको 180 रुपए मिलेगा पूरा कॉम्बो।
5: टैग का फेस सीरम भी हमारे पास आपको मिल जाएगा,
4: ठीक है,
5: इसकी एमआरपी की बात करूँ 600 रुपए की एमआरपी होगी, आपको मिलेगा मात्र 60 रुपए में।
0: एमआरपी पर सीधा 80-90% का डिस्काउंट एक या दो पीस पर भी, और पेटियों पर तो बेहिसाब, आखिर क्यों?
5: मिल जाएगी आपको ये देखिए,
4: वाओ।
0: और सबसे बड़ा सवाल है आखिर कैसे
6: 500 रुपए की एमआरपी रहने वाली, मेरे पास आपको 50 रुपए पर पीस पड़ने वाला है।
0: क्या ये कोई स्टॉक क्लियरेंस सेल है या फिर इस सस्ते सौदे के पीछे छिपा है एक्सपायरी डेट और मिलावट का वो खौफनाक और खतरनाक सिंडिकेट जो सीधे आपकी जेब और सेहत पर डाका डाल रहा है?
10: लेकिन ये तो एक्सपायर होगा ना?
11: हाँ तो डेट ही तो चेंज करनी है, वही है।
3: मैं 10 रुपए में, 10 रुपए में।
0: सोशल मीडिया की इस चमचमाती दुनिया में सब कुछ बहुत आसान दिखता है। आप रील्स पर नाम लीजिए, ब्रांड बताइए और अंडरग्राउंड मार्केट से माल हाजिर।
12: नमस्कार, मैं हूँ मारिया शकील और विशेष में आपका स्वागत है। आज विशेष में हम आपको वो कड़वा सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपको ये अंदाजा भी नहीं होगा कि जिस शैम्पू से रोज आप अपने बाल धोते हैं, या जिस साबुन से आप नहाते हैं, या जो क्रीम आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, या जो फेस वॉश से लेकर मेकअप प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, वो नकली या एक्सपायरी डेट के हो सकते हैं। और ये खुलासा हुआ है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के एक बड़े ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन में, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्यूटिफुल। हम ये बात साफ कर देना चाहते हैं कि ये बात नहीं है कि कंपनियां नकली प्रोडक्ट बना रही हैं, बल्कि उनके प्रोडक्ट्स की नकल हो रही है। ये देखिए नितिन जैन की रिपोर्ट।

0: हमारी तफ्तीश की बुनियाद सोशल मीडिया के उन वादों पर टिकी थी जो पहली नजर में ही संदिग्ध लग रहे थे, नामी ब्रांड्स और कौड़ियों के दाम।
1: ₹10 में
2: भाई साहब, रोहिणी जैसी जगह में क्या ₹10 में दे रहे हो?
1: ₹10 में मिल रहा है आपको वो आइटम जिसकी एमआरपी होती है ₹100 से ₹1000 के बीच में, बहुत ही धमाकेदार होने वाली। इस तरह के 700-800 एमआरपी वाले प्रोडक्ट मिलने वाले मात्र 49 रुपए।
0: हमारी तफ्तीश का पहला हिस्सा था इस थ्योरी को टेस्ट कर। सवाल सिर्फ डिस्काउंट का नहीं, इस पूरे नेक्सस के सोर्स का था। इसी सुराग का पीछा करते हुए आज तक की एसआईटी पहुंची पहली लोकेशन पर। रोहिणी, सेक्टर 8, पॉकेट 14 का 99 शॉप।
1: ₹10 में
2: भाई साहब, रोहिणी जैसी जगह में क्या ₹10 में दे रहे हो?
1: ₹10 में मिल रहा है आपको वो आइटम जिसकी एमआरपी होती है ₹100 से ₹1000 के बीच में।
0: बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल था, जैसे कि हर शातिर खेल में होता है, लेकिन जैसे ही हमने बातचीत का जाल बिछाया, इस अंडरग्राउंड सिंडिकेट की पहली कलई खुलनी शुरू हो गई।
3: कितने का है भाव का?
4: भाव का आपको कितना पीस चाहिए?
3: ये कितने में पड़ेगा?
4: एक पीस तो 99 का पड़ेगा, वैसे आपको क्वांटिटी आप बताएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, कम रेट कम जाएंगे। कितने पीस चाहिए आप वो बताते जाइए, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रेट बता दूंगा।
3: 100 पीस उठा लेंगे।
4: 100 पीस चाहिए तो आपको पड़ जाएगा सर 60 रुपीज।
3: आप इतना घुसा कैसे दे पा रहे
4: हैं? मार्जिन नहीं दे रहे हैं, हम ज्यादा मार्जिन नहीं रखते।
3: मैंने जैसे ये 250 रुपये का, तो आप इसको
4: लॉट में उठाते हैं, मेरे साथ बिल के साथ आपको प्रोडक्ट देंगे।
3: मैंने ये आगे करें कि ये जो है ये फेस वॉश जो है 250 रुपये और हमको 60 रुपये का पड़ेगा अगर हम 100
4: ये 100 रुपीज़, बट अगर आप क्वान्टिटी लेते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा 80 रुपीज़। ये इसकी एमआरपी है 230 रुपये, ठीक है? ये इसकी एक्सपायरी डेट है 7/2028।
3: मुझे ना आप लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं
4: आपको मैं आपको एक बार अपना प्रोडक्ट भेज दूंगी क्या क्या है मेरे पास, आप उसकी क्वांटिटी बता देना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बता
3: क्वान्टिटी आपका जितना बढ़ेगा ना
4: उतना हमारा रेट बढ़ेगा।
3: मैंने परचेज किया था ना, तो मैंने 82% का दिया था, मैं आपको 80% का दे रहा हूँ।
0: दुकानदार के दावों ने हमारे शक को यकीन में बदल दिया था। हमने अपना रुख किया आजाद नगर की तरफ, एक ऐसा इलाका जहां कुछ दुकानें तो सरेआम चल रही थी, लेकिन कुछ दुकानें ऐसी थी जो बिना बोर्ड के काम कर रही थी।
5: अगर आप इसे ऑनलाइन बाय करते हैं सिर्फ 15% का इस पर डिस्काउंट मिलता है, मैं इतनी बड़ी ब्रांड पर आपको 80% ऑफ देने वाला।
0: इस धंधे का सबसे बड़ा कैच यही था, इसकी पहचान जमीन पर कम और सोशल मीडिया के जाल पर ज्यादा थी। इंस्टाग्राम पर डिस्काउंट का जाल फैला रखा था, दुकान के भीतर कदम रखते ही लगा जैसे हम किसी मिनी मॉल में हैं, जहां हर रैक पर ब्रांडेड धोखा सजा था। दुकानदार के पास हमारे हर सवाल का रटा रटाया जवाब तैयार था, लेकिन एक इन्वेस्टिगेटर की नजर कीमतों पर नहीं बल्कि उन कीमतों के पीछे छिपे झूठ के पैटर्न पर थी।
3: सैलून खोला है।
4: अच्छा,
3: सैलून
4: वगैरह खोले
3: ना आपने? जी देखो मैडम, साफ बिल्कुल साफ हमें मान हमें मार्जिन चाहिए।
4: मार्जिन तो आपको कम नहीं मिलेगा, 90% ऑफ मिला है हम कहते हैं जैसे ब्रांड का। ये भी अगर दियो मिल जाएगा तो आपको 25 रुपये मार्जिन, हमारे पास आपको 90 रुपये कंप्लीट पड़ेगा।
0: शॉप मैनेजर ने हमें बताया कि उसने ये माल लॉट में उठाया है।
6: Is available with us, you will get a kit worth 450 euros for 450 euros. What if goods worth 500 euros for just 450 euros? You will get face scrubs of NAK, single piece for 60 euros.
0: सवाल अभी भी यही था कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स इतनी कम कीमत पर क्यों बिक रहे थे, इन प्रोडक्ट्स पर इतना भारी डिस्काउंट क्यों मिल रहा था। सच्चाई अभी भी परतों के पीछे थी, इसीलिए हमने अपनी तफ्तीश का दायरा और बढ़ाया। अगला टारगेट था नवीन शाहदरा का ब्यूटी हेवन। यहाँ हमारी मुलाकात हुई बादल नाम के शख्स से, यहाँ भी वही खेल था।
7: ये 20 का होगा।
8: ये कैसे दिया?
7: ये पड़ेगा भैया 130 रुपए का।
8: आपको बहुत कितना डिस्काउंट?
7: 90 रुपए का मैं डिस्काउंट दिया।
9: अब सवाल है कि इन नकली प्रोडक्ट्स का धंधा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये खुलेआम आम आदमी की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट आपकी सेहत और खूबसूरती सुधारने का दावा करते हैं, जो महंगे महंगे दामों में बिकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कुछ लोग नकली बनाकर बेच रहे हैं या एक्सपायरी डेट्स में हेराफेरी कर रहे हैं और आम लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ये रिपोर्ट देखिए।
5: रहने वाली मेरे पास आपको 350 रुपए पर पीस पड़े। मेरे पास आपको 120 रुपए पर ब्रांड मिल जाएगी। आपको मेरे पास
10: दोस्तों देखिए सकते, मतलब आज की वीडियो में
11: ये 100 ml के अंदर आता है। इसके अंदर शैम्पू मिल जाएगा, आपको फेस वॉश मिल जाएगा, इसका बॉडी वाटर मिल जाएगा।
0: अब सवाल ये था कि FMCG की तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर ये सामान बेचा जा रहा है और क्या इन कंपनियों इसकी कोई जानकारी नहीं है? उनके नाम से ये फर्जी नकली और एक्सपायर्ड उत्पाद बेचे जा रहे हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम और ब्रांड खराब हो रहा है, उनके ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है।
1: 10 रुपए में
2: भाई साहब रोहिणी जैसी जगह में क्या 10 रुपए में दे रहे हो?
1: 10 रुपए में मिल रहा आपको वो आइटम जिसकी एमआरपी होती है 100 रुपए से 1000 रुपए के बीच में।
0: आज तक की टीम ने इन कंपनियों को आधिकारिक तौर पर संपर्क करके उनका पक्ष भी जाना। जैसे कोलगेट पामोलिव की तरफ से बताया गया कि उनका जो प्रोडक्ट बिक रहा है, जिसे हमने खरीदा, वो पूरी तरह से नकली है। वो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाया ही नहीं गया।
12: MRP की बात करते हैं तो MRP इसकी 180 रुपए, ठीक है, ये आपको मिलेगा मात्र 80 रुपए का। MRP आप चेक कर सकते हो,
13: 180 वाली चीज 80 रुपए, 80 रुपए।
0: इसी तरह से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी O3 प्लस ने भी अपना प्रोडक्ट नकली बताया है। कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनका कहना है कि वो अभी इन प्रोडक्ट्स की जांच करवा रही हैं और कई कंपनियों ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। दूसरी तरफ हमारी पड़ताल जारी थी। शुरुआती दिनों की रेकी और सामान खरीदने के बाद हमें पता चल गया था कि दिल्ली के आजाद नगर मेट्रो स्टेशन के आसपास का इलाका कॉस्मेटिक्स और FMCG नकली या एक्सपायर्ड माल का गढ़ है।
12: और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ प्योर सेंस का बॉडी बटर। MRP की बात करें तो 700 रुपए MRP, आप देख सकते हो
13: बहुत बढ़िया
12: 700 रुपए MRP, 140 रुपए की मिलेगी मात्र।
0: इसी पड़ताल में हम कांतिनगर की इस दुकान में गए। दुकान पर कोई बोर्ड नहीं, लेकिन इस दुकान को दीपक मलिक और उसका छोटा भाई शिवम मलिक चलाते हैं। हमने देखा कि दुकान में बहुत सामान एक्सपायर्ड था या फिर रीप्रिंट का था।
14: रीप्रिंट नहीं है, ताकि भैया को पता होगा।
8: कितने परसेंट पर दे रहे
14: हो? अलग अलग है सबको, जैसे 90 हो गया।
8: निविया?
14: निविया तो बेकार है।
8: क्यों?
14: ये एक्सपायर है, वीडियो के लिए लगा रखा है ना। ये लेना
0: शिवम ने माना कि उनके प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड यानी धड़ल्ले से खुलेआम एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। जो प्रोडक्ट जहर बन चुके हैं वो भी इन दुकानों पर बिक रहे हैं।
9: विशेष में बस इतना ही, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
3: AU savings account में मिलते हैं amazing benefits, paperless banking and higher interest. वो भी हर महीने.
4: Money, money, money, money every month.
5: सोच बदलो और बैंक भी.
6: Lion Desert King Dates, ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
6: सिंह जैसी
8: शक्ति मुझ में।

वही हॉर्मुज जहां से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है, जहां एक दिन की रुकावट भी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। उस रूट पर फिर से ताला लग गया, फिर से दुनिया की ऊर्जा की सांस थम गई, फिर से यहां के समंदर में उबाल आ गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीदों के बीच अचानक फिर से टकराव बढ़ गया। हमलों और जवाबी हमलों के बीच ईरान ने फिर चेतावनी दी है कि हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के नक्शे पर सिर्फ एक सकरा समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहां से खाड़ी देशों का तेल दुनिया तक पहुंचता है। ईरान एक तरफ, ओमान दूसरी तरफ और बीच में करीब 40 किलोमीटर चौड़ा यह समुद्री रास्ता, लेकिन इसकी अहमियत इसकी चौड़ाई से कहीं ज्यादा है, क्योंकि रोजाना लाखों बैरल कच्चा तेल और भारी मात्रा में LNG इसी रास्ते से गुजरती है।

0: पिछले टकराव के दौरान भी यही हुआ था। जहाजों की आवाजाही बेहद सीमित हो गई थी, कई तेल टैंकर रुक गए थे, बीमा कंपनियों ने जोखिम बढ़ा दिया था। नतीजा, दुनिया भर में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा। हॉर्मुज बंद होने का मतलब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र की समस्या नहीं है, इसका असर एशिया से लेकर यूरोप तक पहुंचता है, क्योंकि भारत, चीन और जापान जैसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देशों की सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका की तरफ से लगातार कहा गया है कि वो समुद्री रास्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सेना ने पहले भी दावा किया था कि उसके ऑपरेशन की वजह से कई वाणिज्यिक जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज से गुजर पाए, लेकिन ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि अगर सैन्य दबाव जारी रहा तो हॉर्मुज को दौर ड्रोन की नहीं है, असली लड़ाई उस रास्ते की है जिससे दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था चलती है। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ ईरान की चेतावनी, और बीच में फंसा है दुनिया का तेल बाजार। और अगर ये संकट लंबा चला तो असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहेगा, इसकी गर्मी दुनिया के हर उस देश तक पहुंचेगी जहां पेट्रोल, गैस और महंगाई की चिंता है। सुमित चौधरी और प्रणय उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
2: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
3: इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
5: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
6: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: AU savings account mein milte hai amazing benefits, paperless banking and higher interest. Wo bhi har mahine.
6: Money, money, money, money, every month.
7: Soch badlo aur bank bhi.
8: देखिए मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ, जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, ये तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए। मैं
9: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहां पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं।
10: दो हजार 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। 2022 की करारी हार और अंतरकलह से सबक लेते हुए पंजाब कांग्रेस ने 2027 के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार पार्टी किसी सीएम फेस के सहारे नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं होगा।
11: कांग्रेस पार्टी का जेड़ा चुनाव है वो राहुल गांधी साहब के नेतृत्व दे विच और खड़गे साहब के नेतृत्व दे विच और चुनाव निशान पंजा के नेतृत्व दे विच लड़ा जा रहा है। राजा वड़िंग ता एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर।
10: दरअसल कांग्रेस पुराना इतिहास नहीं दोहराना चाहती। 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाने के बाद जो अंदरूनी कलह मची उसने पार्टी को सिर्फ 18 सीटों पर समेट दिया। चन्नी को सीएम फेस बनाना भी काम नहीं आया और नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी से दूरी बना चुके हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी ना हो इसलिए राहुल गांधी ने ये सेफ गेम खेला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार चेहरों की जंग छोड़ मुद्दों के सहारे पंजाब में वापसी करना चाहती है। आज तक ब्यूरो।
12: Sometimes one has to bear so many humiliation. I have, listen, in a party, in a politics, no party can remain in permanent power. And I am a very truthful follower of Mamata Banerjee. And what I have done, what I have, that all you have, Bengal knows about me. I have not give the least what I have done it. Still in the bad days, I am with Mamata Banerjee. Still I am. But point is, if an arrogant Abhishek Banerjee remains, who treats everyone as his employee, then it is impossible for me to stay. Such an arrogant person, one must understand that if for Abhishek Banerjee, the party has been destroyed today. We have lost it.
13: Everybody is saying this.
12: Everybody is saying, I have not said. I am in the back days of the party. I was with the Mamata di. I said again, I am saying I am with Mamata di. But Mamata di has to choose whether Abhishek Banerjee she will keep or she will keep me.
1: That's an ultimatum.
12: Yes, this is I leave it to her. Her wisdom. I leave it to her wisdom.
1: So this is a dharam sankat for Didi.
12: It is. I leave it to her wisdom.

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: विशेष में मेरे साथ इतना ही, आगे देखिए खबरदार श्वेता सिंह के साथ।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
2: ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस,
3: एक्जे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: एमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मुलाकात की तैयारी, रविवार को शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, कहा वो मुंह से स्वदेशी और मन से विदेशी। योगी पर बोले अखिलेश, हमारी सरकार बनेगी तो फर्जी मुठभेड़ करने वालों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। और हॉर्मुज के बाद हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा, कहा तेहरान ने किया था ड्रोन हमला, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: Acajay, the number one Korean skincare brand, now in India.

0: नमस्कार, आज तक पर आपका स्वागत है। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। आज सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति से खबरदार करना है, जहां सवाल है कि भले 1% वोट भी अब तक लड़ने पर नहीं मिला हो, लेकिन क्या ओवैसी जीतने से ज्यादा हराने की ताकत अब भी रखते हैं? अखिलेश यादव ने 2027 के लिए कौन से फॉर्मूला नंबर 225 पर काम करना शुरू कर दिया है? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तीसरी बार जीत के लिए किस रामबाण तरीके को अपना लिया है? 2027 की हर तैयारी का ताने बाने से आज आपको हम एक एक करके खबरदार करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 की चुनाव एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली है।
2: जब 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए।
3: इस बार हम लोग पूरी तैयारी के साथ हैं और तैयारी तभी पूरी होगी जब एक एक कार्यकर्ता नेता अपने गांव घर में वोटर लिस्ट बनती कर ले। वोटर लिस्ट एसआईआर क्यों लेके आए? एसआईआर इसलिए लेके आए कि वोट कट जाए। अब तो पंचायत वाले भी वोटर लिस्ट आ गई है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिकॉर्डधारी पीएम बनने के कार्यक्रम में पहुंचकर क्या योगी आदित्यनाथ वो संदेश हासिल कर चुके हैं जिसके दम पर अब योगी भी यूपी में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने की रणनीति रचने में जुट चुके हैं?
2: 2027 में फिर से प्रदेश में कमल खिलेगा, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए।
1: इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फुल कॉन्फिडेंस में है। एक तो यूपी में 2 लगातार जीत का रिकॉर्ड पहले से उनके नाम है, लेकिन 2024 में विपक्ष को जो जमीन यूपी में हासिल हुई उसको बिहार से बंगाल तक बीजेपी के ऐतिहासिक जीत ने झटका दे दिया है। बंगाल में तो हिंदू वोट से बीजेपी को मिली ऐतिहासिक विजय के बाद विपक्षी खेमे में मची भगदड़ से योगी को यूपी में इस वक्त नई सियासी ऊर्जा दिखने लगी है।
4: देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है।
1: क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव चुनाव चोरी का आरोप लगाने लगे?
5: बिहार के चुनाव में जो बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई, इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा। इसीलिए आपने देखा होगा जो डिलिमिटेशन लाए, महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन लाए थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत ना पाए।
1: अखिलेश यादव जब सवाल बीजेपी की लगातार जीत पर उठाते हैं, तब उत्तर प्रदेश में मोदी प्लस योगी बहुत उपयोगी वाले फॉर्मूले पर चलते मुख्यमंत्री दिखने लगते हैं, जो नरेंद्र मोदी के 12 साल और योगी के 9 साल वाली रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में उतरने वाले हैं।
6: दिल्ली और लखनऊ की साझेदारी को योजनाओं और तस्वीरों के जरिए पेश करने की कोशिश है, वो भी तब जब यूपी चुनाव कुछ महीने शेष है। पीएम सीएम की जो बॉनभूमि है वो आपको इस तस्वीर के जरिए देखने को मिलेंगी।
4: नेतृत्व की क्षमता होती है, आपने देखा होगा सम और विषम परिस्थिति में जब भी मोदी जी ने आह्वान किया है पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी तो 2027 वाली रणनीति का संदेश देना शुरू कर चुके हैं। जहां 2024 में जातियों में वोट बटा था, लेकिन अब मोदी योगी की रणनीति है कि ये वोट बटना नहीं चाहिए। याद करिए जब बंगाल जीत से चर्चा में आई झालमुरी, पीएम मोदी भारत मंडपम में एनडीए के कार्यक्रम में पहुंचकर खाते हैं, परोसते कौन है? शुभेंदु अधिकारी। अब इन तस्वीरों पर गौर करिएगा। प्रधानमंत्री ने जो तस्वीर पोस्ट की इसमें ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जीतन राम मांझी दिखते हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री झालमुरी खा रहे हैं, और फिर अनुप्रिया पटेल और चिराग पासवान भी वहीं पर झालमुरी खाते हैं, जिनकी तस्वीर प्रधानमंत्री पोस्ट करते हैं। इन तस्वीरों में 3 सियासी संदेश दिखते हैं। पहला, पिछड़े और दलित समाज के नेताओं का साथ। दूसरा यूपी और बिहार के पिछड़े और दलित समाज के नेताओं का साथ, और तीसरा सहयोगी दल का बीजेपी के साथ झालमुरी वाला मिक्सचर एकदम मजबूती से तैयार है। और तब कहा जा रहा है कि एक तरफ योगी जब हार्ड हिंदुत्व वाली लाइन पर चलेंगे,
7: मारीच है, रावण है, उच्च कुल में और श्रेष्ठ व्यवस्था में जन्म लेते हैं लेकिन पशुवत मारे जाते हैं क्योंकि राम के साथ द्रोह करते हैं।
1: तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के विकास के मंत्र और पिछड़ों को साथ लेकर चलने वाली रणनीति का प्रचार होगा।
8: हमने समाज को जाति के नाम पर बांटने वाले ताकतों से सावधान रहते हुए सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाले तत्वों से सावधान रहते हुए बिना रुके बिना डिके बिना झुके प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है।
0: अब आपको खबरदार करते हैं कि आखिर यूपी में अखिलेश यादव की नजर 225 सीट पर क्यों है? क्या अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर उनकी पार्टी आगे रही है वहीं पर 2027 में वो जीत की साइकिल भी चला सकते हैं?
1: शंख बज रहा है, हाथ में गेंदे के फूल की पंखुड़ियां लेकर बटुक खड़े हैं, मंत्रोच्चारण हो रहा है, तभी मंच पर पार्टी बदलकर मंत्री पद पाए मनोज पांडे की एंट्री होती। पहले बटुक अपने हाथों से फूलों की पंखुड़ियां मंत्री मनोज पांडे पर बरसाते हैं और फिर मंत्री मनोज पांडे उन्हीं बटुकों को भगवा गमछा पहनाकर सम्मान करते हैं। इस तरह उत्तर प्रदेश में बटुक सम्मान के साथ ब्राह्मण वोट साधने वाली सियासत का पाठ पढ़ा जा रहा है।
6: यूपी का चुनाव है और हर कोई जाति समीकरण साधता दिख रहा है। बीजेपी ब्राह्मण वोट साधने के लिए पहले डिप्टी सीएम और आज मंत्रिमंडल के एक और कैबिनेट चेहरे बलरामन चेहरे मनोज पांडे बटुकों का सम्मान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर आपको कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे नजर आएंगे और छोटे छोटे बच्चों का जो बटुक है आचार्य कर्मकांडी हैं उन सब का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं।
9: आज पूरे लखनऊ का और अगल बगल का विप्र समाज यहाँ इकट्ठा है और इसने आशीर्वाद सम्मेलन रखा था लगभग 22 संगठन के लोगों ने। मेरा सौभाग्य है कि भारत की संस्कृति और सभ्यता को बचाने वाले इन बटकों का प्रदेश भर के आए हुए आचार्यों का विद्वान लोगों का सम्मान करने का हमें अवसर मिला है, मैं इसके लिए इनको आभार प्रकट करता हूँ।
1: सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जहां 10-11% की ताकत ब्राह्मण वोट रखता है वहां उसका 80% हिस्सा जहां सीधे बीजेपी पार्टी आई वो आखिर क्यों बार बार बटुक सम्मान करते दिखती है? पहले ब्रिजेश पाठक बटुक सम्मान कर चुके हैं, अब मनोज पांडे करते हैं। क्या ये लोकसभा चुनाव के बाद अपना ही वोट और मजबूत करने की राजनीतिक जुगत का हिस्सा है जहाँ दावा है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की करीब 225 विधानसभा सीटों पर नजर रखने लगे हैं जहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान या तो बीजेपी पीछे रही या फिर पहले की तुलना में उसका वोट कम हुआ है।
10: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 225 सीटों पर कहा है कि जिन पर बीजेपी अपने कैंडिडेट वापस बुला लेगी, यानी कि उन विधायकों को वापस बुला लेगी जिन पे जनता का पूरी तरीके से विश्वास नहीं है, और उन 225 सीटों पर अब समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेटों को उतारेगी और जीत दर्ज करेगी। इन सीटों की अगर बात करें तो झांसी से लेकर प्रयागराज और बलिया तक मौजूद है।
11: जिन्होंने फर्जी इनकाउंटर किए हैं वो देख रहा हूँ उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और समाजवादी सरकार बनने पर न्याय के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम होगा।
1: पीडीए के घर बुलडोजर, पीडीए का एनकाउंटर का मुद्दा उठाकर अखिलेश यादव ये कहते आए हैं कि बीजेपी राज में पिछड़ों दलितों और मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। ऐसे में क्या वाकई लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर कोई गणित या फॉर्मूला अखिलेश यादव के पास है जो उन्हें 2027 में जीत दिला सकता है? इसका अगर हिसाब निकालते हैं तो हम पाते कि 37 लोकसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जीती, इन 37 सीट में विधानसभा की 186 सीटें आती हैं, इनमें से 41 सीट बीजेपी ने जीती थी जबकि 145 सीट समाजवादी पार्टी जीती, यानी एसपी का स्ट्राइक रेट 78% रहा। अगर कांग्रेस को भी जोड़ ले तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर कुल 43 लोकसभा सीटें 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर जीती। इन 43 सीट में विधानसभा की 216 सीट आती है। बीजेपी 45 सीट पर आगे रही, जबकि कांग्रेस 26 और समाजवादी पार्टी 145 यानी इंडिया गठबंधन 171 सीटों पर आगे रहा। फिर भी बहुमत के आंकड़े से गठबंधन यहां दूर है, लेकिन ये जरूर है कि जहां 2024 में बढ़त मिली वहां मजबूत उम्मीदवार उतारकर बीजेपी की लगातार दो जीत के बाद अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसे भी समाजवादी पार्टी कैश कराना चाहेगी।
12: जनता की आवाज बनकर के समाजवादी पार्टी उन विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी और वहां पर पूरी मजबूती के साथ और ताकत झोंकते हुए, क्योंकि जनता को उन विधायकों से निजात दिलानी, क्योंकि इन विधायकों ने कोई काम नहीं किया। उनको उम्मीद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार ही तभी चौतरफा विकास होगा।
13: श्रीमान अखिलेश यादव को स्वप्न देखने से कोई रोक नहीं सकता। वो नित्य नई अफवाह फैलाते हैं, उनकी कोई तैयारी नहीं है। वो स्वयं तो विदेश घूम रहे हैं, जबकि जनता के बीच में समय उन्हें होना चाहिए था। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी अपनी सीटों का गढ़ बैठाते रहे और भारतीय जनता पार्टी उनको फिर से एक बार तीसरी बार विधानसभा में मुंह की खिलाएगी।
14: उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब भी 9 महीने का वक्त है, पर अभी से ओवैसी प्रचार में जुट गए हैं। ओवैसी रविवार को बहराइच में एक रैली करके यूपी में अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अगर कोई गठबंधन नहीं होता है तो ओवैसी की तैयारी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें होंगी। खबरदार करता सवाल है कि जो ओवैसी दो चुनाव में अखिलेश के लिए बहुत बड़ी

0: एक शोर तक सीमित रह जाएगी।
1: यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सामने मुस्लिम वोट बैंक के लिए एक विकल्प बनना चाहती है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। यही कारण है असदुद्दीन ओवैसी का रविवार के दिन यूपी चुनाव के मद्देनजर चुनावी शंखनाद। कहां से? बहराइच के उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है।
0: बहराइच की मटेरा विधानसभा सीट को चुनना अपने आप में एक राजनीतिक संदेश है। ये इलाका मुस्लिम, यादव, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति मतदाताओं की बड़ी आबादी वाला इलाका है। लंबे समय से ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। साल 2012 से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। पहले यासिर शाह और फिर उनकी पत्नी मारिया शाह ने इस सीट पर जीत हासिल की। ऐसे में अगर ओवैसी के आने से कुछ हजार वोट भी इधर उधर होते हैं तो फिर क्या समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ सकता है?
2: जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है, कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है। वो कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ी नहीं हुई है और उल्टा हम पे दोषारोपण करती है कि वो हमारे साथ नहीं खड़े होते हैं। आप मटेरा जिस वजह से जहां जा रहे हैं वहां पे समाजवादी पार्टी जब से वो विधानसभा बनी है तब से वो जूती रही है।
0: साल 2012 के बाद से मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से जुड़ा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ रणनीतिक मतदान की वजह से मुस्लिम वोटों का व्यापक ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हुआ। ऐसे में ओवैसी के आने से इसमें कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। यूपी में ओवैसी की पार्टी का चुनावी रिकॉर्ड बहुत उत्साहजनक नहीं रहा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से 37 सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। साल 2022 में करीब 100 सीटों पर चुनाव AIMIM ने लड़ा, लेकिन कुल वोट शेयर 0.5% से भी नीचे रहा। यूपी की राजनीति में AIMIM को लेकर सबसे बड़ा आरोप यही लगता है कि उसकी मौजूदगी विपक्षी वोटों का बंटवारा करती है, जिससे फायदा बीजेपी को मिलता है। इस सवाल की काट के लिए ओवैसी की तरफ से दलीलें हमेशा से दी जाती रही।
3: यही डॉक्टर अनवारुल साहब है जो कि समाजवादी पार्टी में लगभग 20 से 25 साल अपना वक्त इन्होंने दिया है। एक नहीं, कई चुनाव इन्होंने लड़ाया है समाजवादी पार्टी को। मटेरा विधानसभा, बहराइच विधानसभा, नानपारा में पूरे जिले में इन्होंने काम किया है। ये जिला अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के। मेरे बड़े भैया के इंतकाल पर ताजियत के लिए मेरे पास मिलने के लिए आए थे, फोटो वायरल हो गया, इनको पार्टी से निकाल दिया गया। जबकि अखिलेश यादव साहब की पार्टी का झंडा जलाने वाली बीजेपी की विधायक का चेहरा जल जाता है तो अखिलेश जी उनको देखने के लिए वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में चले जाते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, सही कह रहा हूँ?
4: जी बिल्कुल।
3: लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इनको पार्टी से निकाल दिया गया? मतलब भाई भाई के साथ नहीं जा सकता।
0: समाजवादी पार्टी पर ओवैसी ये कहकर हमला करते हैं कि वो मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता तो हासिल करते हैं लेकिन उन्हें उचित हिस्सेदारी नहीं देते। अगर ओवैसी की दलील चली और AIMIM कुछ सीटों पर 3-5% वोट भी हासिल कर लेती है तो कई करीबी मुकाबलों में उसका प्रभाव दिख सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। इसीलिए ओवैसी 2027 का चुनाव सत्ता हासिल करने से ज्यादा यूपी की सियासत में अहम खिलाड़ी बनने के लिए लड़ने उतर सकते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: जानकारों का कहना है कि ओवैसी का 2027 को लेकर लक्ष्य सत्ता हासिल करना नहीं है, पार्टी का उद्देश्य यूपी में स्थायी राजनीतिक आधार तैयार करना है। लेकिन ओवैसी की राह में अखिलेश यादव खड़े हैं, जिन्हें पिछले कई चुनाव से एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलता आ रहा है। अखिलेश की मुश्किल ये है कि ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट जुटाने के लिए जोर तो लगाना ही होगा, वहीं पार्टी के गैर यादव पिछड़े वोट को अपने पाले में लाने में भी चुनौती होगी।
6: तुम्हारा अखिलेश, तुम्हारा भैया, जो तुम उसकी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर सिर्फ दरी बिछाना है। दरी बिछाना है भैया के लिए। ओवैसी कह रहा है कि अब किसी के लिए दरी नहीं बिछाएंगे, बिछाएंगे तो अपने लिए और शिफा के लिए। याद रखो अकला की जनता, ये लड़ाई आपकी सियासी आवाज की है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैं मर मिटने को तैयार हूं।
4: उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर दावेदारी जताने बहराइच आ रहे असद

0: शहाबुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए दोहरी चुनौती खड़ी करने वाले हैं। इसकी वजह है महाराजा सुहेल देव।
1: अब जो लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं उनको बोलो वही हाल कर देंगे जो हाल महाराज सुहेल देव ने सालार मसूद का किया था। उनको बोलो कि उस भीख मंगे पाकिस्तान का नारा लगाते हो तो जाओ वहां जाके भूखों मरो, भारत के ऊपर बोझ मत बनो।
0: ओवैसी की वजह से 2027 के चुनाव में सैयद सालार मसूद गाजी बनाम महाराजा सुहेल देव का मुद्दा एक बार फिर गरमाएगा, क्योंकि जब ओवैसी बहराइच की अपनी सभा को संबोधित करने से पहले सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर जाएंगे तो बीजेपी उसके इतिहास को याद दिलाकर अखिलेश के लिए ही मुश्किल खड़ा करेगी।
2: सालार मसूद गाजी वही है जिसने मोहम्मद गजनवी के साथ भगवान सोमनाथ के मंदिर को तोड़ लूटने और तोड़ने का काम किया था। एक विदेशी लुटेरा था, उसने जितना अत्याचार किया था हिंदू धर्म और संस्कृति को तोड़ करके, आस्था पर प्रहार करके, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करके, वही व्यवहार उसके साथ उस समय हिंदू राजाओं ने किया था। तो जय जयकार तो महाराज सुहेल देव की होनी चाहिए और पूजा महाराज सुहेल देव की होनी चाहिए, न कि सालार मसूद गाजी की।
0: तो ओवैसी के उत्तर प्रदेश में कदम रखते ही अखिलेश के पीडीए का ए यानी अल्पसंख्यक वोट बैंक को लेकर मुकाबला कड़ा नहीं होगा बल्कि पी यानी पिछड़े वोट बैंक की दावेदारी पर भी मुश्किल होगी, क्योंकि महाराजा सुहेलदेव यूपी के राजभर और पासी समुदायों में बेहद लोकप्रिय हैं, जिनका मध्य और पूर्वी यूपी में काफी प्रभाव रहा है।
3: मैं तो बरेली बाजा चित्रकूट हमीरपुर जालौन झांसी एटा इटावा कन्नौज कासगंज जब उधर रहा तो उधर के पुराने जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं बेटा तेरे पूर्वज इस इलाके में राज करते थे, दुर्भाग्य है कि आप इधर नहीं दिखाई देते हो, आपको आना चाहिए इधर, आप इधर शासक थे, आप कहां खो गए हो।
0: दशकों से यूपी की सत्ता में हिस्सेदारी मांगते आ रहे राजभर को यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर सपना दिखा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए वोट बैंक की नई परिभाषा देनी शुरू कर दी है। साल 2001 में बनी सामाजिक न्याय समिति, जिसे हुकुम सिंह समिति भी कहा जाता है, उसके अनुसार प्रदेश में राजभर आबादी 2.44% है। इस जाति का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़कर है। माना जाता है करीब 60 सीटों पर राजभर जाति के वोटों की संख्या ठीक ठाक है। राजभर जाति के लोग खुद को मध्ययुगीन महाराजा सुहेल देव राजभर का वंशज होने का दावा करते हैं, जिन्होंने सालार मसूद गाजी को ऐसी मौत दी जो विदेशी आक्रांताओं के लिए डर का नाम मनी।
4: ये वही धरती है जिसने भगवान सोमनाथ के गुनाहगार को सालार मसूद को मौत के घाट उतार करके उसकी कब्र इसी बहराइच में गाड़ने का काम किया था। ये महाराज सुहेलदेव की वही भूमि है और हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराज सुहेलदेव का भव्य विजय स्मारक आपके इसी बहराइच में बनाया है। बहनों और भाइयों, मुझे तो महाराज सुहेलदेव के शौर्य पराक्रम पर गौरव की अनुभूति होता है और मुझे लगता है कि राष्ट्र रक्षक थे।
0: महाराजा सुहेलदेव की विरासत पर बीजेपी ये कहते हुए दावा करती है कि केंद्र और यूपी की डबल इंजन सरकार ने ही उन्हें सम्मान दिया, चाहे उनके नाम पर डाक टिकट जारी करना हो, आनंद विहार से गाजीपुर के बीच सुहेलदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाना हो, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय का नाम रखना हो। ये सब बीजेपी इसलिए कर पाई क्योंकि उसे अंदाजा है कि राजभर वोट की ताकत क्या है।
4: आखिर महाराज सुहेलदेव का स्मारक कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया, बहुजन समाजवादी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्हें भय था कि सालार मसूद गाजी के भक्त कहीं उसका वोट बैंक न खिसक जाए, इसलिए उन्होंने महाराज सुहेलदेव भी विस्तृत करने का काम किया।
0: एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक का नारा देकर नया सामाजिक समीकरण तैयार करने में जुटे, लेकिन चुनाव में ओवैसी की एंट्री लेते ही वो मुस्लिम वोट को लेकर घिरेंगे। ओवैसी रैलियों में पूछते फिरेंगे कि मुसलमानों के एक मुश्त वोट लेने वाले अखिलेश सत्ता में शीर्ष नेतृत्व के भीतर मुसलमानों को पर्याप्त जगह क्यों नहीं देते। अखिलेश की मुश्किल ये है कि अगर वो इसकी काट के तौर पर कोई वादा अल्पसंख्यकों से करते हैं तो उससे योगी के 80-20 के फार्मूले को मजबूती मिलेगी। वहीं सैयद सालार मसूद गाजी बनाम महाराजा सुहेलदेव का मुद्दा जितना गर्म होगा, पीडीए की राजनीति में गैर यादव पिछड़ों छोटी ओबीसी जातियों को जुटाने की अखिलेश की कोशिश कमजोर होगी, क्योंकि तब यादवों के मुकाबले गैर यादव पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी का मसला उठाया जाएगा। मतलब एक अकेले ओवैसी अखिलेश के लिए कई मोर्चों पर तनाव पैदा कर सकते हैं।
5: पश्चिम बंगाल की राजनीति से आपको अब खबरदार करते हैं। क्या सोमवार को टीएमसी के बाकी गुट से जुड़ी बड़ी खबर आ सकती है? एक तरफ कोलकाता पुलिस ने ममता बैनर्जी की एक स्पीच को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, दूसरी तरफ आज बाकी सांसदों वाली चिट्ठी सामने आ गई है। साथ ही पता चला है कि नतीजे के 14 दिन के भीतर ही बगावत की पटकथा लिखी जाने लगी थी।
6: ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने का वादा करने वाली सायोनी घोष।
7: 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया।
0: अभिषेक बनर्जी की भरोसेमंद सायोनी घोष।
7: दीदी शब्द है, ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैसिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है।
0: बीजेपी का हार का दावा करने वाली सयनी घोष।
7: आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे।
0: सयोनी घोष क्यों पलट गई, इस सवाल का जवाब भले ही वो नहीं देती हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी की तरफ अब कदम बढ़ा दिए थे इसकी खबर पुख्ता है। 4 मई को पश्चिम बंगाल में नतीजे आए और 18 मई को तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख देते हैं। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो समय चीफ विप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हलदर, शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश वर्मा बसुनिया, असित कुमार मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपत सोरेन और दीपक अधिकारी शामिल हैं। ये ममता बनर्जी के वो बागी हैं जो लोकसभा में टीएमसी से अलग होकर नया गुट बनाना चाहते हैं, जिनमें सयनी घोष भी शामिल है। 20 मई को ममता बनर्जी को ये भनक लग गई थी तो उन्होंने चीफ विप तो बदल दिया, लेकिन अब जो चीफ विप बनाए गए वो कल्याण बनर्जी भी बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं।
8: आरोप कैसे, कौन से आरोप? रिबेल, आप ये तो रिबेल कहां से हो गए, भगोड़े हैं। रिबेल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए। ये तो हमारे सिंबल पे लड़े थे, तो रिबेल कहां से हो गए, ये तो भगोड़े हैं।
0: लोकसभा में टीएमसी के 28 सांसद हैं, 19 ने पहले ही मंसूबे साफ कर दिए। इसमें सयनी घोष का नाम नहीं था पहले, सयनी घोष ने बाद में पाला बदलने का दावा है कि प्लान बनाया। सबसे आखिरी में बगावत की कल्याण बनर्जी ने। अगर कल्याण बनर्जी और सयनी घोष को भी जोड़ दें तो बागियों की संख्या 21 हो जाती है, जो कि टीएमसी के कुल सांसदों की संख्या के 2/3 से ज्यादा है। ऐसे में लोकसभा स्पीकर बागियों को ही असली टीएमसी घोषित कर दें तो हैरानी नहीं होगी। उधर ममता बनर्जी के कैंप में मजबूती से जमे हुए सांसद कीर्ति आजाद अपनी सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर खुद एयरगन लेकर बैठे दिखते हैं। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि टीएमसी के सांसदों को पैसे से खरीदा जा रहा है।
9: टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
8: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। तो जो एमपीओ को डराया वो डर गए, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था।
0: टीएमसी में हो रही उठापटक के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में बागी सांसदों के साथ बैठक की संभावना बन रही है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बागी टीएमसी सांसदों की बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु के मौजूद होने का दावा रहा। उधर बागी टीएमसी सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। बागी गुट में शामिल सांसद जगदीश बसुनिया ने भी अब खुलकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है।
10: ये जो गुस्सा, ये बहुत दिन पहले का गुस्सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुछ बिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हो।
0: बंगाल के चुनाव में हार के बाद अभिषेक बनर्जी राजनीतिक रूप से निशाने पर है, तब विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में सीआईडी का शिकंजा भी कसता जा रहा है। तो एक तरफ ममता के हाथ से पार्टी जाने का डर, दूसरी तरफ अभिषेक बनर्जी पर कार्रवाई का डर, जिससे पार पाना फिलहाल ममता के लिए मुश्किल लग रहा है।
5: कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से सीआईडी ने पूछताछ की। इसके बाद अभिषेक बनर्जी की तरफ से पार्टी में टूट पर बयान आया। अभिषेक ने कहा कि सांसद और विधायक खरीद कर उन्हें झुकाया नहीं जा सकता। अभिषेक ने खुद पर दर्ज केस की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए और कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद ही उनके खिलाफ केस दर्ज हुए हैं।
11: मैंने सुना है कि जिस मामले में ये आज मुझे नोटिस देने आए हैं, उसमें मैंने कहा था कि 4 तारीख के बाद डीजे बजेगा। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने सच में कुछ गलत कहा था तो मैंने ये बयान कब दिया था? चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था, तब कानून व्यवस्था किसके अधीन थी? चुनाव आयोग के अधीन थी, ममता बनर्जी के अधीन तो थी नहीं। तो फिर तब मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? अगर चुनाव आयोग के पास शिकायत गई थी तो चुनाव आयोग ने मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि अगर मैंने डीजे बजाने की बात कही थी तो देश के गृह मंत्री ने कहा था कि तृणमूल के लोगों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप कहेंगे कि अगर ज्ञानेश कुमार को मेरे खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो अमित शाह के खिलाफ भी कार्रवाई करनी पड़ती।
12: सर विरुद्ध एक्शन लेते हो तो।
5: और अब आपको उस हेल्थ सिस्टम से खबरदार करते हैं जहां इंजेक्शन के नाम पर दवा नहीं बल्कि पानी भरा इंजेक्शन लगा दिया जाता है। गर्भवती महिलाओं की मौत हो जाती है। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की किडनी फेल हो जाती है। मंत्री संवेदनहीन जवाब देते हैं, अफसर लीपापोती करते हैं और हालत यह है कि राजस्थान में रूरल हेल्थ सिस्टम की रीढ़ कही जाने वाली एम्बुलेंस पिछले 7 महीने से बंद पड़ी है। फिर भी हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए तो वो तारीख पर तारीख देते हैं।
13: डेथ हो गई है, बच्चेदारी निकाली उसे डिलीवर
0: करा। नाम नोट कर लीजिए, गजेंद्र सिंह खिवसर, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री। ऐसे हेल्थ मिनिस्टर जिनके राज में इन्हीं के विभाग के लोग कोटा के मेडिकल कॉलेज में नकली इंजेक्शन खरीद कर गर्भवती महिलाओं को लगाते हैं और दावा होता है 5 महिलाओं की मौत हो जाती है।
14: ऑक्सीटोसिन के अंदर खाली पानी था, उसके अंदर कोई उसके अंदर नहीं था। जब इंजेक्शन दिया और उसके अंदर वो ड्रग ही नहीं था और खाली पानी गया तो एक्सेसिव ब्लीडिंग तो जरूर हुई।
0: गजेंद्र सिंह खिवसर राजस्थान के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिनके राज्य में बीकानेर में 6 गर्भवती महिलाओं की किडनी फेल हो गई और मंत्री संवेदनहीनता से कहते हैं, अरे यार बताओ क्या वो नाश्ते गाती आई थी?
15: जब उनकी डिलीवरी हुई उसके 2 से 4 घंटे के बाद सबकी तबीयत खराब हुई। आपने 100 लोगों की जिंदगी बचाई, मना नहीं कर रहा हूं सर।
14: गंभीर हालत में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई?
16: सर नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई?
17: जब हमारे गाँव से महिलाएं आ रही है वो सारी की सारी महिलाएं कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से डिहाइड्रेटेड होती है।
0: गजेंद्र सिंह खिवसर राजस्थान के ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जिनके राज में 7 महीने से राजस्थान की गर्भवती महिलाओं से जुड़ी एम्बुलेंस सेवा बंद पड़ी है और मंत्री जवाब तक देने से बचते हैं।
18: 104 की एम्बुलेंस जो डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेके आती है, सर 104 एम्बुलेंस नहीं चल रही राजस्थान में।
0: तो फिर किस बात की शपथ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने ले रखी है? क्योंकि राजस्थान में 2012 से गर्भवती महिलाओं छोटे बच्चों को अस्पताल लाने घर पहुंचाने के लिए चलती आयुष्मान जननी एक्सप्रेस। जगह जगह धूल फांक रही है, कबाड़ हो रही है, मानो राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के जनता के हित वाले दावों की हवा निकल चुकी है और जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार का दावा पंचर पड़ा है। आम आदमी से लिया गया पैसा बर्बाद हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के विश्वास पर धूल की मोटी चादर पड़ चुकी है। हेल्थ डिपार्टमेंट से उम्मीदों को जंग लगने लगी। बांसवाड़ा तक की तस्वीर कहती है कि राजस्थान के गांव की महिलाओं को इलाज के लिए जिन एम्बुलेंस से मुफ्त मिलाया जाता वो पूरी सेवा ठप है। इसीलिए जनता के हित में खबरदार करने आज तक संवाददाता शरद कुमार उतरते हैं।
19: 14 साल बाद अचानक से राजस्थान में 104 एम्बुलेंस की सेवाएं बंद हो गई है। ये वो एम्बुलेंस है जिसके जरिए गांव की महिलाएं और छोटे बच्चे अस्पताल तक लाई जाती थी और अस्पताल से घर पहुंचाई जाती थी। गांव वालों के लिए बड़ा संबल हुआ करता था, मगर सरकार टेंडर खत्म होने से पहले नया टेंडर करना भूल गई और अब हालत ये है कि पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से ये एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह से बंद पड़ी है। देख सकते हैं गाड़ियां किस तरह से कबाड़ हो रही हैं, मगर कब शुरू होगी और ग्रामीण इलाकों में कब महिलाओं और बच्चों को मदद मिलेगी इसके बारे में सरकार कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है।
0: 7 महीने यानी 10 दिसंबर 2025 से राजस्थान के जिलों में 600 एम्बुलेंस कबाड़ हो रही हैं।
20: खड़ी खड़ी खराब हो रही है, कई की फटके खुली है, पानी भी आता है बारिश का भी और गाड़ियां कंडम होने की स्थिति में ही है।
0: एक तरफ सरकारी एम्बुलेंस की बर्बादी, दूसरी तरफ चाकसू के सरकारी अस्पताल में मरीजों से प्राइवेट एम्बुलेंस वाले मोटा पैसा ले रहे हैं। यहाँ भर्ती गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए आई हैं, कई महिलाएं नसबंदी के लिए आई तो कुछ लोग बच्चों को लेकर आए। ये सब 4,000 से 5,000 रुपए खर्च करके सरकारी अस्पताल किसी तरह आ पाती हैं।
21: हमारा 4,000 गाड़ी का किराया लगा है सर, और हम गाड़ी करके फिर आए हैं।
19: आप कैसे लेकर आए हो?
22: गुरु गाड़ी में लेके आए।
23: 6 महीने से 104 बंद है लगातार, इससे तो मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। लोग अपने निजी साधनों से ही लेके आ रहे हैं और निजी साधनों से ही लेके जा रहे हैं वापस।
19: सरकार के पास पैसा नहीं है या फिर किसी ऐसी कंपनी को टेंडर देना चाहती है जिसके लिए टेंडर रोका गया है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करीब 1200 लोगों का परिवार भी जो पल रहा था इस एम्बुलेंस के जरिए वो भी बेरोजगार बैठे हुए हैं।
0: जो आए दिन स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। इनका कहना है कि 15 साल की नौकरी 104 एम्बुलेंस सेवा में करने के बाद अब दूसरा काम ये क्या करें?
24: फाइल कहाँ दबा के बैठे हैं यही समझ में नहीं आ रहा। हम तो इसके लिए खूब आंदोलन भी कर लिए, बार बार मिल भी लिए, लेकिन वो फाइल कहाँ दबी हुई है पता नहीं।
25: बेरोजगार हो गए सर, घर बैठे हुए हैं, तब से अब तक कोई भी पायलट उधर उधर नौकरी करने के नहीं गया है, इसके आश्रित हैं सब।
0: बीजेपी राज में अभी दिसंबर 2025 से टेंडर खत्म होने के बाद एम्बुलेंस ठप पड़ी है, 2 बार टेंडर करके कैंसिल किया जा रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह की हालत ये कि 26 मई को 8 से 10 दिन में सब सही होने की बात आज तक से कही, लेकिन 11 जून को जवाब देने से बचने लगे।
26: 104 एम्बुलेंस है वो 5 महीने से टेंडर नहीं हो पाया, इतने सब मंत्री होने के बाद में
27: फाइनल स्टेज, उसमें कई प्रॉब्लम्स है, कई अड़चने थी, लीगल अड़चने थी जो आपको आप समझ नहीं पा रहे हैं। 104 और 108 का दोनों का अभी अगले 8-10 दिन के अंदर हो जाएगा।
18: 104 की एम्बुलेंस जो डिलीवरी के लिए महिलाओं को लेके आती है सर, 104 एम्बुलेंस नहीं चल रही राजस्थान में,
0: तो क्या किसी की जवाबदेही नहीं है? जहां एम्बुलेंस खड़े खड़े नाश करा देंगे, भले जनता को अपनी जेब से हजारों रुपए देकर प्राइवेट एम्बुलेंस के भरोसे रहना पड़े, लेकिन सवाल है क्यों? शरद कुमार, जयपुर आज तक।
5: बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय जहाजों पर हमले के लिए ईरान की आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि भारतीय जहाज पर हमला स्वीकार नहीं है।
28: हिंदी का एक मुहावरा है, गुड़ खाना और गुलगुलों से परहेज करना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, लेकिन वो इसका श्रेय किसी भी सूरत में ईरान के सिर नहीं जाने देना चाहते। वो दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि ईरान झुक गया और उनकी बातों को, उनकी शर्तों को मानने पर मजबूर हो गया। लिहाजा ईरान की तरफ से प्रस्तावित समझौते को लेकर जो 14 बिंदु जारी किए गए उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान की खाड़ी के करीब भारतीय नाविकों वाले जिन जहाजों पर हमला हुआ था उसके आरोप का भी जो ठीकरा है वो सिरे से ईरान के सिर पर डाल दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये कहना अभी मुश्किल है कि ट्रंप जिस समझौते को इस सप्ताहांत तक होने की बात कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, क्या वो वाकई में हो पाएगा।
5: और अब आपको हम अपने ही देश के उन नागरिकों की जिंदगी की समस्या से खबरदार करते हैं जिन्हें आजादी के 8 दशक पूरे होने वाले हैं लेकिन अब तक साफ पानी का अधिकार तक नहीं मिल पाया है, जिनके लिए साफ पानी तक पाना दूर की कौड़ी है। छत्तीसगढ़ के उन्हीं आम लोगों को पानी का हक दिलाने के लिए खबरदार करना है।
1: बिस्तर पर लेटकर या सोफे पर बैठे बैठे कभी मोबाइल पर रील स्क्रॉल करते होंगे तो जंगल, झरना, पहाड़ी रास्ता, ऊंचे पेड़ सब कुछ देखकर लगता होगा कि यार क्या जिंदगी है। लेकिन यहाँ रहने वालों की जिंदगी नक्सल मुक्ति के बाद भी क्यों एक जंग लड़ने जैसी है, यही आज आप देख सकें, जान सकें। इसलिए आज तक संवाददाता सुमी केवल पटेल कांकेर से बालोद तक उस हिस्से में पहुंची हैं जहां साफ पानी का विकास अब भी बहुत दूर है। कांकेर के मासपुर में पहाड़ी रास्तों से निकलकर महिलाएं जहां से पानी भरती हैं। एक बार आप उस जगह को जाकर देखिए और बताइए कि क्या आप ये पानी पीना तो छोड़िए छूना पसंद करेंगे।
2: जब हमें पहली बार यहाँ के बारे में बताया गया कि भारत में ऐसा भी गांव है जहाँ के 100 लोग एक नाले पर आश्रित है पानी को लेकर, और वो भी बिल्कुल 50 साल से, क्योंकि यहाँ पे मसपुर हम आ पहुंचे हैं अंतागढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर, यहाँ पे 20 घर हैं और कुछ 100 लोग यहाँ पर रहते हैं और इनके लिए पानी का स्रोत 50 सालों से ये एक नाला है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ऐसी भी कोई जगह है भारत में, क्योंकि हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 3rd largest economy है, 5th largest economy है, लेकिन जब ऐसे किसी जगहों पर आए तो ऐसे सारे दावे धरे के धरे रह जाते हैं।
3: इस पानी को गर्म करके पिलाते हैं बच्चे लोगों को, फिर गर्म करके पिलाने से भी सर्दी खांसी ही पकड़ती है। अभी सामने बरसात है, अब बरसात आने के समय में एकदम गंदा पानी होता है, इसको ऐसे मिट्टी डालते हैं इधर से और इसको ऐसे घमेला वगैरह में फेंकते हैं, उसके बाद इसको ले जाते हैं।
1: पानी का रंग बताता है, इसे साफ नहीं कहा जा सकता। पानी जहां से लिया जा रहा है इसे देखकर आप सोच नहीं सकते कि यह पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता होगा, लेकिन जहां पानी ही ना हो वहां साफ और गंदा आम आदमी नहीं देख पाता। चट्टानों के बीच से निकला पानी जिसे नहीं पता और कितने जानवर भी पीते होंगे, इंसान भी पीने को मजबूर है।
2: ये पानी एक तरफ का, ये जो नाला है एक तरफ का पानी, इसमें बहुत ही ज्यादा गंदा है जिसमें मेंढक तो बहुत सारे हैं, और यही पानी आगे चल के ऐसे थोड़ा सा साफ हुआ है और ये वहां का जो पानी है वो भी मटमैला ही लग रहा है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हो। बीमार हमेशा ही रहते हो तो बता ही रहे, बीमार रहते ही हो आप।
4: जी जी जी बिल्कुल।
2: ये कब तक चलेगा ऐसे, क्या लग रहा है?
4: या तो हम लोग विगत 30-35 सालों से यहाँ बोर के लिए आवेदन कर चुके हैं, लेकिन हमेशा जाते हैं अशासन से ही हम लोगों को दखल देते हैं। पता नहीं कब तक यहाँ बोर खनन होगा, या तो कहा जाए आदिम काल के आदिमानव की तरह ही हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं।
1: बुजुर्ग महिला बताती है कि 50-55 साल से यही पानी का स्रोत है, तो साफ पानी क्या नहीं मिल सकता? प्रशासन से आवेदन होता रहा है, अभी तक फिलहाल आश्वासन मिला है।
6: कुछ गांवों पे अभी भी मांग आ रही थी, जो अभी एक सूचना मिली उसके तारतम्य में आगामी 2-4 दिन के भीतर सैंक्शन होते हुए बारिश के पहले यानी 15 जून के पहले किसी भी हालत में वो गांव में भी पानी पीने की व्यवस्था की जाएगी।
1: आज तक की मांग है कि तुरंत अगर स्थायी समाधान नहीं हो सकता तो कम से कम अस्थायी साफ पानी का साधन तो दिया जाए, ताकि बच्चे, बूढ़े, महिला, हर नागरिक को कम से कम साफ पानी तो मिले। लेकिन ये समस्या केवल कांकेर की नहीं है, आपको हम बालोद लेकर चलते हैं। यहाँ का दल्ली राजहरा गांव, बालोद छत्तीसगढ़ की आयरन कैपिटल कहा जाता है, यहाँ से लोहा निकलता है। वहाँ पर लोगों को पानी पीने के लिए लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, जहाँ झरिया यानी पानी के छोटे से स्रोत के सहारे जिंदगी चलती है।
7: देख सकते हैं ये झरन दल्ली में जो झर रहे पानी है, इन्हीं पानी का इस्तेमाल जो है यहाँ के जो नगरवासी हैं पीने और खाने बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि नगर में पानी की समस्या है, पेयजल के लिए नल में पर्याप्त पानी नहीं आ रही है, इसलिए झरन पानी का ही इस्तेमाल नहाने से लेकर पीने और खाना बनाने में कर रहे हैं। हमारे साथ माता राम है जो यहाँ पानी लेने आई हुई है, किस तरह की समस्या है हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। ये पानी कहाँ ले जा रहा हो आप, क्यों ले जा रहा हो?
8: पीने खाने के लिए, नल खाना बनाने के लिए।
7: नल की क्या स्थिति है?
8: नल से पानी नहीं आ रहा है।
1: ये दो तस्वीरें हमारे ही देश की हैं। ये तस्वीर जब तक नहीं बदलेगी तब तक असली विकसित भारत का सपना नहीं पूरा होगा।
5: खबरदार में वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: ये मजबूर हैं पर आप नहीं। B-Tex मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
4: अब वही B-Tex मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
5: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
6: AU सोच बदलो और बैंक भी।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेट्स की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
9: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स,
8: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
10: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
11: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
10: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
12: आगे आगे,
13: अरे उधर
12: उधर गिर।
13: करेक्ट करेक्ट,
14: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, NTO को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
20: मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: ममता बनर्जी से टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये कहना भले अभी संभव न हो, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। लोकसभा के 19 तृणमूल सांसदों के दस्तखत वाली 18 मई की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें वो अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता की मांग रख रहे हैं। इस बागी गुट की अगुवा है काकोली घोष दस्तीदार, जिनके पास लोकसभा में टीएमसी की चीफ व्हिप का जिम्मा था, लेकिन दावा हुआ है काकोली के बागी तेवरों के बीच उन्हें ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप पद से हटा दिया। उधर ममता बनर्जी के कैंप में मजबूती से जमे हुए सांसद कीर्ति आजाद अपनी सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर खुद एयरगन लेकर बैठे दिखे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि टीएमसी के सांसदों को पैसे से खरीदा जा रहा है।
1: टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
2: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा उंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। तो जो एमपीओ को डराया वो डर गए, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था।
0: तृणमूल में हो रही उठापटक के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में बागी सांसदों के साथ बैठक की संभावना बन रही है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बागी तृणमूल सांसदों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के मौजूद होने का दावा हुआ था। उधर बागी टीएमसी सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। बागी गुट में शामिल सांसद जगदीश बसुनिया ने भी अब खुलकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है।
3: ये जो गुस्सा, ये बहुत दिन पहले का गुस्सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुचबिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हो।
0: वैसे जब ममता बनर्जी के बाकी पार्टी में अहमियत न मिलने को लेकर एक एक कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तब वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने अभिषेक का बचाव किया है।
4: पार्टी का हालत खराब है, ये मैं मानता हूँ। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। ये लोग तो इनका इतना नाराजगी कभी नहीं बताया, मैं तो कभी नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ इनका दल बदलना मौका परस्त है।
0: वैसे अभिषेक बनर्जी जब राजनीतिक रूप से निशाने पर हैं, तब विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में भी सीआईडी का शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मौजूदा संकट से पार पाना अभी आसान नहीं लगता है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ईरान में ईएमआई पर राशन खरीदने का पूरा सच बताएंगे। हमने ईरान में युद्ध की वजह से किश्तों में मिल रहे राशन की खबर दिखाई थी। न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत में ईरान के दूतावास ने इस रिपोर्ट को खारिज किया, कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले ईरानी मूल के पत्रकार से बात की है, उनसे पूछा है कि इस खबर का सोर्स क्या है। आज हम आपको इस खबर की पूरी सच्चाई दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का संपूर्ण सीज फायर हो गया है या एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ खेल रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण बमबारी की जाएगी। उनका कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत हाई लेवल तक पहुंच गई है, उनकी शर्तों को मंजूरी मिल गई है। आखिर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की स्थिति उनकी खुद की वजह से हो रही है या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की वजह से। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान में ईएमआई पर राशन खरीदने का पूरा सच क्या है। दो दिन पहले 10 जून को हमने इसी शो में आपको ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये रिपोर्ट, ये दावा ईरान इंटरनेशनल का है जो ये दावा करती है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से लोग अब राशन और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीजें इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान है जो विशेष रूप से ईरान की खबरों को दुनिया तक पहुंचाता है और इसका मुख्यालय लंदन में है। दुनिया में जितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान हैं वो कई बार ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट को प्रसारित कर चुके हैं, और इनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्डियन का नाम शामिल है। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने ईरान की खबरों के लिए बहुत बार ईरान इंटरनेशनल की खबरों को प्रकाशित किया है, और इससे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया का मीडिया ईरान इंटरनेशनल की खबरों को कवर करता आया है। अब हमने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 जून को ईरान इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट दिखाई और ये बताया था कि ये इंटरनेशनल ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और ये दिखाया था कि ईरान में लोग अब कीमतों में वृद्धि के कारण राशन भी, सोचिए खाने पीने की चीज भी ईएमआई लोन पर खरीद रहे हैं और वहां के दुकानदार खुद इसकी सुविधा दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहां के दुकानदार ये सुविधा दे रहे हैं कि आप लोन पर, ईएमआई पर ये राशन खरीद सकते हैं, लेकिन भारत में ईरान के दूतावास ने इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया और एक्स पर ये लिखा कि हमने गलत खबर दिखाई है। और ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुई है। इसी में आगे ये भी लिखा गया कि हमने जिस ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर प्रसारित की है वो ईरान इंटरनेशनल ईरान विरोधी है और उसकी किसी भी खबर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यहां दो बातें समझनी जरूरी है। पहली बात यह कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा था कि ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हुई है। हमने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बताया था कि आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन रिकॉर्ड कीमतों के कारण लोगों के लिए राशन और घरेलू चीजों को खरीदना मुश्किल हो गया है और इसके कारण लोग ईएमआई पर राशन खरीद रहे हैं। सामान की आपूर्ति नहीं है, यह तो विषय ही नहीं था। दूसरी बात, हमने खुद से कोई दावा नहीं किया था। हमने ईरान इंटरनेशनल को कोट करते हुए पूरी खबर बताई थी जिसे भारत में ईरान का दूतावास गलत बता रहा है। अब ईरान का दूतावास कह सकता है कि वो ईरान इंटरनेशनल पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बात यह है कि यही रिपोर्ट दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम खुद ये जानना चाहते थे कि अगर ईरान इस खबर को खारिज कर रहा है तो फिर ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर कैसे प्रकाशित की। इसके लिए हमने पहले यह देखा कि ईरान इंटरनेशनल में यह रिपोर्ट किस पत्रकार के हवाले से लिखी गई है, और जब हमने इसके बारे में पता लगाया तो हमारे सामने जो नाम आया वो था माजियार बहारी। माजियार बहारी ईरानी मूल के एक पत्रकार हैं जो इस वक्त लंदन में रहते हैं और ईरान वायर नाम की एक डिजिटल वेबसाइट वो चलाते हैं। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में इनकी कई रिपोर्ट्स, कई लेख प्रकाशित हो चुके हैं जिन्हें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि माजियार बहारी कोई एक पत्रकार नहीं है और पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हें जानता है। ये ऐसे कोई पत्रकार नहीं है जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं और अचानक से उन्होंने ये लिख दिया। उनकी खबरों को विश्वसनीयता के साथ माना जाता है, लेकिन यहां ईरान का दावा है कि इस मामले में उन्होंने गलत रिपोर्ट प्रकाशित की और इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये ईरान ने दावा कर दिया। अब इसका पूरा सच जानने के लिए हमने मज़ियार बहारी से संपर्क किया, उनसे ये पूछा कि उनकी इस खबर का सोर्स क्या है। भाई अगर मज़ियार बहारी ने इतनी बड़ी बात कही है तो फिर उनका सोर्स क्या है। इसके बाद उन्होंने हमें एक वेबसाइट का नाम बताया जो ईरान की राजधानी तेहरान में मीट, चिकन, मछली, अंडे जैसे उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करती है। जैसे हमारे देश में लोग अलग अलग एप्स से ऑनलाइन राशन का सामान खरीदते हैं, वैसे ही मिस्टर गजाब नाम के ऑनलाइन पोर्टल से तेहरान के लोग अपने सामान खरीदते हैं, मीट से जुड़े उत्पाद खरीदते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पत्रकार मज़ियार बहारी हमें इस वेबसाइट की पूरी डिटेल भेजते हैं जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अब इस ऑनलाइन पोर्टल पर तारा क्रेडिट पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है जो उधार देने वाला एक मोबाइल ऐप है। आप इस ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं जिसमें सबसे ऊपर फारसी भाषा में यह लिखा है कि तारा की इस भुगतान सुविधा सक्रिय हो गई है। फिर इसके नीचे लिखा है तारा क्रेडिट सुविधा और फिर बाद में यह लिखा है कि अब आप अपनी जरूरी वस्तुओं को तारा क्रेडिट के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तारा का मतलब उस कंपनी से है जो लोगों को राशन, खाने पीने की चीजें, दूसरा सामान ऑनलाइन खरीदने के लिए लोन देती है। इसे क्रेडिट शॉपिंग भी कहा जाता है, यानी आज इस कंपनी से आप पैसे लेकर, लोन लेकर चिकन खरीदो और फिर आसान किस्तों पर आप उनका पैसा भरते रहो। ईरान में पिछले कुछ ही वक्त में तारा के 6,93,000 यूजर्स हो गए हैं और ये जानकारी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इसी में यह भी लिखा है कि इस कंपनी के पूरे ईरान में 16,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, जिनसे यह साबित होता है कि ईरान में यह कंपनी लोगों को अलग अलग जो सामान है जो वो खरीदना चाहते हैं उसके लिए, चाहे चिकन हो, अंडा हो, तक ईएमआई पर खरीदने की सुविधा दे रही है। और मिस्टर गसाब नाम के जिस ऐप पर लोग चिकन और अंडे ईएमआई पर खरीद रहे हैं उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब तारा से ईएमआई पर सामान खरीदने की सेवा शुरू हो गई है। अब इससे ये पता चलता है कि ईरान इंटरनेशनल में जो खबर छपी और जिस पत्रकार के हवाले से ये खबर छापी गई उनके पास अपना दावा साबित करने के लिए सबूत है। और ऐसे में इस बात का सवाल उठता ही नहीं कि हमने कोई गलत खबर चलाई, हमने वही बताया जो ईरान इंटरनेशनल में लिखा गया है और हमने अपना सोर्स भी कोट किया। जिस पत्रकार ने ये दावा किया वो इसका सबूत भी दे रहे हैं और मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया है जिसमें वो शब्दशः ये कहते हैं कि उनकी खबर पूरी तरह सही है, ईरान की सरकार का ये दावा गलत है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से ऐसा कोई संकट नहीं है। देखिए, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्स जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। मज़ियार बहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि ईरान वायर के चीफ हैं। क्योंकि आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल पाते हैं और समझते हैं तो मैं अपने दर्शकों के लिए हिंदी में पूछकर आपसे अंग्रेजी में पूछूंगी, आप अपनी स्टोरी पर क्या आज भी कायम है? आप अपनी स्टोरी को सही कैसे साबित करेंगे? मिस्टर बहारी, हाउ विल यू प्रूव दैट योर स्टोरी इन विच यू क्लेम दैट पीपल इन Iran are now buying basic goods, grocery on EMI, correct and true? What is the proof you have on basis of which you can say that your story stands correct?
1: Well, all our stories are sourced by at least two people. We have two people as sources of the articles. And for these specific articles about installments, we have at least, for the recent one that we published yesterday, and it will be in English today, we've had five different sources. And also in the article that we're going to publish, we published yesterday in Persian, it will be in English today. It will be, we have the government sources as well in the article itself.
0: Now, my question to you is, which exact grocery shop is asking for EMI payments? Who is, which are these shops which are actually lending to people and which are saying that you can buy things from us, but you'll have to, and you can take loan and then pay us back in EMIs?
1: Yes, in the article today, we have a screenshot from a website called Mr. Ghassab, which means Mr. Butcher. And in that post, Mr. Ghassab says that people can pay for their meat products and other needs through Tara, which is an Iranian version of PayPal. in installments. But I think the easiest thing to do for the Iranian government is to allow international journalists to visit Iran and have no restrictions and be able to talk to people. At the moment, there is an internet shutdown. Very few people have access to the internet. And also when foreign journalists go to Iran, they are under constant monitoring and cannot talk to ordinary people. So if they allow people, journalists, to talk to ordinary people and ordinary shopkeepers, I'm sure our stories will be verified. So the ball is really in the court of the Iranian government, because we are very comfortable with our reporting and we are very comfortable with our sources. Of course, the conversations between a grocery shopkeeper and the people cannot be recorded all the time. And also, the Iranian government has criminalized any kind of reporting by citizen journalists. So it's very, I think, audacious for the Iranian government to have the temerity to say that you have to prove that you're right. They can just easily just lift the ban for journalists and they can easily prove it.
0: No, but you are saying that journalists can't go into Iran and find out. We want to show our viewers also a report. हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई वहां पर है. एंड मिस्टर बिहारी, एक्चुअली टू ऑफ आर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टुडे ग्रुप वेंट इन टू ईरान, कवर्ड द स्टोरी. सो हाउ आर यू क्लेमिंग दैट जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड इन टू ईरान? एंड हाउ विल यू आंसर द ईरानियन एम्बेसी, which is now saying, which has countered your story and thereby said that you are spreading a false narrative and propaganda against Iran, and they claim that you are not the real voice of Iran?
1: Well, you know, I don't know what Iran International does. I'm not part of Iran International. We are Iran Wire and we are a different operation. But also in Persian, we have a saying that you said something, I believe you. You insisted, I doubted it, and then you swore by it, I knew that you were lying. So the very fact that the Iranian government is going out of its way, attacking journalists in a democracy like India for publishing the truth, shows that there is something going on. As I mentioned before, the foreign journalists are allowed in Iran, but they are under constant control. For example, when Liz Doucette goes to Iran or someone from Channel 4 goes to Iran, they are not allowed to roam freely around the country. They always have to have a translator or quote-unquote minder with them. And that person has to always report to the Ministry of Intelligence and Ministry of Culture and Islamic Guidance. So they are not as free. Yes, there are some journalists allowed into Iran, but they do not have the freedom to report whatever they want.
0: Okay. नहीं, आज देखिए उनका क्या है, उनका क्या क्लेम है. वो ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा है टू डिफेम ईरान. आपका ये नैरेटिव है, प्रोपोगेंडा है ईरान को बदनाम करने के लिए. इसी वजह से आपने ईरान आपने ईरान इंटरनेशनल में ये रिपोर्ट दर्ज की है.
1: Well, the thing is that we do not work in vacuum. We work with Iranian people. We talk to Iranian people inside the country. As an organization, Iran Wire has trained more than 6,000 citizen journalists in the past 10 years. So we have a wide network of citizen journalists in all different parts of the country, in all 31 provinces of Iran. And we get the information from citizen journalists through different ways. And it's very difficult to

शब्दशः ये लिखा था कि ईरानी मुद्रा रियाल लगातार दबाव में है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान के केंद्रीय बैंक के अनुसार मई में मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि साल दर साल महंगाई पर महंगाई दर जो है वो 77% तक पहुंच गई। नकदी यानी कैश की कमी के कारण ज्यादा परिवारों ने उधार यानी क्रेडिट का सहारा लेना शुरू किया। और जब आप लोन देते हैं तो आपको किश्तों में उसका पैसा जमा करना ही होता है। जरूरी सामानों के लिए, सेवाओं के लिए, जैसे टैक्सी की सवारी, किताबों का भुगतान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान्स यानी ईएमआई का सहारा लिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि ये सारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई दिनों से प्रकाशित हो रही है, लेकिन जब हमने इसे दिखाया तो ईरान के दूतावास ने खारिज किया, जबकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि ईरान में कीमतों में वृद्धि से बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही क्यों, ईरान की इस्लामिक सरकार खुद कह रही है। इस्लामिक सरकार खुद जो आंकड़े जारी करती है उसमें भयंकर आर्थिक संकट नजर आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने खुद ये बताया है कि मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 77.2% पर पहुंच गया, यानी जो खाने पीने का सामान, जरूरी चीजें हैं, उनकी महंगाई पिछले साल के मई के महीने के मुकाबले 77.2% बढ़ गई। और हमने भी यही आंकड़े अपने शो में आपको दिखाए थे। ईरान का सेंट्रल बैंक यह भी कहता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ अप्रैल महीने के मुकाबले 8.5% बढ़ा है, जिससे दवाइयां, टैक्सी किराया, तंबाकू, कम्युनिकेशन फीस यानी इंटरनेट और मोबाइल फोन की सेवाएं 113.8% महंगी हो गई हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ना ही ये आंकड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हैं, ये ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़े हैं। ईरान का एक निजी थिंक टैंक बगदाद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ईरान का मौजूदा आर्थिक संकट दूसरे विश्व युद्ध से भी भयानक है, जिसका जिक्र ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़ों में मिलता है। 2015 में अमेरिका का एक डॉलर ईरान के 32,000 रियाल के बराबर था, लेकिन आज अमेरिका का एक डॉलर ईरान के 17,00,000 रियाल के बराबर हो गया है। और फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये आंकड़े ईरान के, फिर से सुनिए, ईरान के सेंट्रल बैंक ने दिए हैं, जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। ईरान के सेंट्रल बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो खुद ये लिखती है कि 20 अप्रैल से 20 मई के बीच ईरान में कुल महंगाई दर 53.9% हुई, जो युद्ध शुरू होने से पहले 46% थी। यानी ईरान सरकार के अपने आंकड़े, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो सच की कसौटी पर एकदम खरी उतरती है। अगर ईरान दूतावास को इस रिपोर्ट को खारिज करना है तो उन्हें जाकर ईरान इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर हमला करना चाहिए था, लेकिन जब ईरान के दूतावास ने इसे खारिज किया तो हमारे देश का एक वर्ग सच्चाई जानने के बजाय अपने ही देश पर सवाल उठाने लगा। जबकि ट्रोलिंग करने के बजाय ये लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो इन्हें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का यह बयान एसोसिएटेड प्रेस पर मिल जाता, जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध के कारण महंगाई से लोगों को परेशानी होगी। फिर उस परेशानी का जिक्र करते ही इतना गुस्सा क्यों? यही नहीं, ईरान के मशहूर अर्थशास्त्री सईद लेलाज कई जगह ये कह चुके हैं कि ईरान में सालाना महंगाई दर 80% पहुंच सकती है, जबकि ईरान के लोग 25% से ऊपर की महंगाई दर का बोझ सह ही नहीं सकते। ईरान के दूतावास ने यह भी लिखा कि उसे ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है, और भारतीय मीडिया को ईरान के विश्वस्त चैनलों से ऐसी खबरों का सत्यापन करना चाहिए। हमने सोचा कि हम ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए हमने तेहरान टाइम्स के पिछले 3 महीनों के लेख सारे के सारे खंगाले, जिस पर ईरान की सरकार पूरा भरोसा करती है। तेहरान टाइम्स की शुरुआत साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी, जो वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट मीडिया संस्थान है। जब आप तेहरान टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स ने 27 फरवरी के बाद, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, ईरान में रोजमर्रा की चीजों की बढ़ी कीमतों पर कोई लेख ही नहीं लिखी है। जो बात वहां की सेंट्रल बैंक भी बता रहा है कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं या इतना महंगाई दर में इजाफा हुआ है, वो खबर भी एक बार भी तेहरान टाइम्स में नहीं है। और वो इस आखिरी खबर जो है इस पर 27 फरवरी को लिखी गई थी, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ। 27 फरवरी को तेहरान टाइम्स ने लिखा था कि ईरान में महंगाई दर फरवरी महीने में 46.3% हो गई है, जिससे आर्थिक संकट गहरा हो गया है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स में इस पर हर महीने एक लेख लिखा जाता था,

0: लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद तेहरान टाइम्स ने इस पर लेख छापना बंद कर दिया। जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू हुआ तब उसके बाद पिछले महीने हमारी सहयोगी गीता मोहन खुद ईरान गई थी। वहां ईरान के लोगों ने उन्हें यही बताया था कि वहां कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, उनके लिए जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है और हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट पूरा देश देखे, खुद तय करे कि क्या ईरान के लोग भी झूठी खबर फैला रहे हैं।
1: ये है ग्रैंड बाजार, 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है, जहां पे सब कुछ बसता है या फिर या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं वो भी इसी जगह से शुरू होता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस पूरे बाजार को बनाया गया है। एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है, कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाजार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का। हाउ मच इज द गोजे सब्ज़ फॉर?
2: 550 फॉर 1 केजी।
1: 550 इज व्हाट? तुमन
2: 1000 tuman, yeah.
1: And how much in real?
2: Okay, this is 1 kg.
1: How much in real?
2: In real, added 10.
1: Add one more zero. So how much is it?
2: $4.
1: $4. So $4 is 550,000, right? Agar sahab, $4 is 500 and?
3: 550 tuman.
1: 550 in real.
3: 5 million.
1: 5 million real translates to about $4-5 is what this is, what the cost of the green plums are. Seeing the currency that I'm going to show you, this is 2 million real. 2 million real translates to how much, Aga sahab?
4: $1.5
1: $1.5, which would mean about 100 or 150 rupees. That's $2 million. खूबसूरती की बात करें तो तेहरान की का कोई जवाब नहीं, यहाँ के लोग, यहाँ की जगह, लेकिन यहाँ के लोग भी उतने ही खूबसूरत हैं। जहाँ एक जमाना था जब यहाँ पे बहुत पर्दा होता था, अब आपको दिखेंगे अलग अलग किस्म के लोग, कुछ जो करते हैं, कुछ जो नहीं भी करते हैं, और वो रिलैक्सेशन आया है बड़े ही जद्दोजहद के साथ। वॉट इज इंटरेस्टिंग यहाँ पर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो आप सामान यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक इटालियन ब्रांड है, विदेलमी, राइट? दिस इज विदेलमी, इटालियन ब्रांड है जो लाइसेंस के साथ ईरान में बेच रहे हैं। हमने हर जगह जाके देखा, कई सारे मॉल्स में भी देखा, इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे आराम से अपने लाइसेंस के साथ बेच रहे हैं। तो सैंक्शंस का जो मकसद है वो क्या रहा? जब सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, जब हम यहाँ पे फरवरी में आए थे तो हमने आपको दिखाया था और फिर से दिखा रहे हैं कि कैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स कुछ नाम बदलकर, कुछ नाम के साथ यहाँ पर काम करते हैं, यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट है ईरान, बहुत लोग हैं जो एटलीस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत फोकस करते हैं, लेकिन हर ब्रांड आपको ईरान में नजर आएगा।
0: हम चाहते हैं कि आप हमारे ही नहीं बल्कि कतर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान अल जजीरा की भी ये रिपोर्ट देखें। आपने देखा होगा अल जजीरा की रिपोर्ट्स को हमारे देश में काफी लोग मानते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो देखिए 19 मई को प्रकाशित हुई थी ये रिपोर्ट और इसमें अल जजीरा में यही बताया गया था कि ईरान में आर्थिक संकट गहरा चुका है, लोग अंडे खरीदने से पहले भी कई बार सोच रहे हैं। अल जजीरा ने 5 जून को एक और रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसका शीर्षक था रेड मीट इज अ ड्रीम, लाल मांस खाना एक सपना हो चुका है। ईरान इन्फ्लेशन हिट्स हाईएस्ट लेवल सिंस वर्ल्ड वॉर टू, यानी ईरान में महंगाई दर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे उच्चतम स्तर पर है। तो अब ये तो अलजजीरा की रिपोर्ट थी। रेडमीट खरीदना अब ईरान के लोगों के लिए सपना है, वो कह रहे हैं। इसके आगे कह रहे हैं कि ईरान में महंगाई दर दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा है। इन सारे तथ्यों के बाद सच और झूठ को आप ब्लैक और व्हाइट में समझ सकते हैं, और इसके बाद हमें आपसे और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
5: Every aisle, every shelf, every price tag is a reminder of how deeply the war is affecting daily life in Iran. Across Tehran, the price of basic goods is rising so fast that many shoppers say they can no longer keep up.
6: Prices are increasing every second, and people can barely afford anything. I can no longer buy many of the items I purchased just a month ago.
0: खैर आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले होने वाले बहुत बड़ा हमले को फिर से आखिर क्यों टाल दिया, और क्या वाकई अब ये युद्ध खत्म हो गया है। कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिकी सेना खार्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेगी, ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी जाएगी। लेकिन बयान के कुछ घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत हाई लेवल तक पहुंच गई है, उनकी शर्तों को मंजूरी भी मिल गई है। अब बहुत लोग इसे विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया शक करने लगी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक दिन क्या कहते हैं और फिर अगले दिन क्या कहते हैं, इसका कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि बातचीत और अंतिम बिंदुओं पर सभी पक्षों ने मंजूरी दे दी है। ट्रंप की ओर से दावा किया गया है कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की डील अगले कुछ दिनों में हो जाएगी। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि पीस डील पर हस्ताक्षर के लिए जेरी वैंस इस हफ्ते के अंत तक यूरोप जाएंगे, यानी ट्रंप के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में ईरान के साथ युद्ध भी खत्म हो जाएगा और अमेरिका के साथ उसकी डील भी हो जाएगी।
7: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it.
0: ट्रंप के दावों की माने तो ईरान इस बात पर राजी है कि वो अब कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। ट्रंप का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई भी इस बात पर राजी हो गए हैं, और उन्होंने ईरान के वरिष्ठ नेताओं को अमेरिका से डील करने की अनुमति दी है। अगर ऐसा होता है तो मुमकिन है जल्द ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी खत्म हो जाएगी और वहां पर युद्ध से पहले वाली स्थिति लौट जाए।
8: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart.
9: And it'll be soon, maybe this weekend.
8: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
9: I understand the answer is yes.
8: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
9: Yes, that's true. That's and part of the deal.
0: डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के बीच ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज का कहना है कि उनके पास ईरान अमेरिका पीस डील का 14 पॉइंट वाला मेमोरेंडम ड्राफ्ट है, और इसमें सारे पॉइंट हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। इसमें कुछ खास पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर असली विवाद अभी तक है, मामला फंसा है। अब कहा जा रहा है कि उन पर भी फाइनल बात हो गई है। जैसे इस ड्राफ्ट में सभी फ्रंट पर लिखा है कि सभी फ्रंट पर वॉर रोकने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी है। अब लेबनान पर तो इसराइल हमले लगातार कर रहा है। इन हमलों को लेकर ईरान नाराज था, उसे अमेरिका से बातचीत भी बंद कर दी थी। इसके अलावा इसमें शर्त है कि अमेरिका आगे से कभी भी ईरान के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। दरअसल ईरान सरकार अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में अमेरिका की ओर से बयानबाजियां नहीं चाहता है। युद्ध से पहले जब ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। ड्राफ्ट के एक पॉइंट में अगले 30 दिनों में दोनों देशों की नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने का वादा किया गया। ईरान ने शर्त रखी कि उसके आसपास के क्षेत्र से अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से हटा दी जाएंगी और ईरान के कच्चे तेल पर लगा प्रतिबंध भी हटेगा। इसके अलावा इस पर सहमति बनी कि एनपीटी के तहत ईरान अब से कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने की जिद नहीं करेगा। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरह कोई मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन मेहर न्यूज का दावा है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो सारे मुद्दे उनके द्वारा एक्सेस किए गए ड्राफ्ट में शामिल है। मेहर न्यूज के दावों से अलग ईरान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत की बात तो कबूल की है लेकिन किसी तरह के आखिरी नतीजे तक पहुंचने से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेगई ने कहा है कि जो भी शर्तें सामने आई उन पर ईरान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी सोच विचार चल रहा है, नतीजे पर नहीं पहुंचे।
10: اصل موضوع ما به مرز این که به نتیجه نهایی برسیم برحال فرایند تصمیم گیری در کشور ما خیلی روشن هست. ما باید مراجع زیربط نظام در مورد جز جز متن و جز جز هر گونه تفاهمی به جمع‌بندی برسن. به مرز این که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم حتماً
0: कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में नवंबर से पहले इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक दिन पहले बड़े हमलों की चेतावनी देते हैं पर जैसे ही उन्हें लगता है कि बातचीत से मामला तुरंत बन सकता है फैसला पलट देते हैं। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 35 सेनेट सदस्य चुने जाने हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ईरान के साथ डील करके अपनी पार्टी पर घरेलू दबाव को कम करना चाहते हैं ताकि संसद में उनकी स्थिति मजबूत रहे, भविष्य में उनकी नीतियों को लागू करने में कोई समस्या ना हो। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में एक माहौल बना हुआ है क्योंकि युद्ध का आर्थिक असर महसूस किया गया है। ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे युद्ध भी खत्म हो जाए, उनकी छवि को भी नुकसान ना। पाकिस्तान से बड़ा कपटी देश कोई नहीं, जेब में रेडीमेड आतंकी रखकर खुद को शांति का दूत बताने वाला देश और भारत के उभरते कश्मीर पर छाती पीटकर अपने कब्जे वाले कश्मीर में मासूमों का खून बहाता पाकिस्तान। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना सरकार के द्वारा पीओके के आम नागरिकों का नरसंहार हो रहा है। अब स्थिति यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं।
11: हम क्या

0: आजकल पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। शाहबाज की सरकार मुनीर की सेना के जुल्मों से परेशान हो चुके हैं। पीओके में मूलभूत जरूरतों के लोग सड़कों के लिए लोग सड़कों पर हैं। आसिम मुनीर के निर्देश पर बिजली, पानी, रोटी संकट पैदा है। और ऐसे में जो भी मूलभूत सुविधाओं की मांग पीओके में कर रहा है, उनका खून बहाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा मासूम लोगों को मुनीर की सेना गोलियों से छलनी कर चुकी है। ये सिलसिला लगातार जारी है। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही, जब भी वो इसकी मांग करते हैं गोलियां मिलती हैं, वो खुद कह रहे हैं। कल पाकिस्तानी सेना के जवानों ने रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इस फायरिंग में 16 लोग मारे गए, 37 घायल हो गए और वो भी गंभीर रूप से। पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफल से ये फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग, और इस वजह से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। ईदगाह ग्राउंड पर शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तानी सरकार सेना विरोधी प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को भगाना शुरू किया। जब प्रदर्शनकारी हटने से इनकार करने लगे तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक रावलकोट के इस ईदगाह मैदान और उसके आसपास 60 से 70 हजार के करीब प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ये लोग पिछले प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे थे। 8 जून से ही पीओके में पाकिस्तान सरकार सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, आम लोग निकले हैं। पाकिस्तानी सेना रह रहकर उनकी जान ले रही है। पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में अब तक 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हैं। पीओके के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार से आटा, चावल, बिजली जैसे मूलभूत जरूरतों की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन लाठी, डंडे और अब तो गोलियां मिल रही हैं।
1: ये लोग अपने हकूक मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इनको आपने दिया क्या है। देखें, कश्मीर को तो एक मिसाली खित्ता बनाया जाना चाहिए था ना, कि आपका मुकदमा था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वो आजाद कश्मीर को देखकर बनेगा। भाई, अगर आप आजाद कश्मीर को नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनेगा? आजाद कश्मीर में अपने ले जाके आप 8-9 वजीर बना लेते हैं, बिठा देते हैं पाकिस्तान से, उनके जरिए से आप पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, उनके मफादात के ऊपर चोट पहुंचाते हैं।
0: प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटनाओं ने पीओके में आग भड़का दी है। कई क्षेत्रों में बाजार बंद रखा गया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दावा है कि वहां जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, लोग नारा लगा रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी सेना द्वारा फायरिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। आज जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक भूकंप से गुजर रही है। कोलकाता से दिल्ली तक ममता बनर्जी के सियासी साम्राज्य की चूल्हे हिल रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर को भेजे गए उस गोपनीय पत्र की कॉपी सामने आई जिसमें बागी सांसदों ने हस्ताक्षर के रूप में अपनी सहमति दर्ज कराई थी। 18 मई की तारीख वाले इस पत्र पर 5 या 10 नहीं बल्कि टीएमसी के 19 सांसदों के दस्तखत अंकित हैं। 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से गुहार लगाई है कि उन्हें संसद में एक अलग संसदीय गुट यानी सेपरेट पार्लियामेंट्री फैक्शन के रूप में मान्यता दी जाए। बागियों का दावा है कि उनके पास पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन है, इसलिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। इस लिस्ट में जो नाम है उन्होंने सबको चौंका दिया। काकुली घोष दस्तीदार पहले से थी, शताब्दी रॉय, प्रसून बंदोपाध्याय जैसे पुराने चेहरों से लेकर यूसुफ पठान, जून मालिया, रचना बनर्जी, सायोनी घोष जैसे नाम भी इस बागी गुट का हिस्सा है। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे लेकर सब हैरान है और वो नाम है सायोनी घोष। सायोनी घोष जो कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी, युवा विंग की कमान संभालती थी, आज बागियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। ये वही सायोनी घोष है जिनका एक गाना काबा मदीना, उनके कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया पर अक्सर विवादों का कारण बनते रहे, लेकिन आज सायोनी घोष की पलटी ने सबको चौंका दिया।

मदीना। आखिर इन सांसदों की नाराजगी क्या है, क्या चाहते हैं ये बागी? बागियों का आरोप है कि टीएमसी में अब सांसदों और जमीन से जुड़े नेताओं की कोई सुनवाई नहीं। सांसदों का कहना है कि पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है। सवाल है कि आज ही अचानक ये क्या स्थिति आई और आगे क्या होने वाला है? साफ कर दें कि ये बागी सांसद फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका दावा है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है। पार्टी के सिंबल पर उनका हक है। रविवार को ये बागी गुट बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सकता है और सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग बैठने की आधिकारिक मांग करेगा। दिल्ली में नीति आयोग की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में करीब करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। उन्होंने सभी राज्यों को एल नीनो के बारे में तैयार रहने के लिए चेतावनी दी है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने की तैयारी करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस बार देश को मौसम की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एल नीनो और उसका खतरा जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों में जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए कहा। अब सवाल यह है कि क्या एल नीनो इतना बड़ा खतरा है जिससे पीएम इसे फ्लैग कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको एल नीनो को समझना होगा। प्रशांत महासागर में तीन मुख्य जलवायु प्रणालियां काम करती हैं, जिसमें एक एल नीनो, दूसरा है ला नीना और तीसरा है न्यूट्रल। सामान्य भाषा में कहें तो एल नीनो का प्रभाव पड़ने पर सामान्य से कम बारिश, ला नीना के प्रभाव से सामान्य से अच्छी बारिश और बारिश के कम या ज्यादा होने का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। एल नीनो कहा है पीएम मोदी ने, जिससे सावधान किया है, जिसका सीधा मतलब है इसका प्रभाव भारत के मानसून पर दिखने वाला है। एल नीनो जलवायु के उस प्रभाव को कहते हैं जिससे प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सा का समुद्री जल सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर में हवा बारिश का पैटर्न बदल सकता है। भारत में इससे सबसे बड़ा असर मॉनसून पर पड़ता है, कम बारिश होगी। दुनिया के मौसम पर नजर रखने वाली संस्थान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जून 2026 में एल नीनो बन रहा है। इसका प्रभाव पड़ने की आशंका 80-90% तक है। एल नीनो के प्रभाव से भारत में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया है और एल नीनो के प्रभाव से स्थिति और खराब होने की आशंका है। कम बारिश का मतलब ज्यादा गर्मी, हीट वेव के लंबे चरण। बारिश कम होगी तो इसका असर खेती पर पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में सूखे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खेती पर बुरा असर पड़ेगा तो देश में खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एल नीनो का प्रभाव केवल भारत पर होगा। दरअसल प्रशांत महासागर में होने वाली इस जलवायु घटना का असर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे क्षेत्र और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सूखा पड़ने, ज्यादा बारिश का खतरा होगा, लेकिन उम्मीद है कि हिंद महासागर की वजह से एल नीनो का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है, जिससे राहत मिल सकती है।

तारीख 12 जून 2025, ठीक है, एक साल पहले आज ही के दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को दहला दिया था। कुछ सेकंड्स के भीतर 260 जिंदगियां खाक हो गई। आज इस भयानक त्रासदी को पूरा एक साल हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जहन में सिर्फ एक सवाल कि आखिर उनके अपनों की मौत का गुनहगार कौन है? ब्लैक बॉक्स की जांच कहां पहुंची? क्यों अंतिम रिपोर्ट आने में देरी हो रही है?

0: आती है।
1: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है और बस हम लोग सब उनके सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना।
2: मैं तो आखिरी सांस तक यहाँ लड़ने वाला हूँ कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, कि इसके पीछे कारण क्या है, ब्लैक बॉक्स डेटा चाहिए हमको, बस यही डिमांड है हमारी।
3: एग्जैक्ट जो पॉइंट होना चाहिए कि यही इसी वजह से हुआ है वो हमें नहीं मिला, और ये जो ब्लैक बॉक्स की बात चल रही है कि ब्लैक बॉक्स का डेटा रिलीज होगा उसमें सब पता चलेगा, तो ना ब्लैक बॉक्स का अभी तक कोई डेटा रिलीज हुआ है ऐसा कुछ, तो अभी तक सब अंधेरे में ही। एग्जैक्ट रीजन किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि किस वजह से प्लेन क्रैश हुआ है।
4: आज कहीं भी जाते हैं ना, लोगों को ऐसा है कि उनको इतने पैसे मिल गए, पर लोगों को यह नहीं समझ आता। कहीं भी जाते हैं ना, लोग ऐसे पूछते हैं आपको पैसे मिल गए, पर उनको वो कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपके घर में आप कैसे जी रहे हो, एक इंसान की कीमत है। मतलब उन लोगों का ऐसा है बस पैसे आ गए, इंसान की मतलब जो वैल्यू है वो खत्म हो गई।
5: एक पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है।
6: ब्लैक बॉक्स डेटा के रिगार्डिंग हम खुद ही फाइट कर रहे हैं, जो हमें डेटा नहीं मिल रहा है, कोई ट्रूथ पता नहीं चल रहा है, क्या सच है वो हमें अभी तक पता नहीं है, बस वो सच जानने की हमारी पूरी पूरी प्रोसेस चल रही है जिससे हम फाइट कर रहे हैं।

0: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
1: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
0: to live sports action.
2: To the near side corner, to wrap around. He scores!
0: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
3: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
4: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
3: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
5: जब बात हो सोयाबीन के खेतों को खरपतवार से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का अमोरा। अमोरा तेज तरार वार हारे अब खरपतवार, देश के हीरो की पहली पसंद।
6: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
7: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
8: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना।
6: मतलब
8: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
6: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
8: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
9: ये थर्ड नहीं 13 डिग्री का केस है।
10: माल मैंने चुराया, शौचालय के पीछे पीपल के नीचे दबाया।
9: हवालात की हवा अच्छे अच्छों को सुधार देती है शुक्ला।
11: समर कूल कूलर, हवा अच्छी है ठंडक सच्ची है। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: ये मजबूर हैं पर आप नहीं, बीटेक्स मलहम, दांत खाज खुजली से छुटकारा।
3: अब वही बीटेक्स मलहम ट्यूब में भी उपलब्ध।
4: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
5: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
6: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
7: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
8: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
7: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
9: जब धान के खेतों में जिद्दी खरपतवार दे चुनौती, तो हर असली हीरो उठाता है एक ही हथियार, क्रिस्टल क्रॉप का सिकोसा। खरपतवार मारे उगने से पहले, भारत का सबसे ताकतवर धान का खरपतवार नाशक।
10: In association with
11: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, life बनाए wonderful।
10: Hint, बड़े आराम से
11: cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
10: Vimal, बोलो जुबां केसरी।
12: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
1: एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: देखिए मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज्ड है, चुनाव आयोग की साठगांठ है, और आज ये एक तरह से और भी प्रूव हुआ। जबकि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का वकील वहाँ पे खड़े होते हैं, तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मामला ही नहीं है ना, राज्यों के तो खिलाफ ये कोई राज्यों के खिलाफ हम लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, हम तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, हम अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स के कॉम्प्रोमाइज होने की बात कर रहे थे और वो जनता के सामने एक्सपोज हुए। मैं
3: डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो प्राइम मिनिस्टर हो उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है RSS के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहाँ पर है वहाँ पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं, और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं।
4: दो हजार 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। 2022 की करारी हार और अंतर्कलह से सबक लेते हुए पंजाब कांग्रेस ने 2027 के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार पार्टी किसी सीएम फेस के सहारे नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं होगा।
5: कांग्रेस पार्टी का जेड़ा चुनाव है और राहुल गांधी साहब के नेतृत्व दे विच और खड़गे साहब के नेतृत्व दे विच और चुनाव निशान पंजा दे नेतृत्व दे विच लड़ा जा रहा है। राजा वड़िंग कांग्रेस पार्टी का वर्कर।
4: दरअसल कांग्रेस पुराना इतिहास नहीं दोहराना चाहती। 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाने के बाद जो अंदरूनी कलह मची उसने पार्टी को सिर्फ 18 सीटों पर समेट दिया। चन्नी को सीएम फेस बनाना भी काम नहीं आया और नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी से दूरी बना चुके हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी ना हो इसलिए राहुल गांधी ने ये सेफ गेम खेला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार चेहरों की जंग छोड़ मुद्दों के सहारे पंजाब में वापसी करना चाहती है। आज तक ब्यूरो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सत्य अकेला भी हो तो भी शक्तिशाली होता है।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: एकजे द नंबर 1 कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया।

0: نے باغیوں کا ایکشن پلان تیار، لوک سبھا اسپیکر سے سوموار کو ملاقات کی تیاری، رویوار کو سی ایم شبھندو کے ساتھ بھی کریں گے بیٹھک۔ بھڑکاؤ بھاشن معاملے میں سی آئی ڈی کا نوٹس ملنے پر بولے ابھیشیک بینرجی، ایم پی ایم ایل اے خرید کر ٹی ایم سی کو جھکانا اسمبھو، دھارمک بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچانے کے آروپ میں ممتا پر بھی ایف آئی آر۔ میناکشی نٹراجن کو سپریم کورٹ سے جھٹکا، راجیہ سبھا چناؤ میں نامانکن رد ہونے کے ورودھ یاچیکا خارج، نرواچن بھون کے باہر کانگریس کا پردرشن۔ بی جے پی پر اکھلیش کا بڑا حملہ، کہا وہ منہ سے سودیشی اور من سے ودیشی، یوگی پر بولے اکھلیش، ہماری سرکار بنی تو فرضی مڈ بھیڑ کروانے والوں کے خلاف لیں گے ایکشن۔ ہرمز کے بعد حملے میں تین بھارتی ناویکوں کی موت کا ٹھیکرا ٹرمپ نے ایران پر پھوڑا، کہا تہران نے کیا تھا ڈرون اٹیک، یہ بالکل سویکار نہیں۔
1: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach, in association with
2: Bharat ki apni electric sawari Sokudo. Akajay, the number one Korean skincare brand, now in India.
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर, आप देख रहे हैं दस्तक। پاکستان ادھیکرت کشمیر یعنی کہ پی او کے میں بغاوت اب بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ آصف منیر جتنا بے گناہوں کا لہو بہا رہا ہے، پاکستان کے خلاف ودروہ اتنا ہی بھڑک رہا ہے۔ آصف منیر جس طرح سے پی او کے میں نرسنگار کر رہا ہے، اب لوگ پاکستانی سینا کی گولیاں اپنے سینے پر کھانے کے لیے تیار ہیں۔ آصف منیر جیسے ہٹلر کی طرح کرورتا پر اتر آیا ہے، اور پی او کے میں راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں منیر کی سینا نے ایسا تانڈو مچایا کہ 16 نہتے لوگوں کو مروا دیا، جبکہ 37 لوگ گھائل ہو گئے۔ لیکن پی او کے میں منیر جتنا قتل عام مچا رہا ہے، لوگوں میں آکروش غصہ اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں آخر اب پی او کے میں کیا ہونے والا ہے۔
3: منیر کا ہٹلر والا روح پی او کے میں نرسنہار، اب راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں بے گناہوں میں گولیاں چلوا دی۔ پی او کے میں اب تک 53 لوگوں کی موت، منیر سینا کی بربرتا جاری۔ پی او کے میں لوگوں نے کفن باندھ لیے، پاکستان سے آزادی کی مانگ۔ آر پار کے موڈ میں پی او کے کی جنتا، اب مچے گا اصلی کوہرام۔ پاکستان کے قبضے والا کشمیر اب سیدھے پاکستان سے آزادی مانگ رہا ہے۔ یہ للکار ہے اس آصف منیر کے لیے جو پی او کے میں نہتے لوگوں پر گولیاں چلوا رہا ہے۔
4: دیکھ سکتے ہیں آپ، سیدھی اسٹریٹ فائرنگ کی جا رہی ہے۔
3: یقیناً راول کوٹ میں گونجتی ویروت کی یہ آوازیں اسلام آباد کے بھی کان پھوڑ رہی ہوں گی۔ پی او کے والوں نے ٹھان دیا ہے کہ جو پاکستان انہیں ان کے حق کے بدلے موت بانٹ رہا ہے، اس پاکستان کے خلاف اب یہ شور تھمنے والا نہیں ہے۔ جی ہاں، آصف منیر کی فوج پی او کے میں کرورتا اور بربرتا کی حدیں پار کر رہی ہے۔ راول کوٹ کے عیدگاہ میدان میں اپنے حق کے لیے پردرشن کر رہے بے گناہ لوگوں پر آصف منیر نے گولیاں چلوا دی، اور 16 لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی، جبکہ 37 لوگ گھائل ہو گئے۔ जिस तरह से जर्मनी का एक क्रूर तानाशाह हिटलर और उसकी नाजी सेना ने लाखों लोगों का नरसंहार किया, अब आसिफ मुनीर भी पीओके का हिटलर बनकर नरसंहार कर रहा है। अब तक 53 लोग मारे जा चुके हैं। आसिफ मुनीर ने जनाजे की नमाज के दौरान भी गोलियां चलवाई। अब पूरा पीओके एक साथ हिटलर जैसे आसिफ मुनीर के खिलाफ गरज रहा है। आपको बता दें कि पीओके के अलग अलग शहरों से 80,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक, कोटली से लेकर बीरपुर तक लोग अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। रावलकोट के ईदगाह मैदान में जब ये प्रदर्शनकारी अपना हक मांगने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। लेकिन पाकिस्तान और आसिफ मुनीर की नाजी सेना की बर्बरता के सामने अब प्रदर्शनकारी अपनी शहादत देने को भी तैयार हैं। पीओके में ऐलान हो चुका है कि गोलियां सीने पर खानी हैं। कोई मुनीर की सेना के सामने पीठ नहीं दिखाएगा।
5: हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब या वतन है या कफन है, लेकिन याद रखें कि गोली सिर्फ सीने पे खानी है। सीने पे कोई किस्म के तीर से गोली नहीं लगनी चाहिए। हम अपनी आने वाली नस्लों की गैरत है। ये आज जो लम्हात है, ये कल की तारीख है और ये कल ये तारीख में पढ़ाया जाएगा। ये चीजें कल तारीख में बताई जाएंगी और कल तारीख में किसी जगह पे ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लोगों ने जो पीठ पे गोली खाई है। गोलियां मारते हैं, ये ताकतवर है, कोई मसला नहीं है। ये हमसे ज्यादा ताकतवर है, ये गोलियां मारते हैं। हम अपने सीने पेश करेंगे कि मारो, कितने मार सकते हो, कश्मीरियों को कितना मार सकते हो। ये आज की बात नहीं है। 1956 में भी इन्होंने कश्मीरियों को मारा, इन्होंने 1990 में कश्मीरियों को मारा, इन्होंने 1992 में कश्मीरियों को मारा और इनको जब जब मौका मिलता रहा ये हमेशा कश्मीरियों को मारते रहे। वो गोलियों से हो या वो भूत अपना से हो, कोई मसला नहीं है। हम इनसे अपना हकूक, अपने हकूक लेकर रहेंगे।
3: पीओके की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC इसकी नुमाइंदगी कर रही है, लेकिन आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी सरकार ने JAAC को बैन कर दिया है। पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। वहीं JAAC का कहना है कि वो शांति से अपने हक की बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी उन्हें आतंकवादी बताकर उनका गला घोटना चाहते हैं।
6: बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ़ के लिए है, नहीं काम आया। तो मार दो आजाद कश्मीर पे, खत्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा भयानक। यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो। तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे, मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक के मलकियत, हक के आजादी, हक के इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला।
3: पीओके वालों की 6 मांगे हैं, जिनमें बिजली और महंगाई। इलाके में बिजली की भारी किल्लत है और लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। बेरोजगारी का दंश, युवाओं के पास काम नहीं है और स्थानीय संसाधनों का जमकर शोषण किया जा रहा है। रिफ्यूजी कोटा, 27 जुलाई को होने वाले चुनावों में 45 में से 12 सीटें शरणार्थियों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं, जिसका लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। राजनीतिक उपेक्षा, जनता खुद को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर महसूस कर रही है। इंटरनेट पर पाबंदी, लोगों की आवाज दबाने के लिए पूरे इलाके में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया है। JAAC पर बैन, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। जायज मांगों के लिए जिस तरह से पीओके में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और आसिफ मुनीर बेगुनाहों पर गोलियां चलवा रहे हैं, भारत ने भी इस पूरी घटना को नरसंहार बताया है। दिल्ली ने कहा कि ये साबित करता है कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले इलाकों में लोगों को बुनियादी हक भी नहीं देता। आज तक ब्यूरो।
0: आपने पीओके में पाकिस्तानी सेना का क्रूर चेहरा देखा और अब आपको यूरोप के पाकिस्तान प्रेम पर सीधी चोट करने वाली हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की टिप्पणी हम सुनवाते हैं। कैसे रूसी तेल की खरीद पर भारत को नैतिकता का पाठ बनाने वाले यूरोप के कुछ देश हमारे देश भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

0: रूसी तेल पर यूरोप का डबल स्टैंडर्ड पर्दा। रूसी तेल पर सवाल उठाने वालों को जवाब।
1: सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल टिल 2022।
0: रूसी तेल पर यूरोप का खेल अब नहीं चलेगा। यूरोप ने भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला। यूरोपीय हथियारों से पाक करता है हमला। यूरोप के पाक प्रेम पर जयशंकर का प्रहार।
1: अगेन बिकॉज वी कीप कमिंग बैक टू रशियन ऑयल।
0: रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से भारत का तेल खरीदना अमेरिका और यूरोप की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया। यूरोप ने इसी मुद्दे पर भारत की आलोचना की, लेकिन तमाम दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। न भारत झुका न तो रुका। एक बार फिर रूसी तेल पर एक्टिव भारत विरोधी मोर्चे को विदेश मंत्री जयशंकर ने फिनलैंड की धरती से आईना दिखाया है। भारत को रूसी तेल खरीदने पर नैतिकता का लेक्चर देने वाले यूरोपीय देशों के चाल और चरित्र की संपूर्ण व्याख्या कर दी। एक लाइन में समझे तो जयशंकर ने करारा जवाब देते हुए यूरोप की नीति और नियत को एक्सपोज कर दिया। जयशंकर ने सवाल उठाने वाले देशों से पूछा कि भारत ने तो यूरोप की सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कदम कभी नहीं उठाया, लेकिन यूरोप ने बार बार पाकिस्तान को हथियार बेचकर भारत की सुरक्षा को खतरे में डाला। कई बार पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों में बने हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। दरअसल फिनलैंड में कुलता रंता टॉक्स में रूसी तेल पर पूछे गए सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना लाग लपेट के भारत की सोच पर सवाल उठाने वालों का फर्क समझा दिया।
2: I think in Europe there was a feeling that India adopted what we would regard as a kind of moral equivalence between the two sides, that you were saying, well, it's a big shame, but you know, maybe they should stop, but you were too sympathetic towards Russia, too willing to buy oil from Russia. So how would you explain that position to the people here?
1: Well, I'd make two observations. I buy oil based on cost and availability. So at that point of time, much of the oil available on the market was Russian, because Europeans were essentially buying up the Middle East oil, so which was our traditional supply. So circumstances pushed us in a certain direction. But since you spoke about moral ambiguity, I would say this, you know, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind.
2: Be more explicit so that people understand what you're saying.
1: Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point.
0: रूसी तेल की खरीद पर भारत की नीति और नियत पर सवाल उठाने वाले यूरोपीय देशों को जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया। अब समझिए इस टिप्पणी का मतलब बहुत बड़ा क्यों है। बयान का मतलब नंबर एक, सवाल उठाने वाले यूरोपीय देशों के दोहरे मापदंड हैं। कुछ यूरोपीय देश भारत की रूसी तेल खरीद पर सवाल उठाते हैं, जबकि वही देश ऐसे मुल्क को हथियार बेचते हैं जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है, जबकि किसी भी भारतीय हथियार से यूरोप पर हमला नहीं है। मतलब भारत की नीतियाँ किसी मुल्क पर खतरा पैदा नहीं करती। बयान का मतलब नंबर दो, राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है। जयशंकर ने सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया कि रूसी तेल की खरीद डिमांड एंड सप्लाई की वजह से है। भारत अपने फैसले राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर लेता है, न कि किसी एक देश के नजरिए को देखते हुए। बयान का मतलब नंबर तीन, रूसी तेल पर यूरोप की आलोचना गलत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने दावा किया कि यूरोपीय आलोचना तब तक न्यायसंगत नहीं है जब तक वो खुद ऊर्जा और सुरक्षा मामलों में समान व्यवहार नहीं दिखाते। विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से यही बताया कि भारत अपनी नीतियों का फैसला विदेशी ताकतों की आलोचना के आधार पर निर्धारित नहीं करता, बल्कि देश के हितों और जरूरत के हिसाब से करता है। ऐसे में रूसी तेल को लेकर जयशंकर के बयान को कूटनीति के नजरिए से सख्त लेकिन रणनीतिक माना जा रहा है। जयशंकर ने रूसी तेल की खरीद पर भारत पर सवाल उठाने वाले कुछ यूरोपीय देशों को सीधा संदेश दिया है। संदेश यही है कि भारत समानता के आधार पर संवाद चाहता है, न कि नैतिक मूल्यों की आड़ में अपने दोहरे मापदंडों को आगे बढ़ाने वाले एजेंडे पर।
3: और अब खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 हमारे भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है। 3 भारतीयों की मौत, अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे हैं।
0: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक

0: 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
1: दो महीना पहले बात हुई थी, हालचाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात और भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना उना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक है रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे। मैं रूप नहीं माने, फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पर गए। और लास्ट
0: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले चार दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
2: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
0: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड ग्रुप का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड ग्रुप में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे कैसे ट्रंप हुए टाए टाए फेस। देखते रहिए दस्तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा, प्यार से परो
5: इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: नीड अ गुड लैप? वी नो अ प्लेस जस्ट फॉर लैप्स। रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम, फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स एंड द पंचलाइन, इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन TuneIn। हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लैप्स रेडियो टुडे।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: EU सोच बदलो और बैंक भी।
4: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
7: लाइन डेजर्ट किंग डेट्स ओमन देश में स्थित लाइन डेट्स की फैक्ट्री में अच्छी क्वालिटी के डेट्स चुनकर

0: अच्छे से साफ करके उन्हें अपनी इंडिया की इस विशाल लाइन डेज की फैक्ट्री में भेजकर हाईटेक मशीनों द्वारा बिना हाथ लगाए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप तक पहुंचाया जाता है। पोषक तत्व वाले लायन डेजर्ट किंग डेट्स ही खरीदें।
1: लायन डेजर्ट किंग डेट्स,
0: सिंह जैसी शक्ति मुझ में।
2: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
3: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
4: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
2: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
5: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
3: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
2: जहां खबर वहां खबरदार।
6: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा। मोंटी कार्लो, इट्स द वे यू मेक मी फील।
7: पच्चीस सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें 7 तक, देखते रहिए आज तक।

दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर देश भर से एनडीए के घटक दल पहुंचे, तो उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दो दल भी मौजूद थे। मंच पर पीएम मोदी के स्वागत से लेकर झालमुड़ी के चटकारे तक संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तकरीबन साथ नजर आए। यहां तक कि कार्यक्रम के आगे पीछे दोनों दलों के नेताओं ने दिल्ली में जितनी शिष्टाचार भेंट मुलाकातें की उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर डाली। दिल्ली में भारत मंडपम में जब पीएम मोदी के स्वागत का कार्यक्रम चल रहा था, पूरे देश के एनडीए शासित राज्यों के सीएम डिप्टी सीएम मौजूद थे, तो दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में अलग मीटिंग चल रही थी। 11 जून को SBSP चीफ ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की, फिर सुनील बंसल से भी मिले। इसके तुरंत बाद निषाद पार्टी चीफ संजय निषाद ने भी सुनील बंसल के साथ चर्चा की और अलग अलग मुलाकातों के बाद राजभर और निषाद दोनों ने एक साथ भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दोनों सहयोगी नेताओं से बीजेपी नेतृत्व से जल्द औपचारिक बैठक बुलाने की मांग की, जिस पर बीजेपी ने जून के आखिरी सप्ताह में व्यापक चर्चा शुरू करने का आश्वासन दिया। यूं तो राजभर ने इन मुलाकातों को शिष्टाचार भेंट की तरह पेश किया, लेकिन दोनों नेताओं की बारी बारी से बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात और फिर साथ आई तस्वीरों को लेकर चर्चा है कि ओपी राजभर और संजय निषाद के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचतान शायद थम जाए, क्योंकि 2022 में निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ लड़ी थी, वहीं ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे। 2022 में निषाद पार्टी को 16 सीटें मिली थीं, जिसमें 10 उनके सिंबल की थीं। 6 बीजेपी के सिंबल पर निषाद के उम्मीदवार थे, जबकि 2022 में राजभर को अखिलेश ने 17 सीटें दी थी। 2022 में निषाद पार्टी के कुल 11 उम्मीदवार जीते, जिसमें 5 बीजेपी के सिंबल पर थे, तो राजभर के कुल 6 उम्मीदवार जीते थे। लेकिन बीच में एनडीए का कुनबा बड़ा हो गया, ओपी राजभर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सरकार के साथ हो गए और अब फिर से करीब 1.5 दर्जन सीटों की उम्मीद पाले हैं। हालांकि पूर्वांचल में ही निषाद पार्टी भी है और दोनों ही दल गैर यादव पिछड़े अति पिछड़े के वोट की राजनीति करते हैं, इसीलिए अतरौलिया जैसी सीट पर दोहरी दावेदारी सामने आ रही है। दरअसल पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी तो पूर्वांचल में निषाद और राजभर बीजेपी के लिए मजबूरी तो नहीं लेकिन जरूरी है, क्योंकि 2022 में राजभर को 17 सीटों पर 12,52,000 वोट मिले, जो लड़ी गई सीटों पर करीब 30-35 फीसदी थे। निषाद को 11 सीटों पर करीब 10,50,000 वोट मिले थे, जो लड़ी गई सीटों पर करीब 41-44 फीसदी थे। हालांकि राजभर तब अखिलेश के साथ थे और निषाद के 5 उम्मीदवार कमल छाप से लड़े थे, लेकिन इस बार तस्वीर बदल गई। दोनों दल बीजेपी के साथ हैं और विवाद की स्थिति में बीजेपी अपने सिंबल पर सीटें देने का फॉर्मूला अपना सकती है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।

0: जून की तपती गर्मी के बीच दिल्ली के राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा हुआ है। एक तरफ पीएम मोदी के 12 साल का जश्न है, सबसे लंबे कार्यकाल का महोत्सव है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस की महत्वाकांक्षी राजनीतिक प्लान। और इसी प्लान को बनाने के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष फिर टकराने के लिए तैयार है। कांग्रेस मुख्यालय में राहुल गांधी की बड़ी बैठक थी, जिसका एजेंडा था नीट में धांधली, परीक्षाओं के पेपर लीक, सीबीएसई मार्किंग विवाद, किसान और महंगाई। इन्हीं मुद्दों पर रणनीति बनाने में कांग्रेस का मंथन चल रहा था। इसी दौरान बैठक में राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी माहौल गर्मा दिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने मरवा दिया। राहुल का इशारा देश के युवाओं, छात्रों और किसानों की उस बदहाली की तरफ था जो सरकार की नीतियों के कारण परेशान है। राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि बेरोजगारी युवाओं को खाए जा रही है, पेपर लीक से छात्रों का भविष्य अंधकार में है और अमेरिकी ट्रेड डील ने किसानों को संकट में डाल दिया है। राहुल ने दावा किया कि गिरती अर्थव्यवस्था के चलते एक साल में हालात और खराब होंगे। राहुल गांधी की इस टिप्पणी से बीजेपी आग बबूला है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस की ओर से सांसद इमरान मसूद ने मोर्चा संभाला और राहुल गांधी का बयान को सही ठहराया।
1: अरे कैसी बात कर रहे हो, और कैसे होना चाहिए, मरवा दिया, फांसी पे चढ़ाएंगे क्या? मरवा तो दिया ही, छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, बाहर जो लोग रोजगार के अंदर गए वो परेशान है। आप स्थिति समझिए ना, क्या है, मिडिल ईस्ट की जंग से किसको नुकसान हो रहा है, कितने लोग मिडिल ईस्ट में हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चूल हिला दिया आपने, देश की अर्थव्यवस्था की चूल हिल गई है। कितने लोग हैं बाहर, 1 करोड़ लोग हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, कैलकुलेट कर लीजिए, मिनिमम सैलरी 2000 है और 2000 से 50,000 दिरहम तक सैलरी है जो पर मंथ आती है, कितना पैसा आ रहा है, 1,00,000 करोड़ रुपया महीने का जो इफेक्ट हो रहा है, पूरी इकोनॉमी की चूल हिला करके रख दी और आप कह रहे हैं मरवाया नहीं, मर गया आदमी, सांस लेना दूभर हो रहा है भाई।
0: 2027 में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है और उससे ठीक पहले मोदी सरकार और बीजेपी को घेरने का फुल प्रूफ प्लान तैयार करने में जुटे हैं। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक, पंजाब का प्लान, यूपी नेताओं से मंथन। राहुल गांधी इस बार के चुनाव में बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, महंगाई के मुद्दों पर बीजेपी को आजमाना चाहते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने 2 महीने के देशव्यापी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस का एजेंडा है कि अगले 2 महीने तक देश के हर कोने में युवाओं के मुद्दे को उठाया जाए। राहुल गांधी का मकसद साफ है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं बल्कि फ्रंट फुट पर आकर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
2: यहाँ पर तस्वीरों में हम टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
3: देखिए मैं फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं, मैं केवल ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेटर हूँ तो मेरी तो अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता है, हटा लिया तो हटा लिया है। जिस तरीके से 5 MPO का हटा के उनके घर तोड़ दिए गए, उनके परिवारजनों को डराया गया, धमकाया गया, कई की तो पत्नी और बेटियों के बाल खींचे गए, उसके बाद में वो डर गए, डर करके चले गए। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील भी, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे, उनकी भी डील वहीं हुई। भूपेंद्र यादव के यहाँ जाकर के लोग मिले, वो 8 ही लोगों ने साइन किया था। आप लिस्ट देखिए तो 8 का एंक अलग है, जो 14 से 18 दिए गए वो अलग है, बीच के कहाँ गए मुझे मालूम नहीं है, उसका क्या है क्या नहीं है वो तो स्वतः स्पष्ट है। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था, कुछ जो भ्रष्टाचारी हैं वो पकड़े गए। जिस प्रकार से सुवेंदु अधिकारी 5 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा गया था तो उस पर CBI लगा दी थी, तो वो यहाँ आ गया। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो काकुली दास भी पकड़ी गई थी दस्तीदार, तो उसको भी उसी तरीके से बुलाया होगा कि भाई सीबीआई ईडी क्यों लगवाती है, वैसे ही आ जाओ तुम, तुमको यहाँ कुछ देख लेंगे। उसके साथ में लोग हैं, तीन चार लोगों ने दो मांगे माने 5 करोड़ में, 3 मांगे 50-50 लाख में, बाकी जो 3 थे उन्होंने कहा 10-10 लाख रुपए महीना हमें सेट कर दीजिए, तो उसके घर से ही खबर मिलती है।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध पर ट्रंप के 39वें झूठ की। एक बार फिर से ट्रंप अपनी धमकी से पलट गए। पहले दावा किया कि ईरान पर बीती रात सबसे बड़ा हमला करेंगे, धमकी के कुछ ही घंटे बाद ट्रंप ने यू टर्न लिया और दावा किया कि ईरान के साथ अब शांति समझौते पर बात बन गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने शांति समझौते के मसौदे पर मोहर लगा दी है, इसलिए अब ईरान के साथ युद्ध खत्म हो चुका है। ट्रंप के इसी दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ईरान का दावा है कि अभी पीस डील को लेकर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब सवाल यही है कि ईरान को लेकर बार बार ट्रंप झूठ क्यों बोलते हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों ट्रंप की धमकी एक बार फिर से टाए टाए फिस सिद्ध हुई है।

0: पहले मिटाने की धमकी, फिर 12 यू टर्न। हर बार ट्रंप का धमकी बम ठुस निकला। पर बोले ट्रंप की ईरान ने निकाली हेकड़ी। उनतालीस बार जंग पर ट्रंप का दावा निकला झूठा। ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप टाए टाए फिस। ईरान के साथ पीस डील को लेकर एक दो बार नहीं बल्कि 39 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का झूठ पकड़ा गया। पहले ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी देते हैं, कुछ देर बाद धमकी से पलट जाते हैं और ईरान के साथ बहुत जल्द जंग खत्म करने की भविष्यवाणी करते हैं। ये संयोग नहीं बल्कि ट्रंप का झूठ वाला प्रयोग है। एक बार फिर ईरान को लेकर ट्रंप के दावे की हवा निकल गई, यानी ट्रंप का दावा टाए टाए फिस हो गया। सबसे पहले सुनिए ईरान को लेकर ट्रंप कैसे बार बार झूठ बोलते आए हैं, मानो ट्रंप को झूठ बोलने की लाइलाज बीमारी हो।
1: We have points, major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal.
2: Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. But they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal.
3: They want to make a deal so badly.
4: I do see a deal in Iran.
5: We were very close to a deal.
6: I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over.
7: It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal.
8: This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly.
9: We think we're close to a deal, and that's okay.
10: We're in the final throes of what will be a very, very good deal.
0: ट्रंप अब तक 39 बार अमेरिका और ईरान के बीच जल्द पीस डील साइन होने का दावा कर चुके हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च से कम 38 बार सार्वजनिक बयान, सोशल मीडिया पोस्ट या मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने यही दोहराया कि डील करीब है या ईरान डील के लिए तैयार है। अब उनके नए दावे के बाद ये संख्या 39 तक पहुँच गयी है।
11: There will be a signing this weekend because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
12: it'll be soon, maybe this weekend.
11: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
12: I understand the answer is yes.
11: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
12: Yes, that's true. That's part of the deal.
0: हर बार ट्रंप दावा करते हैं और कुछ घंटों के बाद ही ईरान उनके दावे की हवा निकाल देता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंग रोक दी है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामिनई ने नई डील को मंजूर कर लिया है, अमेरिका की शर्त मान ली है और वो कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसी हफ्ते ईरान के साथ यूरोप में पीस डील पर दस्तखत होंगे। इधर ट्रंप ने पीस डील पर सहमति बनने की बात कही, उधर ईरान ने ट्रंप के दावे को झूठ का पुलिंदा बताया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने यही कहा है कि शांति समझौते पर अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। हम ये साफ करना चाहते हैं कि ईरान अपनी लक्ष्मण रेखाओं पर कोई समझौता नहीं करेगा। हमारी लक्ष्मण रेखाएं ईरानी राष्ट्र के हित और कल्याण हैं और इस संबंध में कोई समझौता नहीं होगा। अगर ईरान दबाव और धमकियों के आगे झुककर अपने सैद्धांतिक रुख से पीछे हटना चाहता तो वो 1.5 साल पहले ही ऐसा कर चुका होता। हमने साबित कर दिया है कि हम दृढ़ हैं। हमारे देश में निर्णय लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्पष्ट है। संबंधित अधिकारियों को पीस डील की शर्तों की समीक्षा करनी होगी। जैसे ही हम ईरानी राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। ट्रंप ने यही दावा किया कि पीस डील पर बात बन चुकी है, बस मोहर लगाना बाकी है। लेकिन ईरान ने एक बार फिर यही कहा है कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और कई अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। यही नहीं, IRGC ने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिनमें स्विट्जरलैंड में पीस डील पर दस्तखत होने का दावा किया गया था। स्विट्जरलैंड में किसी समझौते पर हस्ताक्षर या आमने सामने की बैठक के बारे में कोई भी अटकलें, प्रस्तावों की गलतफहमी और अमेरिकी कोरी कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति खुल्लम खुल्ला ऐलान करते हैं कि बात बन गई है, लेकिन उनके ऐलान को ईरान ने कोरी कल्पना करार दिया। तो क्या ट्रंप का बार बार पीस डील को लेकर भविष्यवाणी करना दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है या फिर यू टर्न मारने का फॉर्मूला? दरअसल बीती रात ट्रंप ने ईरान पर विध्वंसक हमले की धमकी दी थी। धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका आज रात ईरान पर जबरदस्त हमला करेगा ईरान की नेवी, एयरफोर्स, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट और डिफेंस के सभी सिस्टम, साथ ही ज्यादातर हमला करने की क्षमता भी खत्म हो चुकी है। आने वाले समय में कभी भी हम खार्ग आइलैंड और तेल से जुड़े दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लेंगे और उनके तेल और गैस बाजार पर पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने वेनेजुएला के मामले में किया है, जो वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। हालांकि धमकी के कुछ घंटों के बाद ही ट्रंप पलट गए। हमले रद्द करने के आदेश को ट्रंप ने ईरान के साथ पीस डील को लेकर बनी सहमति का आधार बताया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर मैंने रात ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी को रद्द कर दिया है। बातचीत और अंतिम बिंदुओं पर सभी संबंधित पक्षों ने मंजूरी दे दी है। आपको याद होगा कुछ इसी अंदाज में ईरान की पूरी सभ्यता को मिट्टी में मिलाने की धमकी ट्रंप दे चुके हैं, लेकिन हुआ क्या? धाक के तीन पाक, ट्रंप ने अपने झूठ को पीस डील की ढाल के पीछे छिपा लिया। एक बार फिर ट्रंप और उनकी टीम यही दावा कर रही है कि ईरान पर विनाशकारी हमले की पूरी तैयारी थी, टारगेट लॉक था, लेकिन हमले से तीन घंटे पहले ट्रंप ने अपना आदेश रद्द कर दिया। एनबीसी न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के अचानक फैसला बदलने और हमले रद्द करने से अमेरिकी सैन्य अधिकारियों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं ईरानी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते के मसौदे से मिसाइल कार्यक्रम को बाहर रखा गया है, जबकि परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा पीस डील होने के बाद होगी, यानी ईरान अपना परमाणु प्रोग्राम अभी रोकने वाला नहीं। महर न्यूज में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अपनी शर्तों पर समझौता करेगा, अमेरिका की शर्तों पर नहीं। शर्त नंबर एक, लेबनन के साथ साथ सभी मोर्चों पर लड़ाई रोकनी होगी। शर्त नंबर दो, अमेरिका को गारंटी देनी होगी कि ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। शर्त नंबर तीन, 30 दिन के अंदर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटानी होगी। शर्त नंबर चार, ईरान के आसपास से ट्रंप को अपनी सेना हटानी होगी। शर्त नंबर पाँच, ईरान पीस डील के 30 दिन बाद हॉर्मुज को खोलेगा। शर्त नंबर छह, ईरान के तेल और गैस पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने होंगे। शर्त नंबर सात, नुकसान की भरपाई के लिए $300 अरब देने होंगे। शर्त नंबर आठ, अंतिम चरण में ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेगा। शर्त नंबर नौ, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव के जरिए समझौते पर मुहर। मतलब यही है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु प्रोग्राम पर कोई समझौता अभी नहीं करेगा। ये तब है जब ट्रंप बार बार यही दावा कर रहे हैं कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे।
13: We're in a war because I think you would agree we cannot let lunatics have a nuclear weapon. Do you agree? You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil. They were evil. They killed 42,000 protesters. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no leaders. Their leaders are all gone. We have to make sure that they don't have a nuclear weapon. We stopped them with the B-2 bombers. If we didn't do that, we would have had a nuclear weapon. Israel would have been blown to pieces. The Middle East would have been blown to pieces. I think Europe would have been blown to pieces.
0: ट्रंप तो ट्रंप, इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी धमकी दे दी है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान ईरान को किसी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि 30 से ज्यादा सालों से मैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में सबसे आगे रहा हूँ। अगर ये संघर्ष न होता तो ईरान ने बहुत पहले ही इसराइल को नष्ट करने के लिए परमाणु बम हासिल कर लिए होते। ईरान यहूदी राज्य को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपना जीवन इस परिणाम को रोकने के लिए समर्पित कर दिया है। जब तक मैं इसराइल का प्रधानमंत्री हूँ, ऐसा नहीं होगा। जो बात नेतन्याहू ने कही चंद दिन पहले, ट्रंप यही दावा कर चुके हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो इसराइल को तबाह कर देता।
13: You can't have a nuclear weapon. His was a path to a nuclear weapon. They were developing during his administration nuclear weapon. If they had a nuclear weapon, there'd be no Israel, there'd be no Middle East, and they would have absolutely shot at us. So we'll see what happens. But we hit them hard yesterday, and we're going to hit them again hard today.
0: मतलब साफ है, पूरा मामला ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर आकर लटका हुआ है। ट्रंप की जिद है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर ताला लगाएंगे। और ट्रंप की जिद के आगे ईरान के फौलादी मंसूबे दीवार बनकर खड़े हैं। यानी ट्रंप भले ही पीस डील को लेकर बड़ा दावा करें, लेकिन अब उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। या तो ट्रंप को ईरान की शर्तें माननी होंगी, नहीं तो फिर युद्ध के मैदान में जाना होगा। आज ट्रंप के लिए ईरान गले की हड्डी बन गया है, जिसे ना तो वो निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।
14: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे को सिरे से नकार दिया। ट्रंप ने जिस तरह से पहले धमकी दी और फिर ये कहकर अपनी धमकी से खुद मुकर गए कि मुस्तफा खामनेई ने हमारी नई डील को स्वीकार कर लिया है, और ये भी कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन ईरान ने दुनिया के सामने ट्रंप के दावों को झूठ बोलकर ट्रंप की भद पीट दी। अब सवाल यह है कि ट्रंप क्यों बार बार दुनिया के सामने अपनी ही बेइज्जती करवाने पर तुले हुए हैं। आइए हम आपको दिखाएं ट्रंप के ईरान के साथ युद्ध खत्म करने वाले बयान पर ईरान अब आगे क्या करने वाला है।
0: पहले हमले की बात फिर सीधे जंग खत्म करने का ऐलान। आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? फिर झूठे साबित हो गए ट्रंप। ट्रंप बोले मुश्तबा डील के लिए मान गए। ईरान बोला कोई बातचीत नहीं। परमाणु प्रोग्राम पर भी ईरान ने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया? कहां तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर दुनिया को हिला दिया था कि ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, और कहां पल भर में पलटकर ये कहने लगे कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर लिया है। ट्रंप ने ये तक कहा कि सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने नई डील को मंजूर कर लिया है। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान के साथ शांति समझौते पर इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन एक ही झटके में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे दावों की हवा निकाल दी। ईरान ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अभी कोई डील नहीं हुई है। डील की हर बात पर संबंधित अधिकारी बैठकर बात करेंगे और फिर जैसे ही मंजूरी मिलती है उसका ऐलान किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान के साथ जारी संघर्ष खत्म करने का घरेलू दबाव बढ़ रहा है। ये युद्ध अमेरिका में अलोकप्रिय साबित हुआ है और इसका आर्थिक असर भी महसूस किया जा रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में हैं जिससे युद्ध खत्म हो, राजनीतिक नुकसान रुके और अर्थव्यवस्था को राहत मिले। माना जा रहा है कि वो नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले ये संकट सुलझाना चाहते हैं।
15: ये दुश्मन बातचीत की भाषा नहीं समझता, ये सीज फायर की भाषा भी नहीं समझता, ये ताकत की भाषा समझता है। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सेना ने उन्हें अपनी ताकत दिखाई है और आगे भी ऐसा करती रहेगी।
0: एक और बड़ी बात आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने डंके की चोट पर एक ही बात कही थी, इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना होगा, और अब वो दावा सच साबित होता नजर आ रहा है। इस लड़ाई में निसंदेह अमेरिका को ही आत्मसमर्पण करना होगा। अब ट्रंप के पास दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें आत्मसमर्पण करना होगा या उन्हें हार माननी होगी। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को किसी नए हमले को लेकर चेतावनी दी है। ईरानी लोग पहाड़ों की तरह अडिग और दृढ़ खड़े हैं, और उन्होंने ईरान के मूल सिद्धांतों की रक्षा करने का दृढ़ संकल्प लिया है। हमारे लोगों को ट्रंप या इस तरह के भ्रष्ट लोगों से मिलने वाली धमकियों का कोई डर नहीं है। ईरानी राष्ट्र अपने धर्म और मातृभूमि के लिए आत्म बलिदान में ही गरिमा और मुक्ति का सच्चा अर्थ देखते हैं। अमेरिका और उसके दुष्ट राष्ट्रपति को ये समझना चाहिए कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में रणनीतिक समीकरण और सुरक्षा व्यवस्थाएं कभी भी पूर्व स्थिति में वापस नहीं आएंगी। ईश्वर की कृपा से ईरान पश्चिम एशिया क्षेत्र में अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील ठोक देगा। किसी भी दुश्मन के आक्रमण का करारा और विनाशकारी जवाब देने के लिए हमारे लोगों और सशस्त्र बलों के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है।
14: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
17: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।

0: ममता बनर्जी से टीएमसी के लोकसभा सांसदों की बगावत का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये कहना भले अभी संभव न हो, लेकिन इतना तो तय है कि दोनों ओर से तलवारें खींची हुई हैं। लोकसभा के 19 तृणमूल सांसदों के दस्तखत वाली 18 मई की चिट्ठी सामने आई है, जिसमें वो अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता की मांग रख रहे हैं। इस बागी गुट की अगुवा है काकोली घोष दस्तीदार, जिनके पास लोकसभा में टीएमसी की चीफ व्हिप का जिम्मा था, लेकिन दावा हुआ है काकोली के बागी तेवरों के बीच उन्हें ममता बनर्जी ने चीफ व्हिप पद से हटा दिया। उधर ममता बनर्जी के कैंप में मजबूती से जमे हुए सांसद कीर्ति आजाद अपनी सुरक्षा हटाए जाने का आरोप लगाकर खुद एयरगन लेकर बैठे दिखे। उन्होंने ये आरोप भी लगाया है कि टीएमसी के सांसदों को पैसे से खरीदा जा रहा है।
1: टेबल पर गन देख रहे हैं जबकि ये एयर गन है, किस वजह से आपने सर इसको रखा हुआ है?
2: फायरिंग प्रैक्टिस करता हूँ, बीजेपी का कोई गुंडा वुंडा आ गया, कुछ अटैक वटैक करे, क्योंकि मेरी सिक्योरिटी तो हटा ली गई है, मेरे होमगार्ड्स भी हटा लिए गए हैं। तो जो एमपीओ को डराया वो डर गए, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहे, मैं डरने वाला नहीं हूँ। कुछ तो थे जो 5 करोड़ में डील हुई, कुछ की 50 में ही मान गए, कुछ थे थोड़े सोचते थे हम स्मार्ट हैं, उन्होंने 10-10 लाख रुपए महीना ले लिया। ये सारा कुछ मेरे छोटे भाई निशिकांत दुबे के यहाँ हुआ, जिसको इतना प्रेम है नेहरू के साथ, तो सब वहीं हुआ। वो प्रकाश बारिक भी तो कल जो बाइट दे रहे थे उनके घर से ही दे रहे थे। तो ऑपरेशन लोटस तो इनको सफल होना था, डराना था, धमकाना था।
0: तृणमूल में हो रही उठापटक के बीच बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की दिल्ली में बागी सांसदों के साथ बैठक की संभावना बन रही है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बागी तृणमूल सांसदों की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के मौजूद होने का दावा हुआ था। उधर बागी टीएमसी सांसद सोमवार को स्पीकर ओम बिरला से मिलकर खुद को अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग कर सकते हैं। बागी गुट में शामिल सांसद जगदीश बसुनिया ने भी अब खुलकर ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी में आंतरिक लोकतंत्र का सवाल खड़ा किया है।
3: ये जो गुस्सा, ये बहुत दिन पहले का गुस्सा, थोड़ा थोड़ा गुस्सा होने होने बड़ा हो गया। पार्टी में इतना करप्शन होता है, पार्टी में इतना जो डिसेंट्रलाइज नहीं होता है, सेंट्रलाइज होता है, क्योंकि किसी को पार्टी में कुछ बोलना नहीं मौका मिलता है। हम एमपी है, हम नहीं जानता है हमारा कुचबिहार में कौन कौन सीट में कौन प्रत्याशी खड़ा हो।
0: वैसे जब ममता बनर्जी के बाकी पार्टी में अहमियत न मिलने को लेकर एक एक कर आरोप लगा रहे हैं, खासकर अभिषेक बनर्जी पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तब वरिष्ठ सांसद सौगत रॉय ने अभिषेक का बचाव किया है।
4: पार्टी का हालत खराब है, ये मैं मानता हूँ। सब कुछ के लिए अभिषेक को दोषी करना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग ये सब बोल रहे हैं, ये लोग अभिषेक का जय कहते थे पहले, 4 मई का पहले। ये लोग तो इनका इतना नाराजगी कभी नहीं बताया, मैं तो कभी नहीं सुना। तो मैं समझता हूँ इनका दल बदलना मौका परस्त है।
0: वैसे अभिषेक बनर्जी जब राजनीतिक रूप से निशाने पर हैं, तब विधायकों के फर्जी दस्तखत मामले में भी सीआईडी का शिकंजा भी बढ़ता जा रहा है। जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के लिए मौजूदा संकट से पार पाना अभी आसान नहीं लगता है। आज तक ब्यूरो

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो एकजे द नंबर वन कोरियन स्किन केयर ब्रांड नाउ इन इंडिया.

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Ooh, yeah. TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, ooh, like yeah. pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: Supreme Leader approved this deal, sir?
2: I understand the answer is yes.
3: फरवरी 2006 जब अमेरिका ने ईरान पर हमला बोला, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम बड़े नेताओं का एक झटके में सफाया हो गया। इस हमले से शुरू हुई जंग 8 अप्रैल तक चली, जब ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। अब इस लड़ाई पर फुल स्टॉप लगने जा रहा है। इस तबाही, बर्बादी और परेशानी पर अब फुल स्टॉप लगने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ न सिर्फ युद्ध खत्म होने का ऐलान किया, बल्कि साफ किया कि डील पर बात बन गई है। वीकेंड में खुशखबरी आएगी। यूरोप में टॉक टेबल सज गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सभी बातें हैं जो विवादित रही हैं। हॉर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाएगा। इस डील की 5 बड़े पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं। फौरन हॉर्मुज समुद्री रूट खुलेगा, परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत होगी, ईरानी यूरेनियम पर फॉर्मूला तय होगा, ईरान से सारे प्रतिबंध खत्म होंगे, 60 दिनों तक सीज फायर होगा। डील की सबसे बड़ी शर्त है हॉर्मुज जल डमरू बंद को खोलना, यानी वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की आवाजाही होती है। ईरान ने जिस रास्ते को दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया, अब उसी रास्ते को खोलने पर सहमति की बात सामने आई है। ईरान को लेकर अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि तेहरान कहीं परमाणु हथियार की तरफ न बढ़ जाए। एमओयू में ईरान के लिए कहा गया है कि वो परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर रास्ता निकालेगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक विकल्प ये हो सकता है कि यूएन निरीक्षकों की निगरानी में ईरान के अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित किया जाए। सबसे बड़ी राहत, प्रतिबंधों में ढील। अमेरिका ईरान को 60 दिनों तक तेल बेचने की अस्थायी छूट दे सकता है, मतलब ईरान को वो पैसा मिलना शुरू हो सकता है जिससे उसे लंबे समय से जरूरत है। लेकिन अमेरिका की शर्त होगी, पहले पालन फिर राहत। अगर ईरान समझौते की शर्त निभाता है तो ये छूट आगे बढ़ सकती है। इस पूरी डील के पीछे कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता की भूमिका बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर के मध्यस्थ अली अल थावदी और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बीच घंटों बातचीत हुई। इसी बातचीत के बाद शुरुआती सहमति बनी। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक फोन डिप्लोमेसी चली। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर भी बातचीत से जुड़े रहे। लेकिन कहानी में भी कई सवाल बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के सर्वोच्च नेता की अंतिम मंजूरी मिल गई है? रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में उच्च स्तर पर सहमति बनी है, लेकिन आखिरी मोहर बाकी हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ। इस डील की खबर ने इसराइल को भी चौंकाया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीएम नेतन्याहू को हाल की बातचीत की पूरी जानकारी नहीं थी, यानी जिस वक्त अमेरिका और ईरान बातचीत के रास्ते पर लौट रहे हैं, इसराइल की चिंता बढ़ सकती है। तेल अवीव लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त रुख की मांग करता रहा है। प्रणय उपाध्याय, सुमित चौधरी के साथ आज तक ब्यूरो।

0: आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आपसे कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। कम से कम कुछ तो डर खौफ होना चाहिए। कम से कम चोरी करने से पहले ये तो सोचना चाहिए कि क्या चुराने जा रहे हैं। पर नहीं, बस मुंह उठाए और चल दिए चोरी करने। अब आप ही बताइए, 132 मीटर ऊंचा कोई मोबाइल टावर भला चुराने की चीज़ है? कोई कैसे 10,000 किलो वजन का भारी भरकम मोबाइल टावर पूरा का पूरा चुरा सकता है? पर नहीं, चुरा लिया, मतलब कुछ भी। आपने जादू देखा है? चलिए आज आपको आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव एक जादू दिखाता हूँ। ये एक टावर है, मोबाइल टावर। 40 मीटर यानी 132 फीट ऊंचाई है इसकी। इसमें जो लोहे लगे हैं उसका कुल वजन 8 से 10 हजार किलो है। इसकी कीमत है करीब 40 लाख रुपए। इस मोबाइल टावर को चलाने के लिए एक जनरेटर की भी जरूरत पड़ती है, वो भी लगभग 1000 किलो का होगा। इस जनरेटर के बराबर में ये एक गार्ड रूम है। इस गार्ड रूम के अंदर भी टावर की कई मशीनरी रखी हुई है। तो अब जादू शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस टावर को और साथ ही इस जनरेटर और गार्ड रूम को। 1, 2, 3 और ये लीजिए, जनरेटर और गार्ड रूम के साथ साथ पूरा टावर गायब।

0: है ना कमाल का जादू, देखते ही देखते 132 फीट ऊंचा और 10,000 किलो से ज्यादा वजनी पूरा का पूरा टावर ही गायब। पर महाराज इस जादू के लिए हमें दाद मत दीजिए, हमने आपको कोई जादू वादू नहीं दिखाया। अगर दाद देनी ही है तो उन चोरों को दीजिए जो 132 फीट ऊंचा और 10,000 किलो से भी ज्यादा भारी इस पूरे के पूरे मोबाइल टावर को ही चुरा कर अपने साथ ले गए, पीछे छोड़ गए तो बस जमीन से कुछ ऊपर बतौर निशानी ये चार पांव जिन पर पूरा का पूरा टावर खड़ा था। मतलब दिमाग घूम जाए, सर चकरा जाए, यकीन पर भी यकीन ना हो यार, कोई पूरा टावर कैसे चुरा सकता है, और चुरा भी ले तो लेके कैसे जा सकता है। हमें छोड़िए, खुद पुलिस को भी शायद अब तक यकीन नहीं हुआ है कि कोई टावर चुरा सकता है, तो फिर किस मन से पुलिस FIR लिखे। इतने पढ़े लिखे SP साहब भी सामने शिकायत होने और पीछे लापता हो चुके टावर को अपनी आंखों से देखने के बाद भी ये मानने को तैयार ही नहीं कि कोई टावर भी चुरा सकता है। इसीलिए जब हमारे रिपोर्टर ने मोबाइल टावर चोरी की बात पर उनसे सवाल किया तो सुनिए पहले वो क्या जवाब देते हैं।
1: जी, एक आवेदन अभी आया है, उस आवेदन के अंतर्गत में बताया गया है कि एक जो टावर था वो लगभग 10 से 15 दिन पहले जो है उसको वहाँ से हटाया गया है, और इसी के संबंध में जो है हम लोगों ने जो है जांच प्रारंभ कर दी है। इसमें जो ओनर हैं जो ज़मीन के जिनके यहाँ पे टावर जो स्थित था उनसे भी जो है हम लोग जो है पूछताछ कर रहे हैं।
0: पर कंपनी लिखित में शिकायत दे रही है कि उनका टावर चोरी हो गया है, ये रही वो शिकायत। इसमें साफ लिखा है कि मोबाइल टावर जो 40 मीटर ऊंचा है और जिसके साथ साथ 15 किलोवाट का जनरेटर और साथ में कुछ अन्य उपकरण अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी कर लिया गया है। अब जैसे ही हमारे रिपोर्टर ने SP साहब से पूछा कि टावर हटाया नहीं गया है बल्कि चोरी हुआ है, तब वो जांच की बात करने लगते हैं।
2: कंपनी कह रही है कि उसका चोरी हुआ है, ये बात
1: वो बिल्कुल, जैसे ही मामला जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, प्रकाश में आ जाएगा ये मामला, तो उसमें हम लोग FIR करके आगे कार्रवाई करेंगे।
0: खैर, अब कंपनी की शिकायत और लुट चुकी इस लुटी पिटी जमीन की तस्वीर पर यकीन तो करना ही होगा कि मोबाइल टावर चोरी हो चुका है। पर ये कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया, और इतना बड़ा और इतना भारी भरकम चोरी का आइडिया आखिर आया कहां से? मतलब पूरे के पूरे टावर को चुरा लेने का मतलब है कई दिनों का काम, किश्तों में काम, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चोरी का माल उठाकर ले जाने का काम, और ये सारा काम खुलेआम और वो भी दिन की रोशनी में करना है। फिर टावर चुराने वाले चोरों में ऐसा जिगरा आया कहां से? क्यों जिस जमीन पर ये मोबाइल टावर लगा है उसके मालिक को इसका पता नहीं चला? क्यों आस पड़ोस के लोगों को इसे लेकर कोई शक नहीं हुआ? गाड़ियों में भर भर कर टावर लुटता रहा, और क्यों पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? पूरा का पूरा टावर चोर हजम कर गए, टावर वाली कंपनी को इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी? तो चलिए अब आपको सिलसिलेवार द ग्रेट मोबाइल टावर हाइस्ट यानी चोरी की कहानी सुनाता हूं। बात 16 साल पुरानी है, 2010 की। GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने बक्सर जिले के डुमराव इलाके में एक मोबाइल टावर लगाया था। ये मोबाइल टावर इलाके के ही हरेनाथ यादव की जमीन पर लगा था। इस मोबाइल टावर को लगाने का मकसद वही था जो हर मोबाइल टावर का होता है, आसपास के इलाके को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ना। हरेनाथ को उनकी जमीन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए 3,000 रुपए महीना किराया मिलता था। एग्रीमेंट 12 सालों के लिए था, यानी 2022 तक। लेकिन कंपनी ने 2017 से हरेनाथ यादव को किराया देना बंद कर दिया। इस पर हरेनाथ ने कंपनी को 2-3 लीगल नोटिस भी भेजे, पर कोई जवाब नहीं आया।
3: चोरी का जानकारी नहीं है, लेकिन उसका एग्रीमेंट 2022 में खत्म हो गया था। हम उसको लीगल नोटिस दिया, 2-3 लीगल नोटिस दिया, उसका बावजूद भी वो कोई सुनवाई नहीं। उस वक्त क्या हुआ, कौन देखने जा रहा उसको, यही बात, कौन उठा ले जा रहा, क्या हो रहा, हम तो पहरेदार नहीं है।
0: 2 जून को कंपनी के कुछ अधिकारी पिछले कुछ सालों से जो टावर बंद था उसे फिर से चालू करने के लिए मौके पर पहुंचते हैं। पर मौके पर जाते ही कंपनी के अधिकारी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस जमीन पर 40 लाख का 132 फीट ऊंचा टावर खड़ा था, उस जमीन पर टावर के नाम पर टावर के सिर्फ चार पांव बचे थे, चबूतरे की शक्ल में। पहले तो खुद कंपनी के अधिकारियों को समझ नहीं आया कि वो करें क्या। दिल दिमाग मान ही नहीं रहा था कि कोई टावर भी चुरा सकता है। उन्हें लगा हो सकता है कि वो किसी गलत जगह पर टावर को ढूंढ रहे हैं। लेकिन जब आसपास चारों तरफ आसमान में नजरें उठाई तो दूर दूर तक कोई दूसरा टावर दिखा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से यकीन आया, फिर भी बेयकीनी के साथ एक शिकायत लेकर थाने पहुंची। न इससे पहले कंपनी के इन अधिकारियों ने कभी ऐसी शिकायत लिखी थी और न ही कभी इससे पहले खुद पुलिस वालों ने चोरी की ऐसी शिकायत पड़ी थी। खैर, अब मामले की जांच शुरू हुई। मोबाइल टावर चोरी होने की खबर डुमराओं से बाहर निकलकर सोशल मीडिया के जरिए पहले बिहार और फिर पूरे देश और दुनिया तक पहुंच गई। जो भी सुन रहा था हैरान बाद में हो रहा था, हंस पहले रहा था। मतलब सच में ऐसा हो सकता है? पर टावर चोरी तो हुआ था, लिहाजा पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सबसे पहले तो ये जानना था कि टावर चोरी हुआ कैसे। तो शुरुआती जांच में जो आधी कच्ची आधी पक्की जानकारी सामने आई वो कुछ यूं थी। जनरेटर को छोड़ दें तो सवाल ये कि चोर टावर क्यों चुराएंगे। तो अंदाजा हुआ कि इतना लंबा टावर जिसमें 10,000 किलो से ज्यादा लोहा था, मतलब लोहा बेचकर ही लाखों कमाया जा सकता है। पर 132 फीट ऊंचे टावर को काटने और तोड़ने के लिए जिगरे के साथ साथ मशीनें और औजार भी चाहिए, फिर लोहे को बटोर कर ले जाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चाहिए, और उससे भी जरूरी ये कि जब टावर कट रहा हो तो लोगों को शक भी ना हो। तो चोरों ने इन सारी बातों का ध्यान रखा। जो थोड़े बहुत गवाह सामने आए, कैमरे पर नहीं पुलिस के, उनके हिसाब से इस पूरे टावर को चुराने में चोरों ने 3 दिन का वक्त लिया। इन 3 दिनों में चोर तमाम औजारों और गैस कटर मशीनों के साथ यहाँ आए, किश्तों में टावर को छोटा करते और फिर काटे गए टावर को छोटे छोटे लोहे को गाड़ी में रखकर निकल लेते, फिर अगले दिन वापस आने के लिए। 10,000 किलो लोहा ले जाने के लिए जाहिर है कई गाड़ियां चाहिए होंगी या फिर बड़ी गाड़ियां चाहिए होंगी, लेकिन इस मोबाइल टावर तक जाने वाला जो इकलौता रास्ता है उसको देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां तक कोई बड़ी गाड़ी यानी ट्रक या ट्रैक्टर आ ही नहीं सकता। छोटी गाड़ियां जरूर आ सकती है। तो क्या चोरों ने छोटी गाड़ियों में भर भर कर टावर को समेटा?
4: 40 मीटर ऊंचे यानी कि 132 फीट ऊंचे मोबाइल टावर को चोर आंखों के सामने कैसे उड़ा ले गए, देखिए कैसे। ये जो वही जगह है जहां से मोबाइल टावर था और उस यहां से चोर उड़ा ले गए। अब आपको मैं दिखाता हूँ कितनी सकरी ये रास्ते हैं, उन सकरे रास्तों से कैसे जो चोर थे वो इस पूरा का पूरा मोबाइल टावर को धीरे धीरे करके उड़ा ले गए। यानी कि देखिए अगल बगल पूरा मकान बना हुआ है और ये पतला रास्ता है, इसमें कोई ट्रक भी नहीं जा सकता है, छोटा सा कहिए तो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन जा सकते हैं। और चोरों का हिम्मत देखिए कि कैसे वो इस सकरे रास्ते से वो लगातार यहाँ से चोरी करते रहे और करीब 132 फीट ऊंचे उस टावर को वो उड़ा ले गए, जिसकी चर्चा इस समय बिहार में बनी हुई है।
0: वैसे पुलिस को शिकायत दिए हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस शिकायत को FIR में नहीं बदला है। कायदे से शिकायत मिलने के 72 घंटे के अंदर FIR दर्ज हो जानी चाहिए, पर हो सकता है यहाँ इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि चोरी भी तो 132 फीट ऊंची हुई है। अब ऐसी लंबी चौड़ी और नायाब चोरी की FIR भी तो नायाब ही होगी। तो बस FIR दर्ज होने दीजिए, उसका मजमून और अगर गलती से चोर पकड़े गए और ये टावर टुकड़ों और किश्तों में कहीं से बरामद हो गया तो अगली बार आपको जरूर पढ़ाएंगे भी और दिखाएंगे भी। वैसे डुमराव पुलिस को हम 2 केस स्टडी दे सकते हैं, शायद उस केस स्टडी से वो इस मोबाइल टावर की चोरी का कोई सुराग ढूंढ निकाले। इत्तेफाक से ये दोनों केस स्टडी बिहार के ही पटना की है। 2022 में पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक रोज GTPL हैथवे लिमिटेड कंपनी के नाम पर कुछ लोग लल्लन सिंह के घर पहुंचते हैं। असल में लल्लन सिंह की छत पर इस कंपनी का मोबाइल टावर लगा था, 50 मीटर ऊंचा टावर, कंपनी के अधिकारियों के भेष में आए चोरों ने ललन सिंह से कहा कि कंपनी घाटे में चल रही है, इसीलिए वो इस टावर को बंद कर रहे हैं। इसके बाद पूरे 3 दिन तक उन लोगों ने टावर को किश्तों में काटा और अपने साथ ले गए। जब कनेक्टिविटी की शिकायतें आनी शुरू हुई, तब कंपनी के असली लोग ललन सिंह के घर पहुंचे और देखा कि टावर ही गायब है, तब इस चोरी का खुलासा हुआ। इसी तरह पटना में ही एयरसेल मोबाइल कंपनी का एक टावर भी कंपनी का मुलाजिम बनकर चोरों ने एक घर की छत से उड़ा लिया था। वैसे खाली मोबाइल टावर की चोरी पर ही आप क्यों हैरान हो रहे हैं? ये वो बिहार है जहां एक बार चोरों ने रोहतास जिले में लोहे और स्टील का एक पूरा पुल ही चुरा लिया था। इतना ही नहीं, इसी बिहार के बरौनी इलाके में नवंबर 2022 में भारतीय रेल का डीजल का एक पूरा इंजन ही चोर चुरा कर ले गए। असल में एक डीजल इंजन मरम्मत के लिए बरौनी के रेलवे यार्ड में आया था। चोरों ने जिस जगह ये इंजन यार्ड में खड़ी थी वहां तक एक सुरंग बनाई, फिर उसी सुरंग के रास्ते कई दिनों तक इंजन के कलपुर्जे काटते निकालते रहे और बोरियों में भर भर कर एक गोदाम में रखते रहे। कई दिनों बाद जब डीजल इंजन के नाम पर सिर्फ ढांचा बचा, तब रेल स्टाफ की नजर पड़ी। बरौनी पुलिस में डीजल इंजन की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई, तब कहीं जाकर मामला सामने आया। तब पुलिस ने जांच के बाद उसी सुरंग के रास्ते उस गोदाम का पता लगाया। ज्यादातर माल तो बाजार में बिक चुका था, फिर भी कई बोरियों में डीजल इंजन का इंजन और उसके कई कलपुर्जे बरामद हुए। अब आप ही बताइए, मनी हाइस्ट जैसी कहानियां बड़ी हैं या हमारे बिहार के चोर बड़े? मतलब जिसके चोरी होने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, ये उसे तक चुरा ले जाते हैं। वाकई कमाल है। पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक। और अब चोरों और चोरी की इस दुनिया से

0: पूरे चार दिन तक, यानी कुल 96 घंटे। जरा सोचिए, इस भयानक गर्मी में जब इंसान के लिए बगैर दाना पानी के चंद घंटे भी निकालना मुश्किल हो रहा हो, तब बगैर खाए पिए सोए या बैठे वो पूरे 4 दिनों तक यूं ही कुएं की गहराई में खड़ा रहा, और हर गुजरते घंटे के साथ उसकी उम्मीद की डोर कमजोर पड़ती रही। चूंकि कुएं के आसपास दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी, तो कुएं में गिरने के कुछ ही देर बाद उसकी उम्मीद भी टूटने लगी थी। असल में कुएं में गिरने के बाद उसने पहले मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने की शुरुआत की। वो चीखा, चिल्लाया, देर तक बचाओ बचाओ का शोर मचाता रहा, लेकिन यहां सुनने वाला कोई नहीं था। मगर उसकी उम्मीद की डोर बेशक टूटती जा रही थी, उसने ऊपर वाले पर आस्था की डोरी थामे रखी और लगातार भगवान को याद करता रहा। ये सिलसिला करीब 96 घंटों तक यूं ही चलता रहा, और तब पूरे 4 दिनों के बाद एकाएक करिश्मा हुआ। असल में 4 दिनों के बाद एक इलाकाई शख्स वहां जलावन के लिए लकड़ियां बटोरने पहुंचा, और उसके कानों में हे भगवान की आवाज पड़ी, जो कुएं के अंदर से आ रही थी। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसने देखा कि कुएं में एक नौजवान पिंडलियों तक गंदे पानी में खड़ा मदद के लिए कातर निगाहों से ऊपर ताक रहा है। अब जल्द ही बात पहले गांव वालों तक और फिर पुलिस तक और तब रेस्क्यू वर्कर्स तक पहुंची। अगले चंद घंटों में तुलसीराम कुएं और पानी से बाहर आ चुका था, लेकिन 4 दिन तक पानी में भूखे प्यासे बगैर सोए खड़े खड़े तुलसीराम की हालत अब ऐसी हो चुकी थी कि उसे अपना ही होश नहीं था। अपने कदमों पर खड़ा होना तो दूर की बात थी, लिहाजा कुएं से बाहर आते ही वो निढाल होकर पहले जमीन पर बैठ गया और फिर लेट गया। इसके बाद उसे स्ट्रेचर के सहारे अस्पताल तक ले जाया गया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। लेकिन 4 दिनों की त्रासदी ऐसी थी कि वो अपनी मर्जी से अपना हाथ तक ऊपर नहीं उठा पा रहा था। ऊपर से 4 दिनों तक कीचड़ से भरे गंदे पानी में डूबे उसके पैर अब इन्फेक्शन का शिकार हो चुके थे।
1: मुई आईली काट झाँटी करी आमर गाँ नर्सरी के बोले समलेपद्र नर्सरी के बोले से न डबेल कुआटे अच्छे से कुआ न गोटे मनीषटे पड़ी बोले भगवान भगवान बोली लड़ूला से झाँके मुई अमरी पड़ी आउ मत घीच बोला जे मुई किसुनी धरी लोकं डाखी आनुछे आउ तोते घीचमी बोली आ लोग बाग डाखी आनली समलेपद्र गाँनु आरु लोग सेन विचार कले जे थाना के टिके जनामा थाना बाबू आसले टिके घिचमा बलवीर कहले आउ थाना आसला दमकल आसला आउ ताहाके घिचा खुची करी करी हॉस्पिटल नै छु।
0: लेकिन ये तो रही एक नौजवान के अंधे कुएं में गिरने और 4 दिनों के बाद उसके रेस्क्यू की कहानी। अब सवाल ये है कि आखिर तुलसीराम इस कुएं में कैसे पहुंचा? तो जवाब है, कुएं में किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि दोस्तों की गद्दारी के चलते पहुंचा। बरगढ़ जिले का रहने वाला तुलसीराम अपने कुछ दोस्तों के साथ 7 जून को पार्टी करने निकला था, और सभी दोस्त बीजेपुर ब्लॉक के इस सुनसान कुएं के पास आ गए। लेकिन पीने पिलाने के बाद उसके दोस्तों ने ही तुलसीराम के साथ गद्दारी कर डाली। पहले शराब के नशे में दोस्तों ने तुलसीराम के साथ लूटपाट की और उसे बुरी तरह से पीटा, कुछ इतना पीटा कि तुलसीराम बेहोश हो गया। यही वो वक्त था जब दोस्तों को लगा कि शायद तुलसीराम की मौत हो गई है। बस इसी के बाद गद्दार दोस्तों ने तुलसीराम की लाश ठिकाने लगाने के इरादे से इस सुनसान इलाके में मौजूद अंधे कुएं में फेंक दिया, एक ऐसा कुआं जिसका सालों से कोई इस्तेमाल नहीं हुआ था। कुएं के पानी में गिरते ही तुलसीराम को होश तो आ गया, लेकिन तब तक उसके गद्दार दोस्त फरार हो चुके थे, जबकि दूर दूर तक उस इलाके में और कोई भी नहीं था। ऐसे में तुलसीराम की खुद के जिंदा रहने की उम्मीद खत्म होने लगी थी। उसके पास सिवाय ऊपर वाले को याद करने और मदद के लिए चीखने चिल्लाने के और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सच्चाई यही है कि वो मदद के लिए रोता चिल्लाता रहा, और एक एक कर घंटे और दिन गुजरते रहे। हर लम्हे के साथ वो कमजोर, बीमार और हताश होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार जो हुआ उसे करिश्मा ही कहा जाएगा। पास के गांव के रहने वाले एक शख्स ने एकाएक उसकी आवाज सुनी और चंद घंटों में तुलसीराम कुएं से बाहर आ गया। फिलहाल पुलिस ने तुलसीराम के गद्दार दोस्तों को कत्ल की कोशिश के इल्जाम में दबोच लिया है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।

0: जिस तरह पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की विदाई के बाद टीएमसी में बगावत हो रही है, टीएमसी के सांसद और बड़ी संख्या में विधायक अलग गुट बनाने की मांग कर रहे हैं, उसके बाद सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ममता अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का मन बना रही है। कुछ ऐसी ही अटकलें महाराष्ट्र में एनसीपी शरद गुट को लेकर भी हो रही है। क्या शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करने जा रहे हैं, क्योंकि 10 जून को एनसीपी के स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने खुलकर कहा कि पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल की तुलना नेहरू जी से नहीं की जा सकती। पवार के नेहरू प्रेम से विलय वाली चर्चा को बल मिल रहा है।
1: नेहरू जी के लिए प्रधानमंत्री उससे जिसके लिए अस्थिर प्रधानमंत्री आनंद है
0: टीएमसी और एनसीपी शरद गुट के कांग्रेस में संभावित विलय को लेकर सवाल पर महाराष्ट्र में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को डूबता जहाज करार दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल विलय करेंगे तो बीजेपी को फायदा ही होगा।
2: विलीनीकरण की बात चल रही है, एक पार्टी दूसरी पार्टी में जाएगी, तो जैसा मैंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, न ये पार्टी कह रही है न वो पार्टी कह रही है, तीसरा ही कह रहा है और उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी पार्टियां, इसके नेता ये सीजन है, ये होशियार है। कांग्रेस डूबती नाव है, डूबती नाव में कोई पैर नहीं रखता, इनमें से कोई डूबती नाव में पैर नहीं रखेगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, अगर ये साथ में आते हैं तो हमारे लिए तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्पेस है, पॉलिटिकल स्पेस, वो बढ़ता है। आज इतनी पार्टियां होने के कारण हमारा पॉलिटिकल स्पेस ये कहीं ना कहीं बढ़ने के ऊपर थोड़ी मर्यादा आती है, तो ये अगर कंसोलिडेट करते हैं तो हमारे लिए ज्यादा स्पेस तैयार होता है, इसलिए हमको उसमें चिंता की बात नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि डूबती नाव में कोई पाव नहीं रखेगा।
0: फडणवीस के बयान पर पलटवार करने में कांग्रेस ने जरा भी देरी नहीं की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने बीजेपी को छोटी पार्टियों को निगल जाने वाली डायन तक बता डाला।
3: कांग्रेस मुक्त भारत का की सौगात देकर ढिंडोरा पीट कर अच्छे दिन का गाजर दिखाते हुए 12 साल पहले मोदी सरकार और भारतीय जनता पक्ष जो है पार्टी जो है देश में और राज्य में आई, मगर वो कांग्रेस मुक्त देश कर नहीं पाई, बल्कि कांग्रेस ही एकलौती आशा अब देशवासियों की और गणतंत्र और लोकतंत्र की है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो चेटकीन है, दूसरी पार्टियां निगलने वाली खाने वाली, दूसरी पार्टी की नेता खाने वाली जो दल है, उन्होंने कांग्रेस के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस का और इस देश के आम आदमी का और हमारी गंगा जमीनी तहजीब की, हमारी धरोहर का, चोली दामन का साथ है। तो अन्य दलों को लेने की बात कब आती है, तो भारतीय जनता पार्टी का किरदार जो है वो बिगड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, इसलिए उसको कुछ बाहर से लोग लेना पड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी दिन ब दिन जो है वो कमजोर होते जा रही है।
0: वहीं शरद पवार की बेटी और एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने विलय के प्रस्तावों पर कूटनीतिक रुख अपनाते हुए कहा कि छाता लेना है या रेनकोट, ये फैसला बारिश शुरू होने के बाद किया जाएगा। हालांकि उन्होंने विपक्ष को मजबूत करने के लिए शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के सुझावों का स्वागत किया।
4: तो संजय राउत जी हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत, मेरे बड़े भाई है, तो उन्होंने एक अच्छा सुझाव दिया है, लेकिन वो सर आंखों पर, क्या होगा कैसे होगा ये वक्त ही बताएगा। और जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके, पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हैं।
0: शिवसेना यूबीटी भी एमपी में राज्यसभा सीट को लेकर कांग्रेस के साथ हुए खेल पर बीजेपी के खिलाफ भड़ास निकालती नजर आई।
5: मीनाक्षी नटराजन की सीट, राज्यसभा की सीट जिस तरह से आपने निगल ली है, चोरी की है, ये आपको शोभा नहीं देता। देश में आपका नाम काले स्याही में लिखा जाए। जब आप इस देश में राज कर रहे थे तो इस देश की लोकतंत्र प्रतिष्ठा और संस्कार को आपने खत्म कर लिया।
0: दरअसल राजनीति में माइंड गेम बहुत मायने रखता है, इसीलिए संभावित विलय की चर्चा विपक्षी दलों की बीजेपी के खिलाफ अपनी ताकत एकजुट करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। इधर कांग्रेस बार बार विपक्ष के सहयोगी दलों को बता रही है कि अगर बीजेपी का विजय रथ कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। ये सच है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले तक ममता बनर्जी को मोदी के खिलाफ चेहरे के रूप में मजबूत दावेदार माना जा रहा था, लेकिन टीएमसी की हार और बाद में पार्टी में मची भागम भाग की वजह से राहुल गांधी ही मोदी के खिलाफ सबसे ताकतवर चेहरे के रूप में विपक्ष के पोस्टर बॉय बन सकते हैं।
6: तो अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष वाकई एक छतरी के नीचे आएगा, या फिर ये डूबती नैया और डायन का सियासी खेल बयानों तक ही सिमट कर रह जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और ये देखना दिलचस्प है कि इन चर्चाओं का असली अर्थ क्या निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखे के अवैध व्यापार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पहली बार गुटखा बेचने, बनाने, सप्लाई करने, ट्रांसपोर्ट करने वालों के विरुद्ध महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी कि मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में गुटखा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के कारण कई जगह नहीं बिक रहा, लेकिन अवैध रूप से जगह जगह बेचा जा रहा है।
8: डॉक्टर है या कसाई है?
9: कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो में मुंबई के केईएम यानी किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल की स्टूडेंट सेजल पवार के विवादित बयान पर हंगामा जारी। दरअसल उन्होंने कॉमेडी शो में हॉस्पिटल के छात्रों की स्टडी के लिए डोनेट किए जाने वाले शवों को लेकर बेहद अश्लील बयान दिया था, जिसके बाद प्रणीत मोरे ने भी उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हालांकि विवादित बयान वायरल होने के बाद सेजल पवार ने माफी भी मांगी।
10: मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी एंड आई जस्ट वांटेड टू कम हियर एंड से दैट आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी, इट वॉज अ मिस्टेक एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दैट।
9: मुंबई में अंग्रेजों के जमाने के केईएम हॉस्पिटल को बीएमसी संचालित करती है। विवाद बढ़ने के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने सेजल पवार के साथ स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगड़ा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल प्रशासन ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई।
11: डॉक्टर अनीता चालक और डॉक्टर श्रद्धा मोरे की, दो लोगों की जो डॉक्टर की कमेटी बिठाई गई है केईएम हॉस्पिटल द्वारा, जो इस बात की जांच करेंगी कि वाकई किसी तरीके से केईएम अस्पताल की बदनामी और जो पूरा का पूरा जो रूटीन है जहां पर कैडेवर डोनेशन जो किया जाता है, क्या उस पर किसी तरह से समस्या आ सकती है। इन सब मुद्दों पर जो ये कमेटी है वो अपनी जाँच पड़ताल करेगी और रिपोर्ट देगी। दरअसल लोगों का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है कि जो MBBS स्टूडेंट हैं सेजल पवार, उन्होंने इस तरह की बात कही है। इससे पहले भी 2-3 बार कहा है उन्होंने सोशल मीडिया पे केईएम की बदनामी की है, जिसकी वजह से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें समझाने की पहले भी कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मानी।
9: बीएमसी प्रशासन भी उनके वायरल बयान की जांच कर रहा है।
11: MBBS की स्टूडेंट सेजल पवार ने जो बातें कही, एक वायरल वीडियो जो चल रहा है उसके बारे में, आखिर केईएम हॉस्पिटल, सिविक अथॉरिटीज, हेल्थ कमेटी, इन लोग का क्या कहना है, ये जानते हैं। हेल्थ कमेटी के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका, आप लोग ने भी देखा होगा वो वीडियो, क्या
12: कैसे है? सरकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न संस्थाएं, अवयव दान जिसको ऑर्गेन डोनेशन बोलते हैं, इसके विषय में जागरूकता लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो भविष्य है, भविष्य में डॉक्टर बनने वाले हैं और एक समाज को जान बचाने के लिए और दिशा देने का काम करने वाले रहते हैं, और ये विषय और बोलना ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी कड़े तौर पे मैं निंदा करता हूँ।
11: ये जो इंक्वायरी है ये अभी 1-2 दिन चलेगी और उसके बाद रिपोर्ट आएगी। हार्श एक स्टेप लेने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सेजल पवार पे, जिन्होंने इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पे किए।
9: सेजल अपने बयान पर बार बार माफी मांग रही हैं, वो भरोसा दे रही हैं कि जो गलती अनजाने में हुई वो दोबारा नहीं होगी।
10: आई एम सो सॉरी अबाउट दैट, मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी। इट्स वेरी बैड टू सी वट एवर नैरेटिव हैज बीन सेट एंड बस मुझे इतना बोलना था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नो इट्स माई मिस्टेक. एंड when I went on a show, comedy show, it was my first stand-up comedy ever. मैं इसके पहले कभी stand-up show में नहीं गई थी. Only thing is कि I wanted to come here and give a public apology that मेरे side से ऐसा कभी नहीं होगा वापस.
9: सेजल KEM अस्पताल की छात्रा हैं, हालांकि KEM MARD यानी महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर से वो नहीं जुड़ी हैं, लेकिन सेजल की टिप्पणी पर महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई.
11: सोशल मीडिया पे जिस तरह से वायरल हो रहा है KEM के थर्ड ईयर स्टूडेंट पवार की जिस तरह से जो कमेंट है, आखिर डॉक्टर्स का क्या कहना है और खासतौर से मार्ड, क्योंकि हमारे साथ जो लोग हैं वो मार्ड के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है KEM मार्ड के, उनसे बात करते हैं. सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी रिएक्शन क्या था जब आप लोगों ने वीडियो देखा.
8: सो हमारा रिएक्शन ये था कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम KEM स्टूडेंट से. KEM के कैसे टॉप रेप्यूटेड कॉलेज है और ऐसे कॉलेज से स्टूडेंट ऐसे बात कर रहे, तो वो गलत मैसेज जाता है समाज में.
11: आप लोग भी कैडेवर पे सीखे होंगे, कभी आप लोगों ने भी इस तरह से सोचा?
13: नो, इनफैक्ट हम लोग फर्स्ट डे ओथ लेते हैं एंड देर आर डिफरेंट क्लासेस, एथिक्स की क्लासेस होती हैं बकायदा, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट. एंड वी हैव अ पोएट्री रिटन आउटसाइड ऑफ डिसेक्शन हॉल, दैट साइड द कैडेवर, एंड वी सी इट वेरी पोएटिकली एंड वेरी आई से स्पिरिचुअली इवन. दे आर कॉल्ड आवर फर्स्ट टीचर्स, दैट वाज हर्टफुल टू सी.
11: डिमांड आ रही कि उसको सस्पेंड किया जाए. आप लोगों का क्या कहना है?
8: ऑनलाइन विलिफिकेशन या फिर पब्लिकली जो डिमांड्स आ रही है उनका, उनके बारे में नहीं, लेकिन हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कुछ तो एक्शंस होना चाहिए उस पर, ताकि आगे चल के कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स ऐसे मिस स्टेटमेंट ना करे. इसलिए
9: विवाद बढ़ा तो सियासत भी होनी ही थी. BMC की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT नेता किशोरी पेडनेकर ने हॉस्पिटल पहुंचकर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
14: स्टैंड अप कॉमेडी में जब हम जाते हैं, सामने से सवाल पूछते हैं, तो ध्यान रख के जवाब देना चाहिए. ये लड़की 3-4 बार उन्होंने माफी मांगी है अलग अलग कारणों से. कभी हॉस्पिटल को दर्टी बोलती है, कभी टॉक्साइड बोलती है, कभी कुछ भी चिंदी बोलती है. अभी तो बहुत ही संगीन जुर्माना उन्हें किया. उन्होंने क्या किया है, पर स्टैंड अप कॉमेडी में डेड बॉडी डोनेशन, डेड बॉडी होती है, वो बॉडी के ऊपर उन्होंने जिस तरह बात की है प्राइवेट पार्ट के बारे में, वो तो मेल की थी तो भी इज्जत मेल को भी होती है, फीमेल के बारे में तो बोले तो कितना और संवेदनशील हो सकता है. मुझे लगता है ऐसे डॉक्टर जो बाद में समाज में आएगी तो क्या होगा.
9: हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने भी इस विवादित बयान से खुद को अलग कर लिया. उनका कहना है कि डॉक्टर्स हमेशा शवों का सम्मान करते हैं और इसके लिए शपथ भी लेते हैं. फिलहाल इस विवाद पर विराम लगता नहीं दिख रहा. मुंबई में विद्या के साथ आज तक ब्यूरो.
7: मुंबई के मोतीलाल नगर में 1,00,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रोजेक्ट को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया. दरअसल स्थानीय निवासियों ने उपकरणों की पूजा का विरोध किया. लोगों का दावा था कि जरूरी शर्तें पूरी नहीं की गई और भूमि पूजन नहीं किया जा सकता है, जबकि डेवलपर का कहना था कि वो केवल उपकरणों की पूजा कर रहे थे. अडानी ग्रुप के नेतृत्व वाला ये प्रोजेक्ट 3,702 आवासीय घर बना रहा है. ये वो प्रोजेक्ट है जहां पर लोगों ने विरोध किया है और निवासी, जो स्थानीय निवासी हैं, उन लोगों ने इस पुनर्विकास प्रोजेक्ट का विरोध किया. दरअसल 1,00,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, और वहां पर उपकरणों की पूजा का विरोध किया है. डेवलपर ये कह रहा था कि हम भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो उपकरण हैं उनकी पूजा कर रहे हैं. और जो स्थानीय निवासी बोल रहे थे कि अभी तो शर्तें ही आपने पूरी नहीं की, तो फिर आप इसका भूमि पूजन या उपकरणों की पूजा कैसे कर सकते हैं?
15: इस वक्त हम गोरेगांव के मोतीलाल नगर इलाके में हैं. यहाँ पर अडानी लेड बड़ा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो होने जा रहा है. 1,00,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो है वो बताया जा रहा है. आज यहाँ पर पाइलिंग का काम शुरू करने के लिए बिल्डर की डेवलपर की तरफ से लोग आए हुए थे, ये मंडप बंधा आप कह सकते हैं, रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है ये देख सकते हैं, दूसरी तरफ ड्रिलिंग मशीन जो है वो आई हुई है। रेजिडेंट्स का कहना है कि जो उन्होंने शर्तें सामने रखी है डेवलपर के, चाहे वो फिर घर का आप कह सकते हैं कि ज़्यादा एरिया हो या फिर पहले उनके घर बन जाए रिडेवलपमेंट के उसके बाद काम शुरू हो बाकी प्रोजेक्ट का, इस तरह की ये पूरी नहीं होने पर आज जो है वो काम रोका गया है। युवराज मोहिते रहीवासी भी है मोतीलाल नगर के, क्या शर्तें लेकर के आप सामने हैं?
16: देखिए हमारी कंडीशन ऐसी है, जब ये रिडेवलपमेंट का सब मसला शुरू हुआ तब हाईकोर्ट में मेरा हलफनामा है, मेरा एफिडेविट है कि हमको रिडेवलपमेंट चाहिए और उसके बाद।
7: महाराष्ट्र में प्रतिबंधित गुटखे के अवैध व्यापार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पहली बार गुटखा बेचने, बनाने, सप्लाई करने, ट्रांसपोर्ट करने वालों के विरुद्ध महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। फिलहाल महाराष्ट्र में गुटखा पूरी तरह से प्रतिबंधित होने के बावजूद कई जगह अवैध रूप से बेचा जा रहा है।
17: प्रोहिबिटेड आइटम्स है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, इसमें एक आइटम्स में प्रोहिबिटेड है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है प्रोहिबिटेड, वो महाराष्ट्र मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं हो सकता है, सेल नहीं हो सकता है। फिर भी बहुत कार्रवाई करने के बावजूद इसका सेलिंग और अवेलेबिलिटी महाराष्ट्र में कई जगहों पर पाया जाता है। आज हमने मकोका एक्ट जो है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999, ये इसमें इन्वोक करने का निर्णय लिया है।
18: महाराष्ट्र में अब गुटखा बेचने वाले, स्मगल करने वाले, गुटखा स्मगलिंग को फाइनेंस करने वाले और ट्रांसपोर्ट करने वालों की खैर नहीं। FDA के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने आज ये ऑर्डर निकाला है कि गुटखा बेचने वाले, फाइनेंस करने वाले, स्मगल करने वाले जो लोग हैं, इस इलीगल कारोबार में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ MCOCA के तहत, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा, केस बनाया जाएगा। MCOCA के तहत अब इस कड़े सेक्शन के तहत जब कार्रवाई की जाएगी, केसेस बनाए जाएंगे, तो लोगों को 10 साल तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि गुटखा महाराष्ट्र में बंदी है, महाराष्ट्र में बैन है, और उसके बावजूद गुटखा बहुत बड़ी मात्रा में स्मगल होता है। पुलिस FDA कार्रवाई करते रहती है पर फिर भी ये स्मगलिंग रुक नहीं पा रही, इसलिए ये कड़ा कदम अब FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने ये ऑर्डर निकाला है, जिसके तहत अब MCOCA के तहत गुटखा स्मगलर, गुटखा रिटेलर, फाइनेंसर, ट्रांसपोर्टर और अन्य इन्वॉल्व लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।
7: मुंबई मेट्रो में कुछ और खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद।
19: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: need better internet? Cox Internet has the fast, reliable speeds you're looking for. Perfect for seamless streaming, gaming, and working from home. And now get Cox 300 meg internet with a 2-year plan price lock guarantee, plus equipment included.
1: Oh, yeah.
0: So get your household up to speed. Switch to Cox Internet today. Taxes and fees excluded from price guarantee.
2: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: गुजरात के अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष पूरा हो चुका है, लेकिन आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और क्या, तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय जोशी आज तक।
5: मुंबई मेट्रो में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: Tune in Radio brings the world of radio straight to you. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. From what's happening now to what you want to hear next. Enjoy it all on TuneIn. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Listen to everything and more on TuneIn.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Truth.
1: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, non-stop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
2: Swing and a foul out of play off to the left.
1: Big 12 Radio.
3: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
1: Talk Sport.
4: Yes, Talk Sport listeners. When we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
1: And more. Search sports to find the stations covering your teams.
0: Face complete oral health.
5: दो हजार सत्ताईस के पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। दिल्ली से चंडीगढ़ तक बैठकों का दौर जारी है। 2022 की करारी हार और अंतरकलह से सबक लेते हुए पंजाब कांग्रेस ने 2027 के लिए अपनी रणनीति बदल दी है। इस बार पार्टी किसी सीएम फेस के सहारे नहीं बल्कि सामूहिक नेतृत्व के दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा घोषित नहीं होगा।
6: कांग्रेस पार्टी का जेड़ा चुनाव है और राहुल गांधी साहब के नेतृत्व और खड़गे साहब के नेतृत्व और चुनाव निशान पंजा के नेतृत्व लड़ा जा रहा है। राजा वड़िंग का एक कांग्रेस पार्टी का वर्कर।
5: दरअसल कांग्रेस पुराना इतिहास नहीं दोहराना चाहती। 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ को हटाने के बाद जो अंदरूनी कलह मची उसने पार्टी को सिर्फ 18 सीटों पर समेट दिया। चन्नी को सीएम फेस बनाना भी काम नहीं आया और नवजोत सिंह सिद्धू अब पार्टी से दूरी बना चुके हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस नेताओं में गुटबाजी ना हो इसलिए राहुल गांधी ने ये सेफ गेम खेला है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इस बार चेहरों की जंग छोड़ मुद्दों के सहारे पंजाब में वापसी करना चाहती है। आज तक ब्यूरो।

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागियों की बड़ी बैठक, बंगाल के सीएम शुभेंदु से भी मिलेंगे। टीएमसी के बागियों का एक्सटेंशन प्लान, सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात, अलग गुट को मान्यता देने की करेंगे मांग। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर कोलकाता में एफआईआर दर्ज, 2026 के चुनावी संबोधन का मामला। बड़गांव भाषण मामले में अभिषेक को मिला सीआईडी का नोटिस, कहा एमपी एमएलए खरीदकर टीएमसी को झुकाना असंभव। सीएम शुभेंदु ने ममता के करीबी के एक विज्ञापन एजेंसी के खिलाफ जांच के आदेश दिए, कहा नहीं बचेंगे कोई भी दोषी। टीएमसी के बागी सांसद जगदीश बसुनिया का बयान, तृणमूल में अब बोलने की आजादी नहीं, बतौर सांसद मेरे पास कोई आजादी नहीं। 20 जून को बंगाल राज्य दिवस समारोह में शामिल होंगे मोदी, सीएम शुभेंदु ने दी जानकारी। टीएमसी सांसद ममता के करीबी कीर्ति आजाद का आरोप, हमारी सांसदों को डरा धमकाकर मामला सेट कर रहे हैं भूपेंद्र यादव, 50 लाख से 5 करोड़ में बिक रहे हैं हमारे सांसद। अभिषेक बनर्जी का कल्याण बनर्जी पर बयान, कहा वो मेरे सीनियर, उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार, मैं करता हूं उनका सम्मान। बीजेपी पर अखिलेश का बड़ा हमला, कहा वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी, मोदी पर बोले अमेरिकी दबाव में मोदी ने खो दिया है विश्वगुरु बनने का मौका। सीएम योगी पर बोले अखिलेश यादव, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ करवाने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे, हम बेरोजगारों को नौकरी देंगे। अखिलेश के कार्यकाल पर सीएम योगी का कटाक्ष, 2017 से पहले बदहाल था यूपी, पहचान का था संकट, पिछली सरकार में अयोध्या की उपेक्षा की गई। मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर योगी ने कहा, 2014 से पहले देश में अविश्वास था, अब हर स्तर पर सबके लिए काम हुआ। पंजाब को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, नितिन नवीन अमित शाह शामिल। अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में अमित शाह की समीक्षा बैठक, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुविधा पर जोर, एलजी मनोज सिन्हा शामिल। कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक में राहुल ने बीजेपी पर बोला धावा, कहा न्यायिक अव्यवस्था, नौकरशाह, संस्थाओं, चुनाव आयोग पर कब्जा, गुरुवार को हुई थी मीटिंग। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नामांकन रद्द होने के खिलाफ याचिका खारिज, कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मीनाक्षी केस को हाईकोर्ट में ले जाने का मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान, कहा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय संविधान के खिलाफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, मोदी के शासनकाल में रक्षा बजट में 2.5 लाख करोड़ से बढ़कर 8 लाख करोड़ हुआ। एयर इंडिया 171 विमान हादसे की जांच में प्रगति, AAIB का बयान, सभी तकनीकी पहलुओं की जांच जारी, निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध। बिहार में राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल की कार्रवाई, भ्रष्टाचार लापरवाही में 8 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन। महाराष्ट्र में गुटखा कारोबार पर अब मकूका के तहत कार्रवाई की जाएगी, प्रतिबंधित गुटखे के कारोबार के खिलाफ सख्त धाराओं में होगा केस दर्ज। भरतपुर नगर पालिका की ईओ ने विधायक ऋतु बनावत को लगाई फटकार, एमएलए ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर टेंडर में घोटाले की जांच की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में NSPCL में बालिका सशक्तिकरण मिशन 2026 खत्म, 80 स्कूली ग्रामीण बेटियों ने आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास के गुर सीखे। मसूरी में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तापमान गिरा। उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुट साहिब में बर्फबारी, हर तरफ बर्फ की सफेद चादर, कड़ाके की पड़ रही है हेमकुट साहिब में ठंड। देहरादून में मूसलाधार बारिश, तेज हवा, कैंट रोड पर उखड़े 4 बड़े पेड़, ऑटो रिक्शा को नुकसान। यूपी के बिजनौर में तेज आंधी बारिश, कई पेड़ गिरे, यातायात प्रभावित। राजस्थान के श्री गंगानगर में आंधी बारिश का अलर्ट, ओला गिरने से तापमान 15 डिग्री लुढ़का। तमिलनाडु के टेंकासी में भारी बारिश, डैम में पानी का स्तर बढ़ा। आज धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे, 1:30 बजे से मैच। 3 मैचों की सीरीज, भारत की टीम की कप्तानी शुभमन गिल कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान वनडे मुकाबले की पुलिस प्रशासन की तैयारियां, 13 जून तक धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर रोक। फुटबॉल वर्ल्ड कप का आज दूसरा दिन, पहले मुकाबले में आमने सामने मेजबान कनाडा और बोस्निया।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में भिड़ेंगे अमेरिका और पराग्वे। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 5 गिरफ्तार। अलवर में 2 पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग को डंडे से पीटा, वीडियो वायरल। अलवर में फाइनेंस कंपनी का रिकवरी एजेंट निकला चोर, इंजन चेचिस नंबर बदलकर चोरी करता था, 13 कारें बेच चुका है। शाहजहांपुर में पकड़ा गया फर्जी ब्रिगेडियर, नकली पिस्टल आई कार्ड बरामद। नागौर हत्याकांड में खुलासा, पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। कस्टम ने हैदराबाद और अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ से अधिक का सोना पकड़ा, दुबई से आ रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सोलापुर में पति ने पत्नी बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या कर ली, शेयर बाजार में हुआ था भारी नुकसान। गुरुग्राम के सेक्टर 37 में तेज रफ्तार बस का कहर, 4 को कुचला, 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। जालना में शिक्षक की शर्मनाक करतूत, 14 वर्षीय छात्रा को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म किया, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के प्रतापगढ़ में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 2.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, मादक पदार्थ तस्करी से अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई। फिरोजाबाद में ट्रेन पर पथराव मामले में एक्शन, हिरासत में 3 नाबालिग, स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस मारे पत्थर। नशा तस्करों के विरुद्ध अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बड़ी खेप बरामद, कई गिरफ्तार। टोंक में महिला का क्षत विक्षत शव बोरी से बरामद, 4 अलग अलग टीमें पुलिस ने बनाई। चंदौली में फर्जी ढंग से पैसों की हेराफेरी के मामले में 3 गिरफ्तार, लोन के नाम पर ठगी। फरीदाबाद में विवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। खाड़ी उथल पुथल में भारत पर असर, मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 पर पहुंची, अप्रैल में थी 3.48। युद्ध के बावजूद रिफाइनरियों ने अगस्त तक के लिए क्रूड और एलपीजी का भंडार जमा किया, कंपनियों ने एडनॉक समेत कई सप्लायर्स से खरीद बढ़ा दी। सीएलएसए के अनुसार आरबीआई के हालिया कदमों से भारत में 30 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा आने की संभावना, भुगतान मजबूत। पश्चिम एशिया में जारी तनाव से 2026 में डिलीवरी होने वाले करीब 4.5 लाख घरों की समय सीमा प्रभावित होने की आशंका, असर मुंबई पुणे बेंगलुरु पर। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट आने में 2 महीने का वक्त लगेगा, तभी सार्वजनिक की जाएगी। ट्रंप ने हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर हमले के लिए ईरान को ठहराया जिम्मेदार, कहा ईरान ने ड्रोन हमला किया। ट्रंप का ऐलान, कहा अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध खत्म कर दिया है। जॉर्जिया में एक रैली में बोले, ईरान की खबर, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े किसी मुद्दे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, हस्ताक्षर अभी हमने नहीं किए हैं। ईरान अमेरिका युद्ध विराम को लग सकता है झटका, इजरायली पीएम के दफ्तर की ओर से बयान में कहा इसमें हम पक्षकार नहीं। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट के हवाले से बड़ी खबर, जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से करेंगे हस्ताक्षर, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा शांति समझौता। दक्षिण लेबनान पर इसराइल का भीषण हमला, कई गांवों को निशाना बनाया, नाबितीय शहर के आसपास के इलाकों पर हिजबुल्ला के ठिकानों पर भीषण हमला। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के शहरों पर बड़े हमले किए, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रीय दिवस पर पुतिन को बधाई दी, कहा हम हमेशा रूस के साथ खड़े हैं। चीन ने अमेरिकी नागरिकों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया, 2 को जेल में डाला गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बढ़ती महंगाई और तेल के दामों से नाराज।

अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले हम आपको ईरान में ईएमआई पर राशन खरीदने का पूरा सच बताएंगे। हमने ईरान में युद्ध की वजह से किश्तों में मिल रहे राशन की खबर दिखाई थी। न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर आधारित थी। भारत में ईरान के दूतावास ने इस रिपोर्ट को खारिज किया, कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले ईरानी मूल के पत्रकार से बात की है, उनसे पूछा है कि इस खबर का सोर्स क्या है। आज हम आपको इस खबर की पूरी सच्चाई दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का संपूर्ण सीज फायर हो गया है या एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ खेल रहे हैं। कल ट्रंप ने कहा कि ईरान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भीषण बमबारी की जाएगी। उनका कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका की बातचीत हाई लेवल तक पहुंच गई है, उनकी शर्तों को मंजूरी मिल गई है। आखिर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की स्थिति उनकी खुद की वजह से हो रही है या फिर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की वजह से। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ईरान में ईएमआई पर राशन खरीदने का पूरा सच क्या है। दो दिन पहले 10 जून को हमने इसी शो में आपको ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये रिपोर्ट, ये दावा ईरान इंटरनेशनल का है, जो ये दावा करती है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से लोग अब राशन और घरेलू इस्तेमाल की दूसरी चीजें इंस्टॉलमेंट्स यानी ईएमआई पर खरीद रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज संस्थान है जो विशेष रूप से ईरान की खबरों को दुनिया तक पहुंचाता है और इसका मुख्यालय लंदन में है। दुनिया में जितने बड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है वो कई बार ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट को प्रसारित कर चुके हैं, और इनमें द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल और द गार्डियन का नाम शामिल है। और आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने ईरान की खबरों के लिए बहुत बार ईरान इंटरनेशनल की खबरों को प्रकाशित किया है, और इससे यह पता चलता है कि पूरी दुनिया का मीडिया ईरान इंटरनेशनल की खबरों को कवर करता आया है। अब हमने भी पूरी जिम्मेदारी के साथ 10 जून को ईरान इंटरनेशनल की यह रिपोर्ट दिखाई और ये बताया था कि ये इंटरनेशनल ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, और ये दिखाया था कि ईरान में लोग अब कीमतों में वृद्धि के कारण राशन भी, सोचिए खाने पीने की चीज भी ईएमआई लोन पर खरीद रहे हैं और वहां के दुकानदार खुद इसकी सुविधा दे रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वहां के दुकानदार ये सुविधा दे रहे हैं कि आप लोन पर, ईएमआई पर ये राशन खरीद सकते हैं। लेकिन भारत में ईरान के दूतावास ने इस खबर को पूरी तरह खारिज कर दिया और एक्स पर ये लिखा कि हमने गलत खबर दिखाई है। और ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति किसी भी रूप में प्रभावित नहीं हुई है। इसी में आगे ये भी लिखा गया कि हमने जिस ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर प्रसारित की है वो ईरान इंटरनेशनल ईरान विरोधी है और उसकी किसी भी खबर पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब यहां दो बातें समझनी जरूरी है। पहली बात यह कि हमने अपनी रिपोर्ट में कहीं यह नहीं कहा था कि ईरान में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हुई है। हमने ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बताया था कि आपूर्ति पर्याप्त है, लेकिन रिकॉर्ड कीमतों के कारण लोगों के लिए राशन और घरेलू चीजों को खरीदना मुश्किल हो गया है और इसके कारण लोग ईएमआई पर राशन खरीद रहे हैं। सामान की आपूर्ति नहीं है, यह तो विषय ही नहीं था। दूसरी बात, हमने खुद से कोई दावा नहीं किया था। हमने ईरान इंटरनेशनल को कोट करते हुए पूरी खबर बताई थी, जिसे भारत में ईरान का दूतावास गलत बता रहा है। अब ईरान का दूतावास कह सकता है कि वो ईरान इंटरनेशनल पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बात यह है कि यही रिपोर्ट दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की है, जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम खुद ये जानना चाहते थे कि अगर ईरान इस खबर को खारिज कर रहा है तो फिर ईरान इंटरनेशनल ने यह खबर कैसे प्रकाशित की। इसके लिए हमने पहले यह देखा

0: मीट से जुड़े उत्पाद खरीदते हैं। अब बड़ी बात यह है कि पत्रकार माजियार बहारी हमें इस वेबसाइट की पूरी डिटेल भेजते हैं, जिसमें साफ साफ ये लिखा है कि अब इस ऑनलाइन पोर्टल पर तारा क्रेडिट पेमेंट की सुविधा शुरू हो गई है, जो उधार देने वाला एक मोबाइल ऐप है। आप इस ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं, जिसमें सबसे ऊपर फारसी भाषा में यह लिखा है कि तारा की इस भुगतान सुविधा सक्रिय हो गई है। फिर इसके नीचे लिखा है तारा क्रेडिट सुविधा, और फिर बाद में यह लिखा है कि अब आप अपनी जरूरी वस्तुओं को तारा क्रेडिट के साथ ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तारा का मतलब उस कंपनी से है जो लोगों को राशन, खाने पीने की चीजें, दूसरा सामान ऑनलाइन खरीदने के लिए लोन देती है। इसे क्रेडिट शॉपिंग भी कहा जाता है, यानी आज इस कंपनी से आप पैसे लेकर, लोन लेकर चिकन खरीदो और फिर आसान किश्तों पर आप उनका पैसा भरते रहो। ईरान में पिछले कुछ ही वक्त में तारा के 6,93,000 यूजर्स हो गए हैं और ये जानकारी उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी है। इसी में यह भी लिखा है कि इस कंपनी के पूरे ईरान में 16,000 से ज्यादा स्टोर्स हैं, जिनसे ये साबित होता है कि ईरान में ये कंपनी लोगों को अलग अलग जो सामान है जो वो खरीदना चाहते हैं उसके लिए, चाहे चिकन हो, अंडा हो, तक ईएमआई पर खरीदने की सुविधा दे रही है। और मिस्टर गसाब नाम के जिस ऐप पर लोग चिकन और अंडे ईएमआई पर खरीद रहे हैं, उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अब तारा से ईएमआई पर सामान खरीदने की सेवा शुरू हो गई है। अब इससे ये पता चलता है कि ईरान इंटरनेशनल में जो खबर छपी और जिस पत्रकार के हवाले से ये खबर छापी गई, उनके पास अपना दावा साबित करने के लिए सबूत है। और ऐसे में इस बात का सवाल उठता ही नहीं कि हमने कोई गलत खबर चलाई, हमने वही बताया जो ईरान इंटरनेशनल में लिखा गया है और हमने अपना सोर्स भी कोट किया। जिस पत्रकार ने यह दावा किया वो इसका सबूत भी दे रहे हैं और मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया है, जिसमें वो शब्दशः ये कहते हैं कि उनकी खबर पूरी तरह सही है, ईरान की सरकार का यह दावा गलत है कि ईरान में कीमतें बढ़ने से ऐसा कोई संकट नहीं है। देखिए, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो शख्स जिन्होंने ये पूरा आर्टिकल लिखा है। माजियार बहारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान वायर के चीफ हैं। क्योंकि आप सिर्फ अंग्रेजी में बोल पाते हैं और समझते हैं, तो मैं अपने दर्शकों के लिए हिंदी में पूछकर आपसे अंग्रेजी में पूछूंगी। आप अपनी स्टोरी पर क्या आज भी कायम है? आप अपनी स्टोरी को सही कैसे साबित करेंगे? मिस्टर बहारी, हाउ विल यू प्रूव दैट योर स्टोरी इन विच यू क्लेम दैट पीपल इन Iran are now buying basic goods, grocery on EMI, correct and true? What is the proof you have on basis of which you can say that your story stands correct?
1: Well, all our stories are sourced by at least two people. We have two people as sources of the articles, and for these specific articles about installments, we have at least, for the recent one that we published yesterday, and it will be in English today, we've had five different sources. And also in the article that we're going to publish, we published yesterday in Persian, it will be in English today. It will be, we have the government sources as well in the article itself.
0: Now, my question to you is, which exact grocery shop is asking for EMI payments? Who is, which are these shops which are actually lending to people and which are saying that you can buy things from us, but you'll have to, and you can take loan and then pay us back in EMIs?
1: Yes, in the article today, we have a screenshot from a website called Mr. Ghassab, which means Mr. Butcher. And in that post, Mr. Ghassab says that people can pay for their meat products and other needs through Tara, which is an Iranian version of PayPal, in installments. But I think the easiest thing to do for the Iranian government is to allow international journalists to visit Iran and have no restrictions and be able to talk to people. At the moment, there is an internet shutdown. Very few people have access to the internet. And also when foreign journalists go to Iran, they are under constant monitoring and cannot talk to ordinary people. So if they allow people, journalists, to talk to ordinary people and ordinary shopkeepers, I'm sure our stories will be verified. So the ball is really in the court of the Iranian government, because we are very comfortable with our reporting. And we are very comfortable with our sources.

0: Of course, the conversations between a grocery shopkeeper and their people cannot be recorded all the time. And also, the Iranian government has criminalized any kind of reporting by citizen journalists. So it's very, I think, audacious for the Iranian government to have the temerity to say that you have to prove that you're right. They can just easily just lift the ban for journalists and they can easily prove it.
1: No, but you are saying that journalists can't go into Iran and find out. We want to show our viewers also a report. हम अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महंगाई वहां पर है. एंड मिस्टर बिहारी, एक्चुअली टू ऑफ आर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टुडे ग्रुप वेंट इन टू ईरान, कवर्ड द स्टोरी. सो हाउ आर यू क्लेमिंग दैट जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड इन टू ईरान? एंड how will you answer the Iranian embassy, which is now saying, which has countered your story and thereby said that you are spreading a false narrative and propaganda against Iran, and they claim that you are not the real voice of Iran?
0: Well, I don't know what Iran International does. I'm not part of Iran International. We are Iran Wire and we are a different operation. But also in Persian, we have a saying that you said something, I believed you. You insisted, I doubted it, and then you swore by it, I knew that you were lying. So the very fact that the Iranian government is going out of its way, attacking journalists in a democracy like India for publishing the truth, shows that there is something going on. As I mentioned before, the foreign journalists are allowed in Iran, but they are under constant control. For example, when Liz Doucette goes to Iran or someone from Channel 4 goes to Iran, they are not allowed to roam freely around the country. They always have to have a translator or quote-unquote minder with them. And that person has to always report to the Ministry of Intelligence and Ministry of Culture and Islamic Guidance. But they are not as free. Yes, there are some journalists allowed into Iran, but they do not have the freedom to report whatever they want.
1: ओके नहीं, आज देखिए उनका क्या है, उनका क्या क्लेम है. वो ये कह रहे हैं कि आपका एजेंडा है टू डिफेम ईरान, आपका ये नैरेटिव है, प्रोपोगंडा है ईरान को बदनाम करने के लिए. इसी वजह से आपने ईरान इंटरनेशनल में ये रिपोर्ट दर्ज की है.
0: Well, the thing is that we do not work in vacuum. We work with Iranian people. We talk to Iranian people inside the country. As an organization, Iran Wire has trained more than 6,000 citizen journalists in the past 10 years. So we have a wide network of citizen journalists in all different parts of the country, in all 31 provinces of Iran. And we get the information from citizen journalists through different ways. And it's very difficult to refute something like that because they think that they are countering the propaganda. And we are not talking about the war. We are not justifying the war. We are not justifying any kind of attacks in Iran. We are just reporting the truth, the economic truth in Iran. And the very fact is that if you talk to any Iranian, even if they are government supporters, they can tell you that for the past 5 decades, since the beginning of the Iranian Revolution, and even before the Iranian Revolution, there's been a mismanagement of the economy of Iran. There has been nepotism, there's been corruption. But in the Islamic Republic, specifically in the past 2 decades, there has been an elite group of officials and their cronies who've become very rich. They are taking advantage of their revolutionary backgrounds.
1: भारत में ईरान के दूतावास का कहना है कि हमने जो खबर दिखाई वो गलत है, लेकिन हकीकत यह है कि यह खबर हमारी नहीं थी. यह खबर ईरान इंटरनेशनल की थी जिसे हमने कोट किया, और जिस ईरानी मूल के पत्रकार ने इस खबर को लिखा वो अब भी सबूतों के साथ कह रहे हैं कि ईरान में लोग कीमतें बढ़ने के कारण राशन खरीदने को मजबूर है. और ऐसा ही नहीं, ये बात सिर्फ एक रिपोर्ट या एक पत्रकार के हवाले से आई है. तो देखिए, अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित न्यूज मैगजीन जिसका नाम है द एटलांटिक, इसे दुनिया की सबसे पुरानी मैगजीन्स में से भी एक माना जाता है, जिसकी शुरुआत 169 साल पहले 1857 में हुई थी। अब 10 जून को जब हमने अपने शो में ये बताया कि ईरान के लोग जरूरी राशन भी ईएमआई पर खरीद रहे हैं, तब 169 साल पुराने द अटलांटिक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें यह लिखा गया कि तेहरान में कई जगह ऐसे बिलबोर्ड्स लगे हैं जिन पर यह लिखा है कि लोग जरूरत का सामान ईएमआई यानी इंस्टॉलमेंट्स पर खरीद सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पढ़कर बताती हूं, स्क्रीन पर जूम इन कीजिएगा। यह द अटलांटिक की रिपोर्ट है जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि अब एक ऐसी सच्चाई सामने आई है ईरान की इस रिपोर्ट में कि द क्राइसिस ईरान्स लीडर्स कांट इग्नोर, यानी वो क्राइसिस जिसको अब ईरान के नेता अनदेखी नहीं कर सकते हैं। इसी में जब आप जूम इन करेंगे तो हमने हाईलाइट किया है, अक्रॉस तेहरान बिलबोर्ड्स नाउ एडवर्टाइज इंस्टॉलमेंट प्लान्स टू पे फॉर बेसिक गुड्स। ये देखिए पूरे तेहरान में, ये देखिए पूरे तेहरान में बताया जा रहा है कि ऐसे बिलबोर्ड्स यानी बड़े बड़े इश्तहार रोड के बगल में बड़े जो बिलबोर्ड्स हैं उन पर लगाए गए हैं कि लोग अब सामान इंस्टॉलमेंट पर भी खरीद सकते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा है बेसिक गुड्स के लिए एडवर्टाइज किया जा रहा है बिलबोर्ड्स पर कि आप ईएमआई के जरिए उसको बेच सकते हैं। ये तो बात हो गई द अटलांटिक, या ईरान कह सकता है कि द अटलांटिक अमेरिका का है और इसलिए उसको इस रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। तो हम आपको गल्फ टाइम्स की ये रिपोर्ट दिखाते हैं जो कतर का बहुत बड़ा मीडिया संस्थान है, ये भी साल 1978 में स्थापित हुआ था। अब हमारे शो में ये खबर चलने से दो दिन पहले 8 जून को गल्फ टाइम्स ने भी अपनी रिपोर्ट में यही लिखा था कि ईरान में लोग ईएमआई पर राशन खरीद रहे हैं। इसमें शब्दशः ये लिखा था कि ईरानी मुद्रा रियाल लगातार दबाव में है जिससे कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान के केंद्रीय बैंक के अनुसार मई में मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि साल दर साल महंगाई पर महंगाई दर जो है वो 77% तक पहुंच गई। नकदी यानी कैश की कमी के कारण ज्यादा परिवारों ने उधार यानी क्रेडिट का सहारा लेना शुरू किया, और जब आप लोन देते हैं तो आपको किश्तों में उसका पैसा जमा करना ही होता है। जरूरी सामानों के लिए, सेवाओं के लिए, जैसे टैक्सी की सवारी, किताबों का भुगतान करने के लिए इंस्टॉलमेंट प्लान्स यानी ईएमआई का सहारा लिया जा रहा है। अब समस्या यह है कि यह सारी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कई दिनों से प्रकाशित हो रही है, लेकिन जब हमने इसे दिखाया तो ईरान के दूतावास ने खारिज किया, जबकि पूरा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कह रहा है कि ईरान में कीमतों में वृद्धि से बुरा हाल है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ही क्यों, ईरान की इस्लामिक सरकार खुद कह रही है, इस्लामिक सरकार खुद जो आंकड़े जारी करती है उसमें भयंकर आर्थिक संकट नजर आता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने खुद यह बताया है कि मई महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 77.2% पर पहुंच गया, यानी जो खाने पीने का सामान, जरूरी चीजें हैं, उनकी महंगाई पिछले साल के मई के महीने के मुकाबले 77.2% बढ़ गई। और हमने भी यही आंकड़े अपने शो में आपको दिखाए थे। ईरान का सेंट्रल बैंक यह भी कहता है कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सिर्फ अप्रैल महीने के मुकाबले 8.5% बढ़ा है, जिससे दवाइयां, टैक्सी किराया, तंबाकू, कम्युनिकेशन फीस यानी इंटरनेट और मोबाइल फोन की सेवाएं 113.8% महंगी हो गई हैं। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ना ही ये आंकड़े किसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हैं, ये ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़े हैं। ईरान का एक निजी थिंक टैंक बमदाद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज अपनी रिपोर्ट में कहता है कि ईरान का मौजूदा आर्थिक संकट दूसरे विश्व युद्ध से भी भयानक है, जिसका जिक्र ईरान के सेंट्रल बैंक के आंकड़ों में मिलता है। 2015 में अमेरिका का एक डॉलर ईरान के 32,000 रियाल के बराबर था, लेकिन आज अमेरिका का एक डॉलर ईरान के 17,00,000 रियाल के बराबर हो गया है। और फिर से हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि ये आंकड़े ईरान के, फिर से सुनिए, ईरान के सेंट्रल बैंक ने दिए हैं, जिन्हें कोई भी इंटरनेट पर जाकर चेक कर सकता है। ईरान के सेंट्रल बैंक की जो आधिकारिक वेबसाइट है वो खुद ये लिखती है कि 20 अप्रैल से 20 मई के बीच ईरान में कुल महंगाई दर 53.9% हुई, जो युद्ध शुरू होने से पहले 46% थी। यानी ईरान सरकार के अपने आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमने जो रिपोर्ट दिखाई वो सच की कसौटी पर एकदम खरी उतरती है। अगर ईरान दूतावास को इस रिपोर्ट को खारिज करना है तो उन्हें जाकर ईरान इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट पर हमला करना चाहिए था, लेकिन जब ईरान के दूतावास ने इसे खारिज किया तो हमारे देश का एक वर्ग सच्चाई जानने के बजाय अपने ही देश पर सवाल उठाने लगा। जबकि ट्रोलिंग करने के बजाय ये लोग थोड़ी सी रिसर्च कर लेते तो इन्हें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का ये बयान एसोसिएटेड प्रेस पर मिल जाता जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि ईरान युद्ध लड़ रहा है और इस युद्ध के कारण महंगाई से लोगों को परेशानी होगी। फिर उस परेशानी का जिक्र करते ही इतना गुस्सा क्यों? यही नहीं, ईरान के मशहूर अर्थशास्त्री सईद लेलाज कई जगह ये कह चुके हैं कि ईरान में सालाना महंगाई दर 80% पहुंच सकती है जबकि ईरान के लोग 25% से ऊपर की महंगाई दर का बोझ सह ही नहीं सकते। ईरान के दूतावास ने यह भी लिखा कि उसे ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर यकीन नहीं है और भारतीय मीडिया को ईरान के विश्वस्त चैनलों से ऐसी खबरों का सत्यापन करना चाहिए। हमने सोचा कि हम ये भी करके देख लेते हैं। इसके लिए हमने तेहरान टाइम्स के पिछले 3 महीनों के लेख सारे के सारे खंगाले जिस पर ईरान की सरकार पूरा भरोसा करती है। तेहरान टाइम्स की शुरुआत साल 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी जो वहां का सबसे बड़ा प्राइवेट मीडिया संस्थान है। जब आप तेहरान टाइम्स की आधिकारिक वेबसाइट को खोलकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स ने 27 फरवरी के बाद जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है ईरान में रोजमर्रा की चीजों की बड़ी कीमतों पर कोई लेख ही नहीं लिखी है। जो बात वहां की सेंट्रल बैंक भी बता रहा है कि इतनी कीमतें बढ़ी हैं या इतना महंगाई दर में इजाफा हुआ है वो खबर भी एक बार भी तेहरान टाइम्स में नहीं है। और वो इस आखिरी खबर जो है इस पर वो 27 फरवरी को लिखी गई थी जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ। 27 फरवरी को तेहरान टाइम्स ने लिखा था कि ईरान में महंगाई दर फरवरी महीने में 46.3% हो गई है जिससे आर्थिक संकट गहरा हो गया है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तेहरान टाइम्स में इस पर हर महीने एक लेख लिखा जाता था लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद तेहरान टाइम्स ने इस पर लेख छापना बंद कर दिया। जब अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर लागू हुआ तब उसके बाद पिछले महीने हमारी सहयोगी गीता मोहन खुद ईरान गई थी। वहां ईरान के लोगों ने उन्हें यही बताया था कि वहां कीमतें इतनी बढ़ गई हैं उनके लिए जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है और हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट पूरा देश देखे, खुद तय करे कि क्या ईरान के लोग भी झूठी खबर फैला रहे हैं।
2: ये है ग्रैंड बाजार, 500-600 साल पुराना ग्रैंड बाजार तेहरान के बिल्कुल बीचों बीच है। इसे हार्ट ऑफ तेहरान या फिर हार्ट ऑफ ईरान कहा जाता है जहाँ पे सब कुछ बसता है या फिर या आप लोग कहें बाजार, बिजनेस, लाइवलीहुड सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। जब रेवोल्यूशन और मूवमेंट्स होते हैं वो भी इसी जगह से शुरू होता है, इतना इम्पोर्टेंट है ये ईरान के सांस्कृतिक हेरिटेज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। और 10-10 किलोमीटर लॉन्ग एक लेन है और हर लेन में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में इस पूरे बाज़ार को बनाया गया है। एक पूरा जो लेन है यहाँ पर अगर आप देखें ज्वेलरी का है, कहीं और जाएंगे तो आपको स्पाइसेस मिलेंगे, घर के सामान मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हार्ट ऑफ तेहरान ग्रैंड बाजार में हम खड़े हैं और आपको दिखाएंगे, ले चलेंगे यहाँ पे लोगों के पास और कैसे यहाँ से ही शुरू होता है कल्चरल हेरिटेज ईरान का। हाउ मच इज द गोजे सब्ज फॉर
3: 550 फॉर 1 kg
2: 550 is what toman
3: 1000 toman yeah
2: and how much this, in real
3: okay this is 1 kg
2: how much in real
3: added 10
2: add one more zero so how much is it
3: $4
2: so $4 is 550,000 right aga sahab $4 is 550 in real 5 million translates to about $4-5 is what this is what the cost of the green plums are seeing the currency that I'm going to show you. This is 2 million rial. 2 million rial translates to how much, Aga sahab?
4: One and a half dollars.
2: One and a half dollars, which would mean about about 100 or 150 rupees. That's $2 million. خوبصورتی کی بات کریں تو تہران کی کا کوئی جواب نہیں. یہاں کے لوگ, یہاں کی جگہ, لیکن یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں. جہاں ایک زمانہ تھا جب یہاں پہ بہت پردہ ہوتا تھا, اب آپ کو دکھیں گے الگ الگ قسم کے لوگ, کچھ جو کرتے ہیں, کچھ جو نہیں بھی کرتے ہیں, اور وہ ریلیکسیشن آیا ہے بڑے ہی جد و جہد کے ساتھ. واٹ از انٹرسٹنگ یہاں پر, جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے, کہ یہ جو آپ سامان یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک اٹالین برانڈ ہے, ویڈیلمی, رائٹ, دس از ویڈیلمی, اٹالین برانڈ ہے جو لائسنس کے ساتھ ایران میں بیچ رہے ہیں. ہم نے ہر جگہ جا کے دیکھا, کئی سارے مالز میں بھی دیکھا, انٹرنیشنل برانڈز یہاں پہ آرام سے اپنے لائسنس کے ساتھ بیچ رہے ہیں. تو سینکشنز کا جو مقصد ہے وہ کیا رہا؟ جب سارے انٹرنیشنل برانڈز, جب ہم یہاں پہ فیبروری میں آئے تھے تو ہم نے آپ کو دکھایا تھا, اور پھر سے دکھا رہے ہیں کہ کیسے انٹرنیشنل برانڈز کچھ نام بدل کر, کچھ نام کے ساتھ یہاں پر کام کرتے ہیں, یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. بہت ہی بڑا مارکیٹ ہے ایران, بہت لوگ ہیں جو ایٹ لیسٹ بیوٹی پروڈکٹس میں بہت فوکس کرتے ہیں, لیکن ہر برانڈ آپ کو ایران میں نظر آئے گا.
4: ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی نہیں بلکہ قطر کے انتراشٹریہ میڈیا سنستھان الجزیرہ کی بھی یہ رپورٹ دیکھیں. آپ نے دیکھا ہوگا الجزیرہ کی رپورٹس کو ہمارے دیش میں کافی لوگ مانتے ہیں, بڑھاتے ہیں آگے. تو دیکھیں 19 مئی کو پرکاشت ہوئی تھی یہ رپورٹ, اور اس میں الجزیرہ میں یہی بتایا گیا تھا کہ ایران میں آرتھک سنکٹ گہرا چکا ہے, لوگ انڈے خریدنے سے پہلے بھی کئی بار سوچ رہے ہیں. الجزیرہ نے 5 جون کو ایک اور رپورٹ پرکاشت کی تھی جس کا شیرشک تھا ریڈ میٹ از اے ڈریم, لال ماس کھانا ایک سپنا ہو چکا ہے. ایران انفلیشن ہٹس ہائیسٹ لیول سنس ورلڈ وار ٹو, یعنی ایران میں مہنگائی در دوسرے وشو یدھ کے بعد سب سے اچھتم ستر پر ہے. تو اب یہ تو الجزیرہ کی رپورٹ تھی, ریڈ میٹ خریدنا اب ایران کے لوگوں کے لیے سپنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں. اس کے آگے کہہ رہے ہیں کہ ایران میں مہنگائی در دوسرے وشو یدھ کے بعد سب سے زیادہ ہے. ان سارے تتھیوں کے بعد سچ اور جھوٹ کو آپ بلیک اور وائٹ میں سمجھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں آپ سے اور زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے.
5: Every aisle, every shelf, every price tag is a reminder of how deeply the war is affecting daily life in Iran. Across Tehran, the price of basic goods is rising so fast that many shoppers say they can no longer keep up.
6: Prices are increasing every second and people can barely afford anything. I can no longer buy many of the items I purchased just a month ago.
4: خیر آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے ہونے والے بہت بڑا حملے کو پھر سے آخر کیوں ٹال دیا, اور کیا واقعی اب یہ یدھ ختم ہو گیا ہے؟ کل ہی راشٹرپتی ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے ڈیل نہیں کی تو امریکی سینا خارگ آئیلینڈ پر قبضہ کر لے گی, ایران کے مہتوپورن ٹھکانوں پر بھیشن بمباری کر دی جائے گی. لیکن بیان کے کچھ گھنٹے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ بدل دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت ہائی لیول تک پہنچ گئی ہے, ان کی شرطوں کو منظوری بھی مل گئی ہے. اب بہت لوگ اسے وتھ اے پنچ آف سالٹ لے رہے ہیں, کیونکہ اب دنیا شک کرنے لگی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن کیا کہتے ہیں اور پھر اگلے دن کیا کہتے ہیں, اس کا کوئی بھی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. لیکن ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت ایرانی نیترتو کے سب سے اونچے استر تک پہنچ گئی ہے اور اسے منظوری مل گئی ہے, اسی لیے ایران کے خلاف طے حملے اور بمباری کو رد کر دیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بات چیت اور انتم بندوؤں پر سبھی پکشوں نے منظوری دے دی ہے. ٹرمپ کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ یدھ ختم کرنے کی ڈیل اگلے کچھ دنوں میں ہو جائے گی. وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ پیس ڈیل پر ہستاکشر کے لیے جیری وینس اس ہفتے کے انت تک یورپ جائیں گے, یعنی ٹرمپ کے مطابق اگلے 2 سے 3 دن میں ایران کے ساتھ یدھ بھی ختم ہو جائے گا اور امریکہ کے ساتھ اس کی ڈیل بھی ہو جائے گی.
7: Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it.
4: Trump ke daavon ki mane to Iran is baat par raazi hai ki wo ab kabhi bhi nuclear hathiyar nahi banayega. Trump ka daava hai ki Iran ke supreme leader Mujtaba Khamenei bhi is baat par raazi ho gaye hain, aur unhone Iran ke varishth netaon ko America se deal karne ki anumati di hai. Agar aisa hota hai تو ممکن ہے جلد ہی اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران اور امریکہ کی ناکے بندی ختم ہو جائے گی اور وہاں پر یدھ سے پہلے والی استھتی لوٹ جائے.
8: مسٹر پریزیڈنٹ, آن ایران, ہاؤ کانفیڈنٹ آر یو دیٹ There will be a signing this weekend because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
9: it'll be soon. Maybe this weekend.
8: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
9: I understand the answer is yes.
8: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
9: Yes, that's true. That's part of the deal.
4: डोनाल्ड ट्रंप के इन दावों के बीच ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज का कहना है कि उनके पास ईरान अमेरिका पीस डील का 14 पॉइंट वाला मेमोरेंडम ड्राफ्ट है और इसमें सारे पॉइंट हैं जिस पर दोनों देशों की बातचीत चल रही है। इसमें कुछ खास पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको लेकर असली विवाद अभी तक है, मामला फंसा है। अब कहा जा रहा है कि उन पर भी फाइनल बात हो गई है। जैसे इस ड्राफ्ट में सभी फ्रंट पर लिखा है कि सभी फ्रंट पर वॉर रोकने की बात कही गई है, जिसमें लेबनान भी है। अब लेबनान पर तो इसराइल हमले लगातार कर रहा है। इन हमलों को लेकर ईरान नाराज था, उसे अमेरिका से बातचीत भी बंद कर दी थी। इसके अलावा इसमें शर्त है कि अमेरिका आगे से कभी भी ईरान के अंदरूनी मामले में दखल नहीं देगा। दरअसल ईरान सरकार अपने खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में अमेरिका की ओर से बयानबाजियां नहीं चाहता है। युद्ध से पहले जब ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे थे, तब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया था। ड्राफ्ट के एक पॉइंट में अगले 30 दिनों में दोनों देशों की नाकेबंदी को हटाने की बात कही गई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोलने का वादा किया गया। ईरान ने शर्त रखी कि उसके आसपास के क्षेत्र से अमेरिकी सेनाएं पूरी तरह से हटा दी जाएंगी और ईरान के कच्चे तेल पर लगा प्रतिबंध भी हटेगा। इसके अलावा इस पर सहमति बनी कि एनपीटी के तहत ईरान अब से कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने की जिद नहीं करेगा। हालांकि आधिकारिक रूप से किसी तरह कोई मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन मेहर न्यूज का दावा है कि जिन मुद्दों पर सहमति बनी है वो सारे मुद्दे उनके द्वारा एक्सेस किए गए ड्राफ्ट में शामिल है। मेहर न्यूज के दावों से अलग ईरान के विदेश मंत्रालय ने बातचीत की बात तो कबूल की है, लेकिन किसी तरह के आखिरी नतीजे तक पहुंचने से इनकार किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बेगई ने कहा है कि जो भी शर्तें सामने आई उन पर ईरान के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। उनका कहना है कि अभी सोच विचार चल रहा है, नतीजे पर नहीं पहुंचे।
10: رسانه‌ای اصل موضوع ما به محض اینکه به نتیجه نهایی برسیم، به هر حال فرآیند تصمیم‌گیری در کشور ما خیلی روشن هست. ما باید مراجع زیرفت نظام در مورد جز جز متن و جز جز هر گونه تفاهمی به جمع‌بندی برسن. به محض این که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم حتما رسما اعلام خواهیم کرد.
4: कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी हालत में नवंबर से पहले इस मामले को सुलझाना चाहते हैं और यही वजह है कि वो एक दिन पहले बड़े हमलों की चेतावनी देते हैं, पर जैसे ही उन्हें लगता है कि बातचीत से मामला तुरंत बन सकता है, फैसला पलट देते हैं। नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। 435 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, 35 सेनेट सदस्य चुने जाने हैं। चुनाव से पहले ट्रंप ईरान के साथ डील करके अपनी पार्टी पर घरेलू दबाव को कम करना चाहते हैं ताकि संसद में उनकी स्थिति मजबूत रहे, भविष्य में उनकी नीतियों को लागू करने में कोई समस्या ना हो। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के खिलाफ उनके ही देश में एक माहौल बना हुआ है क्योंकि युद्ध का आर्थिक असर महसूस किया गया है। ट्रंप ऐसे रास्ते की तलाश में है जिससे युद्ध भी खत्म हो जाए, उनकी छवि को भी नुकसान ना। पाकिस्तान से बड़ा कपटी देश कोई नहीं, जेब में रेडीमेड आतंकी रखकर खुद को शांति का दूत बताने वाला देश और भारत के उभरते कश्मीर पर छाती पीटकर अपने कब्जे वाले कश्मीर में मासूमों का खून बहाता पाकिस्तान। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तानी सेना सरकार के द्वारा पीओके के आम नागरिकों का नरसंहार हो रहा है। अब स्थिति यह है कि पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं।
11: हम क्या

0: आजकल पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं। शाहबाज की सरकार मुनीर की सेना के जुल्मों से परेशान हो चुके हैं। पीओके में मूलभूत जरूरतों के लोग सड़कों के लिए लोग सड़कों पर हैं। आसिम मुनीर के निर्देश पर बिजली पानी रोटी संकट पैदा है। और ऐसे में जो भी मूलभूत सुविधाओं की मांग पीओके में कर रहा है उनका खून बहाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में 50 से ज्यादा मासूम लोगों को मुनीर की सेना गोलियों से छलनी कर चुकी है। यह सिलसिला लगातार जारी है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार ने इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। जब भी वो इसकी मांग करते हैं गोलियां मिलती हैं, वो खुद कह रहे हैं। कल पाकिस्तानी सेना के जवानों ने रावलकोट के ईदगाह ग्राउंड पर मौजूद प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी चेतावनी फायरिंग शुरू कर दी। खबर है कि इस फायरिंग में 16 लोग मारे गए, 37 घायल हो गए और वो भी गंभीर रूप से। पाकिस्तानी सेना ने AK-47 राइफल से ये फायरिंग की है, अंधाधुंध फायरिंग, और इस वजह से लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिल पाया। ईदगाह ग्राउंड पर शांतिपूर्ण तरीके से पाकिस्तानी सरकार सेना विरोधी प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी सेना के जवान वहां पहुंचे, प्रदर्शनकारियों को भगाना शुरू किया। जब प्रदर्शनकारी हटने से इनकार करने लगे तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक रावलकोट के इस ईदगाह मैदान और उसके आसपास 60 से 70 हजार के करीब प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ये लोग पिछले प्रदर्शन में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग भी कर रहे थे। 8 जून से ही पीओके में पाकिस्तान सरकार सेना के जुल्मों के खिलाफ लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, आम लोग निकले हैं। पाकिस्तानी सेना रह रहकर उनकी जान ले रही है। पाकिस्तानी सेना की इस फायरिंग में अब तक 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा घायल हैं। पीओके के प्रदर्शनकारी पाकिस्तान सरकार से आटा चावल बिजली जैसे मूलभूत जरूरतों की गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन लाठी डंडे और अब तो गोलियां मिल रही हैं।
1: ये लोग अपने हकूक मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि इनको आपने दिया क्या है। देखें, कश्मीर को तो एक मिसाली खित्ता बनाया जाना चाहिए था ना, कि आपका मुकदमा था कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, वो आजाद कश्मीर को देखकर बनेगा। भाई, अगर आप आजाद कश्मीर को नहीं बना पाएंगे तो कैसे बनेगा? आजाद कश्मीर में अपने ले जाके आप 8-9 वजीर बना लेते हैं, बिठा देते हैं पाकिस्तान से, उनके जरिए से आप पूरे निजाम को कंट्रोल करते हैं, उनके मफादात के ऊपर चोट पहुंचाते हैं।
0: प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की घटनाओं ने पीओके में आग भड़का दी है। कई क्षेत्रों में बाजार बंद रखा गया। पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दावा है कि वहां जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, लोग नारा लगा रहे हैं। हमने पहले भी आपको दिखाया, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तानी सेना द्वारा फायरिंग के बावजूद प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। आज जुमे की नमाज के बाद बड़े प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल की सत्ता पर एक छत्र राज करने वाली तृणमूल कांग्रेस इस वक्त अपने सबसे बड़े राजनीतिक भूकंप से गुजर रही है। कोलकाता से दिल्ली तक ममता बनर्जी के सियासी साम्राज्य की चूल्हे हिल रहे हैं। आज लोकसभा स्पीकर को भेजे गए उस गोपनीय पत्र की कॉपी सामने आई जिसमें बागी सांसदों ने हस्ताक्षर के रूप में अपनी सहमति दर्ज कराई थी। 18 मई की तारीख वाले इस पत्र पर 5 या 10 नहीं बल्कि टीएमसी के 19 सांसदों के दस्तखत अंकित हैं। 19 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से गुहार लगाई है कि उन्हें संसद में एक अलग संसदीय गुट यानी सेपरेट पार्लियामेंट्री फैक्शन के रूप में मान्यता दी जाए। बागियों का दावा है कि उनके पास पार्टी के 2/3 सांसदों का समर्थन है, इसलिए दल बदल कानून उन पर लागू नहीं होता। इस लिस्ट में जो नाम है उन्होंने सबको चौंका दिया। काकुली घोष दस्तीदार पहले से थी, शताब्दी रॉय, प्रसून बंदोपाध्याय जैसे पुराने चेहरों से लेकर यूसुफ पठान, जून मालिया, रचना बैनर्जी, सायोनी घोष जैसे नाम भी इस बागी गुट का हिस्सा है। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसे लेकर सब हैरान है और वो नाम है सायोनी घोष। सायोनी घोष जो कभी ममता बनर्जी की बेहद करीबी युवा विंग की कमान संभालती थी, आज बागियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं। ये वही सायोनी घोष है जिनका एक गाना काबा मदीना, उनके कुछ पुराने बयान सोशल मीडिया पर अक्सर विवादों का कारण बनते रहे, लेकिन आज सायोनी घोष की पलटी ने सबको चौंका दिया।

मदीना। आखिर इन सांसदों की नाराजगी क्या है, क्या चाहते हैं ये बागी? बागियों का आरोप है कि टीएमसी में अब सांसदों और जमीन से जुड़े नेताओं की कोई सुनवाई नहीं। सांसदों का कहना है कि पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो चुकी है। सवाल है कि आज ही अचानक ये क्या स्थिति आई और आगे क्या होने वाला है? साफ कर दें कि ये बागी सांसद फिलहाल बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इनका दावा है कि वही असली तृणमूल कांग्रेस है। पार्टी के सिंबल पर उनका हक है। रविवार को ये बागी गुट बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात कर सकता है और सोमवार को सीधे लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग बैठने की आधिकारिक मांग करेगा। दिल्ली में नीति आयोग की एक बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में करीब करीब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए। उन्होंने सभी राज्यों को एल नीनो के बारे में तैयार रहने के लिए चेतावनी दी है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने की तैयारी करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि इस बार देश को मौसम की बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एल नीनो और उसका खतरा जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हर तरह की स्थिति से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्यों में जल संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए कहा। अब सवाल यह है कि क्या एल नीनो इतना बड़ा खतरा है जिसे पीएम इसे फ्लैग कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको एल नीनो को समझना होगा। प्रशांत महासागर में तीन मुख्य जलवायु प्रणालियां काम करती हैं, जिसमें एक एल नीनो, दूसरा है ला नीना और तीसरा है न्यूट्रल। सामान्य भाषा में कहें तो एल नीनो का प्रभाव पड़ने पर सामान्य से कम बारिश, ला नीना के प्रभाव से सामान्य से अच्छी बारिश और बारिश के कम या ज्यादा होने का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। एल नीनो कहा है पीएम मोदी ने, जिससे सावधान किया है, जिसका सीधा मतलब है इसका प्रभाव भारत के मानसून पर दिखने वाला है। एल नीनो जलवायु के उस प्रभाव को कहते हैं जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सा का समुद्री जल सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है, जिससे दुनिया भर में हवा बारिश का पैटर्न बदल सकता है। भारत में इससे सबसे बड़ा असर मॉनसून पर पड़ता है, कम बारिश होगी। दुनिया के मौसम पर नजर रखने वाली संस्थान वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जून 2026 में एल नीनो बन रहा है। इसका प्रभाव पड़ने की आशंका 80-90% तक है। एल नीनो के प्रभाव से भारत में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही इस बार सामान्य से कम बारिश का अनुमान दिया है और एल नीनो के प्रभाव से स्थिति और खराब होने की आशंका है। कम बारिश का मतलब ज्यादा गर्मी, हीट वेव के लंबे चरण। बारिश कम होगी तो इसका असर खेती पर पड़ेगा। कुछ क्षेत्रों में सूखे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। खेती पर बुरा असर पड़ेगा तो देश में खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि एल नीनो का प्रभाव केवल भारत पर होगा। दरअसल प्रशांत महासागर में होने वाली इस जलवायु घटना का असर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पूरे क्षेत्र और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी दिखेगा। इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर सूखा पड़ने, ज्यादा बारिश का खतरा होगा, लेकिन उम्मीद है कि हिंद महासागर की वजह से एल नीनो का प्रभाव कुछ हद तक कम हो सकता है, जिससे राहत मिल सकती है।

तारीख 12 जून 2025, ठीक एक साल पहले आज ही के दिन अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे ने पूरे देश को दहला दिया था। कुछ सेकंड्स के भीतर 260 जिंदगियां खाक हो गई। आज इस भयानक त्रासदी को पूरा एक साल हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है। जहन में सिर्फ एक सवाल कि आखिर उनके अपनों की मौत का गुनहगार कौन है? ब्लैक बॉक्स की जांच कहां पहुंची? क्यों अंतिम रिपोर्ट आने में देरी हो रही है?

0: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है और बस हम लोग सब उनके सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हमारी प्रार्थना।
1: मैं तो आखिरी सांस तक यहाँ लड़ने वाला हूँ कि भाई मुझे जस्टिस चाहिए, कि इसके पीछे कारण क्या है, ब्लैक बॉक्स डेटा चाहिए हमको, बस यही डिमांड है हमारी।
2: एग्जैक्ट जो पॉइंट होना चाहिए कि यही इसी वजह से हुआ है वो हमें नहीं मिला है, और ये जो ब्लैक बॉक्स की बात चल रही है कि ब्लैक बॉक्स में ब्लैक बॉक्स का डेटा रिलीज होगा उसमें सब पता चलेगा, तो ना ब्लैक बॉक्स का अभी तक कोई डेटा रिलीज हुआ है ऐसा कुछ, तो अभी तक सब अंधेरे में, ये एग्जैक्ट रीजन किसी को मालूम नहीं पड़ा है कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है।
3: आज कहीं भी जाते हैं तो लोगों को ऐसा है कि उनको इतने पैसे मिल गए, पर लोगों को ये नहीं समझ आता। कहीं भी जाते हैं तो लोग ऐसे पूछते हैं, आपको पैसे मिल गए, पर उनको वो कोई ऐसा नहीं पूछता कि आपके घर में आप कैसे जी रहे हो, एक इंसान की कीमत है। मतलब उन लोगों का ऐसा है बस पैसे आ गए, इंसान की मतलब जो वैल्यू है वो खत्म हो गई।
4: पिता के खोने का दुख मतलब शब्दों में तो बयां नहीं कर सकते, परंतु मैं ये बता सकता हूं कि एक मार्गदर्शक, एक पथदर्शक और एक मेंटोर का लॉस जो है वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए ये काफी बड़ा है।
5: ब्लैक बॉक्स डेटा के रिगार्डिंग हम खुद ही फाइट कर रहे हैं, जो हमें डेटा नहीं मिल रहा है, कोई ट्रूथ पता नहीं चल रहा है, क्या सच है वो हमें अभी तक पता नहीं है, बस वो सच जानने की हमारी पूरी पूरी प्रोसेस चल रही है जिससे हम फाइट कर रहे हैं।

0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही. अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे. तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और सत्य अकेला भी हो तो भी शक्तिशाली होता है.
1: खबर टीएमसी में मचे घमासान की. टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है.
2: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো. আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি.
3: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है. कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है. विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है. सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं. बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है.
4: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया? आपने साइन किया, किसने साइन किया?
5: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया. पहले काहुली
4: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
5: हाँ, वहीं पर.
4: वहाँ पे पहले कितने लोग आ गए थे?
5: पहले दिन 14 था.
4: साइन घोष भी उसमें थी?
5: नहीं, साइन घोष बीच में
4: बाद में आया. तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से? कब मिल रहे हैं आप लोग?
5: सोमवार जाएंगे.
4: क्या मांग करेंगे आप?
5: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का.
3: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था. इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था. इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी. इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सरेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान. कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं. 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका.
6: रिवेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं. रिवेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए.
7: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है. वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे. तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ.
3: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए. कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है. आज तक ब्यूरो.
1: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं. वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है.
8: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी. करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए. सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा. अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है. उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए. अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है. टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं.
9: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो.
10: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोग नैतिक जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
8: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
1: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
8: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
11: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
12: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा जब ये मीडिया बचेगी।
8: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
13: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
8: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
14: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई, आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
15: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
8: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
16: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
8: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
1: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच के उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक ना हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और क्या, तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए कि ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है, और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है, ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजेश जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई, भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे, और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने

0: समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
1: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
0: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
2: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart.
3: And it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
0: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
0: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडबरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर

0: आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
1: मंगलवार को यही हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
2: क्या कह रहे
1: थे? क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
2: कब और कैसे पता चला आप लोगों
1: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जिजाज में थे उस पे बम गिर गया।
0: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
3: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मगर वो नहीं माने। फिर उनका था, मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पार गए। और लास्ट
0: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
4: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
0: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: Brothers.
1: किंग कोबरा का नेस्ट कहां पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? टाइगर है?
2: हाँ जी जी हाँ टाइगर टाइगर है
1: ना। एक और कहां से निकला?
3: Hey, sports fans, TuneIn is bringing you live games, nonstop sports talk, and coverage from every angle. Follow your teams all season long with live games and never miss a single highlight. Listen to stations like ESPN Radio.
4: Swing and a foul out of play off to the left.
3: Big 12 Radio.
5: Levitt's playing stronger back there. Oh, he found Tyson.
3: Talk Sports.
6: Yes, Talk Sport listeners, when we win tomorrow evening, oh, you're going to feel all right.
3: And more. Search sports to find the stations covering your team.
7: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें ईपेपर.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को अभी स्कैन करें।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीदकर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। उसके बाद हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया या किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काकुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थे?
4: नहीं, साइन घोष बीस में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे आप?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान। कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिवेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है। जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैचुटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैचुटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच बलरामपुर बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच के उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था क्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और यार तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। तो ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विशेष जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
6: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
7: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
8: it'll be soon, maybe this weekend.
7: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
8: I understand the answer is yes.
7: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
8: Yes, that's true. That's part of the deal.
6: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के घाट द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
6: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडब्रू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
9: मंगलवार को ये हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
10: क्या कह रहे हैं?
9: क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस 1 मिनट बात हुई थी।
10: कब और कैसे पता चला आप लोगों
9: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पर बम गिर गया।
6: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
11: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पार गए। और लास्ट
6: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
12: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
6: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत पोर्ट गुट का हिस्सा है जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया है, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काकुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे के पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थे?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे आप?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैच्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैच्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली, आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपने कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच बलरामपुर बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो, ऐसा भी

0: हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
1: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है, ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय दोषी आज तक।
2: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई, भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
3: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
2: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
3: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
4: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
5: it'll be soon, maybe this weekend.
4: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
5: I understand the answer is yes.
4: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
5: Yes, that's true. That's and part of the deal.
3: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया।

0: हालांकि ईरान ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले एक दो दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए तीन भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले तीन जहाजों पर हमले किए उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो तीन भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
0: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडब्रू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
2: मंगलवार को ये हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
3: क्या कह रहे
2: थे? कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
3: कब और कैसे पता चला आप लोगों
2: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
0: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
4: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे। मेरे वो नहीं माने, फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पर गए। और लास्ट
0: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
5: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
0: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड गुट का हिस्सा है जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो।
1: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।

0: किंग कोबरा का नेस्ट कहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया?
1: टाइगर है।
2: हाँ जी जी मैं
1: टाइगर हूँ।
0: एक और कहाँ से निकला?

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलएस खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काहुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे के पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबल कहाँ से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: तो ये आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच के उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था क्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय दोषी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
6: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
7: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
8: it'll be soon, maybe this weekend.
7: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
8: I understand the answer is yes.
7: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
8: Yes, that's true. That's part of the deal.
6: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
6: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडब्रू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
9: मंगलवार को ये हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
10: क्या कह रहे
9: थे? क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस 1 मिनट बात हुई थी।
10: मतलब और कैसे पता चला आप लोगों
9: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
6: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
11: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मगर वो नहीं माने। फिर उनका था, मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो वही शिप पार गए। और लास्ट
6: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
12: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
6: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।
13: किंग कोबरा का नेस्ट कहां पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया?
14: टाइगर है। टाइगर है।
13: एक और कहां से निकला?

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। उसके बाद हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया। पहले काकुली
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ।
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष बीच में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से? कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे
4: आप? हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सरेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान। कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोग का नैतिक जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ हो।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है। जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपने कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है, पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे उस समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं ना कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। तो ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो, ऐसा भी। पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज

0: भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
1: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने, सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
0: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
1: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
2: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart.
3: And it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
1: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक

0: पहुंच चुकी है। तो तीन भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे हैं।
1: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाजों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडब्रू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में तीन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
2: मंगलवार को यह हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
3: क्या कह रहे
2: थे? क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
3: कब और कैसे पता चला आप लोगों
2: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जिस जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
1: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
4: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात और भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मगर वो नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पार गए और लास्ट।
1: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेतेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
5: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनके जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
1: लेकिन जो अमेरिका ने किया है
5: नाविकों की कोई परवाह नहीं थी
1: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत पॉड गुट का हिस्सा है जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा।
0: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

0: किंग कोबरा का नेस्ट कहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? टाइगर है?
1: हाँ जी जी हाँ, टाइगर टाइगर है।
0: एक और कहाँ से निकला?

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ডওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসায়নি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया? आपने साइन किया है, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया। पहले काकुली
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे के पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से? कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे
4: आप? हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सरेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान। कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं, 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी सभा दुखी है, शिवसेना भी सभा दुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ वो।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साहा के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है। जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट जुडिडिक्शन में हाई कोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है। तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओबीसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है। 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था क्रांता बनके, मारकाट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है ना कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है, और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचते पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे, और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
6: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
7: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
8: it'll be soon, maybe this weekend.
7: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
8: I understand the answer is yes.
7: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
8: Yes, that's true. That's part of the deal.
6: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
6: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडबरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, और साथ ही नैतिक नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है, और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
9: मंगलवार को यही हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
10: क्या कह रहे हैं?
9: क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
10: कब और कैसे पता चला आप लोगों
9: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
6: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
11: 2 महीने पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना उना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने। फिर उनका था, मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पार गए। और लास्ट
6: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटे बेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
12: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर

0: उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
1: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत पोर्ट गुट का हिस्सा है जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। आज तक ब्यूरो।
2: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज

0: किंग कोबरा का नेस्ट कहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया?
1: टाइगर है टाइगर है
0: एक और कहाँ से निकला?

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में 3 भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया। पहले काहुली
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ।
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे के पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे आप?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान। कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है, जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच बलरामपुर बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के PDA को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं BJP ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था आक्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और याद तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान जसपाल राणा नहीं रहे।

0: गया था जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
1: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
0: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
2: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
3: it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
0: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
0: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है।

0: भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडबरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
1: मंगलवार को यही हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
2: क्या कह रहे
1: हैं? क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
2: कब और कैसे पता चला आप लोगों?
1: हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
0: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
3: 2 महीने पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना उना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने। फिर उनका था, मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो इस शिप पर गए और लास्ट।
0: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
4: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनके जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
0: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत पॉड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। पॉड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक।

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीदकर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। उसके बाद हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকে হ্যান্ডওভার করব। আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया या किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काहुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष बीच में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे आप?
4: हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सरेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान। कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिवेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिवेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।
7: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
8: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
9: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
7: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही दो विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है। जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
7: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
10: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
11: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
7: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
12: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैचुटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैचुटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
7: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
13: तो ये आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
14: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
7: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
15: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
7: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
0: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपनी कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच के उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है। 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के PDA को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं BJP ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं न कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था क्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गई। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और क्या, तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। तो ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे।
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है, और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरा मैन जमीन व्यास के साथ ब्रजेश जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान, जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे, और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी कह रहे हैं। उन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1997 में पद्मश्री और 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो।
5: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
6: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
7: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And
8: it'll be soon, maybe this weekend.
7: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
8: I understand the answer is yes.
7: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
8: Yes, that's true. That's part of the deal.
6: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाद द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
5: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
6: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडबरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। यह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
9: मंगलवार को यही हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
10: क्या कह रहे
9: थे? कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस 1 मिनट बात हुई थी।
10: कब और कैसे पता चला आप लोगों
9: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
6: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
11: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने, फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पार गए। और लास्ट
6: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
12: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
6: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत क्वाड गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: किंग कोबरा का नेस्ट कहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया? टाइगर है?
1: हाँ जी जी हाँ, टाइगर टाइगर है।
0: एक और कहाँ से निकला?

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार, लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी, रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज, निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी, योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा, तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे, सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया है, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया पहले काकुली।
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे क्या पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे
4: आप? हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सरेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबेल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबेल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी सभा दुखी है, शिवसेना भी सभा दुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।

0: अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने उन्हें 15 जून को पेशी का निर्देश दिया है। टीएमसी में बगावत करने वाले कई नेता अभिषेक के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं।
1: आप सिर्फ क्यों अभिषेक को पकड़ते हैं? छोटे से छोटे नेता भी बोलता था स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रमोटर को पैसा दो।
2: जब पार्टी का खराब समय आते हैं, जिन लोगों का नैतिक शक्ति नहीं है, कमर में चोर नहीं है, दम नहीं है, वो इधर उधर करते हैं, यही हुआ होगा।
0: दरअसल ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब अभिषेक बनर्जी ने 9 मई को विधानसभा अध्यक्ष को जानकारी दी कि टीएमसी विधायक दल की बैठक में शोभन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके बाद विधायकों के हस्ताक्षर का पत्र सौंपा। इस मामले में मोड़ तब आया जब 27 मई को टीएमसी के ही 2 विधायकों ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह ने विधानसभा अध्यक्ष से लिखित शिकायत कर दी और अभिषेक के दावे को खारिज कर दिया। साफ है कि अभिषेक बनर्जी की राह अब आसान नहीं है। एक ओर एजेंसियों का शिकंजा, तो वहीं दूसरी ओर उनके साथियों की बगावत ने मुश्किलें बढ़ा दी है। कोलकाता से अनिर्बान साह के साथ आज तक ब्यूरो।
3: बंगाल में लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी की है, तो केंद्र में कांग्रेस और मोदी सरकार आमने सामने है। जहां मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन पत्र रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतर आई है।
0: कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द होने की लड़ाई अब कोर्ट से लेकर सड़क तक दिखाई दी, जहां कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया।
4: कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, ये तमाम जो लोग हैं, ये मध्य प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, और ये यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर्स है। दरअसल इन तमाम लोगों ने कॉल दिया था कि ये राष्ट्रपति भवन से मुलाकात, राष्ट्रपति भवन की तरफ कूच करेंगे। उन्होंने मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन जब समय नहीं मिला तब ये फैसला किया गया कि जो नेता हैं यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे।
5: ये लगातार होने वाला प्रयास, इसके खिलाफ देश को एकजुट होने की आवश्यकता, मीडिया को एकजुट होने की आवश्यकता है। देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, जब ये मीडिया बचेगी।
0: मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले पर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नामांकन खारिज होने जैसे चुनावी मामलों में आमतौर पर कोर्ट बीच में दखल नहीं देता।
6: चलते हुए प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता है, इनफैक्ट रिट ज्यूरिडिक्शन में हाईकोर्ट भी इंटरवीन नहीं करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऊपर बार 329 आर्टिकल में आता है, तो यहाँ पर स्टैट्यूटरी राइट है वोट देना और इलेक्ट होना, और स्टैट्यूटरी राइट को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा ही चैलेंज किया जा सकता है।
0: मीनाक्षी नटराजन ने इस मामले में एक बार फिर चुनाव आयोग की चुप्पी पर सवाल खड़े किए।
7: कोई आखिरी उम्मीद खत्म नहीं हुई। आखिरी उम्मीद जनतंत्र में लोग होते हैं और जनमानस होता है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय की गरिमा का सम्मान करती हूँ, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी आज नहीं करूंगी। और मैं पार्टी की प्रत्याशी हूँ, तो पार्टी के सभी नेताओं के साथ मिलकर ही हम तय करेंगे कि हमारी आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन ये जरूर कहूंगी कि चुनाव आयोग की जो चुप्पी है वो बहुत कुछ बताती है।
8: एफिडेविट में उन्होंने जानकारी छुपाई और चुनाव आयोग में ये लिखित है कि आप यदि चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, तो आपको एफिडेविट में हर तरह की जानकारी देनी होगी। कांग्रेस बिना किसी मुद्दे के राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद पैदा करवा रही है।
0: उधर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगा रही है।
9: कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को तंग कर रहे हैं।
0: मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए हैं, लेकिन मीनाक्षी नटराजन के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ लंबी लड़ाई का मन बना लिया है। राहुल गौतम, दिल्ली आज तक।
3: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच ओवैसी की एंट्री ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है।

0: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी ने 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया तो एक बार फिर प्रदेश में मुस्लिम वोटर को लेकर सियासत तेज हो गई। AIMIM यूपी विधानसभा में अपने कैंपेन की शुरुआत बहराइच से करने जा रही है।
1: यही वो जगह है जहां पर इंशाल्लाह ताला 14 तारीख यानी इतवार के दिन और असर के बाद जनाब बैरिस्टर सऊदीन ओवैसी साहब एक बहुत ही भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे।
0: AIMIM का फोकस पश्चिमी यूपी और अवध के क्षेत्र खासकर बहराइच, बलरामपुर, बस्ती पर ज्यादा होगा। यूपी को 4 जोन में बांट दिया है। पूरे प्रदेश में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
2: बहराइच की उस मटेरा विधानसभा सीट से जहां की मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है और अभी तक उस पर सपा का ही कब्जा रहा है, 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दलित मुस्लिम गठजोड़ कर सपा के पीडीए को टारगेट करती दिखाई पड़ती है। कोशिश तो बसपा के साथ जाने की भी है, नहीं भी जा पाए तो अकेले 200 सीटों पर लड़ने का प्लान तैयार कर लिया है।
0: जिस सीट से ओवैसी यूपी के चुनाव का शंखनाद करेंगे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। ऐसे में ओवैसी की एंट्री ने समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है तो वहीं बीजेपी ने इसे जाति का रंग दे दिया है।
3: क्या आप मुसलमानों के मुद्दे सिर्फ चुनाव के समय उसको भुनाने के लिए आते हैं या वाकई आप उनके हितों की कुछ रक्षा करना चाहते हैं? हमको इस बात का बहुत दुख रहता है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी लड़ती है कहीं ना कहीं AIM उस पूरी लड़ाई को कमजोर करने का काम करती है।
4: असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपना चुनाव अभियान की शुरुआत बहराइच से करना चाहते हैं। आखिर बहराइच से क्यों? क्योंकि मोहम्मद गजनवी का भांजा सैयद सलार मसूद बहराइच में आया था क्रांता बनके, मार काट करने आया था। राजा सुहेल देव ने यही उसे मौत के घाट उतार दिया था, वही उसकी मजार बनी हुई है।
0: हालांकि AIMIM ने गठबंधन के विकल्प को खुला रखा है।
2: 22 के चुनाव में 95 सीट्स ऐसे थे जहां AIMIM लड़ी, उसमें 19 उम्मीदवार हिंदू समुदाय से थे या गैर मुस्लिम समुदाय से थे। अब देखना यह है इस बार AIMIM का जातीय समीकरण क्या रहता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
5: 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, ऐसे में सरकार सुरक्षा इंतजाम को लेकर बेहद सख्त है।
6: ये तस्वीर है पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने की, अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित बनाने की। अमित शाह की अगुवाई में अमरनाथ यात्रा को लेकर दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई।
7: एक उच्च स्तरीय बैठक की, इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवाल के साथ साथ IB चीफ, रॉ चीफ और केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की अमरनाथ की यात्रा को लेकर के चाहे वो बालटाल रूट हो या फिर इसके साथ साथ पहलगाम, इन तमाम रूटों की सुरक्षा समीक्षा पहले ही CRPF के DG वहां पर जाकर के ग्राउंड पर कर चुके हैं।
6: इस बार 6,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को अमरनाथ यात्रा में शामिल किया गया है। वहीं पहचान पत्र QR कोड के जरिए स्कैन किया जाएगा। वहीं खच्चर और घोड़े वालों को अलग से पहचान पत्र दिए जा रहे हैं।
7: जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ड्रोन से भी निगरानी सुरक्षा बलों के द्वारा किया जा रहा है। इसका सीधा मकसद है कि अमरनाथ यात्रा में किसी भी तरीके से चूक न हो, क्योंकि 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा से पहले जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था उस हमले में बहुत सारे लोग हताहत हुए थे। ऐसे में सुरक्षा बलों को ये हिदायत दी गई है कि तमाम अमरनाथ यात्रा रूट की जो निगरानी है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए भी किया जाए, साथ ही ह्यूमन इंटेलिजेंस से जानकारी बॉर्डर इलाकों में रखा जाए जिससे कि सुरक्षा में किसी भी तरीके का खतरा न हो।
6: अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा की पूरी तैयारियां दुरुस्त की जा रही हैं। ये तस्वीरें नुनवान बेस कैंप में मॉक ड्रिल की हैं। इस मॉक ड्रिल में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG, ट्रैफिक पुलिस, टूरिस्ट पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट समेत कई विभाग शामिल हुए, जिसमें हर तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की गईं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो।
5: एयर इंडिया के AI-171 प्लेन क्रैश को एक वर्ष हो चुका है। आज भी वो खौफनाक दृश्य उन लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है जिन्होंने हादसे में अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। वहीं एक वर्ष बाद भी हादसे का सच दुनिया के सामने नहीं आया है।

0: एक हादसा जो कई परिवारों को ऐसा जख्म दे गया जिसका दर्द पूरी जिंदगी उनकी आंखें नम करता रहेगा।
1: मिनट भी नहीं हुई थी और क्या, तो तब से हम सदमे में ही है, डिप्रेशन में आ गए। तो ये क्या हो गया, ऐसा सोचा भी नहीं था सपने में।
0: हादसे वाली जगह पर श्रद्धांजलि देने के लिए कई परिवार आए हैं, तो वहीं अलग अलग कार्यक्रम में अपनों को खोने का दर्द दिखाई दे रहा है।
2: मुझे लगता है कि एक साल गया और एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि पापा को किसी ने सबने याद ना किया हो। यही उनकी उनका पुण्य है, यही उनकी कमाई है।
0: लंदन में कई साल बिताने के बाद भावेश मोदी अहमदाबाद वापस आए अपनी माँ और बहन के साथ रहने के लिए। वो 12 जून 2025 को लंदन वापस जा रहे थे। उड़ान भरने के एक मिनट के अंदर ही उनकी बहन सुनीता और उनके भतीजे भतीजी उनके आखिरी अवशेषों को खोजने की कोशिश कर रहे थे
3: कि भाई शादी के बाद ऐसा होता है कि बेटी मतलब बहन मतलब अभी थोड़ी पराई हो गई हो ऐसा भी, पर हमारे घर में ऐसा मतलब एक दूसरे के लिए कभी हिसाब कोई चीज का रहा ही नहीं था। वो था तब तक हमें कोई मतलब कोई तकलीफ ही नहीं थी।
0: गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी 12 जून 2025 को अपनी बेटी के साथ समय बिताने लंदन जा रहे थे। हादसे में 260 लोगों की मौत हुई थी और एक साल बाद भी इंतजार है इंसाफ का, उस रिपोर्ट के सामने आने का जिसमें हादसे का सच है।
4: आज भी परिवार जो है जिन्होंने अपनों को खोया है उनका दुख जो है वो कम नहीं हुआ है, और आज भी वो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आए और उनको पता चले किस वजह से ये हुआ और जिम्मेदार कौन है। ये सारी जानकारी आज भी परिवार जानना चाहते हैं। अहमदाबाद से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ विजय जोशी आज तक।
5: खेल की दुनिया से एक दुखद खबर आई। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा अचानक दुनिया को अलविदा कह गए।
6: एक शानदार शूटर, एक कमाल के कोच, एक बेहतरीन इंसान जसपाल राणा नहीं रहे। भारत के दिग्गज शूटर जसपाल राणा का शुक्रवार को निधन हो गया। करीब हफ्ते भर पहले ही जर्मनी से लौटते समय फ्लाइट में 49 साल के जसपाल राणा की तबीयत बिगड़ गई थी। दिल्ली पहुंचने पर उन्हें फौरन एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके हार्ट में स्टेंट डाला गया था। सबको उम्मीद थी कि इस ऑपरेशन के बाद जल्द ही राणा स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन शुक्रवार को वो नहीं रहे। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 9 गोल्ड मेडल जीते थे। वो पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली शूटर मनु भाकर के कोच भी थे, और उसके बाद भी एशिया की शूटिंग रेंज में उनके निशाने सुर्खियां और मेडल दोनों बटोरते थे। एशियन गेम्स में 8 और कॉमनवेल्थ गेम्स में 15 मेडल उनकी कामयाबी की कहानी।

0: नवाजा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जसपाल राणा को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने लिखा, जसपाल राणा जी के निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। उनका जाना भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी हानि है। निशानेबाजी में उन्होंने अपने अविश्वसनीय खेल से देश को कई सफलताएं दिलाई। एक मेंटोर के तौर पर भी उनका योगदान उतना ही शानदार था। उन्होंने अपने समर्पण से देश के युवा निशानेबाजों को बनाया और उन्हें दिशा दिखाई। उनकी मजबूत प्रतिबद्धता, अनुशासन और खेल जगत की सेवा के कारण उनको काफी माना जाता है। जसपाल राणा के साथ ही भारतीय शूटिंग का एक पूरा युग खत्म हो गया। आज तक ब्यूरो
1: खबर दुनिया की, जहां एक बार फिर से ट्रंप के एक बयान ने खलबली मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी पीस डील का ऐलान कर दिया।
0: ईरान और अमेरिका के बीच सीधे हमलों की तस्वीरों के बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है, जिन्होंने इस सप्ताह ही ईरान के साथ बड़ी डील का ऐलान किया है।
2: Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart.
3: And it'll be soon, maybe this weekend.
2: And has the Supreme Leader approved this deal, sir?
3: I understand the answer is yes.
2: And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade?
3: Yes, that's true. That's part of the deal.
0: मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डील के ड्राफ्ट में वो सब बातें हैं जो विवादित रही हैं। हुर्मुज बिना किसी टोल के तुरंत खोला जाएगा। 30 दिनों के अंदर जहाजों की आवाजाही पुराने स्तर पर लाई जाएगी। इसके बदले अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले से ठीक 3 घंटे पहले युद्ध बंद करने का फैसला किया। इससे ठीक पहले वो ईरान के खाट द्वीप पर हमला कर कब्जा जमाने की धमकी दे चुके थे। खबरों के मुताबिक ट्रंप के ऐलान से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैरान रह गए। ट्रंप ने ईरान से युद्ध बंद करने से पहले नेतन्याहू को कुछ भी नहीं बताया। हालांकि ईरान ने ये कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया है कि अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। अब डील होगी या ईरान को दबाव में डालने के लिए ट्रंप ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला करेंगे, ये अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: और अब खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी अभियान के दौरान मारे गए 3 भारतीयों की। अमेरिका ने ओमान के पास जिस तरह से भारतीय नाविकों वाले 3 जहाजों पर हमले किए, उसने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के युद्ध की आंच अब भारत और अमेरिका के रिश्तों तक पहुंच चुकी है, तो 3 भारतीयों की मौत पर अब ईरान भारत के साथ खड़ा है। ईरान ने इसे अमेरिका की हथियारबंद लूट और समुद्री डकैती बताया, जबकि अब ट्रंप भारतीय जहाजों पर हमले का ठीकरा ईरान पर फोड़ रहे।
0: ओमान तट पर एक तेल टैंकर पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। जिस समय मिडिल ईस्ट में ईरान अमेरिका टकराव लगातार गहरा रहा है, उसी दौरान भारतीय नागरिकों की जान जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। भारत ने अब इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारी को तलब करके कड़ा विरोध जताया। अमेरिकी चार्ज डी अफेयर्स जेसन मीक्स शुक्रवार को करीब 45 मिनट तक विदेश मंत्रालय में रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जल में 3 दिन में 3 जहाजों पर अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मृत्यु हो गई और हमारे कॉम्प्रोमाइज पीएम एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है, लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाए। ईरान ने ओमान और हुर्मुज जलडबरू मध्य के पास भारतीय कमर्शियल जहाजों पर अमेरिकी हमलों की बेहद तीखे शब्दों में निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को हथियारबंद लूट और सरकारी समुद्री डकैती कहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के

0: प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने मारे गए भारतीय नाविकों के परिवारों के लिए संवेदना जाहिर करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अमेरिका को उसके गैर कानूनी व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए, जो वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और साथ ही नेविगेशन की आजादी को भी खतरे में डाल रहा है। ये है स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाज पर हुई अमेरिकी बमबारी में मारे गए शिवानंद चौरसिया का परिवार। जैसे ही अमेरिकी हमले में शिवानंद की मौत की खबर आई, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है।
1: मंगलवार को ये हाल चाल पूछे, पिताजी से बात हुई थी, आखिरी बात यही हुई थी।
2: क्या कह रहे हैं?
1: क्या कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ, बस एक मिनट बात हुई थी।
2: कब और कैसे पता चला आप लोगों
1: को? हम लोग को सुबह पता चला कि उनके जो जिस जहाज में थे उस पे बम गिर गया।
0: शिवानंद 6 महीने पहले ही 6 लाख रुपए का भारी भरकम कर्ज लेकर फिटर के काम के लिए मुंबई से जहाज के जरिए सिंगापुर गए थे, जहां से लौटते समय ओमान के पास उनका जहाज इस हमले का शिकार हो गया। अब परिवार को समझ नहीं आ रहा है ये कर्ज कैसे उतरेगा।
3: 2 महीना पहले बात हुई थी, हाल चाल बताए थे, ठीक ठाक है, कोई बात नहीं, अच्छा बिहेव करते थे, अच्छे से बात भी करते थे, साथ यहाँ पर रहते थे तो कभी भी साथ ही बैठ करके खाना वाना खाते थे हमारे। मैंने एक बार कहा भी था कि मत जाइए, यहीं पे कमाइए, ठीक रहिए, हमें कमाएंगे, खुशहाल रहेंगे, मेरे वो नहीं माने। फिर उनका था मन में था कि हम एक बार शिप पे जाएंगे, तो ही शिप पर गए और लास्ट।
0: अमेरिका और ईरान के बीच हो रही जंग की वजह से अब तक भारत को तेल और गैस की टेंशन थी, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी में फंसे हजारों भारतीय नाविक जंग की आग से झुलस सकते हैं। हफ्ते के पहले 4 दिनों में ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले 3 जहाजों पर अब तक अमेरिका की तरफ से हमले हो चुके हैं। पहला हमला 8 जून को मेरी वैक्स नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें सवार 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित निकाला गया। दूसरा हमला 10 जून को सेटेबेलो नाम के जहाज पर हुआ, जिसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तीसरा हमला आज जलवीर नाम के जहाज पर हुआ, जिस पर 20 भारतीय नाविक थे। ये तीनों हमले ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक गिनी बिसाउ के झंडे वाले इस जहाज पर ईरानी तेल ले जाने का आरोप था। अमेरिका का कहना है कि जहाज के क्रू ने उसका निर्देश नहीं माना, इसलिए एक अमेरिकी विमान ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी।
4: आज के इस टेक्नोलॉजी के जमाने में हर जहाज के पास ऑलमोस्ट डिटेल होती है। जहां तक नेवल शिप की बात करूं मैं यूएस के, तो उनके पास 101% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि उनके पास इस बात की जानकारी थी कि उस जहाज पे कितने भारतीय हैं, कितने विदेशी नागरिक हैं। उसके बाद भी उनके पास ये ऑप्शन था कि वो चॉपर से या स्पीड बोट से या उनकी जो क्रूजिंग बोट है उस बोट से उस जहाज को बोर्ड कर सकते थे। अगर उस जहाज के ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो उसको डिटेन करना उनके पास एक पर्याय था, लेकिन जिस तरह से दोनों जहाज को हिट किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उन्हें जहाज पे काम करने वाले नाविकों की कोई परवाह नहीं थी।
0: लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि भारत पोर्ट गुट का हिस्सा है, जो मुक्त समुद्री आवाजाही की वकालत करता है, लेकिन अमेरिका इसी आवाजाही में बाधा बन रहा है। क्वाड गुट में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया हैं। आज तक ब्यूरो।
5: बहुत छोटा सा ब्रेक, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज

0: टीएमसी में बागियों का एक्शन प्लान तैयार। लोकसभा स्पीकर से सोमवार को मिलने की तैयारी। रविवार को सीएम शुभेंदु के साथ करेंगे बैठक। भड़काऊ भाषण मामले में सीआईडी का नोटिस मिलने पर बोले अभिषेक बैनर्जी, एमपी एमएलए खरीद कर टीएमसी को झुकाना असंभव। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में ममता पर भी एफआईआर। मीनाक्षी नटराजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। राज्यसभा चुनाव में नामांकन रद्द होने के विरुद्ध याचिका खारिज। निर्वाचन भवन के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी पर अखिलेश का हमला, वो मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी। योगी पर कटाक्ष, हमारी सरकार बनी तो फर्जी मुठभेड़ कराने वालों के खिलाफ लेंगे एक्शन। हमले में तीन भारतीय नागरिकों की मौत का ठीकरा ट्रंप ने ईरान पर फोड़ा। तेहरान ने किया था ड्रोन अटैक, ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं। खबर टीएमसी में मचे घमासान की। टीएमसी में जहां एक ओर ममता के बागी सांसद पार्टी के लिए खतरा बन चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुभेंदु सरकार के निशाने पर सीधे ममता बनर्जी आ चुकी है।
1: মানি লন্ডারিং যারা ইনভেস্টিগেট করে তাকেই হ্যান্ড ওভার করবো, আমরা ছাড়বো না, ছাড়ার জন্য তো মানুষ বসাইনি।
2: पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के तेवर बता रहे हैं कि ममता बनर्जी पर सरकार जरा भी नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। कोलकाता में ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एक नई एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। विरोधियों के अलावा दीदी के सामने अपनों से निपटने की चुनौती भी है। सोमवार को टीएमसी के बागी सांसद लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने जा रहे हैं। बागी सांसदों ने अलग गुट की मांग की थी, जिसे लेकर ये मुलाकात होगी, जहां बागियों की संख्या और बढ़ने का दावा किया जा रहा है।
3: सबसे पहले कौन है, जब साइन हुआ उस लेटर पे सबसे पहले किसने साइन किया, आपने साइन किया, किसने साइन किया?
4: नहीं, एक दिन में तो हम सब बैठे हैं, एक दिन में हम बैठे हैं, एक धार से साइन किया। पहले काहुली
3: शुकेंदु शेखर जी ने जिस दिन इस्तीफा दिया था, उस दिन भूपेंद्र यादव जी के घर गए थे, वहाँ पर हुआ?
4: हाँ, वहीं पर।
3: वहाँ पे क्या पहले कितने लोग आ गए थे?
4: पहले दिन 14 था।
3: साइन घोष भी उसमें थी?
4: नहीं, साइन घोष 20 में आया,
3: बाद में आया। तो अब आप कब मिलने जा रहे हैं स्पीकर साहब से, कब मिल रहे हैं आप लोग?
4: सोमवार जाएंगे।
3: क्या मांग करेंगे
4: आप? हमारा जो डिमांड है अलग गोट टीएमसी का।
2: आज तक के पास एक पत्र है, इसमें उन सांसदों के नाम हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर टीएमसी से अलग गुट बनाने की प्रक्रिया का आगाज किया था। इस चिट्ठी में कुल 19 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और ये पत्र भी 18 मई को लिखा गया था। इसमें सबसे पहला नाम काकोली घोष का है, जो उस समय चीफ व्हिप थी। इसके बाद शताब्दी रॉय, बापी हल्दर, शर्मिला सरकार, जगदीश चंद्र वर्मा, निखिल कुमार महतो, अरूप चक्रवर्ती, कालीपाड़ा सारेन, यूसुफ पठान, मिताली बाग, माला रॉय, अबू ताहिर खान, कुल 18 नाम ऊपर लिखे हैं। 19वां दस्तखत सबसे नीचे है, 13वां नाम पढ़ा नहीं जा सका।
5: रिबल कहां से हो गए? ये तो भगोड़े हैं। रिबल तो वो होते कि सब एक साथ मिलकर के लड़े थे और उसके बाद ये बगावत कर गए।
6: सभी समदुखी है, शिवसेना भी समदुखी है। वही तो किया ना, जो शिवसेना के साथ किया वही टीएमसी के साथ कर रहे, तो जो पैटर्न उन्होंने महाराष्ट्र में किया वही पैटर्न हुआ।
2: ममता बनर्जी से पार्टी छीनने के लिए बागियों को सिर्फ 19 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल्याण बनर्जी और सयानी घोष भी अगर इस पाले में गए तो ममता दीदी के हाथ से टीएमसी का जाना तय है। आज तक ब्यूरो।
0: टीएमसी में बगावत की सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं जांच एजेंसियां भी अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ गई हैं, जहां फर्जी हस्ताक्षर का मामला अभिषेक के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है।

अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से जैसे ही कोलकाता वापसी की, फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की टीम सवालों की लिस्ट लेकर वहां तैयार थी। करीब 5 घंटे तक सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी से ताबड़तोड़ सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक भवानी भवन में हुई लंबी पूछताछ के दौरान अभिषेक सीआईडी के कई सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूछताछ के दौरान कई बार अभिषेक बनर्जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून को 12 बजे फिर से पेशी का निर्देश दिया है। उधर सीआईडी की लंबी पूछताछ के बाद अभिषेक फौरन मुलाकात के लिए ममता बनर्जी के आवास पहुंच गए। अभिषेक का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर के बाद अब भर्ती